आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। आज रविवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की तिथि 18, तदनुसार 9 अगस्त सन 2026 ईस्वी। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस समय सुबह के 5:58 और 50 सेकंड हुए हैं। आरंभ होती है हमारी आज की सभा।

आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू हो रहा है और इस महीने की 17 तारीख तक चलेगा। अभियान का उद्देश्य लोगों को अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। ये अभियान 2022 में शुरू हुआ था और अब एक बड़े जनभागीदारी अभियान का रूप ले चुका है। इस वर्ष अभियान का विशेष महत्व है क्योंकि यह राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ मनाया जा रहा है। देशभर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी होगा। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाएगा। दुनिया भर में 200 से अधिक भारतीय दूतावास, उच्चायोग और वाणिज्य दूतावास भी अभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित करेंगे। इस वर्ष सूर्य पथ तिरंगा डिजिटल रिले भी आयोजित होगी। इसमें 54 भारतीय राजनयिक मिशन और केंद्र हिस्सा लेंगे। ये रिले 15 अगस्त को फिजी से शुरू होकर सैन फ्रांसिस्को में समाप्त होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास के लिए नवाचार, अनुसंधान और उभरती प्रौद्योगिकियों के महत्व पर जोर दिया है। श्री मोदी ने कल भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वो अपने निर्णयों में राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखें। श्री मोदी ने IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि देश में नए क्षेत्र उभर रहे हैं जो युवाओं को नए अवसर प्रदान कर रहे हैं। श्री मोदी ने सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और ड्रोन जैसे क्षेत्रों का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कार्य कर रहा है।
1: सेमीकंडक्टर सेक्टर का उदाहरण भी हमारे सामने है। जब हमने इस दिशा में कदम बढ़ाया तो कुछ लोगों ने सवाल उठाया, कहा गया भारत ये नहीं कर पाएगा, लेकिन पहली सेमीकंडक्टर यूनिट्स में प्रोडक्शन शुरू हो चुका है और मैं साफ मानता हूं चिप से लेकर के शिप तक सब कुछ यहीं पर आप ही के हाथों से बनेगा। और कहीं कोई युवा पूरे आत्मविश्वास से कह रहा है फर्स्ट इन माई ब्लड लाइन टू मेक अ चिप।

0: इन इंडिया।
1: श्री मोदी ने कल अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से फोन पर बातचीत की। इस दौरान दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की। श्री मोदी ने उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और सेकेंड लेडी उषा वेंस को उनके पुत्र के जन्म पर बधाई देते हुए शुभकामनाएं भी व्यक्त की। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कल आबिजान में कोटे डी आइवर के राष्ट्रपति अलासानी ओटारा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और कोटे डी आइवर के बीच बढ़ती साझेदारी पर चर्चा की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज सुबह पुदुचेरी के गोरीमेडू स्थित पुलिस प्रशिक्षण स्कूल मैदान में पुदुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस कलर प्रदान करेंगे। दोपहर में श्री शाह मुरुगा थिएटर सिग्नल से हर घर तिरंगा रैली को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। श्री शाह दो दिन के दौरे पर कल पुदुचेरी पहुंचे थे। भारत ने स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। देश ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली उत्पादन क्षमता में 300 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि पिछले 12 वर्षों में भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में 400% की वृद्धि हुई है। श्री जोशी ने कहा कि यह आंकड़ा भारत की स्वच्छ ऊर्जा उपयोग की दिशा में वैश्विक प्रगति दर्शाता है। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी की भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी गतिरोध के सिलसिले में आज राज्य सरकार और प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच अगले दौर की वार्ता होगी। झारखंड सरकार ने परीक्षा प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एक आधिकारिक फीडबैक ईमेल आईडी जारी किया है। इसके माध्यम से छात्र और सभी संबंधित पक्ष अपने सुझाव भेज सकते हैं। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। राज्य में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 99 हो गई है, जबकि 1,47,000 से अधिक लोग अब भी प्रभावित हैं। सरकार ने बताया है कि 12 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। उधर जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा से जुड़े मार्गों की मरम्मत और प्रतिकूल मौसम को देखते हुए इस यात्रा को आज से बालतल और पहलगाम दोनों मार्गों से स्थगित कर दिया गया है। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में आज भारत की अश्मिता चालिहा का सामना चीन की क्यू हान से होगा। ये मुकाबला दक्षिण कोरिया के आसन में भारतीय समय अनुसार सुबह 7:30 बजे से खेला जाएगा। अश्मिता ने कल सेमीफाइनल में भारत की ही रक्षिता रामराज को हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। वहीं क्यू हान ने दूसरे सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया की जी किम को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है, FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम चिंतन।

तारक माता ग्राम वासनी अर्थात मां भारती का साक्षात रूप हमारा ग्राम है, क्योंकि भारत मां गांव में बसती है। अतः ग्राम का पूर्ण शिक्षित होना राष्ट्र का शिक्षित होना समझा जाता है। हमारा ग्राम जितना समृद्धशाली होगा, हमारा देश भी उतना ही समृद्धशाली बनेगा। बापू का सपना गांव की समृद्धि में ही निहित है, इसीलिए तो आजादी की शंख ध्वनि महात्मा गांधी द्वारा गांव से ही आरंभ हुई। महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के बाद लोग गांव की ओर आने लगे और आजकल तो गांव चलो का आंदोलन एक जरूरी अंग बन गया है। सभी ये अनुभव करने लगे हैं कि राष्ट्र के सच्चे हमारे गांव हैं, जहां हम सबों की रक्षा होती है। गांव के लोग प्राकृतिक जीवन बिताते हैं, पर उन्हें इस आनंद भरे जीवन का पता नहीं रहता। ग्रामीण इलाके की नर नारियां, वृद्ध बच्चे वैसे ही किसी अनजान व्यक्ति के प्रवेश करने पर निहारने लगते हैं, जैसे प्यासा एक बूंद पानी के लिए निहारता है। उनकी चाहत जाने बगैर कोई इस राह से गुजर जाता है तो वे हाथ मलते रह जाते हैं, दो मीठी बोलियों के लिए, जैसे वे उन्हें एकटक निहार रहे हों। वे अपनी बातों को उन तक रखने में भी

अपने आप को असमर्थ पाते हैं कि किस तरह उनसे बातें की जाएं। इसी माहौल में यदि कोई पढ़ा लिखा युवक है तो ग्रामीण उसी को पदाधिकारी के पास बातें करने, आवेदन लिखने इत्यादि का भार सौंपते हैं। यदि वह युवक इनसे बेईमानी करे तो भला वे सीधे साधे अनजान बने लोगों का क्या कसूर है। पर आज स्थिति कुछ बदली बदली नजर आती है। ग्रामीणों में एक नई ललक पढ़ाई लिखाई के प्रति देखी जा रही है। बूढ़े बूढ़ियां भी स्लेट पेंसिल लेकर गांव के पढ़े लिखे व्यक्तियों के साक्षरता केंद्रों पर पढ़ने के लिए उत्सुक नजर आते हैं। वे जब एक शब्द लिखना पढ़ना सीख जाते हैं तो मानो वे खुशी से झूम उठते हैं और नए शब्दों को जानने के लिए अपने मास्टर बने बच्चों से बहुत कुछ सीखने की उम्मीद रखते हैं। वे उस समय उस नन्हे से शिक्षक को अपना सच्चा गुरु मानने के लिए विवश हो जाते हैं। सचमुच ये शिक्षा या सीखना जो शब्द है वो किसी से भी सीखा जा सकता है। सीखने में उम्र की बाध्यता नहीं होती, न सीखने में ही और न सिखाने में ही। सीखना और सिखाना जीवन पर्यंत चलने वाला घटना चक्र है। कभी हम किसी को कुछ सिखाते हैं तो हमें भी वो अपने जीवन के खट्टे मीठे अनुभवों से सीख देता है। उससे भी इसकी जानकारी लेकर अपने जीवन में उतारना सीखना ही है। जरा सोचें, जो वृद्ध नर नारी आज साक्षरता केंद्रों के खुलने पर पढ़ना लिखना सीख रहे हैं, क्या वे अपने गुजरे समय में कामधाम, खेतीबारी या लेन देन नहीं करते थे? संभव है हम पढ़े लिखे व्यक्तियों से गलतियां हो जाती हैं, पर एक अनपढ़ खूब सोच विचार कर सही ठेपा लेन देन करता है। वो सैकड़ों बार मनन चिंतन कर दूसरों से पूछताछ कर पढ़े लिखे व्यक्तियों से संपर्क कर ऐसा काम कर दिखलाता है जिसमें गलती होने की गुंजाइश ही नहीं होती। पर उसे चिट्ठी या आवेदन को दूसरों से लिखवाने की बाध्यता होती है, जिसे हमारा राष्ट्रीय कार्यक्रम साक्षरता मिशन पूरा कर रहा है। आज गांव में अशिक्षा रूपी गुलामी से हर व्यक्ति अपने को आजाद कर रहा है, जो ग्रामीण लोगों की बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमारे ग्रामीण जब साक्षर हो रहे हैं तो निश्चित ही इसका लाभ हमारे राज्य और राष्ट्र को प्राप्त होगा। अब वे अपना हानि लाभ समझते हुए सभी कार्यक्रमों को सही दिशा देने में अपना योगदान देंगे। आज बापू का सपना साकार होता नजर आ रहा है। सचमुच अशिक्षित रहना देश समाज का कलंक है। इस कलंक से हम आज छुटकारा पाने की दिशा में प्रेरित हैं। अब सफलता हमारे कदम चूम रही है। गांव खुशहाल होगा तब हमारा देश और समाज भी खुशहाल होगा। इस खुशहाली को बहाल करने के लिए साक्षरता कर्मियों का योगदान हमेशा हमेशा याद किया जाता रहेगा।

ये था कार्यक्रम चिंतन। और अब आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम का प्रारंभ करते हैं लता मंगेशकर के स्वर में इस भजन से।

0: भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से प्रस्तुत किया जा रहा है।
1: भक्त वत्सला माता वैष्णो देवी जीवित हो गया।

आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है। अब आइए सुनते हैं श्री रामचरितमानस गान की आज की कड़ी।

एक पूरी आयु जी चुकने के बाद भी मनुष्य को विषय वासनाओं से विरक्ति नहीं होती। इसी तथ्य की प्रतीति होने पर मनु को वैराग्य की प्रेरणा मिली थी। 6000 वर्षों तक मात्र जल का आहार, फिर 7000 वर्षों तक वायु का आधार और अंत में 10000 वर्षों तक वायु तक के बिना तपस्या करते न करते ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश ने कई बार उन्हें दर्शन देकर वरदान मांगने का परामर्श दिया, किंतु मनु दंपति किसी के डिगाए नहीं डिगे। अंततोगत्वा सर्वज्ञ प्रभु की परम गंभीर अमृत सनी वाणी सुनाई पड़ी, वर मांगो। कानों में अमृत सरी की ये गूंज सुनकर मनु बोले, हे अनाथों का कल्याण करने वाले, यदि हम लोगों पर आपका स्नेह है तो प्रसन्न होकर ये वर दीजिए कि आपका जो स्वरूप भगवान शिव के मन में बसता है, सगुण और निर्गुण कहकर वे जिसकी प्रशंसा करते हैं, हम उसी रूप को जी भर कर देख सकें। मनु दंपति के कोमल, विनय युक्त और प्रेम पगे वचन भगवान को अत्यंत प्रिय लगे और वो उनके सम्मुख प्रकट हो गए। शोभा के सागर भगवान का ये रूप देखकर मनु तथा शत्रुपा के नेत्र अपलक एकटक खुले के खुले रह गए।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है। कार्यक्रम विवरण के तहत आई जानकारी लेते हैं आज प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों की।

हमारी आज की सभा में अब से थोड़ी देर बाद यानी 7 बजे आप सुनेंगे लोक गीतों का कार्यक्रम लोक रंग। घर संसार कार्यक्रम का समय है 7:20 और 7:30 पर आप सुनेंगे फुलवारी कार्यक्रम के तहत मध्य विद्यालय नूरा के बच्चों द्वारा प्रस्तुत रंगारंग कार्यक्रम। आठ बजकर 45 मिनट पर होगा प्रायोजित कार्यक्रम न्याय विभाग विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा। 10 बजे से आप सुनेंगे कार्यक्रम हेलो हजारीबाग। 5:02 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम नया संकल्प नई पहल। युवा तरंग कार्यक्रम का समय है 5:30। 6:02 से आप सुनेंगे कार्यक्रम मेहनत कश और 6:30 पर होगा कार्यक्रम फिल्म संगीत। आज रात 7:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम झनकार

सदाबहार फिल्म संगीत का कार्यक्रम ऑल टाइम हिट्स का समय है रात 7:30। 8 बजे से आप सुनेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत। आज रात 10 बजे आप सुनेंगे फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आपकी चाहत, और 10:30 पर होगा कार्यक्रम शाम में गजल। तो ये थी जानकारी आज प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों की।

0: प्रोत्साहयितुं देशभक्तिं राष्ट्रैक्यं भारतस्य सांस्कृतिक परम्पराम् च आचरितुं कार्यक्रमेषु भागग्रहीतुं च अस्य उपक्रमस्य उद्देश्यः अस्ति। द्वाविंशत्यधिकद्विसहस्रतमे वर्षे आजादी का अमृत महोत्सवस्य अंशरूपेण आरब्धम् एतत् अभियानम् ततः परं देशस्य बृहत्तमेषु जनसहभागित्व आन्दोलनेषु अन्यतमम् अभवत्। वर्षानुवर्षेषु एतत् यथार्थ जनान्दोलनत्वेन परिवर्तितम् यत् भारतस्य एकतायाः सम्मानस्य सामूहिक राष्ट्रिय अस्मितायाः च प्रतीकरूपेण त्रिवर्णध्वजम् आचरितुं प्रदेशेषु समुदायेषु च नागरिकान् प्रेरयति। अस्य वर्षस्य अभियानस्य विशिष्टं महत्त्वं वर्तते यत् एतत् भारतस्य राष्ट्रियगीतस्य वन्दे मातरम् इत्यस्य सार्धैकशततमस्य वार्षिकोत्सवस्य संयोगेन भवति यत् राष्ट्रध्वजं राष्ट्रगीतं च देशभक्तिविशेषस्य उत्सवे संगृह्यति। उत्सवस्यांशरूपेण सम्पूर्णे देशे वन्दे मातरम् इत्यस्य सामूहिकगायनस्य आयोजनं भविष्यति। उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णनवर्यः अद्य श्रीविजयपुरम् नगरस्य फ्लैग पॉइंट इत्यत्र हरघर तिरंगा अभियाने भागं स्वीकृत्य राष्ट्रध्वजम् उत्तोलयिष्यति। उपराष्ट्रपतिः ह्यः अण्डमान निकोबार द्वीपानां द्विदिवसीय यात्रायै श्रीविजयपुरम् नगरे सम्प्राप्तवान्। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः अद्य प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर इति राष्ट्रपति आरक्षक वर्ण प्रदान समारोहे भागं ग्रहीष्यति इति वार्ताः।
1: आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। 7 बज चुके हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम लोकरंग। सबसे पहले ये जरूरी संदेश।
2: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: लोकरंग कार्यक्रम में आज सबसे पहले आइए सुनते हैं सत्येंद्र कुमार मिश्रा और साथियों से ये कृषि गीत।

लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंग आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से प्रस्तुत किया जा रहा है। कार्यक्रम में अब आइए सुनते हैं लाल बिहारी साव और साथियों को।

0: और इस लोकगीत के साथ ही आज का लोक रंग कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम घर संसार। परिवार कल्याण पर आधारित इस कार्यक्रम में आज आइए सुनते हैं भेंट वार्ता रेबीज बीमारी से बचाव के उपाय विषय पर। भेंट वार्ताकार हैं डॉक्टर अजय कुमार यादव और भेंट करता है अशोक कुमार। आइए सुनते हैं इस भेंट वार्ता का पुनर्प्रसारण।
1: मित्रों, कुत्ते पालना आमतौर पर शौक माना जाता है लोगों का और काफी लोग जो हैं इस शौक के कारण कुत्ते को पालते हैं और यह शौक ही नहीं, कुत्ते को बेहतर प्रहरी के रूप में जाना जाता है और स्वामी भक्त की जब बात आती है तो उससे भी बेहतर कोई दूसरा विकल्प नहीं है। आमतौर पर कुत्ते को जब लोग पालते हैं तो उसके कई नस्ल होते हैं, तो कौन सी नस्ल के कुत्ते हम पालें और उनका रख रखाव कैसे हो, और जब कुत्ता पालते हैं तो एक आम बीमारी रेबीज की बात आती है तो वो कैसे होता है, सिर्फ काटने से ही होता है या उनके संपर्क में जाने से भी होता है। इन सभी प्रश्नों के जवाब के लिए हम आज उपस्थित हैं घोड़ा अस्पताल के पशु चिकित्सक डॉक्टर अजय कुमार जी के पास। तो डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार।
2: नमस्कार
1: डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये कुत्ता का जो नस्ल होता है तो कौन से नस्ल को व्यक्ति अपने पास रखे जो कि उसके लिए मतलब कि उसके संपर्क में आने से बीमारी भी हो जाए तो उसे मतलब बचाव हो सके।
2: नस्ल से बीमारी का उस तरह से संबंध नहीं है
1: जी।
2: नस्ल का चुनाव चूंकि व्यक्ति के अपने व्यक्तिगत पसंद पर है, तो कुछ चूंकि ये प्रहरी के रूप में है
1: जी
2: और कंपेनियन डॉग माने कंपेनियन के रूप में साथी के रूप में भी है
1: जी।
2: कुछ ऐसा है कि छोटे नस्ल के जैसे कुत्ते हैं तो साथी के रूप में बेहतर है जैसे पग वगैरह नस्ल का, लेकिन वो प्रहरी के रूप में उतना कार्य नहीं कर पाते हैं, या कुछ जैसे इंटेलिजेंट कुत्ते मतलब हैं जैसे डोबरमैन वगैरह है तो वो सब पुलिस या प्रशासनिक विभाग में उसकी सेवा ले जाती है, खास करके इन्वेस्टिगेशन वगैरह के मामले में। तो वो अपना व्यक्तिगत पसंद और किस तरह की जरूरत है उसके हिसाब से, तो कुछ अलग अलग जैसे कि अगर जर्मन शेफर्ड है, डालमेशियन है
1: जी,
2: चाहे फॉक्स टेरियर है, पग है, पोमेरियन है, तो कुछ छोटे नस्ल के हैं, कुछ बड़े नस्ल के हैं। पग वगैरह जैसे है छोटे नस्ल का है और देखने में प्यारा है, एक साथी के रूप में है
1: जी जी।
2: तो जर्मन शेफर्ड है या इस तरह का भी जो भी है अल्सेशियन में,
1: तो ये सारे नस्ल के
2: नस्ल मतलब बहुत ज्यादा नस्ल है कुत्ते का और सबका चूंकि अपना व्यक्तिगत पसंद, कुछ बड़े जिसका बॉडी वेट काफी ज्यादा है, कुछ का

0: डिबेट काफी कम है, तो जिस तरह का अगर साथी के रूप में रखते हैं तो आप पसंद से वो ले सकते हैं कि किस तरह का लेना है, लेकिन बीमारियों तक जहां तक संबंध है वो जैसे रेबीज है, चाहे कैनाइन डिस्टेम्पर है, हेपेटाइटिस है, चाहे जो भी बीमारियां हैं, तो सब नस्ल के कुत्ते को होगा। वैसा नस्ल पर बीमारी का कोई विशेष रूप से नहीं है,
1: मतलब किसी भी नस्ल के हैं वो बीमारी होनी ही, अगर वो काट लिया है या कुत्ते को होना तो वो होगी ही होगी।
0: मुख्य जो बीमारी सब है तो उसमें वो किसी भी नस्ल के कुत्ते को हो सकती है, तो उसमें एक मुख्य बीमारी रेबीज है
1: जी,
0: क्योंकि रेबीज एक वायरस से होने वाली बीमारी है, और उसका है कि बहुत से तरह के जानवरों में, आदमी से लेकर के पालतू पशुओं में, कुत्तों में, बहुत ज्यादा जाति के पशुओं को ये आक्रांत कर लेता है, और ये बहुत ही भयानक और घातक इस मामले में है कि टीकाकरण ही इसका उपाय है, और बीमारी के लक्षण प्रकट हो जाने पर इसका कोई उपाय, कोई दवा नहीं है, तो इसका बेहतर है कि पहले से वैक्सीनेशन कराया जाए, टीकाकरण, और उसके साथ कैसे ये फैलता है
1: जी।
0: तो फैलने का मुख्य रूप से इसका काटने से होता है
1: जी, मुख्य रूप से इसके काटने से ही ये बीमारी होती है।
0: काटने में जो है, जैसे अगर स्किन में, चमड़े में अगर वो पकड़ लेता है, चाटने से उसका नहीं है, लेकिन चाटने से चूंकि वायरस इसका लार में रहता है
1: जी जी,
0: हालांकि ऐसा नहीं है कि हर समय रहता है, लेकिन अगर किस समय है किस समय नहीं है, लेकिन खास करके अगर पागल कुत्ता है तो वो तो निश्चित रूप से
1: बीमारी होगी उसमें,
0: उसमें बीमारी, उसमें वायरस है, लेकिन कभी कभी जैसे रोड पर जो कुत्ते चलते हैं तो उसमें भी ऐसा होता है कि उसमें बीमारी नहीं है लेकिन वायरस उसमें है।
1: अच्छा,
0: तो उसको कतई मतलब निरापद नहीं समझा जा सकता
1: जी,
0: है
1: जी, जी, जी।
0: तो वैसा कुत्ता भी अगर काट लेता है तो उससे रेबीज बीमारी की आशंका पूरा है,
1: तो उसका टीकाकरण करवाना होगा, टीका लेना होगा,
0: टीका उसका लेना होगा,
1: इंजेक्शन उसका लेना होगा जी
0: लेना
1: जी। अच्छा, ये इस बीमारी से बचाव के लिए जो आपने कुत्ते का जो आपने बताया, तो कितने अंतराल में, कितने समय अंतराल में, कितने वर्षों के लिए के दरमियान कुत्ते को लगानी चाहिए
0: वैक्सीनेशन? पहले तो हम काटने के बारे में, अच्छा इसके बारे में हम बता देते हैं, इसमें आपको जो है कुत्ता को 2 से 2.5 महीने पर या 3 महीने के अंदर में एक बार, 2-3 महीने से पहले एक बार ले सकते हैं जहाँ तक ज्यादा आशंका है तो, लेकिन उसके बाद फिर 1 महीने के बाद फिर एक बार रेबीज का टीका लेना है, और उसके बाद वो हर साल पर, हर साल उसका 1 साल वर्ष के अंतराल पर उसका रेबीज का टीका दिलाते जाना है।
1: और वैक्सीनेशन वाले कुत्ते अगर काट ले किसी को तो उसे फिर बीमारी का खतरा नहीं रहता?
0: वैक्सीनेशन का कुत्ता मतलब जो जिसको वैक्सीन पड़ा हुआ है वो तो निरापद हो गया, और प्लस उसकी भी सुरक्षा होती है, क्योंकि उसको भी कोई अगर कुत्ता काट लेता है तो ज्यादातर जैसे कुत्ता के काटने से होता है, या पागल अगर जैसे रेबीज हो गया, जो जिसके रेबीज की बीमारी आ गई, अगर वैसे कुत्ता है या बकरी, अरे गाय है, बकरी है, या और कोई भैंस है, पालतू पशु भी है, उसको अगर रेबीज की बीमारी पूर्ण रूप से प्रकट हो गई है, उसका लक्षण आ रहा है, तो उसके मुंह में हाथ डालने से, या कोई दवा अगर पिलाते समय हाथ में काट लिया या इस तरह का है तो उसके काटने से भी हो सकता है। इसके अलावा जो है देहातों में जैसे सियार हो गया ना, और इसी नस्ल के जो भी प्राणी जो इससे मिलते जुलते हैं, चमगादड़ हुआ, उस सब के काटने से भी फैलता है,
1: इन सब मतलब रेबीज बीमारी की खतरा रहता है।
0: एक और चीज इसको बताना चाहेंगे कि अगर रेबीज से वैसा आशंका वाला कोई भी कुत्ता या दूसरा पशु काट लिया है तो सबसे पहले साबुन से उसको धोना चाहिए
1: जी, उस स्थान पर जी,
0: वो साबुन उसको बहुत वायरस को नष्ट करने में वो सहायक है, तो साबुन लगा करके उसको अच्छी तरह से धो लेना चाहिए। उसके बाद चूंकि घाव हो गया है तो उसे बाद में एंटीसेप्टिक कोई मलहम या क्रीम उसमें लगा सकते हैं,
1: डिटॉल वगैरह सभी धोने से फायदा है,
0: धो सकते हैं, लेकिन पहले उसको साबुन से धोया जाए जितना जल्दी हो सके।
1: अच्छा, कभी कभी ऐसे देखने में आता है कि उपलब्ध इसकी दवाइयां नहीं होती है हॉस्पिटल में, तो ऐसे में टेटनस से क्या लगा देना चाहिए रोगी को?
0: टेटनस तो चूंकि टेटनस से बचाव करता है, और रेबीज बीमारी का वैक्सीन अलग है
1: जी,
0: वो टेटनस तो टेटनस
1: नहीं, सुरक्षा के दृष्टिकोण से आरंभिक शुरुआती के लिए
0: है, तो उसको अगर काट लिया है कुत्ता उस तरह का, या कोई भी पशु जो रेबीज से आक्रांत है, तो उसको अगर मिट्टी जैसे

0: उसमें लग गया है, वो टेटनस का बैक्टीरिया जाने का खतरा है, तो उसको टेटनस का तो टीका ले लेंगे, लेकिन टेटनस से और रेबीज का कोई मतलब नहीं है, दोनों अलग अलग बीमारी है।
1: जी जी जी।
0: और रेबीज के लिए उसका टीका है कि उसी दिन से, अगर इसका रिकमेंडेशन है कि उसी दिन से रेबीज
1: जी, जीरो दिन से पड़ता है।
0: हाँ, जीरो दिन से पड़ा, अगर लेट हो जाता
1: लेकिन
0: है,
1: लेकिन किसी का दो चार दिन
0: अगर लेट हो गया, दो दिन तो भी उसको छोड़ना नहीं है, चूंकि करा लेना है, लेकिन ध्यान देना है कि अगर काट लिया तो उसी दिन से जहां तक संभव है जितना जल्दी करें, और उसका कोर्स है पूरा कोर्स का मतलब ले लेना चाहिए।
1: अभी कितना इंजेक्शन का डोज है डॉक्टर साहब?
0: अभी तो पालतू पशुओं में है वही
1: पांच
0: का छह है, लेकिन एक महीना के अंदर पांच डोज पड़ जाता है
1: जी।
0: और उसका एक शेड्यूल बना हुआ है, और तीन महीना 90 दिन पर छठवां डोज है जो कि ऑप्शनल है, तो उसको नहीं लेने ज्यादा डर है तो उसको भी ले सकते हैं।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, एक अहम सवाल, बहुत को कुत्ते के संपर्क में रहने, जैसे साथ में लेकर के सोना और मतलब बिल्कुल साथ साथ रहना, तो ये घातक है या फिर चल सकता है?
0: कुछ ऐसे स्किन वाले जो बीमारियां हैं और दूसरी बीमारियां हो सकती है, लेकिन साथ रहने से रेबीज बीमारी नहीं होगी
1: जी।
0: अगर कुत्ता काट लेता है या पकड़ लिया, लेकिन स्किन में पेनिट्रेशन होना चाहिए, स्किन में छेद होना
1: जी जी,
0: और स्किन में अगर नहीं है, लेकिन अगर स्किन कहीं घाव है या कहीं छिल गया है, तब उससे भी उसका जो बैरियर है वो खत्म हो जाता है, तो उसके लार से जा सकता है, अगर लार के संपर्क में आया है तो वायरस जा सकता है, इसलिए उसको मतलब उसको ध्यान में रखना होगा। और अगर जैसे गाय को अगर काट लिया है, उसका टीकाकरण चल रहा है, तो ऐसा गाय का दूध बिना आधा घंटा बॉयल किए हुए, खौलाए हुए, खौला करने के बाद ठंडा करके तब उसको सेवन कर सकते हैं।
1: नहीं तो अगर किसी गाय को कुत्ते ने काट खाया हो और उसमें भी रेबीज का असर हो गया, उसका दूध पी रहे हैं, तो फिर उसे भी रेबीज होने का खतरा रहता है।
0: क्योंकि ओरल रूट से, खाने वाले रूट से थोड़ा संभावना कम है, लेकिन उसको निरापद नहीं है, तो उसको दूध को आधा घंटा अगर हम खुला करके फिर उसको ठंडा करके सेवन करते हैं, तब उसमें खतरा खत्म हो जाता है।
1: तो मित्रों, आज के कार्यक्रम में हमने जाना डॉक्टर अजय कुमार यादव जी से कि रेबीज बीमारी कुत्ते के माध्यम से किस प्रकार से फैलती है और ये कितना घातक है हमारे लिए और क्या क्या सावधानी बरतना चाहिए। तो डॉक्टर साहब, आपने एक अच्छी जानकारी हमारे श्रोताओं को दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
0: धन्यवाद, नमस्कार।
2: रेबीज बीमारी से बचाव के उपाय विषय पर आप सुन रहे थे डॉक्टर अजय कुमार यादव से ली गई भेंटवार्ता का पुनर्प्रसारण। भेंट करता थे अशोक कुमार। आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है। अब आइए सुनते हैं नन्हे मुन्ने बच्चों का कार्यक्रम फुलवारी। आज के कार्यक्रम में आइए सुनते हैं मध्य विद्यालय नूरा हजारीबाग के बच्चों द्वारा प्रस्तुत रंगारंग कार्यक्रम। संकलन एवं वाचन अनामिका और नामता परवीन का है। प्रस्तुत करता है राजीव कुमार और संयोजक हैं विक्रम कुमार रंजन।

0: नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने प्रिय कार्यक्रम फुलवारी में। मैं हूँ अनामिका
1: और मैं हूँ नहमता। हम दोनों की ओर से आप सभी नन्हे मुन्हे दोस्तों, अभिभावकों और गुरुजनों को प्यार भरा नमस्कार।
0: बच्चों, अगस्त का महीना आते ही मन में देशभक्ति की भावना जाग उठती है। चारों ओर तिरंगे की शान, देशभक्ति गीत और आजादी के जश्न की तैयारियां शुरू हो जाती हैं।
1: बिल्कुल, 15 अगस्त हमारे देश का राष्ट्रीय पर्व है। यह दिन हमें उन वीर सपूतों की याद दिलाता है जिन्होंने अपने साहस और बलिदान से हमें आजादी दिलाई थी।
0: आज के इस विशेष अंक में हम जानेंगे स्वतंत्रता दिवस का महत्व, मजेदार पहेलियाँ, बीच बीच में सुनेंगे प्यारे प्यारे बाल और देशभक्ति गीत।
1: बच्चों, 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ।
0: हमें अपने राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान और

0: विधान का सम्मान करना चाहिए।
1: सच्ची देशभक्ति केवल नारों से नहीं बल्कि ईमानदारी, अनुशासन, स्वच्छता और दूसरों की मदद करने से भी होती है।
0: तो नम्रता, अब श्रोता बच्चों को मिलवाते हैं आज के हमारे मेहमान बच्चों से।
2: बिल्कुल अनामिका,
0: बता दें वो है मध्य विद्यालय नूरा हजारीबाग के बच्चे। जय हिंद बच्चों।
3: जय हिंद।
0: तो बच्चों आप सभी तैयार हैं? तो सबसे पहले सुनते हैं देशभक्ति गीत सुनवा रहे हैं। आप अपना नाम बताइए।
4: मेरा नाम जिया कुमारी है।
0: और सुनाइए।

लेके तू चल दे। उठता सर अब अपना जजीले अपनी जिंदड़ी, सर पर हाथ है अपना जो तेरा जो भी है सपना, अब जिम्मा है अपना सपने सच करने की तेरी बारी।

0: अनामिका, इतने अच्छे से इस बच्ची ने देशभक्ति गाना सुनाया और इसके बाद अब है भक्ति गीत की बारी, है ना? आप अपना नाम बताइए।
1: मेरा नाम मधु कुमारी है।
2: मेरा नाम नाहिद परवीन।
0: तो चलिए स्टार्ट कीजिए आप लोग।
1: तीन

0: सुना। कृष्ण ने जिसको दान दिया उस दानी के आगे, हमने सुना तेरे नाम से कष्ट सब भागे। भक्तों के विपदा जो बाबा आग लगाओ ना, तीन बाण की धारी तीनों बाण चलाओ ना, तीन बाण की धारी तीनों बाण चलाओ ना।
1: और इस भक्ति गीत के बाद कविता लेकर तैयार हैं आप, अपना नाम बताइए।
2: पवन कुमार।
1: और कौन सी कविता सुना रहे हैं?
2: वीर तुम बड़े चलो।
1: सुनाइए।
2: वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, हाथ में धनुष है बाल दल सजा रहे, ध्वज कभी झुके नहीं दल कभी रुके नहीं। वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ हो सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर डरो नहीं तुम निडर डटो वहीं। वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, मैं गरजते रहे मैं बरसते रहे, बिजलियाँ कड़क उठे बिजलियाँ तड़क उठे। वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, प्रात हो कि रात हो संग होना साथ हो, सूर्य से बढ़े चलो चंद्र से बढ़े चलो, वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो।
1: तो ये चार बच्चे हैं, एक सॉन्ग सुनाने जा रही है ना, तो पहले आप लोग एक एक करके अपना नाम बता दीजिए।
3: माय नेम इज नीतू कुमारी।
4: माय नेम इज माही कुमारी।
5: माय नेम इज गौरी कुमारी।
6: माय नेम इज अरुषी कुमारी।
1: तो आप लोग कौन सा गाना सुना रही है?
3: मेरे वतन के लोगों।
1: चलिए।

0: परेशान है तू?
1: बहुत अच्छा नहमता, इन चारों बच्चियों ने देशभक्ति गीत तो बहुत बढ़िया सुनाया।
2: बिल्कुल।
1: और अब आगे बढ़ते हैं और दो बच्चियां हैं ये कविता सुनाने के लिए तैयार हैं।
2: जी जी।
1: कौन सी कविता सुना रही हैं?
0: गिरा रुपया गहरा पानी कविता। गिरा रुपया गहरा पानी, ओ मैं मछली ढूंढ जरा, कितनी अच्छी जल की रानी, ओ मैं मछली ढूंढ जरा, बड़ा समुंदर इसके अंदर, मैं कैसे जा पाऊंगा, अगर ढूंढ कर ला दोगी तो मैं मेले में जाऊंगा, तू आती जाती रहती है, ये सारा घर तेरा है, वहां वहां कुछ देख जरा, तू कहां रुपया

0: तो बिना टिकट का पकड़ा गया।
1: पकड़े जाएंगे ही बिना टिकट के, इसलिए बिना टिकट के कहीं नहीं जाना है, है ना?
0: जोर से जोर से।
1: और अब सुनते हैं कविता।
0: बिल्कुल,
1: आप अपना नाम बताइए।
2: रिंकी कुमारी।
1: और क्या कविता सुना रही है?
2: पुष्प की अभिलाषा।
1: सुनाइए।
2: चाहा नहीं मैं सुरबालों के गहने में गुथा जाऊं, चाहा नहीं प्रेम माला में बंद प्यारी को ललचाऊं, चाहा नहीं सम्राटों के सर पर है हरे डाला जाऊं, चाहा नहीं देवों के सिर पर चढ़ भाग्य पर इटलाऊं, मुझे तोड़ लेना वरना माली उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाए जहां पथ जाए वीर अनेक।
1: आप अपना नाम बताइए।
3: हिना कौसर।
1: क्या सुना रहे हैं?
3: खुशबू रस्ते हाथ।
1: चलिए सुनाइए।
3: कई नालियों के बीच कई नालों के पार, कूड़े करकट के ढेरों के बाद, बदबू से फटे जाते इस टोले के अंदर, खुशबू रस्ते हाथ, खुशबू रस्ते हाथ, उभरी नसों वाले हाथ, हिसे नाखूनों वाले हाथ, पीपल के पत्ते से नए नए हाथ, जूही की डाल से खुशबूदार हाथ, गंदे कटे फिटे हाथ, जख्म से फटे हुए हाथ, खुशबू रस्ते हाथ, हाथ खुशबू रस्ते है हाथ, यही इस गली से बनती है मुल्क की मशहूर अगरबत्तियाँ, इन्हीं गंदे मोहल्ले के गंदे लोग बनाते हैं केवड़ा गुलाब खस और रात रानी अगरबत्तियाँ, दुनिया की सारी गंदगी के बीच दुनिया की सारी खुशबू रस्ते हाथ, खुशबू रस्ते हाथ, खुशबू रस्ते हाथ।
1: और अब देखते हैं प्रोग्राम में आगे हमारे सामने हैं। आप अपना नाम बताइए।
4: मेरा नाम जावेद अंसारी है।
1: और क्या सुनाएंगे आप?
4: मैं पर्यावरण पर। हमारे आसपास के वातावरणों को हम पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण सभी प्रकार के जैव अजैव घटकों और घटनाओं से मिलकर बनता है। इसमें सभी प्रकार के जीव, नदी, तालाब, पहाड़, पेड़ पौधे आदि आते हैं। हमारे दैनिक जीवन में पर्यावरण अहम योगदान देते हैं। पर्यावरण सभी जीवों को भोजन, पानी और आश्रय देता है। सभी मानवीय गतिविधियां पर्यावरण को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। पर्यावरण को प्रभाव करने वाले मुख्य प्रदूषण वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और मृदा प्रदूषण है। पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। हमें पानी बचाकर, पेड़ लगाकर और संसाधन का सही उपयोग कर पर्यावरण की बचत कर सकते हैं। पर्यावरण को स्वच्छ और सुरक्षित रखना हमारा कर्तव्य है। धन्यवाद।
1: आप अपना नाम बताइए।
5: मेरा नाम मुनी वालम है।
1: और क्या सुना रहे हैं?
5: गाना सुनाने चाहता हूँ जिसके बोल है ओ देश मेरे।
1: चलिए स्टार्ट कीजिए।
5: ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन

0: हम लोग कुछ पहेली पूछना चाहते हैं, रेडी है? अच्छा बच्चों, आप लोग ये बताइए कि कौन सी ऐसी चीज है जिसके दांत तो बहुत सारे हैं लेकिन वो खाती कुछ नहीं है? बताइए बताइए क्या?
1: एक बार फिर से
0: सुनिए, चलिए बैठिए। तो ये कौन सी चीज है जिसके दांत बहुत सारे हैं लेकिन वो खाती कुछ भी नहीं है?
1: बुझो तो जाने, दांत बहुत सारे हैं लेकिन खाती कुछ नहीं है।
0: बताइए गेस कीजिए।
2: मच्छर
0: का दांत होता है।
1: और फिश तो खाती है, तभी तो जिंदा रहती है।
0: कौन सी ऐसी चीज है जिसके दांत बहुत सारे हैं लेकिन वो खाती कुछ भी नहीं है?
2: कंघी।
0: बिल्कुल सही
1: जवाब, कंघी
0: का सही जवाब था।
1: ठीक है, अब दूसरी पहेली बूझने के लिए तैयार हैं? वो क्या चीज है जो जमीन पर गिरे तो टूटे नहीं पर पानी में गिरे तो खराब हो जाए? जमीन पर गिरे तो टूटे नहीं और पानी में गिरे तो खराब हो जाए?
2: चश्मा।
1: मोबाइल पे गिरे तो
0: जमीन में गिरे
1: टूट जाएगा, पानी में गिरेगा तो भी खराब हो जाएगा? नारियल।
0: नहीं, जमीन पर गिरे तो टूटे नहीं
1: और पानी में गिरे तो
0: खराब हो जाएगा।
1: पेपर। सही जवाब। वाह, ये छोटी बच्ची ने तो सही जवाब दिया।
0: बिल्कुल।
1: और अब एक पहेली और।
0: तो चलो एक और पहेली है। गर्मी में जो छाया दे, सावन में जो हरदम रोए, जाड़े में जो सो जाए, वह क्या है? क्या बात है, ये तो एकदम
1: बहुत बढ़िया।
0: अरे ताली बजाइए अपने लिए। एक और पहेली है तुम लोगों के लिए।
1: ठीक है, एक पहेली और। एक ऐसी चीज जो हर रंग में रंग जाए पर खुद का कोई रंग नहीं। वाह, बच्चे बता रहे हैं कि बहुत बढ़िया।
0: तो अनामिका, पहेली तो बच्चों ने बहुत ही अच्छे से बूझी और अब ये शायरी लेकर है ना,
1: तो आप शायरी सुना रही हैं। आपने अपना नाम बताइए।
3: मेरा नाम मधु कुमारी है।
1: सुनाइए।
3: आँखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं, यही है समय कुछ करने का इसे खोना नहीं।
1: बहुत बढ़िया।
0: और ये एक सीख भी देती है। आपका नाम?
4: मेरा नाम नाहिद परवीन है। कोई रोके तो कभी रुकना नहीं, जिंदगी में किसी के आगे झुकना नहीं, नींदे पूरी हो या ना हो, मेहनत करने से कभी मुंह मोड़ना नहीं।
1: बहुत बढ़िया।
0: मेहनत करने से कभी नहीं रुकना चाहिए। और आपका नाम?
5: जिया कुमारी।
0: तो चलिए आप सुनाइए।
1: क्या सुना रही है?
5: शायरी।
4: एक मीठी सी मुस्कान है बेटी पर सच है कि मेहमान है बेटी, बेटी उस घर की पहचान बनाने चली है जिस घर से अनजान है बेटी, महान है बेटी। किसी को कमजोर मत समझना क्योंकि 5 रुपए का पेन भी 5 लाख का चेक लिखने के काम आता है।
0: वाह, क्या बात है। तो बहुत ही अच्छी बात है, बेटी पर एक शायरी सुनाए जो कि बहुत ही बेहतरीन था और 5 रुपए का कलम भी 5 लाख का चेक लिखने का काम आता है, तो किसी को भी कम नहीं आंकना चाहिए।
1: और अब शायरी के बाद गीत लेकर तैयार है आप दोनों। आप अपना नाम बताइए।
5: मेरा नाम जिया कुमारी है।
1: और आप?
5: मेरा नाम मधु कुमारी है।
1: और कौन सा गीत सुना रही है?
5: मैंने पायल अचन गाई।
1: सुनाइए।

0: प्याम दे उसे उसके बेटे का नाम दे। थैंक यू।
1: और अब एक छोटी सी कहानी। एक विद्यालय में स्वतंत्रता दिवस की तैयारी चल रही थी।
2: एक छोटा बच्चा रोज स्कूल आते जाते रास्ते में पड़े कचरे को उठाकर डस्टबिन में डाल देता था।
1: तो किसी ने पूछा, तुम यह क्या कर रहे हो? उसने मुस्कुराकर कहा, मुझे अपना देश साफ और सुंदर रखना है,
2: यह मेरी देशभक्ति है।
1: उसकी बात सुनकर दूसरे बच्चे भी उसके साथ जुड़ गए।
2: कुछ ही दिनों में पूरा स्कूल और आसपास का इलाका साफ सुथरा हो गया।
1: तो बच्चों, याद रखिए, देश की सेवा छोटे छोटे अच्छे कामों से भी होती है।
2: तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा।
1: हम फिर मिलेंगे फुलवारी के अगले अंक में, कार्यक्रम में नई कहानी, नए गीत और जानकारियों के साथ।
2: तब तक खूब पढ़िए, खेलिए, अपने माता पिता और शिक्षकों का सम्मान करिए और अपने देश से प्यार कीजिए।
3: आज के हमारे कार्यक्रम फुलवारी का समय यही समाप्त होता है। बच्चों से विदा ले लेते हैं।
4: बिल्कुल अनामिका।
3: जय हिंद बच्चों।

अभी नन्हे मुन्ने बच्चे सुन रहे थे अपना पसंदीदा कार्यक्रम फुलवारी। आज का कार्यक्रम मध्य विद्यालय नूरा हजारीबाग के बच्चों द्वारा प्रस्तुत किया गया था। संकलन एवं वाचन अनामिका और नामता परवीन का था। प्रस्तुतकर्ता थे राजीव कुमार और संयोजक थे विक्रम कुमार रंजन। आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। समाचार प्रभात और न्यूज एट और मॉर्निंग न्यूज के लिए अगला प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने प्रमुख क्षेत्रों में व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी और प्रगाढ़ करने के उपायों पर चर्चा की। राष्ट्रगीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ हर घर तिरंगा अभियान आज से देश भर में शुरू। मद्रास, कलकत्ता, मध्य प्रदेश और कर्नाटक उच्च न्यायालयों में 30 न्यायाधीशों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी। वर्षा के कारण पहलगाम और बालतल मार्गों से श्री अमरनाथ जी यात्रा अस्थायी रूप से स्थगित। मौसम विभाग का उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में आज तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट। और साग्निक रॉय और सायंतन कुशारी ने 9वीं वर्ल्ड यूथ ट्रांसनेशनल चैंपियनशिप के अंडर 31 स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अमरीका के उपराष्ट्रपति जीडी वेंस से टेलीफोन पर बातचीत की। इस दौरान दोनों नेताओं ने भारत अमरीका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों, ऊर्जा सुरक्षा तथा महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। आपसी हित से जुड़े क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। श्री मोदी ने उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और उनकी पत्नी उषा वेंस को उनके पुत्र के जन्म पर शुभकामनाएं दी। हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू हो रहा है। यह अभियान 17 तारीख तक चलेगा। इसका उद्देश्य लोगों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है।
5: घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा।
6: हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत वर्ष 2022 में हुई थी और अब ये एक बड़े जन भागीदारी अभियान का रूप ले चुका है। इस वर्ष हर घर तिरंगा अभियान का विशेष महत्व है क्योंकि ये राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ मनाया जा रहा है। देश भर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी होगा।

स्मृति दिवस मनाया जाएगा। दुनिया भर में 200 से अधिक भारतीय दूतावास, उच्चायोग और वाणिज्यिक दूतावास भी अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित करेंगे। इस वर्ष सूर्यपथ तिरंगा डिजिटल रिले भी आयोजित होगी। इसमें 54 भारतीय राजनयिक मिशन और केंद्र हिस्सा लेंगे। ये रिले 15 अगस्त को फिजी से शुरू होकर सैन फ्रांसिस्को में समाप्त होगा। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।

0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दो दिन की आधिकारिक यात्रा पर पुद्दुचेरी में हैं। श्री शाह गोरीमेडू के पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय में पुद्दुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्रदान करने के समारोह में भाग लेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: गृह मंत्री अमित शाह आज पुडुचेरी पुलिस को औपचारिक झंडा सौंपेंगे। भारत के राष्ट्रपति ने 8 मई को पुडुचेरी पुलिस की असाधारण सेवा, अनुशासन और शानदार उपलब्धियों के सम्मान में उन्हें पुलिस कलर देने की घोषणा की थी। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित औपचारिक परेड में केंद्र शासित प्रदेश पुलिस की विभिन्न शाखाओं के जवान भी भाग ले रहे हैं। इस समारोह में पुडुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाश नाथन, मुख्यमंत्री एन रंगासामी और गृह मंत्री ए नमासीवयम भी मौजूद रहेंगे। दोपहर बाद अमित शाह पुडुचेरी में मुरुगा थिएटर सिग्नल पर हर घर तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। गृह मंत्री के दौरे को देखते हुए पूरे पुडुचेरी में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। विपिन एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमित कुमार त्यागी।
0: आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने राज्य और देश के विकास में प्रत्येक नागरिक की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए 15 अगस्त से राष्ट्र निर्माण में भागीदार कार्यक्रम शुरू करने का आह्वान किया है। श्री नायडू ने कार्यक्रम के अंतर्गत लोगों से 13 से 15 अगस्त तक अपने घरों पर राष्ट्र ध्वज फहराने और मेरा राष्ट्र राष्ट्र सर्वोपरि की भावना को बढ़ावा देने का आह्वान किया है। सरकार ने 4 उच्च न्यायालयों में 30 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर दी है। इनमें मद्रास, कलकत्ता, मध्य प्रदेश और कर्नाटक उच्च न्यायालय शामिल हैं। सबसे अधिक 15 न्यायाधीशों की नियुक्ति मद्रास उच्च न्यायालय में की गई है। वहीं कलकत्ता उच्च न्यायालय में 8, कर्नाटक उच्च न्यायालय में 6 और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में 1 न्यायाधीश की नियुक्ति की गई है। विधि और न्याय मंत्रालय के अनुसार इन 30 न्यायाधीशों में 20 वकील और 10 न्यायिक अधिकारी शामिल हैं। इन नियुक्तियों को राष्ट्रपति ने भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय की कलीजियम की सलाह के बाद मंजूरी दी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। झारखंड में JPSC और JSSC भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी गतिरोध अब समाधान की दिशा में बढ़ता दिख रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि सरकार और आंदोलनकारी छात्रों के प्रतिनिधियों के बीच आज दोपहर करीब 12 बजे अगले दौर की वार्ता होने की संभावना है।
2: सरकार के वार्ता दल ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर छात्रों के साथ हुई पहली दौर की बातचीत में हुई प्रगति से उन्हें अवगत कराया है। सरकार और आंदोलनकारी छात्रों के विभिन्न गुटों के बीच पहले दौर की उच्च स्तरीय वार्ता कल रांची के स्टेट गेस्ट हाउस में सकारात्मक माहौल में हुई थी। सरकार के प्रतिनिधियों ने परीक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार के प्रति प्रतिबद्धता जताई। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने एक आधिकारिक फीडबैक ईमेल आईडी भी जारी की है, जिसके माध्यम से छात्र और हितधारक अपने सुझाव दे सकते हैं। इधर छात्र नेता रविंद्र पासवान ने कहा कि छात्र पिछले 15 दिनों से अनिश्चितकाल धरने पर हैं और पहली वार्ता में उन्होंने अपनी मांगे विस्तार से सरकार के सामने रखी हैं। इस बीच कल शाम रांची में छात्रों ने JPSC JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के लिए जवाबदेही तय करने की मांग को लेकर फ्लैशलाइट मार्च भी निकाला। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: जम्मू कश्मीर में वर्षा और खराब मौसम के कारण पहलगाम और बालतल मार्गों से श्री अमरनाथ जी यात्रा स्थगित कर दी गई है। मौसम विभाग के अनुमान को देखते हुए यात्रा अस्थायी रूप से रोकी गई है। जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से कल किसी भी नए जत्थे को रवाना नहीं किया गया। इस बीच बालतल आधार शिविर में ठहरे हुए 1202 तीर्थयात्रियों के 28वें जत्थे को 44 वाहनों में जम्मू के लिए रवाना किया गया। श्री अमरनाथ गुफा में कल 3336 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। इस वर्ष अब तक अमरनाथ यात्रा में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 4,80,019 हो गई है। 57 दिन की अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई को पहलगाम के पारंपरिक चंदनवाड़ी मार्ग और गांदरबल के बालतल मार्ग से एक साथ शुरू हुई थी।

0: यात्रा का समापन 28 अगस्त को पारंपरिक छड़ी मुबारक समारोह के साथ होगा। इस बीच मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी तेज वर्षा की आशंका है। विभाग ने जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, केरलम, माहे, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकल, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में गरज चमक और आंधी तूफान की संभावना जताई है। इधर दिल्ली और आसपास के इलाकों में दिन के दौरान हल्की वर्षा और बादल छाए रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के कई जिलों में अगले 48 घंटों में बहुत तेज वर्षा की चेतावनी जारी की है। एक रिपोर्ट।
1: मौसम विभाग के अनुसार आज राज्य के पर्वतीय जिलों में तेज वर्षा की संभावना है। देहरादून, बागेश्वर, नैनीताल और चंपावत में कल भी भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। वहीं उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, टेहरी, पौड़ी, पिथौरागढ़ और उधम सिंह नगर में कहीं कहीं भारी वर्षा का येलो अलर्ट है। मौसम की स्थिति को देखते हुए सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने सभी संबंधित जिलों को 24 घंटे सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। श्री सुमन ने प्रदेशवासियों और पर्यटकों से मौसम विभाग की चेतावनी को ध्यान में रखते हुए सावधानी बरतने की अपील की है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: उड़ीसा में भी कई क्षेत्रों में तेज वर्षा जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में बाढ़ के कारण बड़े स्तर पर फसलों को नुकसान होने की आशंका है।
2: उड़ीसा में एक बार फिर बड़े पैमाने पर बारिश हो रही है। आईएमडी ने कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। सुंदरगढ़, संबलपुर, झारसुगड़ा और बरगढ़ जिलों के लिए ऑरेंज वार्निंग जारी की गई है, जबकि राज्य के बाकी हिस्सों के लिए येलो वार्निंग है। भद्रक में बैतरणी और सालंदी नदियों का जल स्तर बढ़ने से यहां निचले और जोखिम वाले इलाकों में रहने वाले लोगों को फिर से बाढ़ आने का डर सता रहा है। अधिकारी स्थिति पर कड़ी नजर रख रहे हैं और जोखिम वाले इलाकों में पूरी तैयारी बनाए हुए हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: चीन के हेफेई में 9वीं वर्ल्ड यूथ ट्रांसनेशनल चैंपियनशिप में भारत के सागनिक रॉय और सायंतन कुशारी की जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीत लिया है। क्रोएशिया की एम फेरेनका और एफ कटुसिच ने दूसरा स्थान और चीन के जे हान और जेड वांग ने तीसरा स्थान हासिल किया। और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स फाइनल में भारत की अश्मिता चालिहा और चीन की क्यू हान के बीच मुकाबला जारी है। मैच का पहला गेम क्यू हान ने 21-14 से अपने नाम कर लिया है। अमरीकी सरकार विदेशी कर्मचारियों को नई नौकरी खोजने के लिए 60 दिन का अतिरिक्त समय देने वाले नियम को समाप्त करने पर विचार कर रही है। ये प्रस्ताव व्हाइट हाउस के प्रबंधन और बजट कार्यालय के पास है। ये नियम लागू होने पर कई H-1B वीजा धारक कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों को अमरीका छोड़ना पड़ सकता है। इस बदलाव का असर भारतीयों पर भी पड़ सकता है। H-1B वीजा धारकों में भारतीय नागरिकों की बड़ी हिस्सेदारी है। अमेरिका में भारतीय मूल के 52 लाख से अधिक लोग रहते हैं। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
3: धन्यवाद मुकेश। IIT दिल्ली के दीक्षांत समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी बोले, युवा सिर्फ सवाल न पूछे, समाधान भी खोजे, भारत को नए शोध की जरूरत। जनसत्ता की सुर्खी है, बिना सोचे समझे स्वीकार की जाने वाली बातों पर सवाल उठाएं विद्यार्थी। दैनिक जागरण के अनुसार प्रधानमंत्री ने कहा, याद रखिएगा, जो सीखेगा वो जीतेगा। जेंजी को पीएम ने दिया संदेश, कहा पैकेज और नौकरी की तुलना करने से बचे। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, जेंजी के रंग में मोदी, सतपुड़ा के पराठे, हॉस्टल निकनेम के साथ भविष्य की सीख, आरा कारा विंधी जिया सराय का पोहा। पंजाब केसरी ने अकाली भाजपा का गठजोड़ शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, राज्य स्तर पर जब भी पंजाब में अकाली दल के नेतृत्व में प्रकाश सिंह बादल या उनके पुत्र सुखबीर बादल की सरकार बनी, उसमें भाजपा के प्रतिनिधि शामिल हुए, लेकिन अकाली जनसंघ गठजोड़ की इस विरासत में इस दौरान राज्य की बदलती परिस्थितियों के अनुरूप मूलभूत बदलाव भी आते रहे हैं। दैनिक भास्कर का शीर्षक है, हाइब्रिड और ईवी कारें सस्ती होंगी, ज्यादा प्रदूषण वाली होंगी महंगी, ऑटो इंडस्ट्री में बड़ा बदलाव, नई पॉलिसी अप्रैल 2027 से लागू होंगी। अमर उजाला की सुर्खी है, अंतरिक्ष के कचरे से होगा कारोबार, मलबा हटेगा, उपग्रहों की मरम्मत भी, एस्ट्रोस्केल क्लियर स्पेस जैसी कंपनियों ने शुरू किया काम। जनसत्ता ने आस्था शीर्षक से विशेष खबर में लिखा है, कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा, परंपरागत के साथ आधुनिक व्यंजन भी, मुख्यमंत्री योगी ने कहा, 4.5 करोड़ कांवड़िए जल

0: लेकर आएंगे। श्रद्धालु अपने इलाके में शिव मंदिरों में जलाभिषेक करेंगे। लोकसत्य के अनुसार E20 विवाद के बीच सरकारी तेल कंपनियों का दावा, ईंधन पूरी तरह सुरक्षित, न घटेगी माइलेज, न खराब होगा इंजन। दैनिक ट्रिब्यून के अनुसार बठिंडा में हनी ट्रैप गिरोह, 23 महिलाओं समेत 28 काबू, वायुसेना अफसर ने पाक को दी सैन्य जानकारी, गिरफ्तार। दैनिक जागरण का शीर्षक है, एआई ने भारत में जितनी नौकरियां घटाई उससे 2.5 गुना ज्यादा पैदा की। नोमुरा की रिपोर्ट में दावा, 83,100 एआई से जुड़ी नौकरियां बढ़ी, 31,921 पर पड़ा असर।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने प्रमुख क्षेत्रों में व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी और प्रगाढ़ करने के उपायों पर चर्चा की। राष्ट्रगीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ हर घर तिरंगा अभियान आज से देश भर में शुरू। सरकार ने मद्रास, कलकत्ता, मध्य प्रदेश और कर्नाटक उच्च न्यायालयों में 30 न्यायाधीशों की नियुक्ति को मंजूरी दी। वर्षा के कारण पहलगाम और बालतल मार्गों से श्री अमरनाथ जी यात्रा अस्थायी रूप से स्थगित और साग्निक रॉय और सायंतन कुशारी ने 9वीं वर्ल्ड यूथ ट्रांसनेशनल चैंपियनशिप की अंडर 31 स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभाग का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड यूएस वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस डिस्कस वेज टू फर्दर स्ट्रेंथन कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इन की एरियाज। हर घर तिरंगा कैंपेन बिगिंस टुडे, कोइंसाइडिंग विद 150th एनिवर्सरी ऑफ इंडियाज नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम। अपॉइंटमेंट ऑफ 30 जजेस फॉर हाई कोर्ट्स ऑफ मद्रास, कैलकटा, मध्य प्रदेश एंड कर्नाटका नोटिफाइड। अमरनाथ यात्रा टू रिमेन सस्पेंडेड फ्रॉम बोथ पहलगाम एंड बालटाल रूट्स ड्यू टू रिपेयर ऑफ ट्रैक्स एंड फोरकास्ट ऑफ बैड वेदर। IMD इश्यूज ऑरेंज अलर्ट फॉर हेवी रेनफॉल इन उत्तराखंड एंड छत्तीसगढ़ टुडे। साग्निक रॉय एंड सायंतन कुशारी विन गोल्ड मेडल इन अंडर 31 पेयर्स एट 9th वर्ल्ड ब्रिज फेडरेशन यूथ ट्रांसनेशनल चैंपियनशिप्स। एंड नाउ द न्यूज इन डिटेल। Prime Minister Narendra Modi and US Vice President J.D. Vance discussed ways to further deepen India-US Comprehensive Global Strategic Partnership across key areas. Mr. Modi received a phone call from Vice President Vance yesterday. In a social media post, Mr. Modi said they noted the sustained momentum in the high-level engagements and reaffirmed their commitment to further strengthening cooperation in trade, defense, critical and emerging technologies, energy security and critical minerals. Both leaders also exchanged views on regional and global developments of mutual interest. Prime Minister Narendra Modi has said new sectors are emerging in the country, offering fresh opportunities for the youth. Addressing the 57th convocation of Indian Institute of Technology, IIT Delhi, yesterday, the Prime Minister cited sectors such as semiconductors, space and drones, and said India is working towards becoming self-reliant across all sectors. Mr. Modi said this drive towards self-reliance will serve as a strong foundation for building a Viksit Bharat.
3: Aaj Bharat economic self-reliance, technological self-reliance, industrial self-reliance, aise har sector mein aatmanirbhar banne ke liye kaam kar raha hai. Yahi Viksit Bharat ki majboot neev ka saboot hai. Is majboot neev par आपको एक भव्य सुंदर विकसित भारत का निर्माण करना है।
2: He further urged the students to keep the national interest at the center of their decisions.
3: आज के इस दौर में हमारे सामने चुनौतियां भी अलग है और इसलिए हमारे दायित्व भी अलग है। अपने जीवन के अगले 30-35 साल में आप जो कुछ भी करेंगे वो विकसित भारत की हमारी यात्रा को प्रभावित करेगा।
2: The Har Ghar Tiranga campaign will begin today and will run through 17th of this month. The initiative is aimed at encouraging citizens to hoist the national flag and participate in activities celebrating patriotism, national unity and India's cultural heritage. The campaign, which began in 2022 as part of the Azadi Ka Amrit Mahotsav celebrations, has since evolved into one of the country's largest public participation movements. over the

0: Understanding is being overturned. Longer life expectancy, better health care and rising wealth have transformed retirement from a brief closing chapter into a life state that can last three decades. And finally, Hilsa fish spotted in Ganga near Ghazipur in UP decades after barrage cut off migration route, informs Hindustan Times. And with that, it's back to you, Shagun.
1: Thank you, Saira. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi and US Vice President J.D. Vance discuss ways to further strengthen comprehensive global strategic partnership in key areas. Har Ghar Tiranga campaign begins today, coinciding with 150th anniversary of India's national song, Vande Mataram. Appointment of 30 judges for High Courts of Madras, Calcutta, Madhya Pradesh and Karnataka notified. Amarnath Yatra to remain suspended from both Pahalgam and Baltal routes due to repair of tracks and forecast of bad weather. IMD issues orange alert for heavy rainfall in Uttarakhand and Chhattisgarh today. Sagnik Roy and Sayantan Koshari win gold medal in under 31 pairs at 9th World Bridge Federation Youth Transnational Championships. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं. हमारे स्टूडियो की घड़ी में 8:30 हो रहे हैं. ये वक्त है प्रादेशिक समाचार का. सुनेंगे अब से कुछ ही पलों में.
3: जन जन तक पहुंचे पैगाम. डेंगू में रखें इन बातों का ध्यान.
4: यदि किसी को तेज बुखार, सिर दर्द, आंखों के पिछले हिस्से में दर्द, नाक बहना, उल्टी होना, भूख न लगना जैसे लक्षण दिखें, तो तुरंत अपने चिकित्सक से संपर्क करें. साथ ही प्रत्येक रविवार दिन में 10 बजे 20 मिनट अपने घर के आसपास मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए आवश्यक उपाय करें. मच्छरों से बचें, घर के आसपास सफाई रखें, पानी की टंकी, गमले, कूलर इत्यादि को साफ रखें, हमेशा मच्छरदानी लगाकर सोएं.
5: तो सुन लो भाई, सुन लो बहना, डेंगू से तुम बच के रहना.
4: वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित.
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार. नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं प्रियंका. पहले मुख्य समाचार. विश्व आदिवासी दिवस पर आज राज्य में दो दिवसीय महोत्सव. राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन होंगे शामिल. कई सांस्कृतिक कार्यक्रम का होगा आयोजन. राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने रांची में सखुआ महोत्सव का किया उद्घाटन. प्रत्येक नागरिक से एक पौधा लगाने और उसके संरक्षण का संकल्प लेने की अपील. आंदोलन कर रहे छात्रों की आज सरकार के साथ अगले दौर की होगी वार्ता. मंत्री दीपिका पांडे ने कहा, परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार के लिए सरकार प्रतिबद्ध. आज से देश भर में हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत. नागरिकों से राष्ट्रीय ध्वज गर्व से फहराने का आह्वान. और मौसम विभाग ने राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश का जताया पूर्वानुमान. गर्जन वज्रपात का येलो अलर्ट जारी. और अब समाचार विस्तार से. विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर झारखंड में जनजातीय संस्कृति, कला और परंपराओं के संरक्षण एवं संवर्धन को समर्पित दो दिवसीय झारखंड आदिवासी महोत्सव 2026 का आज से रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजन हो रहा है. राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसमें शामिल होंगे. प्रस्तुत है हमारी संवाददाता की रिपोर्ट.
6: विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर रांची का मोराबादी मैदान जनजातीय संस्कृति के रंग में सराबोर है. दो दिवसीय महोत्सव में झारखंड सहित देश के विभिन्न हिस्सों से आए जनजातीय कलाकार पारंपरिक नृत्य, संगीत और कला की प्रस्तुतियां देंगे. महोत्सव में जनजातीय व्यंजन, पारंपरिक वेशभूषा, हस्तशिल्प और कलाकृतियों के स्टॉल भी लगाए गए हैं. साथ ही जनजातीय जीवन और संस्कृति पर आधारित फिल्म एवं मीडिया गतिविधियां युवाओं को इस समृद्ध विरासत से जोड़ने का प्रयास करेंगी. महोत्सव के दौरान झारखंड फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा आदिवासी जीवन और संस्कृति पर आधारित शॉर्ट फिल्मों की विशेष स्क्रीनिंग भी की जाएगी. इसके साथ ही पैनल डिस्कशन और फिल्म मेकिंग पर मास्टर क्लास आयोजित होगी, जिससे युवाओं को फिल्म उद्योग के विशेषज्ञों से सीखने का अवसर मिलेगा. महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची.
1: राज्यपाल

0: संतोष कुमार गंगवार ने रांची के चुटिया स्थित 2100 महादेव स्थान में रांची नगर निगम द्वारा आयोजित सखुआ महोत्सव 2026 का उद्घाटन किया। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण में जन भागीदारी को आवश्यक बताते हुए प्रत्येक नागरिक से कम एक पौधा लगाने और उसके संरक्षण का संकल्प लेने का आह्वान किया। राज्यपाल ने रांची नगर निगम के सभी 65 वार्डो में करीब 1,00,000 सखुआ के पौधे लगाने के संकल्प की सराहना करते हुए कहा कि सखुआ झारखंड की प्राकृतिक, सांस्कृतिक और जनजातीय पहचान का अभिन्न हिस्सा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास के लिए नवाचार, अनुसंधान और उभरती प्रौद्योगिकियों के महत्व पर जोर दिया है। श्री मोदी ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे अपने निर्णयों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखें। श्री मोदी ने IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि प्रत्येक पीढ़ी अपने समय की विशिष्ट चुनौतियों का सामना करती है और अपनी राष्ट्रीय जिम्मेदारी भी निभाती है।
1: आज के इस दौर में हमारे सामने चुनौतियां भी अलग है और इसलिए हमारे दायित्व भी अलग है। अपने जीवन के अगले 30-35 साल में आप जो कुछ भी करेंगे वो विकसित भारत की हमारी यात्रा को प्रभावित करेगा।
0: राज्य में JPSC और JSSC की भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी गतिरोध अब समाधान की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। राज्य सरकार प्रदर्शन कर रहे छात्रों के साथ आज अगले दौर की वार्ता करेगी। सरकारी पैनल के एक सदस्य ने बताया कि वार्ता दोपहर करीब 12 बजे होगी। इससे पहले पैनल ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ बैठक कर प्रदर्शनकारी छात्रों के साथ हुई बातचीत में अब तक हुई प्रगति से उन्हें अवगत कराया। सरकार की ओर से वार्ता में शामिल मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि सरकार परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने अब तक हुई बातचीत को सकारात्मक बताया।
2: माननीय मुख्यमंत्री जी ने ईमेल जारी किया है जहां लोग अपने पक्ष को रख सकते हैं, सुझाव भी सरकार को भेज सकते और मुझे पूरा भरोसा है कि बातचीत सकारात्मक चल रही है, नतीजे भी अच्छे निकलेंगे।
0: केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने रांची सदर अस्पताल में भर्ती बीमार आंदोलनकारी छात्र से भेंट की और उसके स्वास्थ्य की जानकारी ली। मौके पर सिविल सर्जन से समुचित इलाज करने एवं उसके स्वास्थ्य की निगरानी करने को कहा। इधर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद आदित्य साहू ने भी सदर अस्पताल जाकर पीड़ित छात्र का हालचाल जाना। संवाददाताओं से बात करते हुए आदित्य साहू ने आरोप लगाते हुए कहा कि परीक्षाओं के परिणाम खंड खंड में जारी करना कई सवाल खड़े करता है।

0: बताया कि जो परीक्षाएं ली गई हैं उनका पार्ट पार्ट में रिजल्ट दिया जा रहा है। ऐसा तो हम लोगों ने कभी सुना नहीं था कि परीक्षा में पार्ट पार्ट रिजल्ट दिया जाता है। सहायक शिक्षक में इन्होंने आवेदन दिया था, अन्य परीक्षाओं में आवेदन दिया था, पर रिजल्ट निकालना है, मन साफ है आपका तो एक बार एक साथ एक छात्रों को रिजल्ट दो, पार्ट पार्ट में देने का क्या मतलब है।
1: धनबाद के आईआईटी आईएसएम में 3 दिवसीय 20वीं नेशनल फ्रंटियर्स ऑफ इंजीनियरिंग संगोष्ठी और इनोवेशन इन मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस की शुरुआत हुई। उद्घाटन समारोह में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ शामिल हुए। उन्होंने छात्रों और युवाओं से देश की जरूरतों के अनुरूप नई तकनीक और समाधान विकसित करने का आह्वान किया। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकती हैं। ताजा समाचार xhandle@airnewsalerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के xhandle@airnews_ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल airnewsranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकती हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं।
2: बड़ी मेले का पावन त्योहार, हर दिल में गूंजे बम बम की पुकार, हर हर महादेव जय भोलेनाथ।
3: श्रावण मास के शुभ अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का संदेश।
4: जोहार, सावन आ चुका है, श्रावणी मेला भी

0: आरंभ झारखंड के देवभूमि पर बाबा नगरी पर दुनिया भर के सभी श्रद्धालुओं का झारखंड स्वागत करता है। सभी कांवरियों को बेहतर से बेहतर सुविधा कैसे मिले इसका पुख्ता इंतजाम बाबा नगरी पर हम लोगों ने किया हुआ है। भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी का मनोकामना पूरा हो। धन्यवाद, जोहार, जय भोले।
1: श्रावणी मेला में लाखों श्रद्धालु सुल्तानगंज से पवित्र गंगा जल लेकर बाबा बैद्यनाथ धाम देवघर तक की यात्रा करते हैं। आस्था, सेवा और अध्यात्म का ये अनोखा संगम आपको भी दे रहा है निमंत्रण। इस सावन आइए झारखंड और बनिए श्रावणी मेला का हिस्सा। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। आज से देश भर में हर घर तिरंगा अभियान शुरू हो रहा है और इस महीने की 17 तारीख तक चलेगा। अभियान का उद्देश्य लोगों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस वर्ष अभियान का विशेष महत्व है क्योंकि यह राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ मनाया जा रहा है। इस वर्ष सूर्य पथ तिरंगा डिजिटल रिले भी आयोजित होगी। धनबाद जिले के छाताबाद में शुक्रवार को हुए भीषण भूधसान के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। भूधसान की वजह से करीब 20 घर जमींदोज हो गए हैं। सांसद ढुल्लू महतो ने भूधसान स्थल का जायजा लिया। उन्होंने बीसीसीएल को सर्वे और प्रभावितों को सुरक्षित स्थान पर बसाने का निर्देश दिया। धनबाद पुलिस ने फर्जी सिम कार्ड और म्यूल बैंक अकाउंट के जरिए देश भर में साइबर ठगी करने वाले एक संगठित गिरोह का भंडाफोड़ किया है। मामले की जानकारी ग्रामीण एसपी एस मोहम्मद याकूब ने प्रेस वार्ता कर दी।
3: शीतलपुर गांव है जो कालूबतान क्षेत्र में, कालूबतान और बलियापुर थाना क्षेत्र का सीमावर्ती एरिया में सिचुएटेड है। उन लोगों का नाम से बहुत सारा सिम इश्यूड है, वो भी बहुत फ्रीक्वेंटली है। कुछ लोगों का नाम में 14 सिम, कुछ लोगों के नाम में 20 सिम, 15 सिम, 11 सिम, ये सब अवैध।
2: सरायकेला खरसावां जिले में कपाली ओपी पुलिस ने ब्राउन शुगर तस्करी के आरोप में 4 युवकों को गिरफ्तार किया है। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने बताया कि पूछताछ में एक बड़े तस्कर की जानकारी मिली है। नेटवर्क से जुड़े अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। मौसम विभाग ने राज्य के कई हिस्सों में आज और कल भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया है। रांची मौसम केंद्र ने अगले 2 दिनों तक भारी वर्षा, तेज हवा चलने, गर्जन और वज्रपात का येलो अलर्ट जारी किया है। और आइए अब सुनते हैं अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने विश्व आदिवासी दिवस और जेपीएससी परीक्षा विवाद को लेकर छात्रों के आंदोलन की खबर को पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है। प्रभात खबर की सुर्खी है, झारखंड आदिवासी महोत्सव आज होगा आगाज, मोरहाबादी मैदान सजकर तैयार। दैनिक भास्कर ने लिखा है, सरकार का रुख आज फिर होगी वार्ता, फैसला संभव। दैनिक जागरण लिखता है, निर्णायक मोड़ पर आंदोलन, आज फिर वार्ता। हिंदुस्तान के शब्द हैं, मुठभेड़ में प्रिंस खान का गुर्गा घायल, 3 और गिरफ्तार। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विश्व आदिवासी दिवस पर आज राज्य में 2 दिवसीय महोत्सव, राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन होंगे शामिल, कई सांस्कृतिक कार्यक्रम का होगा आयोजन। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने रांची में सखुआ महोत्सव का किया उद्घाटन। प्रत्येक नागरिक से एक पौधा लगाने और उसके संरक्षण का संकल्प लेने की अपील। आंदोलन कर रहे छात्रों की आज सरकार के साथ अगले दौर की होगी वार्ता। मंत्री दीपिका पांडे ने कहा, परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार के लिए सरकार प्रतिबद्ध। आज से देश भर में हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत, नागरिकों से राष्ट्रीय ध्वज गर्व से फहराने का आह्वान। और मौसम विभाग ने राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश का जताया पूर्वानुमान, गर्जन वज्रपात का येलो अलर्ट जारी। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल। देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: सेवा जोहार, तैयार हो जाइए इतिहास के सबसे बड़े सांस्कृतिक महाकुंभ का गवाह बनने के लिए। माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में झारखंड सरकार लेकर आ रही है झारखंड आदिवासी महोत्सव 2026। आगामी 9 और 10 अगस्त को रांची का मोराबादी मैदान गूंजेगा 5000 से अधिक लोक कलाकारों, झूमर, छऊ और पारंपरिक जनजातीय प्रस्तुतियों से। महोत्सव में होंगे भव्य उद्घाटन एवं सम्मान समारोह, कला एवं शिल्प प्रदर्शनी, पुस्तक मेला, स्वतंत्रता सेनानी विरासत प्रदर्शनी, चित्रकला प्रदर्शनी, ट्राइबल फैशन शो, रॉक बैंड की शानदार प्रस्तुतियां, इमर्सिव जोन और 700 ड्रोन का भव्य शो, आधुनिक 5D थिएटर और AI तकनीक इस अनुभव को और भी यादगार बनाएंगे।
2: यहां मिलेगा पारंपरिक जनजातीय खानपान, आदिवासी व्यंजन प्रतियोगिता, आकर्षक हस्तशिल्प, नॉलेज पार्टनर्स और लेखकों से संवाद का अवसर। सब परिवार आइए और अपनी संस्कृति के रंग में घुल जाइए। अपनी परंपरा और अपनी पहचान का उत्सव गर्व के साथ मनाइए। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। अब आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम न्याय विभाग विधि एवं न्याय मंत्रालय।
4: Senior Citizens, From Constitutional Values to Classroom Learning by Professor Vageshwari Deswal, University of Delhi. This talk was part of a webinar organized by the Department of Justice.
5: भारत में एक बहुत ही स्पीड से डेमोग्राफिक ट्रांजिशन हो रहा है। हमारी जो जनसंख्या है उसमें जो हम एल्डर पॉपुलेशन की बात करें तो वो 2011 में जो 100 मिलियन के करीब थी वो 2036 तक जाते जाते 230 मिलियन हो जाएंगी, अर्थात कि वो डबल से भी ज्यादा हो जाएंगी। और हमें ये समझना होगा कि आने वाले समय में हर 7 भारतीयों में से एक भारतीय इसी कैटेगरी से बिलोंग करेगा, मतलब वो 60 या उससे ज्यादा उम्र का होगा। तो हम जब इस टॉपिक पे बात करें तो पहले ये समझें कि सीनियर सिटीजन कौन है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि जो भी 60 या उससे बड़ी उम्र के हैं उन्हें हम एल्डरली मानेंगे। इंडिया में भी नेशनल पॉलिसी ऑन सीनियर सिटीजन के हिसाब से जो भी 60 साल से ऊपर की आयु के हैं वो सब सीनियर सिटीजन हैं। यही डेफिनेशन हमने अपने सीनियर सिटीजन एक्ट में भी डाली है। तो आप देखिए, कानून ने तो एज बेस्ड हमको बता दिया है कि एल्डरली लोग कौन हैं, लेकिन जनरली हम लोग कैसे मानते हैं कि जो 80 से ऊपर हैं उनको हम एक एल्डरली कैटेगरी में शामिल करते हैं। इंडिया में हमेशा से जो हमारी सभ्यता है, जो हमारी संस्कृति है, उसमें बुजुर्गों को बहुत ज्यादा सम्मान दिया जाता है। वो हमेशा से बहुत आदरणीय रहे हैं, देव स्वरूप हैं। तो हम एक ऐसे देश के निवासी हैं जहां हम अपने बुजुर्गों को इतना मान सम्मान देते हैं। तो सवाल ये उठता है कि एल्डर अब्यूज, ये जो ऐसे वेस्टर्न कॉन्सेप्ट्स थे जो कि हमारे यहाँ थे ही नहीं, वो क्यों यहाँ पर आ गए, जिसके लिए कि अब उन्हें एड्रेस करने के लिए हमें कानून की सहायता लेनी पड़ रही है। अगर हम बात करें, शहरीकरण होता गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, हमारा जो जॉइंट फैमिली सेटअप था वो डिसइंटीग्रेट हो गया। जॉइंट फैमिलीज में जब तक हम लोग रहते थे तो एक पर्सनलाइज्ड होम केयर, हर इंसान के परिवार में उसको किस चीज की आवश्यकता है उस चीज का ध्यान रखा जाता था। लोनलीनेस की तो कोई बात थी ही नहीं, अगर हम कहें इमोशनल आइसोलेशन, डिप्रेशन, इन सब चीजों के बारे में कोई क्यों नहीं बात करता था, क्योंकि एक भरा पूरा परिवार होता था जिसमें बुजुर्गों को भी कंपनी मिल रही है, बच्चों को भी कंपनी मिल रही है, जो लोग जॉब करते हैं, जो कमाने वाली आयु के लोग हैं उसमें उनको भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं होता था क्योंकि परिवार की तरफ से वो

0: निश्चिंत रहते थे, तो एक अच्छी मेंटल हेल्थ थी, इमोशनली सब लोग स्टेबल थे, सब घर का जो भी चोर्स, जो डोमेस्टिक चोर्स की हम बात करें, काम काज आपस में बंट जाता था। पेरेंट्स जो थे एल्डरली थे, उनको भी एक बड़ा स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ पर्पस रहता था कि हम किसी तरीके से परिवार के लिए कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। अगर हम पैसा नहीं भी कमा रहे हैं तो हम बच्चों की देखभाल करने में अपना सहयोग दे रहे हैं, हमारा योगदान है कि किस तरीके से हम उन्हें अपने कल्चर, अपने वैल्यूज, कस्टम्स, ये सब उन्हें हम पास ऑन कर रहे हैं। तो एक कल्चरल कॉन्टिन्यूटी भी बिलोंग थी और एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस भी था। लेकिन जैसे जैसे फैमिली, जॉइंट फैमिली सेटअप का डिसइंटीग्रेशन हुआ, तो समझ में आने लगा कि नहीं, कहीं ना कहीं हम इग्नोर कर रहे हैं बच्चों को, महिलाओं को, एल्डरली लोगों को भी, क्योंकि ये तीनों ऐसे वर्ग थे जिनके हाथ में कोई भी फाइनेंशियल या अर्निंग कैपेसिटी नहीं थी, तो कोई डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी भी नहीं थी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 21 जो कि एक इतना इलास्टिक प्रोविजन है कि हर तरीके के जो मानव अधिकार हैं उन्हें हम आर्टिकल 21 के तहत कवर कर लेते हैं। और आर्टिकल 21 वैसे तो उसको कानूनी भाषा में कहें, वो कहता है नो वन टू बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विद प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। लेकिन इसमें जो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है, तो जो राइट टू लाइफ है उसके डायमेंशंस बहुत ज्यादा हैं, और राइट टू लाइफ सिर्फ एक पशु की समान जीवन की नहीं, हम एक डिग्निफाइड लाइफ की बात करते हैं, तो उसमें हर तरीके का आदर सम्मान भी होना चाहिए, आपके फिजिकल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल, हर चीज का ध्यान उसमें रखा जाना चाहिए। राम दुलार गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी अलाहाबाद हाईकोर्ट का जजमेंट है, जिसमें कोर्ट ने कहा था कि आर्टिकल 21 को हम वायलेट कर रहे हैं अगर हम अपने बुजुर्गों का ध्यान नहीं रख रहे हैं। ऐसे ही 2018 में अश्विनी कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जजमेंट आया है, जिसमें कोर्ट ने कहा है कि हम इन पेंशन स्कीम्स वगैरह को रीअसेस करें, ओल्ड एज होम्स बनाएं, जो हमारा ये कानून है सीनियर सिटीजन एक्ट, उसको अच्छे से इंप्लीमेंट करें, मेंटेनेंस जो ले सकते हैं अपने बच्चों से उसके लिए भी हमारे पास बहुत सारे जजमेंट्स हैं। आर्टिकल 41, स्टेट शैल विद इन द लिमिट्स ऑफ इट्स इकोनॉमिक कैपेसिटी एंड डेवलपमेंट मेक इफेक्टिव प्रोविजन फॉर सिक्योरिंग राइट टू पब्लिक असिस्टेंस इन केसेस ऑफ ओल्ड एज। एंड आर्टिकल 46 जो कि मैंडेट करता है कि स्टेट हमारे जितने भी कमजोर वर्ग हैं उन सबके इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करें, उन कमजोर वर्गों में हमारे जो बुजुर्ग हैं वो भी आते हैं। तो आर्टिकल 41 और 46 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं जो कि हमारे देश को, हमारे स्टेट को एक गोल देते हैं कि उस हिसाब से हमको कानून बनाने हैं, उस हिसाब से हमें पॉलिसीज बनानी है जिसमें कि हम अपने बुजुर्गों की को सुरक्षित रख सके। हमारे पास अन्य कानून भी हैं, जैसे कि हिंदू एडॉप्शंस एंड मेंटेनेंस एक्ट है, जहां कि ये एक पर्सनल लॉ है जो कि केवल हिंदुओं पे लागू होता है। तो इस कानून के हिसाब से बेटों और बेटियों दोनों के ऊपर जिम्मेदारी होती है अपने माता और पिता को संभालने की। देखिए, पहले हम कहते थे बेटी को ये जब शादी कर दी गई तो उसे दूसरे परिवार का हिस्सा मानते थे, उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं होती थी। लेकिन अब कानून क्या कहता है, न दहेज न महंगी शादी, बेटी को दीजिए संपत्ति आधी। और जब हम उसको अधिकार दे रहे हैं तो साथ में हम उस पर जिम्मेदारी भी डालेंगे। तो ये जिम्मेदारी है कि अब केवल ये नहीं कि बेटे ही संभालेंगे, बेटियों की भी उतनी ही जिम्मेदारी है कि वो अपने माता पिता का ध्यान रखें। उसी तरीके से मुस्लिम लॉ जो है उसमें भी बेटियों के ऊपर बराबर की जिम्मेदारी है। पारसी लॉ और क्रिश्चियन लॉ में कोई इस तरीके की बात नहीं कही गई है कि बच्चों की जिम्मेदारी है बड़ों को संभालने के लिए। इसीलिए हमारे पास सेक्युलर लॉ है, पहले हम CRPC कहते थे उसे, अब हम कहते हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तो ये जो कानून है ये भी प्रोवाइड करता है एक सेक्युलर रेमेडी, जिसमें कि हर धर्म के लोग जाकर के वहां पर जो बच्चे हैं उनसे माता पिता अपना मेंटेनेंस मांग सकते हैं, उनके ऊपर एक जिम्मेदारी है कि अगर वो संभालने में सक्षम हैं अपने माता पिता को और माता पिता खुद को ध्यान रखने में सक्षम नहीं है तो जिम्मेदारी उनके ऊपर है। उसके अलावा 2005 में हमें कानून मिला प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, क्योंकि देखा गया है कि अगर हम हमारे से पहली पीढ़ी की महिलाओं की बात करें तो बहुत ऐसी महिलाएं बहुत कम थी जो कि बाहर जाती थी, कमाती थी, उनका कोई सोशल सर्कल था या उनकी कोई इनकम थी ओल्ड एज में। तो ऐसी जो औरतें हैं जो परिवारों में हैं, लेकिन अगर उनका किसी भी तरीके से अब्यूज हो रहा है तो डोमेस्टिक रिलेशनशिप में क्योंकि वो रह रही हैं, तो उनके लिए प्रोटेक्शन ऑर्डर्स, उनके लिए रेजिडेंस ऑर्डर्स, उनके लिए मेंटेनेंस ऑर्डर्स, इन सब तरीके के रिलीफ्स का प्रावधान है कानून में।
1: यू हैव बीन लिसनिंग टू अ टॉक ऑन स्ट्रेंथनिंग एक्सेस टू जस्टिस फॉर सीनियर सिटीजंस फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज टू क्लासरूम लर्निंग। वी स्लिप इनटू अ शॉर्ट ब्रेक।

0: वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: We continue with the talk on strengthening access to justice for senior citizens from constitutional values to classroom learning.
2: Major areas जिन पे हमें ध्यान देने की जरूरत है, income security, क्योंकि अगर हम किसी तरीके से ये ensure कर सकें कि बुजुर्गों के पास अपने लायक एक income है तो उनको हम protect कर सकते हैं। फिर उनके health care एक बहुत ही major area of concern है, क्योंकि जैसे वो बड़े होते जाते हैं functional capacity उनकी impair हो जाती है। उनकी safety और security के लिए helplines बनाई जानी चाहिए, जो कि हमारे state में बना भी रखी हैं। Housing loans मिलने चाहिए। एक हमें प्रोडक्टिव एजिंग, मतलब जब तक उनको किसी न किसी काम में अगर हम लगा सकते हैं तो उनको री एम्प्लॉयमेंट किसी तरीके से ऐसे उनको एंगेज करा जा सके ताकि मेंटल उनकी फैकल्टीज काम करती रहे, उनके लिए वेलफेयर फंड सेटअप करें। और उसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि मीडिया को हम इन्वॉल्व करें, अलग अलग प्रोग्राम्स किए जाने चाहिए। मीडिया आजकल भी आप देखेंगे बुजुर्गों के हाथ में भी अगर स्मार्टफोन्स हैं, वो भी व्हाट्सएप पे या यूट्यूब पे वो रील देखते हैं, तो ऐसी ऐसी इंफॉर्मेटिव हम रील्स बना सकते हैं, बिकॉज वी आर ऑल हुक्ड ऑन टू दोज रील्स ना, कि जिसमें दिखाया जा रहा है कि अगर बच्चा परेशान कर रहा है तो किस तरीके से वो कानून को अप्रोच कर सकती है, उनके लिए क्या क्या कानून में अलग अलग प्रावधान है। एक बहुत ही बेहतरीन शुरुआत जो हमारे देश में की गई 2005 में, उससे पहले यूएन ने तो पहले ही कह दिया था कि हमें अपने ओल्डर पर्सन के लिए एक इंटरनेशनल डे सेलिब्रेट करना है। इंडिया में भी 2005 से हमने ये एक ओल्ड पर्सन डे सेलिब्रेट करना शुरू किया है, जो कि हर एक स्कूल में अगर आप देखें तो ग्रैंड पेरेंट्स डे के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है। तो उसमें क्या है, जरूरी है कि बच्चा अपने ग्रैंड पेरेंट को, दादा दादी नाना नानी को साथ में स्कूल लेके जाए, तो जहां वो साथ में नहीं भी रहते थे फिर भी उनको बुलाया जाता है, ग्रुप एक्टिविटीज दी जाती हैं, बच्चे मिलके उनके साथ कोई प्रोग्राम्स अपने प्रिपेयर करते हैं, आइटम्स प्रेजेंटेशंस, वहां पर अलग अलग कॉम्पिटिशंस किए जाते हैं। तो इस तरीके से बच्चों का और ग्रैंड पेरेंट्स का एक इतना अच्छा इन्वॉल्वमेंट होता है कि वो फिर इस तरीके के इवेंट्स के लिए दे लुक फॉरवर्ड टू दैट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नैतिक पतम एक गेम डिजाइन किया है कि जिससे कि हम इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन में हम सेलिब्रेट करते हैं, जिसमें कि सारे के सारा परिवार मिलकर के साथ में इस गेम को खेलता है। हमें जरूरत है इस समय कि हम एल्डरली केयर को एजुकेशन में इंटीग्रेट करें। क्यों? क्योंकि हमें ऐसी कंडीशंस क्रिएट करनी है, कानून तो हमारे पास बहुत हैं, लीगल अवेयरनेस के लिए लीगल एड भी बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाता है ना, हमने वो हेल्पलाइंस भी इंस्टीट्यूट करी हैं, हमने कोशिश करी है किसी की तरीके से हम डिजिटलाइज कर दें सिस्टम्स ताकि वो इजीली एक्सेस कर सकें, लेकिन उसके बावजूद भी एल्डर अब्यूज तो रुक नहीं रहा है बल्कि बढ़ता जा रहा है। तो हमें इस तरीके के इंटरजेनरेशनल प्रोग्राम्स बनाने हैं, हमें अपने करिकुलम को रिवाइज करना है ताकि जेरियाट्रिक हेल्थ, कॉग्निटिव डिक्लाइन, फिजिकल फंक्शनैलिटी, न्यूट्रिशनल नीड्स, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं बचपन से ही बच्चों को पढ़ाई जाए, हम मॉड्यूल डाल दें स्कूल्स में ही, बच्चे समझे, वो देखें घर में ये सब ध्यान में रखा जा रहा है कि नहीं रखा जा रहा, यही बच्चे घर जाके अपने पेरेंट्स को बताएंगे, कल को उनके पेरेंट्स भी अपना देखभाल करने में सक्षम होंगे, अपने बुजुर्गों की भी देखभाल कर पाएंगे, और ये बच्चे भी कल को जब बड़े होंगे इनके ऊपर जिम्मेदारियां आएंगी तो कहीं ना कहीं इनके दिमाग में उन चीज़ों का असर रहेगा। उसके अलावा हमें क्या करना चाहिए, नॉर्मली स्कूल्स कॉलेजेस में मेडिकल मॉड्यूल्स इंट्रोड्यूस करें, CPR किस तरीके से वाइटल्स को चेक करना है, मेडिकेशन शेड्यूल्स को हम कैसे कर सकते हैं, मोबिलिटी एड्स, हियरिंग एड्स, इन सबको किस तरीके से प्रयोग में लाया जा सकता है। फिर चाहे हम बायोलॉजी पढ़ते हैं चाहे सोशियोलॉजी पढ़ते हैं, एजिंग से रिलेटेड जो एजुकेशन है कि बड़े होते होते क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, कई बार क्या होता है कि हम रियलाइज ही नहीं करते, सडनली हमें लगता है कि इनको तो ये सारी प्रॉब्लम्स हो गई हैं, तो हम शुरू से ही अगर उस चीज़ को समझ सकें, अगर हमारे बच्चों में हम वो सेंसिटिविटी डाल सकें, उनको एजुकेट कर सकें, तो वो चीज़ बहुत अच्छी होगी चाहे स्कूल्स में कॉलेजेस में। और जो एडल्ट्स के लिए हमने इतने डिजिटल प्रोग्राम्स बनाए हैं उसमें उनको डिजिटली उनको लिटरेट करना भी जरूरी है, क्योंकि प्रोग्राम्स है लेकिन वो एक्सेस कैसे कर पाएंगे जब तक वो डिजिटली अवेयर नहीं होंगे। तो उसमें फिर यही जो स्कूल्स कॉलेजेस में अगर हम कम्युनिटी आउटरीच कोई एक्टिविटीज रखें, बच्चों को कहें कि आप प्रोजेक्ट्स बनाइए, आप जाकर के उनके साथ ये आप उनको एजुकेट कीजिए, आप ओल्ड एज होम्स में जाइए या आपके घर में आपकी कम्युनिटी में जो एल्डर लोग हैं आप उनको अवेयर कीजिए, आप उनके साथ मिल करके ये क्विज सॉल्व कीजिए, या इस तरीके से अगर हम प्रोग्राम्स इंटीग्रेट कर पाएंगे तो बहुत बेहतर।

0: होगा। बैरियर्स जो हैं जस्टिस के लिए, कानून है सारे के सारे, हमारे पास पॉलिसीज हैं, स्कीम्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, लेकिन फिर भी जो हमारे लीगल प्रोसीजर्स हैं बहुत कॉम्प्लेक्स हैं। जो बुजुर्ग हैं उनके अपने मोबिलिटी के इश्यूज हैं, हेल्थ इश्यूज हैं, फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स भी हैं, बहुत जगह पर उन्हें पता भी नहीं है कानून का। उसके अलावा जो एक सोशल स्टिग्मा है, कोई क्या कहेगा कि आपने अपने ही बच्चों के खिलाफ शिकायत कर दी, परिवार उससे टूट जाएगा। वो ये नहीं समझते, परिवार तो तब टूट गया जब आपके बच्चों ने आपके साथ इस तरीके की हरकत करी। आप तो केवल उस हरकत की शिकायत कर रहे हैं, लेकिन वो जो स्टिग्मा है जिसमें कि हम कहते हैं नहीं, बड़ों को ही समझदार होना चाहिए, बच्चों ने तो गलती की थी, आप तो समझ सकते थे। लेकिन अब देखिए, इतने अच्छे अच्छे जजमेंट्स आए हैं जिसमें कोर्ट ने क्या कहा है कि अगर आपके बच्चे आपको परेशान कर रहे हैं ना, आप उन्हें अपने घर से एविक्ट कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि मैं अपने घर में एब्यूजिव बच्चों का बोझ ढूंढूं, या फिर मैंने प्रेम में आकर के अपने बच्चों के नाम पर कोई प्रॉपर्टी कर दी थी, कल को वो मेरा ध्यान नहीं रखते हैं तो मैं उस ट्रांसफर को भी वॉइड कर सकती हूँ। तो वी गॉट सच गुड जजमेंट्स, बट द थिंग इज कि लोगों को पता नहीं है, जिसकी वजह से वो घबरा जाते हैं। एक्सेस बढ़ाने के लिए हमें ई कोर्ट्स का सहारा लेना पड़ेगा, ऑनलाइन फाइलिंग, टेली लॉ सर्विसेज, जैसे अगर हम टेली मेडिसिन की बात करते हैं वैसे ही हमें टेलीफोन पे भी कंसल्टेशंस की बात करनी पड़ेगी। सीनियर सिटीजन वेलफेयर पोर्टल है जो एक सेंट्रलाइज्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म है। बस जरूरी है अवेयरनेस की, हमारे पास बहुत सारे प्रोग्राम स्कीम्स हैं अवेयरनेस, जिसमें कि हर एक वर्ग की ये जिम्मेदारी है, बच्चा बूढ़ा जवान सब मिल करके जब इस पे काबू करने की कोशिश करेंगे तभी हमें सक्सेस मिलेगी।
1: यू हैड बीन लिसनिंग टू अ टॉक ऑन स्ट्रेंथनिंग एक्सेस टू जस्टिस फॉर सीनियर सिटीजंस, फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज टू क्लासरूम लर्निंग, बाय प्रोफेसर वागेश्वरी देसवाल, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। This talk was part of a webinar organized by the Department of Justice.

आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है। विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों के लिए अगला प्रसारण हमारे मुंबई केंद्र से है।

0: पुष्पा टू फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे, श्रेया घोषाल की आवाज थी। रकीब आलम ने इस गीत को लिखा था, देवी श्री प्रसाद का संगीत था। चित्रलोक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से।
1: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
2: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
1: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है, तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
3: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
1: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
3: तेरा जवाब नहीं,
1: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
3: प्यार का राग सुनो रे।
1: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
3: सदा रही है, सदा रहेगी।
1: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत, सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा पर इस समय आप सुन रहे हैं चित्रलोक कार्यक्रम। आज 9 अगस्त है। अगस्त का महीना दोस्तों भारतीय इतिहास में स्वतंत्रता संघर्ष, बलिदान और राष्ट्र जागरण का महीना है। इसी महीने में स्वतंत्रता आंदोलन ने कई निर्णायक पड़ाव देखे। 9 अगस्त 1925 एनिवर्सरी ऑफ काकोरी इंसिडेंट, काकोरी ट्रेन एक्शन, काकोरी कांड की वर्षगांठ। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में वो दिन जब कुछ निर्भीक क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी हुकूमत को खुली चुनौती दी थी। लखनऊ के समीप काकोरी रेलवे स्टेशन के पास क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश सरकार का खजाना ले जा रही ट्रेन को रोककर धन अपने कब्जे में कर लिया था। इसका उद्देश्य था स्वतंत्रता संग्राम के लिए धन जुटाना, धन एकत्रित करना। इस अभियान में राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, चंद्रशेखर आजाद सहित अनेक वीर क्रांतिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसमें काकोरी की कहानी सिर्फ ट्रेन रोकने मात्र की कहानी नहीं, अपितु उस अदम्य साहस और वीरता की कहानी है जिसमें युवाओं ने अपने निजी सुख, वर्तमान और भविष्य, यहाँ तक कि अपने जीवन को भी देश की स्वतंत्रता के लिए समर्पित कर दिया। आज काकोरी कांड की वर्षगांठ पर हम उन सभी अमर क्रांतिकारियों को कोटि कोटि नमन करते हैं।

जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया, उनका साहस हमारी प्रेरणा है, उनका बलिदान हमारी विरासत और उनकी देशभक्ति भारत की अमूल्य धरोहर है। हम कोटि कोटि नमन करते हैं।

इस गीत के पहले आपने सुना था जो गीत, उसे हमने फाइटर फिल्म से लिया था। विशाल दादलानी, शेखर राव जियानी की आवाजें थी, कुमार के बोल थे, विशाल शेखर का संगीत था। और अभी जो गीत आप सुन रहे थे, इसे गाया था उषा उत्तुप, कविता कृष्णमूर्ति ने। फिल्म का नाम था कभी खुशी कभी गम। चित्रलोक कार्यक्रम आप इस समय सुन रहे हैं, विविध भारती राष्ट्रीय सेवा पर। आइए इस कार्यक्रम में एक और छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर से हाजिर हो जाएंगे।

0: एबीसीडी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, अनुष्का मनचंदानी और साथियों की आवाजें थी। मयूर पुरी ने इस गीत को लिखा था। चित्रलोक कार्यक्रम आप इस समय सुन रहे हैं।
1: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बद्दूर।
2: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये
3: एक और लग गया तेरे पीछे क्या?
4: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
1: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: सुनिए
6: विविधा में इस रविवार 9 अगस्त 2026 को सृजन भारती के अंतर्गत विविध भारती में आयोजित विशेष ऑडियो विजुअल शो भारतीय फिल्म संगीत में वंदे मातरम, इसके संपादित अंश।
7: वंदे मातरम।
6: सहभागी विशेषज्ञ राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के मूर्धन्य अध्येता मिलिंद प्रभाकर सबनीस।
8: वंदे मातरम का जो संगीत प्रवास है वो बहुत बहुत ही लंबा है, रविंद्रनाथ से लेकर आज के AR रहमान और अजय अतुल तक अभी भी वो चालू है।
6: सुनना न भूलिए विविधा, रविवार 9 अगस्त दिन में 11 बजे।

रॉक स्टार फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, आवाजें यार रहमान, जावेद अली, मोहित चौहान की थी, इरशाद कामिल के बोल थे ए आर रहमान की तर्ज थी। इसी गाने के साथ ही आज का चित्रलोक कार्यक्रम समाप्त करने के सविता सिंह को इजाजत दीजिए। नमस्कार, आप सदैव प्रसन्न और समृद्ध रहिए, इसी कामना के साथ इजाजत।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था। लिटरली जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाए तो मर जाए। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

सावन कुमार फिल्म दर्शकों के लिए फिल्मों की बहार और गीतों की बौछार लेकर आए। फिल्म जगत का एक जाना पहचाना और प्रतिष्ठित नाम है निर्माता निर्देशक गीतकार सावन कुमार टाक का। आज ये कार्यक्रम इन्हीं पर केंद्रित

1972 में आई फिल्म गोमती के किनारे। इस फिल्म के निर्माता निर्देशक थे सावन कुमार। सामाजिक ताने बाने को दर्शाती ये फिल्म कई मायने में महत्वपूर्ण है। ये फिल्म मीना कुमारी की आखिरी फिल्म थी और उनके मरणोपरांत रिलीज हुई थी। इस फिल्म में सावन कुमार और मीना कुमारी अमिताभ बच्चन को मुमताज के नायक के रूप में भूमिका निभाने के लिए विचार कर रहे थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मुमताज के नायक बने समीर खान। संगीत आर डी बर्मन का था। यह फिल्म उतनी सफल नहीं हुई जितनी उम्मीद थी। आइए सुनते हैं गोमती के किनारे, इस फिल्म का ये प्यारा सा गीत।

बात करते हैं सन 1967 की फिल्म नौनिहाल की। इस फिल्म की कहानी लिखी थी सावन कुमार टाक ने और इस फिल्म को प्रोड्यूस भी किया था। फिल्म में कलाकार थे संजीव कुमार, बलराज साहनी और इंद्राणी मुखर्जी। गीत कैफी आजमी के थे और संगीत मदन मोहन का था। निर्देशक राज मार्बोस।

लेखक, निर्माता और निर्देशक के रूप में सावन कुमार ने 1974 में रिलीज हुई एक बेहद संवेदनशील फिल्म बनाई हवस। अनिल धवन, नीतू सिंह, बिंदु, विद्या सिन्हा और विनोद मेहरा जैसे कलाकारों ने इस फिल्म में काम किया था और ये एक सफल फिल्म थी। इस फिल्म के लिए लिखे सावन कुमार के गीत को आइए सुनते हैं, जिसे संगीतबद्ध किया है उषा खन्ना।

सावन कुमार का जन्म 9 अगस्त 1936 को जयपुर में हुआ। वैसे अमूमन फिल्मों में हीरो बनने की चाहत से लोग मुंबई आते हैं। सावन कुमार भी अपवाद नहीं थे। कोशिश की रोल पाने की, सफल नहीं हुए तो इन्होंने फिल्म बनाने की ही सोच ली। जैसा सोचा उसे करने के लिए रुपयों की जरूरत थी। अपनी बहन से मदद मांगी पर उनकी आनाकानी के बीच इनके ब्रदर इन लॉ ने इनकी कोशिश को सहारा दिया और सावन कुमार ने फिल्म बनाई नौनिहाल। संजीव कुमार को अपनी फिल्म में पहले पहल रोल देने वाले सावन कुमार।

एक गीतकार के रूप में भी हम सावन कुमार को जानते हैं। अपनी कई फिल्मों में इन्होंने गीत लिखे हैं, साथ ही अन्य फिल्मकारों की फिल्मों के लिए भी इनके लिखे गीतों ने श्रोता दर्शकों को मुतासिर किया है। शत्रुघ्न सिन्हा और अभिनेत्री पूनम द्वारा अभिनीत 1973 की इनकी फिल्म सबक का आइए

सावन कुमार ने 2004 की फिल्म कहो ना प्यार है के लिए कुछ गाने लिखे और इसी साल देव फिल्म के लिए भी इन्होंने गाने लिखे। आइए सुनते हैं कहो ना प्यार है का ये गाना।

श्रावण कुमार टाक ने अपनी ही फिल्मों में कई गीत लिखे जो लोकप्रिय भी हुए, जैसे फिल्म सौतन की बेटी का गाना हम भूल गए और फिल्म बेवफा से वफा का ये गाना।

एक थिएटर आर्टिस्ट के रूप में एक कलाकार लोकप्रियता हासिल कर रहा था। ऐसे ही एक अच्छे वक्त में सावन कुमार ने उन्हें ड्रामा करते हुए देखा और इतने प्रभावित हुए कि अपनी पहली ही प्रोडक्शन नौनिहाल में कास्ट कर दिया और उनके मूल नाम हरिभाई जरीवाला से बदलकर एक नया और फिल्मी नाम और उम्दा नाम दिया उम्दा कलाकार को, जिनका नाम है संजीव कुमार। वैसे ही सावन कुमार ने जूनियर महमूद को भी ब्रेक दिया। संगीतकार उषा खन्ना के साथ इनका फिल्मी और व्यक्तिगत जीवन काफी लंबा चला। हवस से साजन बिन सुहागन तक कई हिट गाने इस साथ ने दर्शक श्रोताओं को दिए।

सावन कुमार लिखते हैं, साजन बिन सुहागन मेरे लिए एक विशेष फिल्म थी क्योंकि ये मेरी पहली गोल्डन जुबली फिल्म थी। साजन बिन सुहागन फिल्म से जुड़ा हुआ एक किस्सा सुनाते हुए सावन कुमार कहते हैं कि उन दिनों कोई भी डायरेक्टर राजेंद्र कुमार और नूतन की जोड़ी को नहीं चाहता था। मैंने सोचा इन दोनों ही कलाकारों ने अपने दिनों में एक साथ काम नहीं किया है, क्यों ना ये एक साथ आए। मैं राजेंद्र कुमार से मिलने उनके घर गया। उनकी पत्नी ने बताया अपने मित्र के साथ हैं, जाइए। वहां जाकर देखा तो राज कपूर थे। उन्होंने सोचा ऐसे ही मिलने आया होऊंगा। तब बात रोशन हो गई जब मैंने 11,000 रुपए का चेक साइनिंग अमाउंट के रूप में राजेंद्र कुमार को दिया। दोनों खुश हुए और अचंभित भी। राज जी ने कहा, मैं इनका इतना घनिष्ठ दोस्त होने के बाद भी इन्हें कास्ट करने की नहीं सोच पाया था।

सावन कुमार के साथ अभिनेत्री रेखा ने 5 फिल्में की। सावन कुमार एक वाकया शेयर करते हुए कहते हैं कि बात हवस फिल्म के बनने की प्रक्रिया के दरमियान की है, जब मैं आओ यारो गाओ गीत की रिकॉर्डिंग कर रहा था, जिसके लिए मैंने अभिनेत्री फरियाल को चुना था। ये गाना रेखा को बहुत पसंद आया और उन्होंने मुझसे चांस देने की बात कही। मैंने रेखा से ये कहकर समझाने की कोशिश की कि ये वैम्पिश नंबर है। रेखा ने एक ना सुनी और शूटिंग के दिन अपनी हेयर ड्रेसर मेकअप आर्टिस्ट की मदद से पूरी तरह तैयार अपने अंदाज की ड्रेस कॉस्ट्यूम के साथ हाजिर हो गई। ये सब देखकर मैं कुछ न कह सका, फरियाल को मनाया और श्रोताओं ये गाना फिर रेखा के हिस्से आया।

सावन कुमार टाक ने अपनी प्रतिभा, रचनात्मकता और फिल्म बाजार में अपनी अहमियत अपनी फिल्मों से साबित की। 1972 से लेकर 2006 तक इनके द्वारा निर्मित निर्देशित फिल्मों ने दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। वो बेवफा, साजन की सहेली, लैला, प्रीति, प्यार की जीत, 1989 तक सौतन की बेटी जैसी फिल्मों का आपने निर्माण किया। फिर आई 1991 में सलमान खान द्वारा अभिनीत फिल्म सनम बेवफा। इस गीत को सावन कुमार ने लिखा और संगीत महेश किशोर का है।

सन 1992 में बेवफा से वफा, खलनायिका, चांद का टुकड़ा, सनम हरजाई, सलमा पे दिल आ गया, मदर सावन कुमार द्वारा निर्मित और निर्देशित फिल्में थी। सन 2003 में सावन कुमार टाक की फिल्म आई दिल परदेसी हो गया और सन 2006 में सावन द लव सीजन। सावन कुमार एक फिल्मकार के रूप में निश्चित रूप से अद्वितीय है। आज का ये कार्यक्रम इन्हीं पर केंद्रित था।

0: आलेख और स्वर जी श्याम का, संपादन आकांक्षा सिंह का, और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे रमेश गोखले।
1: आज के
2: आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है।

0: FM 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। 10 बज चुके हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम हेलो हजारीबाग।
1: टेन नाइन एट सेवन सिक्स

0: प्रत्येक दिन के इतिहास, महत्वपूर्ण व्यक्तियों के जन्मदिन, मृत्यु और महत्वपूर्ण दिवस का संपूर्ण ब्यौरा मिलेगा डे टू डे। हेलो हजारीबाग, मिलेगी मौसम की जानकारी, साथ ही हजारीबाग के अस्पताल के ओपीडी अपडेट्स मिलेंगे, हजारीबाग के ट्रैफिक अपडेट्स, लोकल नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स के कर्टन रेजर रोजाना, लोकल इवेंट्स के ग्राउंड रिपोर्ट्स का खजाना, सिटी के इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज में हजारीबाग के यूनिवर्सिटी की गतिविधियों और स्पोर्ट्स के ताजे हाल का हेलो हजारीबाग, और अंत में आज के विचार को सुनकर कर देंगे दिन की पॉजिटिव शुरुआत। गीतों संगीत से सजा सवरा जीवन के प्रत्येक आवश्यक गतिविधियों के संग हेलो हजारीबाग।
1: हेलो हजारीबाग, सुनने वाले तमाम श्रोताओं को मासूम का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, एक बार फिर हम हाजिर हैं जानकारियों और मनोरंजन से भरपूर उस कार्यक्रम में जिसे आप जानते हैं हेलो हजारीबाग के नाम से। इसके अलावा कार्यक्रम की शुरुआत में सुनते हैं कुछ जरूरी संदेश।
2: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
3: पापा, कॉलेज की फीस ज्यादा है।
4: बेटा,
5: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे?
4: 2 साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
6: तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव एकदम फ्री।
4: चलो,
5: कहाँ
4: एडमिशन कराने?
6: खाता हुआ एक्टिव,
5: आरबीआई कहता है
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
8: दस लाख की लॉटरी मुझे, वाओ।
7: फर्जी ऑफर्स से सावधान,
5: आरबीआई कहता है
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: दोस्तों, आज 9 अगस्त है और जैसा कि आप सब जानते हैं, आज के दिवस को विश्व आदिवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि आखिर कौन सी वजह है कि हम सब विश्व आदिवासी दिवस को मनाते हैं। तो दोस्तों, ये दिन दुनिया भर के आदिवासी समुदायों के योगदान और उनकी संस्कृतियों को सम्मान देने के लिए समर्पित है। आदिवासी जो प्रकृति के करीब रहते हैं, हमारे पृथ्वी के सबसे पुराने मूलवासी हैं। वे सदियों से अपनी अनूठी जीवन शैली, परंपराओं और ज्ञान के साथ मानवता को समृद्ध करते हैं। आदिवासी समुदाय प्रकृति को पूजते हैं और मानते हैं कि प्रकृति में रहने वाला हर जीव महत्वपूर्ण

है, वे प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करके जीवन जीते हैं। वे पेड़ पौधों, जानवरों और नदियों आदि का पूरी तरह से सम्मान करते हैं। दोस्तों, आदिवासी वो लोग हैं जो किसी क्षेत्र के मूल निवासी होते हैं और आधुनिक समाज के विकास से पहले से ही वे वहां रहते आए हैं। वे अपनी विशिष्ट भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज और धार्मिक विश्वासों के लिए जाने जाते हैं। आदिवासी समुदाय दुनिया के लगभग हर देश में पाए जाते हैं और दुनिया की कुल आबादी का लगभग 5% भाग वो बनाते हैं। अगर हम अपने देश भारत की बात करें तो आदिवासी हमारे देश के कुल जनसंख्या के 8% हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 9 अगस्त 1982 में आदिवासी लोगों के अधिकारों और उनकी बेहतरी के लिए एक खास बैठक बुलाई थी और बैठक के बाद हर साल 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य है कि दुनिया भर के आदिवासी समुदाय के बारे में जागरूकता बढ़ाया जाए, उनके अधिकारों की रक्षा किया जाए और साथ ही साथ ये दिन उन सभी योगदानों को भी याद करता है जो आदिवासी लोग पर्यावरण और दुनिया को बेहतर बनाने के लिए करते हैं। तो दुनिया भर के आदिवासी समुदाय कई गंभीर समस्याओं से भी जूझ रहे हैं। इन समस्याओं में बेरोजगारी, बंधुआ मजदूरी और कई तरह के भेदभाव भी शामिल हैं और इन समस्याओं को हल करने और आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा के लिए ही 1982 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा एक विशेष समूह बनाया गया था और 9 अगस्त को इसकी पहली बैठक हुई थी। इस पर दुनिया भर के आदिवासियों की समस्या और उनके संघर्षों पर गहन चर्चा हुई थी और उनकी समस्याओं को गंभीरता से लिया गया और आदिवासियों के अधिकारों के लिए काम करने का फैसला किया गया और इसी के तहत 9 अगस्त को पूरे विश्व में विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों, हम सब इस दिवस में संकल्प लें कि आदिवासियों को पूरा सम्मान देंगे, उनके योगदानों को याद करेंगे और जहां तक संभव हो लोगों में इसको लेकर जागरूकता फैलाएंगे।

0: करे शोर,
1: पवन करे शोर।
0: अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर।

दोस्तों, आज का दिन जो है 9 अगस्त का दिन, भारतीय स्वतंत्र संग्राम की एक और महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक घटना को लेकर भी याद किया जाता है और उसे हम सब काकोरी ट्रेन डकैती या काकोरी षड्यंत्र के नाम से जानते हैं। यह घटना 9 अगस्त 1925 को उत्तर प्रदेश के लखनऊ के निकट काकोरी रेलवे स्टेशन के पास घटी थी। इस कांड ने न केवल अंग्रेजी हुकूमत को हिलाकर रख दिया था, बल्कि देश के युवाओं में स्वतंत्रता की ललक को और प्रबल कर दिया था। दोस्तों, काकोरी कांड तब एक सशस्त्र क्रांति का प्रतीक बन गया था, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन के खिलाफ हथियार खरीदने के लिए धन जुटाना और उनकी सत्ता को चुनौती देना था। काकोरी कांड की योजना हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA के क्रांतिकारियों ने

बनाई थी, जिसकी स्थापना सन 1924 में सशस्त्र क्रांति के माध्यम से भारत को स्वतंत्र कराने के लिए की गई थी। इस संगठन के प्रमुख नेताओं में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, चंद्रशेखर आजाद, राजेंद्र लाहिड़ी, ठाकुर रोशन सिंह, सचिंद्र बख्शी, केशव चक्रवर्ती, मुरारी लाल खन्ना, बनवारी लाल और मन्मथ नाथ गुप्ता शामिल थे। इन क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी सरकार के खजाने को लूटने का साहसिक निर्णय लिया, ताकि स्वतंत्रता संग्राम के लिए हथियार और संसाधन जुटाए जा सके। दोस्तों, 8 अगस्त 1925 को राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में शाहजहांपुर में एक आपात बैठक हुई, जिसमें अगले दिन यानी 9 अगस्त को ट्रेन लूटने की योजना बनाई गई थी। ये ट्रेन शाहजहांपुर से लखनऊ जा रही थी, इसमें ब्रिटिश सरकार का खजाना था। 9 अगस्त को राजेंद्र लाहिड़ी ने ट्रेन की चेन खींचकर उसे रोका। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान और अन्य ने गार्ड को काबू में किया। जर्मन माउजर पिस्तौल और अन्य हथियारों की मदद से खजाने के बक्सों को तोड़ा और हजारों रुपए लूटे। हालांकि इस दौरान एक यात्री की दुर्घटनावश गोली लगने से मृत्यु भी हुई, जिससे इस घटना को हत्या का मामला बना दिया गया था। काकोरी कांड के बाद ब्रिटिश सरकार ने क्रांतिकारियों को पकड़ने के लिए व्यापक तलाशी अभियान चलाया। एक महीने के अंदर एचआरए के कई सदस्यों को गिरफ्तार किया। इनमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, राजन लाहड़ी, ठाकुर रोशन सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई। 17 दिसंबर 1927 को राजेंद्र लाहड़ी को गोंडा में, 19 दिसंबर 1927 को राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में, अशफाकुल्ला खान को फैजाबाद में और ठाकुर रोशन सिंह को नैनी सेंट्रल जेल में फांसी दी गई। चंद्रशेखर आजाद और कुछ अन्य क्रांतिकारी वहां से फरार होने में सफल रहे थे। दोस्तों, काकोरी कांड ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक नया जोश भर दिया। इस घटना ने साबित कर दिया कि भारतीय युवा अपनी आजादी के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। क्रांतिकारियों का बलिदान आज भी देशवासियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है।

हेलो हजारीबाग दोस्तों, कार्यक्रम के फॉर्मेट के अनुरूप हम सब आपसे साझा करते हैं आज के दिवस की ऐतिहासिकता। तो आज के दिन देश दुनिया में कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई थी, ये जानकारी करते हैं आपसे साझा। दोस्तों, अगर हम बात करें सन 1483 की, तो इस वर्ष आज के दिन वेटिकन में सिस्टीन चैपल का उद्घाटन हुआ था। 1596 ईस्वी में आज के दिन हेनरी वेव क्वेक रोयरमंड के बिशप बने थे। और 1655 ईस्वी में आज के दिन ओलिवर क्रॉमवेल ने इंग्लैंड को 11 जिलों में विभाजित किया था। 1726 में आज के दिन नीदरलैंड ने हनोवर की संधि में प्रवेश किया, जिसमें ऑस्ट्रो स्पेनिश शक्तियों के खिलाफ गठबंधन बना था। और 1778 में आज के दिन कैप्टन जेम्स कुक बेरिंग जल डमरू मध्य के केप प्रिंस ऑफ वेल्स पहुंचे थे। और 1810 में आज के दिन नेपोलियन ने वेस्टफेलिया को प्रथम फ्रांसीसी

साम्राज्य में शामिल किया था। और 1848 में आज के दिन ऑस्ट्रिया और सार्डिनिया ने युद्ध विराम पर हस्ताक्षर किए थे। 1855 में आज के दिन मैक्सिकन उदारवादी विद्रोह के दौरान अकापुल्को की लड़ाई हुई थी। और 1859 में आज के दिन ओटिस टफ्टस ने अमेरिका में पहली यात्री लिफ्ट का पेटेंट कराया था। और 1890 में आज के दिन पहले 44 जावा सैनिक सूरीनाम पहुंचे थे और चीनी बागानों में काम किया था। इसके अलावा 1904 ईस्वी में लिबनस मैकलॉथ टॉड ने चेक और राइटिंग मशीन प्रोटेक्टोग्राफ का पेटेंट कराया था। और दोस्तों आज के दिन ...1944 में स्मोकी बेयर ने अमेरिकी वन सेवा के प्रवक्ता के रूप में पदार्पण किया था। 1965 ईस्वी में आज के दिन सिंगापुर ने मलेशिया से अलग होकर स्वतंत्रता प्राप्त की थी। और 1974 में आज के दिन रिचर्ड निक्सन ने अमेरिकी राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया था और गेराल्ड फोर्ड ने शपथ ली थी। और 1978 ईस्वी में आज के दिन यूएसएसआर ने भूमिगत परमाणु परीक्षण किया था। और दोस्तों आज के दिन सन 1936 में फेरेंक सीक ने बर्लिन ओलंपिक में 100 मीटर फ्री स्टाइल का स्वर्ण पदक जीता था। इस ये जानकारियां कुछ खेल से जुड़ी हुई हैं और ऐतिहासिक घटनाओं में से एक है। 1977 में क्रिस ओल्ड ने 37 मिनट में शतक बनाया था। और 1992 में आज के दिन ऑस्कर डेला होया ने बार्सिलोना ओलंपिक में लाइटवेट स्वर्ण पदक जीता था। और दोस्तों आज के दिन कई महत्वपूर्ण हस्तियों का जन्म हुआ। हम आपको याद दिला दें, जापानी चित्रकार और शिक्षक पश्चिम कला को लोकप्रिय बनाने वाले विस्काउंट कुरोदा सेकी का जन्म 1866 में आज ही के दिन हुआ था। हिंदी और भोजपुरी उपन्यासकार संपादक माथा का आंचल पुस्तक के लेखक और पद्म भूषण प्राप्त साहित्यकार शिवपूजन सहाय का जन्म 1883 में आज ही के दिन हुआ था। भारतीय वकील, स्वतंत्रता सेनानी, भरतनाट्यम के अनुयायी ई कृष्ण अय्यर का जन्म 1897 में आज ही के दिन हुआ था। और टीवी पत्रकार और एंकर क्रिस कुओमी का जन्म 1970 में आज ही के दिन हुआ था। भारतीय अभिनेता महेश बाबू का जन्म 1975 में आज के दिन हुआ था। और भारतीय अभिनेत्री हंसिका मोटवानी का जन्म 1991 में आज ही के दिन हुआ था। और कुछ महत्वपूर्ण हस्तियों का निधन आज के दिन हुआ था, वो जानकारी भी हम आपसे करते हैं साझा। भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और राजनीतिज्ञ त्रिलोकनाथ चक्रवर्ती, जिन्होंने 30 साल जेल में बिताए थे, उनका निधन 1970 में आज ही के दिन हुआ था। ग्रेटफुल डेड के प्रमुख गायक जेरी गार्सिया का निधन 1995 में आज ही के दिन हुआ था। हंगेरियन अमेरिकी अर्थशास्त्री नोबेल पुरस्कार विजेता जॉन हरसानी का निधन 2000 ईस्वी में आज ही के दिन हुआ था।

हेलो हजारीबाग दोस्तों, आप कार्यक्रम में ट्रैफिक के नियमों और यातायात जागरूकता को लेकर भी अक्सर आपसे चर्चा किया करते हैं। दोस्तों, निश्चित रूप से ट्रैफिक के नियमों का पालन करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है जो वाहनों का परिचालन करता है, विशेष रूप से जो चालक वर्ग के लोग हैं जो भारी वाहनों का परिचालन करते हैं, उन्हें इस ओर खास ध्यान देना चाहिए। विशेष रूप से बरसात के मौसम में जब सड़कों पर फिसलन की समस्या भी होती है, तो ऐसे में काफ़ी सावधानी पूर्वक वाहनों का परिचालन करना चाहिए और किसी भी हालत में, नशे की हालत में वाहनों का परिचालन नहीं करना चाहिए। और दोस्तों, जो भी वाहन परिचालन करते हैं उन्हें उसके नियमों का पालन करना चाहिए, सीट बेल्ट का प्रयोग अवश्य करना चाहिए, साथ ही साथ जो दुपहिया वाहन चालक है उन्हें हेलमेट का प्रयोग निश्चित रूप से ज़रूर करना चाहिए। जहाँ तक शहरी क्षेत्र में ट्रैफिक नियमों की बात है, तो अपने वाहनों को जो ट्रैफिक पार्किंग के जो स्थल निर्धारित किए गए हैं विभाग द्वारा, वहाँ अपने वाहनों को पार्क करें। जहाँ तहाँ वाहनों को पार्क करने से कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं, दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ती है और जाम की समस्या से भी लोगों को जूझना पड़ता है। और जो लोग जो अल्पवयस्क युवा हैं, बालक हैं, उन्हें कदापि उन्हें अभिभावक उन्हें बिल्कुल वाहनों का परिचालन करने नहीं दें, क्योंकि जो निर्धारित आयु की जो सीमा है 18 वर्ष के बाद ही उनको लाइसेंस मिलता है, तो उसे छोटे उम्र के बच्चों को कदापि बाइक वगैरह का प्रयोग करने ना दें। तो अगर इन सब बातों पर ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से कई प्रकार की समस्याएं कम होंगी और दुर्घटनाओं की संभावना भी काफ़ी हद तक कम हो जाएगी।

हेलो हजारीबाग दोस्तों, आजकल बरसात का मौसम चल रहा है और इस मौसम में सभी लोगों को अपने स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं को लेकर पूरी सावधानी बरतनी चाहिए। बारिश के मौसम में अत्यधिक भींगना नहीं चाहिए और विशेष रूप से बच्चों और बुजुर्गों को इससे पूरा परहेज करना चाहिए। जहाँ तक बरसात के मौसम की बात है तो आमतौर पर वज्रपात की घटनाएं इसमें होती हैं, तो उससे बचाव को लेकर जो सावधानियां बताई जाती हैं उस पर अमल करना चाहिए और उससे बचना चाहिए। जब बारिश और आंधी तूफान का समय है तो अपने खेतों में नहीं रहना चाहिए और किसी पेड़ के नीचे आश्रय नहीं तलाशना चाहिए। अक्सर देखा जाता है कि पेड़ों पर वज्रपात की घटनाएं होती हैं, तो ऐसे में लोगों को चाहिए कि जो पक्के भवन है वहीं बारिश से बचने के लिए जाए, किसी टावर के आसपास न रहें, किसी पेड़ के नीचे न छुपें। और बरसात के मौसम में अक्सर देखा जाता है कि सांप के निकलने की घटनाएं होती रहती हैं, तो ऐसे में लोगों को उससे भी पूरी तरह से सावधान और सतर्क रहना चाहिए। कई लोग जो हैं वो सांपों को बिना जहर वाला समझकर खिलवाड़ करते हैं और उसकी चपेट में आ जाते हैं, तो जानकारी के अभाव में ऐसे कहीं भी सांपों को देखकर उसके नज़दीक नहीं जाएं और जो विशेषज्ञ हैं उन्हीं के माध्यम से उन्हें हटाएं।

और दोस्तों अब कार्यक्रम के फॉर्मेट के अनुरूप आपसे साझा करते हैं कुछ लोकल नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स, कुछ खेल से जुड़ी जानकारी, कुछ अनुसंधान और रिसर्च से जुड़ी खबरें। दोस्तों झारखंड राज्य विद्यालय रसोईया संघ के बैनर तले शनिवार को रसोईया कर्मियों ने चतरा के मुख्य डाकघर से जिला मुख्यालय तक पैदल मार्च किया। इसके बाद जिला मुख्यालय परिसर में एक दिवसीय धरना दिया। धरना के माध्यम से राज्य सरकार के नाम 8 सूत्री मांग पत्र उपायुक्त को सौंपकर शीघ्र कार्रवाई की अपील की गई। संघ की प्रमुख मांगों में 20 वर्षों से कार्यरत रसोईया बहनों के लिए न्यूनतम नियमावली बनाने, बिना नियुक्ति नियमावली से उन्हें हटाने पर रोक लगाने, ड्रेस कोड की राशि का शीघ्र भुगतान करने और बकाया मानदेय का एकमुश्त भुगतान करने की मांग शामिल थी। और दोस्तों विनोबा भावे विश्वविद्यालय मानव विज्ञान विभाग में शनिवार को विश्व जनजाति दिवस की पूर्व संध्या पर एक समारोह का आयोजन आर्यभट्ट सभागार में किया गया। इसकी अध्यक्षता विभागाध्यक्ष डॉ. जानी रूफिना तिर्की ने की। मुख्य अतिथि के रूप में विभावी छात्र कल्याण संघ का अध्यक्ष डॉ. विकास कुमार सिंह मौजूद थे। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं कहा जाना चाहिए कि जनजाति लोग मुख्य धारा में नहीं हैं। अध्ययन में हम पाएंगे कि जनजातीय लोग ही मुख्य धारा में हैं। ये लोग कई मायने में अन्य लोगों से भिन्न हैं, उन्हें भिन्न होने का अधिकार है। ये लोग हमसे अलग नहीं हैं। विभागाध्यक्ष ने बताया कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य झारखंड जैसे आदिवासी संस्कृति वाले राज्य में सभी को जनजातीय समाज की सही जानकारी देनी है। पूर्व विभागाध्यक्ष डॉ. गंगानाथ झा ने कहा कि पूरे विश्व में लगभग 6%, भारत में 8% और झारखंड में 27 से 28% जनजातीय समाज की जनसंख्या है। और दोस्तों बरही क्षेत्र के विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों और दुकानों में शनिवार को खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने औचक निरीक्षण किया।

0: इस दौरान खाद्य सुरक्षा मानकों के उल्लंघन के कई मामले सामने आए। पदाधिकारियों ने बताया कि खोड़ाहर स्थित प्रदीप कुशवाहा के प्रतिष्ठान में खाद्य लाइसेंस नहीं पाया गया, जिसके चलते मौके पर नोटिस जारी किया गया। होटल हर्षित राज रेस्टोरेंट के किचन की जांच में साफ सफाई संतोषजनक पाई गई। धनबाद रोड स्थित मधुलिका रिटेल शॉप और मधुलिका स्वीट्स की भी जांच की गई। अधिकारियों ने बताया कि खाद्य सुरक्षा मानकों के उल्लंघन पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। निरीक्षण में खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी श्वेता त्रिपाठी, अम्बरीश पांडे और नवेद अंजुम के अलावा विकास शर्मा, सूरज कुमार और धनेश्वर कुशवाहा शामिल थे। और दोस्तों, उपायुक्त हजारीबाग श्री हेमंत सती ने शनिवार को शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल का निरीक्षण किया। उन्होंने अस्पताल के विभिन्न विभागों और केंद्र का जायजा लिया। और दोस्तों, झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री के रवि कुमार ने कहा है कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के तहत गणना चरण में मकान संख्या संबंधित कोई कार्य नहीं किया गया है। इस संबंध में कोई आंकड़ा भी जारी नहीं किया गया है। 5 अगस्त को प्रकाशित मतदाता सूची प्रारूप में मतदाताओं से संबंधित मकान संख्या पूर्व की ही संख्या है, जिसे सिर्फ कैरी फॉरवर्ड किया गया। मकान संबंधी विषयों का दावा आपत्ति चरण में निराकरण किया जाएगा, जो 4 सितंबर तक चलेगा। और दोस्तों, कोलंबो में यशस्वी 2 गेंदों में खाता नहीं खोल पाए। पंत 5 गेंदों में से 2 रन और ध्रुव जुरेल 9 गेंदों में 1 रन बनाकर चलते बने। देवदत्त पड्डीकल ने शनिवार को नाबाद सड़क जड़ा। अपनी 142 रन की पारी में पड्डीकल ने पहले टेस्ट के अंतिम एकादश में जगह पक्की कर ली। और दोस्तों, ज्यादा वजन से शरीर की कोशिकाएं जल्द कमजोर हो रही हैं, इससे शरीर में सूजन रह सकती है, DNA को नुकसान पहुंच सकता है, कोशिकाओं के अंदर मौजूद संरचनाएं छोटी हो सकती हैं। ये शोध चीन स्थित सिचुआन विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों ने किया है। और दोस्तों, अब कार्यक्रम का अंतिम पड़ाव पहुंच चुका है। आज के विचार से करते हैं दिन की पॉजिटिव शुरुआत। दोस्तों, हमें समाज के कमजोर वर्ग के लोगों की यथासंभव हर हाल में मदद करनी चाहिए।
1: 10, 9, 8, 7, 6,

0: सुन रहे हैं विविध भारती।
1: विविधा, विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।

विविधा के सभी सुनने वालों को जयंत पात्रीकर का नमस्कार। मित्रों, विविधा के इस अंक में हम लेकर आए हैं सृजन भारती के अंतर्गत

0: 28 जुलाई 2026 को विविध भारती में आयोजित विशेष कार्यक्रम के संपादित अंश, जिसका शीर्षक था भारतीय फिल्म संगीत में वंदे मातरम। विशेषज्ञ थे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के मूर्धन्य अध्येता एवं लेखक मिलिंद प्रभाकर सबनीस। पेशे से चित्रकारिता के शिक्षक रह चुके मिलिंद जी को प्रेरणा मिली वंदे मातरम के बारे में लिखी पुस्तक से, जिसके लेखक थे अमरेंद्र गाड़गिल। अप्रैल 1994 में वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की निर्वाण शती के अवसर पर अपनी युवावस्था में मिलिंद जी ने वंदे मातरम पर एक आयोजन में विचार व्यक्त किए और तब से आरंभ हुई एक शोध यात्रा जो आज तक अनवरत जारी है। भारतीय फिल्म संगीत में वंदे मातरम इस शोध यात्रा का एक हिस्सा भर है। आइए सुनते हैं सृजन भारती के अंतर्गत 28 जुलाई 2026 को विविध भारती में आयोजित एक विशेष ऑडियो विजुअल शो भारतीय फिल्म संगीत में वंदे मातरम, इसके संपादित अंश। विशेषज्ञ राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के मूर्धन्य अध्येता एवं लेखक मिलिंद प्रभाकर सबनीस।
1: वंदे मातरम, वंदे मातरम।
2: नमस्कार। और वंदे मातरम, वंदे मातरम का ये 150वां जन्म वर्ष शुरू है। इस अवसर पे वंदे मातरम के विविध पहलुओं का जो परिचय है मैं करता रहा हूँ। पिछले 30-35 साल से वंदे मातरम पर जो कुछ अभ्यास संशोधन मैं कर रहा हूँ वो सब समग्र वंदे मातरम का एनसाइक्लोपीडिया जैसा है, उसमें मैंने लिखा है। लेकिन वंदे मातरम ये जो मंत्र है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय बहुत बड़े लेखक थे, उपन्यासकार थे, काव्य बहुत उन्होंने कम किए, लेकिन भारत के साहित्य में उपन्यास लिखने वाले जो पहले 3-4 लेखक है, उपन्यासकार है, उसमें बंकिम चंद्र जी है। वंदे मातरम का जो संगीत प्रवास है वो बहुत बहुत ही लंबा है। रविंद्रनाथ से लेकर आज के A.R. रहमान और अजय अतुल तक अभी भी वो चालू है। और कुल मिलाकर मेरे ही पास 240 से भी ज्यादा वंदे मातरम की रिकॉर्डिंग्स है। भारतीय फिल्मों में वंदे मातरम का जो इस्तेमाल किया है, वंदे मातरम जिस स्वरूप में पिछले 100 वर्ष में आया है वो प्रस्तुत करने मैं जा रहा हूँ। बंकिम चंद्र एक विख्यात उपन्यासकार थे। 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के बाद भारत में जनाकोश की एक लहर फैल गई। विशेषकर महाराष्ट्र और बंगाल में सामाजिक परिवर्तन तीव्र गति से हो रहे थे। उस समय के साहित्यकारों और कलाकारों ने भी इस जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बंकिम चंद्र जी के जो साहित्यिक गुरु थे उनका नाम था ईश्वर चंद्र गुप्त। उन्होंने 1850 के आसपास एक कविता की थी, जननी भारत भूमि आव केन थाक तुमी। आधुनिक साहित्य में, पूरे भारतीय साहित्य में जननी भारत भूमि यानी मातृभूमि ये शब्द का इस्तेमाल करने वाले आधुनिक साहित्य के वो पहले साहित्यिक थे, ईश्वर चंद्र गुप्त। और उन्होंने बंकिम चंद्र जी को प्रोत्साहित किया उनके कॉलेज आयुष्य में। बाद में उस कविता के बाद शिशिर कुमार घोष ने 1870 के आसपास भारत माता नाम की एक बहुत अच्छी कविता लिखी। उस पर किरण चंद्र बंदोपाध्याय द्वारा 1873 में एक नाटक रचा गया और वो नाटक बहुत ही प्रसिद्ध हुआ। बंकिम चंद्र अपने घर नैहाटी कांटा पड़ा कलकत्ता से 30-35 किलोमीटर के आसपास, ये छोटा गांव है, अश्विन शुद्ध अष्टमी के दुर्गाष्टमी के रात वो मूर्ति के सामने बैठे थे और रात के समय उन्हें उस मूर्ति में उन्हें भारत माता प्रतीत होने लगी और उन्होंने उठकर अपने कमरे में जाकर एक लेख लिखा। उसका नाम था अमार दुर्गोत्सव। अश्विन शुद्ध अष्टमी के रात और नवमी के प्रातः काल में उन्होंने लेख लिखा। वो अमार दुर्गोत्सव उनका

मानस पुत्र साहित्य का कमलाकांत वो नदी के किनारे पर बैठा है, उसमें उन्हें भारत माता दिखाई देती है और अदृश्य हो जाती है, तो वो व्याकुल होता है और वो माता का जय जयकार करता है, माता को बुलाता है, ऐसा उसमें आया है। ये लेख वंदे मातरम का पहला गद्य स्वरूप है, बहुत महत्वपूर्ण है। और उसके बाद केवल एक महीने के बाद कार्तिक शुद्ध नवमी के दिन 7 नवंबर 1875 के दिन बंकिम चंद्र ने एक ही समय पूरा वंदे मातरम 25 पंक्तियों का लिखकर पूर्ण किया। वो वंदे मातरम का पहला जो उपयोग है वो आनंद मठ कादंबरी में हुआ। आनंद मठ कादंबरी में वंदे मातरम का इस्तेमाल एक थीम सॉन्ग जैसे किया। कथानक में बार बार वंदे मातरम के शब्द आते हैं और उसके बाद आनंद मठ नाम का नाटक रंगमंच पर आया और उसमें पहली बार वंदे मातरम किसी ने, भावानंद के काम करने वाले पात्र ने पहली बार वंदे मातरम का गायन किया। वंदे मातरम लोगों तक पहुंचने लगा, लेकिन 1894 में बंकिम चंद्र जी का देहांत हुआ, तब तक वंदे मातरम इतना प्रसिद्ध नहीं हुआ था। 1905 में बंगाल के पार्टीशन के समय वंदे मातरम ये शब्द हर एक भारतीयों के मन में जा चुके, हर एक संग्राम को एक रणगर्जना की आवश्यकता है ही, वैसी रणगर्जना हमारे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को वंदे मातरम ये शब्द के रूप में मिली। और वो दिन था 7 अगस्त 1905, बालजी पेंढारकर और उनके भाई बाबूराव पेंढारकर ने वंदे मातरम आश्रम नाम की एक मुखपट बनाया था। उनकी फिल्म कंपनी का नाम भी वंदे मातरम फिल्म कंपनी था। 1924 में उन्होंने ये फिल्म निकाली, लेकिन सेंसर ने इतने कट्स का सुझाव किया कि वो फिल्म प्रदर्शित ही नहीं कर सके। उसके बाद मुखपटों में वंदे मातरम ये शब्द स्क्रीन पर दिखाई दिए। वंदे मातरम 1935 में पहली बार फिल्म में गाया गया और वो फिल्म का नाम ही था वंदे मातरम। बंगाली फिल्म थी, सुकृति सेन इन संगीतकार ने इसकी संगीत रचना की है।

वंदे मातरम ये शब्द भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सबसे ऊंचा स्थान पर गए। वंदे मातरम ये शब्द बोलकर स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेना बहुत महत्वपूर्ण समझने जाने लगा। कलाकार, संगीतकार, चित्रकार, इन लोगों को भी ऐसे लगा कि हम भी इस स्वतंत्रता संग्राम में अपने कला द्वारा सहभाग लेंगे। तो संगीतकार और गायक लोगों ने वंदे मातरम का गायन किया। मराठी फिल्म

नीलकंठ मास्टर 2015 में ये फिल्म रिलीज हुई। गजेंद्र अहिरे नाम के बहुत जाने माने दिग्दर्शक है, उन्होंने दिग्दर्शित की थी और संगीतकार है अजय अतुल। इंग्रजी में जैसे हम थीम सॉन्ग कहते हैं वैसे ही इस फिल्म में उसका उपयोग किया है।

1909 साल में हुतात्मा अनंत कानेरे ने अपना बलिदान दिया, वंदे मातरम बोलकर वो फांसी पर चढ़े। यह फिल्म उनके चरित्र पर, उनके बलिदान पर आधारित थी। उनकी क्रांतिकारी यात्रा का चित्रण करते हुए वंदे मातरम का प्रयोग क्रांतिकारियों को प्रेरणा गीत के रूप में इस फिल्म में किया है। यह गीत फिल्म में अपने संपूर्ण रूप में नहीं बल्कि विभिन्न प्रसंगों में खंडों के रूप में सुनाई दिया है। केवल यही फिल्म ऐसी है कि इसमें पूरा वंदे मातरम का इस्तेमाल किया है। संगीतकार प्रदीप वैद्य ने केवल यही एक फिल्म संगीतबद्ध की है। गायक जयदीप दिग्विजय वैद्य। हम सुनेंगे वंदे मातरम हुतात्मा अनंत कानेरे 1909 फिल्म से।

वंदे मातरम ये शब्द हर एक भारतीय व्यक्ति के लिए गौरव की बात है, अभिमान की बात है। तो वंदे मातरम का उपयोग केवल मराठी या हिंदी फिल्म में किया ऐसे नहीं है, सभी भारतीय भाषाओं में उसका प्रयोग किया है। अब हम सुनेंगे तमिल फिल्म भारती, इसमें वंदे मातरम का इस्तेमाल किया है। ये वंदे मातरम तमिल रूपांतर है। प्रसिद्ध कवि सुब्रमण्यम भारती, तमिल भाषा के बहुत बड़े राष्ट्र कवि, उन्होंने वंदे मातरम ये शब्द सुनकर उन्होंने एक गीत तमिल भाषा में किया। ये जो फिल्म है उसे राष्ट्रपति अवार्ड मिला था सन 2000 में। इस फिल्म की विशेषता यह है कि इसमें सुब्रमण्यम भारती का कैरेक्टर जो किया है वो मराठी अभिनेता सयाजी शिंदे ने किया है और उसके लिए उन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिला है। और इस फिल्म का संगीत विख्यात संगीतकार इलाय राजा ने किया है। इलाय राजा ने केवल दो फिल्मों के लिए वंदे मातरम संगीतबद्ध किया, इसमें एक हिंदी है और एक ओरिजिनल वंदे मातरम है और दूसरा वंदे मातरम ये तमिल है। गायक और गायिका मधु बालकृष्णन।

1996 में एक फिल्म आई थी फातिमा मीर के उपन्यास द अप्रेंटिसशिप ऑफ अ महात्मा, इस उपन्यास पर आधारित ये फिल्म थी। महात्मा गांधी के युवावस्था के उन 21 वर्षों का चित्रण इस फिल्म में किया है। आर्ट फिल्म के जाने माने निर्देशक श्याम बेनेगल ने इसका निर्देशन किया था। रजत कपूर ने युवा गांधी का पात्र निभाया था। इस फिल्म का नाम था मेकिंग ऑफ द महात्मा और हिंदी में नाम था गांधी से महात्मा तक। इस फिल्म में गांधी जी एक सत्याग्रह के दौरान जन प्रेरणा के लिए वंदे मातरम गीत केवल 2 पंक्तियों का प्रयोग इसमें उन्होंने किया है। ये गाना गाया है प्रसिद्ध पॉप गायिका उषा उत्तप ने और संगीत दिया है वनराज भाटिया ने।

तपन सिन्हा और आलोकनाथ डे। फिल्म में वंदे मातरम दो भागों में प्रस्तुत किया था। पहला भाग फिल्म के आरंभ में आता है, जहां क्रांतिकारी तालुकदार के अतीत का चित्रण किया गया है, जबकि दूसरा भाग फिल्म के समापन पर सुनाई देता है। इसकी धुन में बंगाल की रविंद्र संगीत की परंपरा का स्पष्ट प्रभाव अनुभव होता है, जो इस प्रस्तुति का एक विशिष्ट सांगीतिक पहचान होती है।

अगला फिल्म है सबुज द्वीप राजा। चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी के तरफ से ये फिल्म का निर्माण किया था बच्चों के लिए। दिग्दर्शक थे तपन सिन्हा और संगीतकार थे

1971 में और एक बंगाली फिल्म बनी, उसका नाम था महाविप्रभो अरविंद, श्री अरविंद, योगी अरविंद के जीवन पर आधारित यह फिल्म थी। इसमें वंदे मातरम गीत तीन अलग अलग प्रसंगों में सुनाई देता है। इसके संगीतकार है हेमंत कुमार मुखर्जी। हेमंत कुमार मुखर्जी बहुत प्रतिभावान संगीतकार थे। उन्होंने दो अलग अलग चित्रपटों के लिए संगीतबद्ध वंदे मातरम किया और वो दोनों ही वंदे मातरम अलग अलग ही है। ये जो धुन है वो रविन्द्रनाथ ठाकुर की मूल धुन के आधार पर उन्होंने बनाई है। पहली बार यह गीत फिल्म के शीर्षक यानी टाइटल सॉन्ग के स्वरूप में आती है। हेमंत कुमार का स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करता है। हम पहले सुनेंगे वंदे मातरम टाइटल सॉन्ग महाविप्रभो अरविंद से।

सांसारिक जीवन का त्याग कर ईश्वर प्राप्ति के लिए आध्यात्मिक मार्ग का वर्णन करते हैं, तब देवी की दर्शन के प्रसंग में वंदे मातरम एक बार पुनः सुनाई देता है। इस प्रकार गीत का अंतिम प्रयोग राष्ट्रभक्ति और आध्यात्मिक चेतना के अद्भुत संगम का प्रतीक बनकर उभरता है।

इसी फिल्म में टाइटल सॉन्ग के रूप में वंदे मातरम प्रस्तुत किया था। वैसे ही और एक हिंदी फिल्म में केवल टाइटल सॉन्ग के लिए वंदे मातरम का प्रयोग किया था, इसीलिए उसकी रिकॉर्ड बाजार में नहीं आई। वो फिल्म थी विडर, दिग्दर्शक थे राम मुखर्जी और प्रख्यात संगीतकार नौशाद ने इस गीत को संगीतबद्ध किया था। इस फिल्म की शुरुआत ही इसी टाइटल सॉन्ग से होती है। वंदे मातरम मार्चिंग सॉन्ग जैसे केवल दो संगीतकारों ने ही बनाया है, उसमें से एक ये है और दूसरे तिमिर बरन भट्टाचार्य है। हम सुनेंगे फिल्म विडर वैजयंती मावा और दिलीप कुमार समूह स्वर में।

स्वतंत्रता के बाद जो पहली फिल्म आई जिसमें वंदे मातरम का उपयोग किया था वो थी आंदोलन। निर्देशक थे फणी मुजुमदार और संगीतकार थे विख्यात बांसुरी वादक पन्नालाल घोष। वंदे मातरम की संगीत रचना 200 से ज़्यादा है, उसमें जो चार पांच संगीत रचना सबसे बढ़िया है उसमें से ये एक है। और फिल्म की एक विशेष उपलब्धि यह है कि इस फिल्म में रविन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा गाया गया जन गण मन चित्रित किया था वो देखना मिलता है। इसके अतिरिक्त 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के वायु दृश्यों को प्रस्तुत करने वाली यह स्वतंत्रता के बाद की पहली फिल्म थी। इस गीत के संगीत प्रख्यात बांसुरी वादक पन्नालाल घोष ने किया था। इसमें सुधा मल्होत्रा, पारुल घोष और मन्ना डे ने स्वर दिया था।

1951 में आनंद मठ फिल्म, लेकिन वो थी बंगाली फिल्म, हिंदी फिल्म किससे पहले ये फिल्म आई थी। उसमें दिग्दर्शक थे सतीश दास गुप्ता और संगीत था सुबर दास गुप्ता, बंगाल के प्रख्यात संगीतकार थे। इस फिल्म में वंदे मातरम फिर एक बार अलग ढंग से प्रस्तुत किया है। बंगाल की एक लोक संगीत प्रसिद्ध है बाउल संगीत, इसमें वंदे मातरम का इस्तेमाल बाउल संगीत जैसा किया है, यानी भजन जैसा किया है। बहुत ही अलग सा ये संगीत है। हिंदी जो आनंद मठ फिल्म है उसमें रण गीत जैसा वंदे मातरम का इस्तेमाल किया है, लेकिन इसमें पूजा गीत जैसा, प्रार्थना गीत जैसा वंदे मातरम का उपयोग किया है। हम सुनेंगे बंगाली फिल्म आनंद मठ, संगीत सुबरदास गुप्ता और स्वर है द्विजेन मुखोपाध्याय और अरुंधति मुखर्जी।

लेकिन ऐसे कुछ फिल्म जगत के जाने माने संगीतकार हैं जिन्होंने वंदे मातरम की धुन बनाई है, लेकिन उसका इस्तेमाल फिल्मों में नहीं किया गया। पहली है संगीतकार और गायक पंकज मविक, इनकी धुन। पंकज मविक न्यू थिएटर के प्रमुख संगीतकारों से एक थे। वे रविंद्र संगीत के विख्यात गायक भी थे और उनके द्वारा प्रस्तुत वंदे मातरम की धुन, वंदे मातरम की रविंद्रनाथ की जो धुन है उससे अलग है, ये महत्वपूर्ण बात है। उन्होंने अपनी विशिष्ट शैली के माध्यम से इस गीत को अलग सांगीतिक पहचान प्रदान की है। हम सुनेंगे पंकज मविक द्वारा गाया हुआ वंदे मातरम।

मास्टर कृष्णाराव पुरंबीकर ये प्रख्यात गायक और संगीतकार थे, भास्कर बुआ बखरे के शिष्य और बाल गंधर्व के गुरु बंधु थे। उन्होंने वंदे मातरम जो किया वो वंदे मातरम राष्ट्रगीत बनाने के लिए पंडित नेहरू के साथ उन्होंने सांगीतिक संघर्ष किया, उसकी एक अलग ही कहानी है। आज जो हम वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत के रूप में देखते हैं उसका कारण मास्टर कृष्णाराव पुरंबीकर ने घटना समिति के साथ किया गया सांगीतिक संघर्ष ये महत्वपूर्ण कारण है। मास्टर कृष्णाराव ने झिंझोटी राग में वंदे मातरम का बंधन किया और अन्य कुछ रागों में भी उन्होंने वंदे मातरम किया था। हम सुनेंगे मास्टर कृष्णाराव द्वारा झिंझोटी राग में वंदे मातरम।

तीसरे संगीतकार है वसंत देसाई। वंदे मातरम को बहुत सारे संगीतकारों ने संगीतबद्ध किया, लेकिन वंदे मातरम ये राष्ट्रगीत है और राष्ट्रगीत की तरह से उन्हें संगीतबद्ध किया जाना चाहिए, ये विचार बहुत कम संगीतकार ने किया है। उसमें से एक है वसंत देसाई। धुन एक ही है, लेकिन उसके लिए जो वाद्य का इस्तेमाल किया है वो अलग अलग है। हम सुनेंगे जो रिकॉर्ड, उसमें उन्होंने ढोल, ताशा, तुतारी, बांसुरी, ये भारतीय वाद्यों का उपयोग किया है, शंख का भी उपयोग किया है।

चौथे संगीत का है ज्ञान दत्त और इसका गायन किया है गीता दत्त और जी एम दुरानी ने, लेकिन ये वंदे मातरम थोड़ा अलग ही है। इस रिकॉर्ड में अपेक्षापूर्ण तेज गति से प्रस्तुत किया है, संक्षिप्त होने पर भी इसकी प्रस्तुति अत्यंत प्रभावशाली है। हम सुनेंगे गीता दत्त जी एम दुरानी, संगीत का ज्ञान दत्त।

शास्त्रीय संगीत बजाने वाले वे पहले सरोद वादक थे। 1938 के आसपास सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष थे, तब तिमिर वरन भट्टाचार्य ने वंदे मातरम उनके लिए तैयार किया था और पहला भाषण सिंगापुर से किया आजाद हिंद सेना का नेतृत्व लेने के बाद। तब भाषण पूरा होने के समय यही रिकॉर्ड उन्होंने बजाए। सुभाष चंद्र बोस की अत्यंत प्रिय ये रिकॉर्डिंग थी।

आर रहमान ने वंदे मातरम किसी फिल्म के लिए नहीं किया है। स्वतंत्रता को जब 50 बरस पूरे हुए तो 1997 में उन्होंने वंदे मातरम का एल्बम बनाया था। उसी बरस में 1997 में रंजीत बारोट यह संगीतकार ने वंदे मातरम 2 नाम की पहले कैसेट बाद में सीडी बनाई। उसमें साजिद खान ने राजस्थानी लोक संगीत जैसे वंदे मातरम गाया था। कौशिकी चक्रवर्ती आज की प्रख्यात गायिका, उन्होंने वंदे मातरम का गायन किया था। और पॉप म्यूजिक शैली में प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका शुभा मुद्गल ने वंदे मातरम का गायन किया था। हेमंत कुमार मुखर्जी ने 3 फिल्म के लिए वंदे मातरम गाया और 2 फिल्म के लिए संगीतबद्ध किया, लेकिन वो सब वंदे मातरम एक से दूसरे अलग है। इसी फिल्म में 2 बार वंदे मातरम प्रस्तुत किया है। हिंदी आनंद मठ में 1952 में ये फिल्म आई। इस फिल्म का बहुत सारे वैशिष्ट्य है, जिसमें दिग्दर्शक है हेमेंद गुप्ता। हेमेंद गुप्ता जी ने स्वातंत्र संग्राम में सहभाग लिया था, इसलिए इस फिल्म का दिग्दर्शन कर अलग ही दिखाई देता है। राष्ट्रभक्ति की भावना अन्य फिल्मों से ज़्यादा इसमें दिखाई देती है। पहला जो गायन है वो खुद हेमंत कुमार ने किया है। गीत का आरंभ हेमंत कुमार के करुण स्वर और आर्त स्वर से होता है। हेमंत कुमार का भावदर्शन बहुत ही सुंदर है।

वंदे मातरम को अब तक अनेक संगीतकारों ने विभिन्न धुनों में स्वरबद्ध किया है और लगभग सभी धुनें अपने अपने ढंग से उत्कृष्ट है, किंतु फिल्मी रूपांतरण में इस प्रस्तुति को जो लोकप्रियता और जन स्वीकृति मिली वह अद्वितीय है। 2003 में बीबीसी वर्ल्ड सर्विस द्वारा 165 देशों के श्रोताओं के बीच कराए गए सर्वेक्षण में लता मंगेशकर द्वारा गाए गए इसी वंदे मातरम को विश्व के सार्वकालीन 10 सर्वश्रेष्ठ गीतों में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ था। लता मंगेशकर का गायन एक साथ वीरता और करुणा दोनों भावों से परिपूर्ण है। अनेक स्वर में जहां एक और ओज और आक्रोश का संचार है, वही दूसरी ओर मातृभूमि के प्रति समर्पण और संवेदना की गहरी अनुभूति भी है। यह गीत अभिनेत्री गीता बाली पर फिल्माया गया है। यदि लता मंगेशकर द्वारा वंदे मातरम शब्द पर ली गई प्रत्येक तान को ध्यानपूर्वक सुना जाए तो हर बार उनके एक नया स्वर विन्यास और सूक्ष्म वैविध्य अनुभव होता है। वंदे मातरम का यह रिकॉर्डिंग आज सबसे लोकप्रिय रिकॉर्डिंग माना जाता है।

0: कंठ संगीत में यानी वोकल गायन में तीन गायकों को भारत रत्न मिला, उनमें से पहली थी डॉक्टर एम एस सुब्बलक्ष्मी, दूसरी थी लता मंगेशकर और तीसरे थे पंडित भीमसेन जोशी। तीनों भारत रत्न ने वंदे मातरम गाया है अलग अलग तरह से। लता मंगेशकर जी ने गाया है आनंद मठ फिल्म के लिए, एम एस सुब्बलक्ष्मी ने गाया है दो वंदे मातरम की उनकी रिकॉर्ड है, एक गाई है दिलीप कुमार रॉय के साथ दक्षिणी और उत्तर हिंदुस्तानी जुगलबंदी के रूप में वंदे मातरम का गायन, और दूसरा वंदे मातरम उन्होंने गाया है सुब्रमण्यम द्वारती द्वारा तमिल वंदे मातरम। और भीमसेन जोशी जी ने 1997 में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को 50 वर्ष जब पूर्ण हुए तो 14 अगस्त को रात 12 बजे संसद के विशेष अधिवेशन में भीमसेन जोशी जी ने वंदे मातरम गाया। तीनों भारत रत्न ने वंदे मातरम गाया है, ये एक अलग ही बात है।
1: सृजन भारती के अंतर्गत 28 जुलाई 2026 को विविध भारती में आयोजित विशेष ऑडियो विजुअल शो भारतीय फिल्म संगीत में वंदे मातरम, इस कार्यक्रम के ये थे संपादित अंश। विशेषज्ञ थे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के मूर्धन्य अध्येता एवं लेखक मिलिंद प्रभाकर सबनीस। इस विशेष कार्यक्रम का संयोजन किया था शिल्पा मिलिंद सबनीस ने, संपादन एवं प्रस्तुति अनुश्री पाठक की। इसी के साथ आज का विविधा कार्यक्रम अब संपन्न होता है।
2: ये थी विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू होकर 17 अगस्त तक चलेगा। अभियान का उद्देश्य लोगों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। ये अब एक बड़े जनभागीदारी अभियान का रूप ले चुका है। इस वर्ष देशभर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी होगा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि मोदी सरकार द्वारा औपनिवेशिक काल के कानूनों की जगह लाए गए 3 नए आपराधिक कानून प्रौद्योगिकी, समयबद्धता और विश्वास के 3 महत्वपूर्ण स्तंभों पर आधारित हैं। गृहमंत्री ने गोरीमेडू स्थित पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय के मैदान में पुदुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्रदान करने के समारोह में ये बात कही।
1: नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने अंग्रेजों के बनाई हुई दंड संहिता को

0: मिलकर तीन भारतीय न्याय संहिताओं को लागू किया है। ये न्याय संहिताओं की सोच दंड आधारित नहीं है। ये न्याय संहिताओं की सोच नागरिकों को न्याय दिलाने के लिए केंद्रित, तकनीक सक्षम और समयबद्ध बनाने की है। ये तीनों न्याय संहिताएं टेक्नोलॉजी, टाइमलाइन और ट्रस्ट, ये तीन पिलर पर खड़ी की गई है।
1: श्री अमित शाह आज पुदुचेरी के मुरुगा थिएटर सिग्नल से हर घर तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने राज्य और देश के विकास में प्रत्येक नागरिक की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए 15 अगस्त से राष्ट्र निर्माण में भागीदार कार्यक्रम में शामिल होने का आह्वान किया है। श्री नायडू ने कार्यक्रम के अंतर्गत लोगों से 13 से 15 अगस्त तक अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने और मेरा राष्ट्र राष्ट्र सर्वोपरि की भावना को बढ़ावा देने का आह्वान किया। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश में 124 पात्र कैदियों की सजा में कमी की जाएगी। इनमें से 118 आजीवन कारावास की सजा काट रहे कैदियों को समय से पहले रिहा किया जाएगा। 6 अन्य पात्र कैदियों को विशेष छूट दी जाएगी। ये छूट अच्छे आचरण, अनुशासित व्यवहार और निर्धारित नियमों के पालन के आधार पर दी जाएगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी के करो या मरो के आह्वान से प्रेरणा लेकर इन सेनानियों ने देशवासियों को स्वतंत्रता संग्राम के लिए एकजुट किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लेने वाले सभी स्वतंत्रता सेनानियों और आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इन वीरों का साहस हमेशा हर भारतीय के लिए प्रेरणा स्रोत बना रहेगा। सरकार ने पंजाब की मंडियों में पड़े 18 लाख मीट्रिक टन पुराने अनाज के भंडार को 20 सितंबर तक उठाने पर सहमति व्यक्त की है, ताकि राज्य में धान की बंपर फसल की उम्मीद के चलते भंडारण की जगह खाली हो सके। पंजाब से इस वर्ष केंद्रीय भंडार में 170 लाख मीट्रिक टन अच्छी गुणवत्ता वाले चावल की आपूर्ति होने की उम्मीद है। सरकार ने 4 उच्च न्यायालयों में 30 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर दी है। इनमें मद्रास, कलकत्ता, मध्य प्रदेश और कर्नाटक उच्च न्यायालय शामिल हैं। सबसे ज्यादा 15 न्यायाधीशों की नियुक्ति मद्रास उच्च न्यायालय में हुई है। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी गतिरोध अब समाधान की ओर है। राज्य सरकार आज आंदोलनकारी छात्रों के साथ अगले दौर की वार्ता करेगी। आज विश्व जनजातीय दिवस के अवसर पर नागालैंड के राज्यपाल नंदकिशोर यादव ने प्रकृति और समृद्ध संस्कृति तथा परंपराओं और विरासत का संरक्षण करने वाले सभी जनजातीय समुदाय के लोगों के प्रति सम्मान व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री निफ्यू रियो ने सोशल मीडिया पोस्ट में स्थानीय ज्ञान, परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण का आह्वान किया। इस बीच नागालैंड जनजातीय मंच आज दीमापुर के टाउन हॉल में विश्व जनजातीय दिवस का आयोजन कर रहा है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में नागालैंड पहली बार इस दिवस की मेजबानी कर रहा है। भारत की अश्मिता चालिहा ने कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब जीतकर अपना पहला बीडब्ल्यूएफ विश्व टूर खिताब हासिल किया है। फाइनल में अश्मिता ने चीन की हान क्यानशी को हराया। चीन के हेफेई में 9वीं वर्ल्ड यूथ ट्रांसनेशनल चैंपियनशिप में भारत के साग्निक रॉय और सायंतन कुशारी की जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली।

0: मुकेश की आवाज में सबक फिल्म का गीत आप सुन रहे थे।
1: वो कॉमिक क्रिएटर है।
2: अगर अमेरिका भी देखें तो सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है।
1: और विविध भारती पर आ रहे हैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने।
2: उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया तो बहुत गाली दी उन्होंने मुझे। प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है?
1: कॉमिक क्रिएटर और डायरेक्टर आलोक शर्मा होंगे आज के मेहमान।
2: जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था और उसके बाद उसमें आरजेएस के वॉइसेस चिपका दी जाती।
1: 12 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

श्रोताओ, आज यादों की महफिल कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं लेखक, निर्माता और निर्देशक सावन कुमार की फिल्मों की नगमे।

0: उषा खन्ना की बनाई तर्ज पर इसे गाया मोहम्मद रफी ने। हवस फिल्म का गीत आपने सुना, सावन कुमार का लिखा।
1: अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
2: चार औरतों की कहानी थी वो, और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गाँव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं थी।
1: और बातें जिंदगी की, जद्दोजहद की।
2: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड

0: स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो, तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10।
1: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 11 अगस्त शाम 4 बजे, सिर्फ विविध भारती पर।

0: साजन की सहेली इस फिल्म का दोगाना था मोहम्मद रफी सुलक्षणा पंडित की आवाजों में। मजरू सुल्तानपुरी का लिखा ये गीत आपने सुना, संगीत था उषा खन्ना का।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी,
2: देखो जी बहार आई गांवों में खिली,
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत भूले बिसरे गीत।
3: मैं तेरा राग तू मेरी रागनी,
1: गुजरे दौर की आवाजें धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत। हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

आप आई बाहर आई इस फिल्म का गीत था, मोहम्मद रफी लता मंगेशकर का गाया, आनंद बख्शी के बोलों को सुरों में ढाला लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। यही है श्रोताओं आज के कार्यक्रम यादों की महफिल की आखिरी पेशकश।

विविध भारती से लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरीला सफर। अपने सभी श्रोताओं का हम इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। रुनझुन बूंदों की बौछारें लिए आपके रेडियो सेट पर श्रोताओं आ चुका है विविध भारती का कार्यक्रम सुरीला सफर। हम सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और हमारे जो श्रोता आज नए नए जुड़े हैं फेसबुक से,

या फिर हमारे इस कार्यक्रम से, उन सभी का भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम में। बने रहिए हमारे साथ सुरीला सफर कार्यक्रम में। आज की जो इबारत है वो हमारे श्रोताओं ने वैसे देखी है और पढ़ी भी है, देखी भी है फेसबुक पेज पर और लिखा भी है बहुत कुछ। तो ये इबारत जल्दी से आपके लिए पढ़ देते हैं। सुंदर सजीली धरा पर हरियाले सावन की छटा, नव पल्लवित पुष्पों की झनकार, बादलों का मृदंगवाद, चमकी बिजुरिया, बूंदों की गागर छलकी, तो नींद नहीं आए, कोई पास तो कोई दूर, कहीं मेघ मल्हार, कहीं कजरी की तान, कोयल की कूक, पपीहे की पुकार, बाग बगीचे और खेतों की हरियाली, पावस ऋतु में मिलन की आस, मोर का सजीला नृत्य, सावन की इस नैया में तन भीजे मन भीजे, जी डरे और करे प्यार की पुकार, कि घर आजा संग साजन झूला झूली, अब के सावन में गजब हुई गवा, मन लाजवंती सा छुई मुई हुई गवा, झरने पानी से इठलाते हैं, सरिता में भर गया नूतन पानी, पत्थरों में भी फूलों का इंद्रधनुषी श्रृंगार, छोटी सी उम्र से अनजान प्रकृति में रंग भरती नन्ही तितलियां, धरती अंबर में ये कैसा लगा है सावन का मेला। श्रोताओं आप समझ चुके हैं आपके रेडियो सेट पर आजकल वैसे सावन का मौसम छाया है, क्या क्या छुपा है सावन की बूंदों में, जरा दिल से पूछिए। दिल का राग, कभी दूरी कभी कोई पास पास, छोटे छोटे झरनों की अंगड़ाइयाँ, तालाब पोखरों नदियों में उमड़ता पानी, हरियाली हर तरफ, मवेशियों के लिए चारागाह, हल बैलों के घुंघरुओं की रुंझन आवाजें जैसे घन बरसता हो, रात कभी कभी बिजलियों से सिहर जाती है, क्या रात क्या शामें क्या सुबह, सब भीगे अंदाज में नजर आते हैं। पिछले सावन क्या कुछ छूटा, इस सावन क्या कुछ नयापन लेकर आया हरियाला सावन, क्योंकि ये एक मौसम ऐसा है श्रोताओं, जितनी खुशी हमारे दिल में होती है उतनी ही खुशियाँ घर के बाहर प्रकृति में भी नजर आती हैं। सावन का वो कौन सा खास अंदाज है जो आपके दिल को छू जाता है, ये बातें आप हमसे साझा कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स हम आपके आज पढ़ने की कोशिश करेंगे। हमारे जो श्रोता नए हैं उन्हें बता दें, आपको लॉग ऑन करना है www.facebook.com/vbsmumbai और आपको इस पते पर अपनी प्रतिक्रियाएं अपने कमेंट्स भेजने हैं। रेडियो श्रोताओं का भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। अब ये फिल्म पहचानिए। सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार।

0: दौरा तो सचमुच नाच उठता है सावन में, और जब गायन की बात करें तो राग मेघ मल्हार और कजरी की तान हर सू सावन के मौसम में नजर आती है। श्रोताओं, अगले गीत में आपको संगीतकार बताने हैं और फिल्म में जो कलाकार हैं उन्हें पहचानना है। वैसे इन कलाकारों की और भी फिल्में हैं, कौन सी फिल्म आपको अच्छी लगती है अगर आप चाहें तो बता सकते हैं। एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि सावन आते ही जैसे प्रकृति अपने आंचल में धरती को सजा लेती है, नव पल्लवों की हरियाली, फूलों की मुस्कान, बादलों का मृदंग और बिजली की चमक सब मिलकर ऐसा संगीत रचते हैं जिसमें मन अनायास ही झूम उठता है। बारिश की बूंदें जब धरती पर गिरती हैं तो लगता है जैसे आसमान ने अपनी प्रेम पाती धरती के नाम लिख दी हो। कहीं मेघ मल्हार की तान तो कहीं पपीहे कोयल कजरी की मिठास, बाग बगीचों से लेकर खेतों तक हर ओर हरियाली का साम्राज्य है। झरने इतलाते हुए बह रहे हैं और मोर अपने सजीले नृत्य से सावन का स्वागत कर रहे हैं, और बहुत सारे मधुर गीत भी इन्हें आज याद आ रहे हैं। कुछ एक गीत इन्होंने बताए भी हैं। वैसे आपको ये भी बताना है श्रोताओं कि आजकल जब हम सावन की बात करते हैं तो खेतों की भी बात करते हैं। आप जरूर व्यस्त होंगे, हमारे कृषक जो हैं वो खेतों में, तो आप विविध भारती कहाँ से सुन रहे हैं जरूर बताइए, और वहाँ का मौसम कैसा है ये भी बताइए। वैसे आपके प्रदेश में सावन किस खास अंदाज में मनाया जाता है, कोई खास परंपरा तो आप लिख सकते हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि सावन के सुहावने मौसम में रिमझिम फुहारों के बीच पिया मिलन की आस और उनसे जुदाई किए का एहसास दिल को बहुत तड़पाती है, और हर पल अपने पिया के पास होने की इच्छा और तीव्र हो जाती है, जिससे दो दिलों की दूरियां दिल में बेचैनी और तड़प को बढ़ा देती है, जिससे बारिश की बूंदें मन में ठंडक के बजाय सुरीली उदासी से भर देती हैं। सावन के सुहावने मौसम में अपने पिया मिलन की पुरानी यादों को जगाता है, जिससे भीगी हुई धरती और उमड़ते घुमड़ते काले बादल मन को अत्यधिक भावुक बना देते हैं। जी हाँ, आजकल वैसे श्रोताओं देखें तो हर तरफ बस निगाहें बादलों पर ही टिकी हैं। ये बादल जो सावन में आजकल छाए हुए हैं, इनका रंग बड़ा निराला होता है।
1: समाचार का आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं प्रियंका। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार ने अंग्रेजों के जमाने के आपराधिक कानूनों को बदला, 3 नए आपराधिक कानून प्रौद्योगिकी, समयबद्धता और विश्वास पर आधारित। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विश्व आदिवासी दिवस की दी बधाई, कहा समृद्ध जनजातीय विरासत, हमारी गौरवशाली सांस्कृतिक पहचान, शहीदों को किया नमन। रांची के मोरहाबादी मैदान में आज से 2 दिवसीय झारखंड आदिवासी महोत्सव में देश भर से आए जनजातीय कलाकार देंगे प्रस्तुति, कई कार्यक्रम का भी आयोजन। जेपीएससी जेएसएससी विवाद में आंदोलनरत छात्रों से सरकार की आज फिर होगी वार्ता, अनशन कर रहे छात्रों की मेडिकल टीम ने की जांच। और राष्ट्रगीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ हर घर तिरंगा अभियान आज से देश भर में शुरू, रांची में निकाली गई भव्य तिरंगा यात्रा, देशभक्ति और एकता की दिखी झलक। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा औपनिवेशिक काल के कानूनों की जगह लाए गए 3 नए

0: नए आपराधिक कानून तीन महत्वपूर्ण स्तंभों प्रौद्योगिकी समयबद्धता और विश्वास पर आधारित हैं। श्री शाह ने कहा कि नए आपराधिक कानूनों का उद्देश्य अधिक प्रौद्योगिकी आधारित और समयबद्ध प्रणाली के माध्यम से नागरिकों को न्याय सुनिश्चित करना है। केंद्रीय गृहमंत्री ने पुद्दुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्रदान करने के समारोह में भागीदारी के दौरान यह बात कही।
1: नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने अंग्रेजों के बनाई हुई दंड संहिता को बदलकर तीन भारतीय न्याय संहिताओं को लागू किया है। ये न्याय संहिताओं की सोच दंड आधारित नहीं है। ये न्याय संहिताओं की सोच नागरिकों को न्याय दिलाने के लिए केंद्रित, तकनीक सक्षम और समयबद्ध बनाने की है। ये तीनों न्याय संहिताएं टेक्नोलॉजी, टाइमलाइन और ट्रस्ट, ये तीन पिल्लर पर खड़ी की गई है।
0: विश्व आदिवासी दिवस पर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यवासियों को बधाई दी है। अपने सोशल मीडिया पोस्ट में राज्यपाल ने लिखा है कि झारखंड की समृद्ध जनजातीय विरासत हमारी गौरवशाली सांस्कृतिक पहचान है। स्वतंत्रता संग्राम में जनजातीय समाज के वीरों का योगदान अविस्मरणीय है। उनकी समृद्ध संस्कृति एवं लोक कला हमारी अमूल्य धरोहर हैं। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में लिखा है कि झारखंड की धरती ने दुनिया को ऐसा जीवन दर्शन दिया है जहां प्रकृति पूजनीय है, समुदाय सर्वोपरि है और संस्कृति जीवन का हिस्सा है। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर रांची के मोरहाबादी मैदान में दो दिवसीय झारखंड आदिवासी महोत्सव का आयोजन किया गया है। महोत्सव में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल होंगे। इस महोत्सव में झारखंड सहित देश के विभिन्न हिस्सों से आए जनजातीय कलाकार पारंपरिक नृत्य, संगीत और कला की प्रस्तुतियां देंगे। महोत्सव में जनजातीय व्यंजन, पारंपरिक वेशभूषा, हस्तशिल्प और कलाकृतियों के स्टॉल भी लगाए गए। जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा में कथित धांधली को लेकर छात्रों का आंदोलन आज 16वें दिन भी जारी है। आंदोलनरत छात्रों से सरकार की अब से थोड़ी देर में तीसरे दौर की बातचीत होगी। अब तक हुई दो राउंड की बातचीत बेनतीजा रही है। वहीं रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम में अनशन पर बैठे छात्रों ने सरकार पर सिर्फ आश्वासन देने का आरोप लगाया है।
2: अब देखना इस चीज को है कि आज वो किस पल पर बात करते हैं, क्या उन लोग मांगे पूरी करते हैं या नहीं, क्योंकि उन लोग कल विधानसभा घिरा हुई है। सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है, ये आश्वासन कब तक चलेगा? क्या आप हम लोग जान लेना चाहते हैं? हम लोग आज 6 दिन से बैठे हैं भूख हड़ताल पे। कभी आप एक दिन जाकर देखिएगा कैसा लगता है। अगर आपके बच्चे एक दिन भूखे होंगे ना, तब तड़प जाइएगा। वैसे मेरी माँ बाप भी तड़पते होंगे, लेकिन सरकार को दिखता नहीं है।
0: इधर अनशन पर बैठे छात्रों की मेडिकल जांच की गई। चिकित्सक ने बताया कि अभी छात्रों की स्थिति सामान्य है, लगातार उनकी निगरानी की जा रही है।
3: वेट कम हुआ है, बाकी अलर्ट है, अभी स्टेबल है, लेकिन ज्यादा यदि कुछ दिक्कत बुझाएगी हम लोग को मेडिकली, तब इन लोगों को रेफर किया जाएगा जिला अस्पताल। हम लोग उन्हें स्पॉट दे रहे हैं। दो तरह की बात है, एक तो कि जब सीरियस कंडीशन होगा इनको बिना कहे हम ले जाएंगे, और दूसरा जो कंडीशन अभी है प्रेजेंट में, ऐसे नॉर्मल पेशेंट को भर्ती होना चाहिए, परंतु ये अभी जाना नहीं चाहते।
0: जमशेदपुर में पिछले 2 दिनों से चल रहा आजसू पार्टी का छात्र महाधिवेशन संपन्न हो गया। इस मौके पर आजसू पार्टी के अध्यक्ष और राज्य के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुदेश महतो ने आंदोलनरत छात्रों की मांगों का समर्थन करते हुए सरकारी भर्ती प्रक्रियाओं में कथित गड़बड़ियों की निष्पक्ष जांच की मांग की।
4: सरकार के पास गया है, मेरा छात्र संगठन युवा संगठन इस लड़ाई का हिस्सा है। ध्यान रहे, प्रदेश के अंदर अगर इन पढ़े लिखे नौजवानों को छलने का काम अगर बैठक का बहाना बनाकर सरकार करने का काम करेगी, तो पूरे राज्यव्यापी नौजवानों को तैयार करके गली गली से निकलकर सरकार विरोध छेलने के लिए तैयार रहे।
0: केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने गिरिडीह के देवरी थाना क्षेत्र के बिलोटाड़ और देवपहाड़ी गांव पहुंचकर वज्रपात से जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि मृतकों के आश्रितों को आपदा विभाग की ओर से 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक सैंडल @ AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध।

0: है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक सैंडल @EIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। देश स्वतंत्रता की गौरवशाली 80वीं वर्षगांठ मना रहा है। इसी कड़ी में रांची में भाजपा की ओर से तिरंगा यात्रा निकाली गई, जो मोरहाबादी से शुरू होकर अल्बर्ट टिक्का चौक तक गई। इस तिरंगा यात्रा का नेतृत्व केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने किया। श्री सेठ ने कहा कि इसका उद्देश्य लोगों में देश प्रेम और स्वाभिमान की भावना भरना है।
1: आज तिरंगा यात्रा में शामिल हो रहे हैं।
2: देखो, तिरंगा हमारी आन पान और शान है, और आन पान शान तिरंगा हाथ में लेने से ऊर्जा आ जाती है, और जब भारत माता की जयकारा लगाते हैं, वंदे मातरम कहते हैं, तो जो ऊर्जा का संचार होता है।
0: तिरंगा यात्रा में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू भी शामिल हुए। उन्होंने स्वतंत्रता की वर्षगांठ पर लोगों से अपने घरों में एक एक तिरंगा लगाने का आग्रह किया। विधायक नीरा यादव और रांची की महापौर रोशनी खलखो ने भी इस अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी। धनबाद नगर निगम ने करीब 141 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से शहर की सूरत बदलने की योजना बनाई है। इस संबंध में कल निगम की बोर्ड मीटिंग हुई। महापौर संजीव सिंह ने बताया कि 15 अगस्त के बाद निगम की क्विक रिस्पांस टीम को भंग कर दिया जाएगा। इसके स्थान पर सभी 55 वार्डों में 15-15 समर्पित सफाई कर्मियों की तैनाती की जाएगी। राजधानी रांची के सराफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,41,300 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,40,000 रुपये प्रति किलो है। सिमडेगा जिले के जलडेगा थाना क्षेत्र के कोनमेरला पंचायत स्थित सौंडी डीपा गांव में जंगली हाथी के कुचलने से 2 ग्रामीणों की मौत हो गई। इस घटना से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। कोलेबिरा विधायक ने पूरे मामले में वन विभाग को लापरवाह ठहराते हुए मामले को सदन में उठाते हुए मुख्यमंत्री से स्थायी समाधान की मांग करने की बात कही।
3: हम लोगों ने लगातार प्रयास किया है कि वन विभाग से क्या आप अपने लोगों को यहाँ से लगा के इनको यहाँ से हटाइए, इनका जहाँ वन अस्थायी है वहाँ तक इनको ले जाइए। मैंने सदन में भी इसको लेकर कई बार रखा है, लेकिन वन विभाग पूरी तरह से उदासीन है, गंभीर नहीं है।
0: झारखंड में आज मौसम में एक बार फिर बदलाव देखने को मिलेगा। मौसम विभाग के अनुसार देवघर, दुमका, गिरिडीह, गुड्डा, जामताड़ा समेत राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश के साथ गर्जन, वज्रपात और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की संभावना है। इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार ने अंग्रेजों के जमाने के आपराधिक कानूनों को बदला। 3 नए आपराधिक कानून प्रौद्योगिकी, समयबद्धता और विश्वास पर आधारित। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विश्व आदिवासी दिवस की दी बधाई। कहा, समृद्ध जनजातीय विरासत, हमारी गौरवशाली सांस्कृतिक पहचान, शहीदों को किया नमन। रांची के मोरहाबादी मैदान में आज से 2 दिवसीय झारखंड आदिवासी महोत्सव में देश भर से आए जनजातीय कलाकार देंगे प्रस्तुति, कई कार्यक्रम का भी आयोजन। जेपीएससी जेएसएससी विवाद में आंदोलनरत छात्रों से सरकार की आज फिर होगी वार्ता। अनशन कर रहे छात्रों की मेडिकल टीम ने की जांच। और राष्ट्रगीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ हर घर तिरंगा अभियान आज से देश भर में शुरू। रांची में निकाली गई भव्य तिरंगा यात्रा, देशभक्ति और एकता की दिखी झलक। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
4: बनती है मैं तो गिरा, मैं तो गिरा।

छलिया फिल्म के इस गीत को हमारे सभी श्रोताओं ने बिल्कुल ठीक पहचाना है। राज कपूर पर फिल्माया गया, मुकेश की आवाज में कमर जलालाबादी के बोल थे, कल्याण जी आनंद जी की तर्ज थी। हमारी एक श्रोता ने लिखा है कि स्कूल के

अगर बारिश हो गई और हमें मौका मिला रोड पर चलने का तो गाने की लाइन इतना याद नहीं रहती। उस समय राज कपूर का पानी में छप्पा छैया करना बहुत पसंद आता था और हम सभी एक इस तरह की हरकत करके एक दूसरे को भी भिगोते थे। वैसे राज कपूर साहब का एक और गीत है श्रोताओं जो बारिश का बहुत ही प्रसिद्ध गीत है, वो गीत अगर आपको याद आ रहा हो तो आप जरूर बताएं। एक और श्रोता ने राज कपूर नूतन द्वारा जो है इस फिल्म में अभिनीत इस फिल्म छिलिया की बात की है। एक और श्रोता लिखते हैं कि सावन आते ही हरियाली जो चारों तरफ दिखाई देती है और हमारे घर के पास के मंदिर से आती शिव जी के भजनों की आवाज और महिलाओं का हरे रंग की साड़ी पहनकर सजना संवरना बड़ा ही अच्छा है। और जी हाँ, और मेहंदी भी तो लगाई जाती है, तो हमारी जो श्रोता सखियां हैं वो बता सकती हैं। वैसे मेहंदी की अगर बात किया जाए तो मेहंदी का आजकल चलन थोड़ा थोड़ा सा बदल रहा है, यानी मेहंदी जो है वो अलग तरह से लगाई जाती है। इस बारे में अगर आप बताना चाहें तो बता सकती हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि सावन का महीना केवल बारिश का नहीं बल्कि यादों, प्रेम और आस्था का भी है। शिवालयों में गूंजते हर हर महादेव के स्वर और मन में उमड़ते भाव जीवन को एक नई ताजगी दे जाते हैं। शायद यही वजह है कि सावन हर साल आता तो है लेकिन हर बार में एक नई कहानी छोड़ जाता है। पिछले सावन में श्रोताओं कौन सी ऐसी बात थी जो आपकी इस सावन में पूरी हुई, तो ये जो परिवर्तन है वो कैसा लगा या क्या कुछ परिवर्तन हुआ ये आप बता सकते हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि पटना में कल रात में बारिश हुई, अभी तो तेज धूप निकली है। आज एकादशी के दिन मंदिरों को खूब सजाया जा रहा है और श्रीहरि और महादेव दोनों की पूजा चल रही है। एक और श्रोता ने लिखा है क्या किए कोई मन भाग गया, दिल में हमारे वो समा गया, हंस के किसी ने देखा एक बार, दिल की मुराद कोई पा गया, सांसों की मीठी आग, होंठों पे मीठा मीठा राग, और अपने मन का इन्होंने गीत भी बताया है। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज जो गीत हैं यानी सावन का के जो गीत हैं और जो बारिश के जो गीत हैं वो सुनवाए जाएंगे। जी हाँ बिल्कुल हैं, और कौन से गीत आपके पसंद के हैं। वैसे इस इबारत में बहुत सारे शब्द भी ऐसे हैं श्रोताओं जिनसे आप अपनी कोई बात लिख सकते हैं। फिल्म पहेली का ये गीत है, इस अभिनेत्री को आपको पहचानना है, यही आप

हमारे श्रोताओं ने अभिनेत्री का नाम कुछ कुछ लटपटा सा बताया है, लेकिन हम आपको बता दें श्रोताओं, पहली फिल्म का ये गीत था हेमलता की आवाज में, गीत और संगीत था रविंद्र जैन का, नमिता चंद्रा पर फिल्माया गया गीत था। हमारी एक श्रोता ने लिखा है कि अंताक्षरी में जब ड शब्द आता है तो ये गीत बरमास गाया जाता है, दम दम डिगा डिगा। जी हाँ, ये तो है कि अंताक्षरी में ये गीत बहुत गाया जाता है। वैसे हमने एक सवाल और भी श्रोताओं आपसे पूछा था कि जो एक पक्षी है बड़ा सुंदर सा घोंसला बनाता है मानसून में, वो आपको बताना है। एक और श्रोता ने लिखा है कि सावन को झूलना उत्सव पर्व के रूप में भी मनाया जाता है, पास के मंदिर का हरियाली श्रृंगार हुआ है। जी हाँ, अब तो धीरे धीरे सावन जो है वो शबाब पर आ रहा है। एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि महाकवि कालिदास ने मेघदूत और ऋतु संहार, जी मेघदूतम हो सकता है ये है, और ऋतु संहार लिखा है। तो मोहन राकेश ने आषाढ़ का एक दिन नाटक लिखा है, कवि भवानी प्रसाद मिश्र ने आषाढ़ का पहला दिन कविता लिखी, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने कविताओं में बादल और वर्षा जीवन की सृजन और संघर्ष के रूप में लिखा है इसे और दिखाई देता है, और तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में भी लिखा है, घन घमंड नभगर्जत घोरा दामिनी दमक रहन घन माही। और मलिक मोहम्मद जैसी की भी ये बात करते हैं, पद्मावत की भी बात करते हैं। जी हाँ, ऐसे तो बहुत सारे हमारे कवि हैं जिन्होंने सावन और जो वादियाँ हैं बारिश की, उन पर बहुत सारे कविताएं लिखी हैं, गीत भी लिखे हैं। इस गीत में श्रोताओ मेला नजर आता है, तो मेले की कोई यादें अगर आपकी हों तो आप साझा कर सकते हैं।

जरीना बहव और अरुण गोविल पर फिल्माया गया ये गीत आपने सुना। और इस गीत में अरुण गोविल के हाथ में छोटा एक वाद्य यंत्र है, वो आपको बताना है कि ये वाद्य यंत्र कौन सा है। और जो भारत है वो बड़ा ही अलग प्रकार का, अगर हम बात करें प्रकृति के नजरिए से तो प्रदेश है, यहाँ पर हैं अलग अलग। तो तितलियों का प्रदेश किसे कहते हैं, क्योंकि बारिश के मौसम में बड़ी अलग अलग सुंदर सुंदर तितलियां नजर आती हैं। लैंड ऑफ बटरफ्लाइज किसको कहते हैं, आपको ये बताना है। और साथ ही ये बताना है कि एक प्रदेश जिसके नाम में मेघ आता है वो कौन सा प्रदेश है, ये आपको बताना है। एक श्रोता लिखते हैं कि बारिश के आगमन के बाद प्रकृति अपना रूप निखारती है, चारों ओर छटा देखते ही बनती है, धरती पर चारों ओर हरियाली ही हरियाली छा जाती है। मुझे भी बारिश में भीगना बेहद अच्छा लगता है, कल ऑफिस से लौटते वक्त भी बारिश में भीगता हुआ ही आया। जब घर में होता हूँ तो टेरिस पर चला जाता हूँ और बारिश में भीगने का आनंद लेता हूँ। और गीत भी इन्होंने बताए हैं, रामा रामा गजब होई गवा। और एक और श्रोता ने लिखा है कि हमारे यहाँ सावन का विशेष महत्व है, जिसमें भोले बाबा का जलाभिषेक पूजन किया जाता है, जिसमें हरे श्रृंगार अर्पित किए जाते हैं। सावन में हर सोमवार को विशेष व्रत रखते हैं, हमारे घर में सभी लोग इस व्रत को रखते हैं। और इसके अतिरिक्त सावन में मेहंदी रचाने का भी विशेष महत्व है, झूले भी डाले जाते हैं और महिलाएं और कन्याएं विशेषकर हरे परिधान श्रृंगार का प्रयोग करती हैं। तो आपने किसके साथ झूला झूला, ये आप बताइए हमें। और हमने एक और सवाल आपसे पूछा, लैंड ऑफ बटरफ्लाइज और ऐसा प्रदेश जिसके नाम के साथ मेघ जुड़ा हुआ है। और एक श्रोता ने लिखा है बया पक्षी घोंसले बनाती है और घोंसले को घर में रखना, उस घोंसले को घर में रखना शुभ माना जाता है। ये कलाकार जोड़ी आपको बतानी है श्रोताओं।

जैसे को तैसा फिल्म की किताब में सुना रीना रॉय और जितेंद्र पर फिल्माया गया, और इनकी जोड़ी का कौन सी ऐसी फिल्म है श्रोताओं जो आपको अच्छी लगती है, क्योंकि इस जोड़ी की और भी बहुत अच्छी अच्छी फिल्में हैं, तो अगर आप बताना चाहें तो बता सकते हैं। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि लैंड ऑफ बटरफ्लाइज सिक्किम को कहते हैं। जी हाँ, सिक्किम में श्रोताओं जो जोंगू क्षेत्र है वो लैंड ऑफ बटरफ्लाइज कहलाता है, तितलियों का प्रदेश, क्योंकि यहाँ बड़ी सारी तितलियां हैं। और एक और सवाल हमने आपसे पूछा था कि किस प्रदेश के नाम के साथ मेघ जुड़ा हुआ है, ये आपको बताना है। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि हम तो अभी सावन की रिमझिम बारिश में अपने घर में खिले हुए उन गुड़हल के सफेद फूलों को देख रहे हैं जिन पर ये बूंदें ओस के जैसे चमक रही हैं और उन्हें नीचे की तरफ झुका रही हैं, और हमारा दिल एक गीत गुनगुना रहा है, नैना बरसे रिमझिम रिमझिम। भाई ये तो बड़ा ही मतलब थोड़ा दुखी कर देने वाला गीत है, तो नैना क्यों बरसे, बादल बरसे, ऐसा होना चाहिए। पहले पत्थर पर पीस कर मेहंदी लगाते थे, फिर सूखी मेहंदी को छानकर चाय के पानी में घोल कर रात भर रखते, फिर दूसरे दिन माचिस की तीली से तार बनाकर बारीक डिजाइन बनाते। समय के साथ अब बहुत परिवर्तन आया है, अब बने बनाए कोन मिल जाते हैं, लाओ और लगा लो, सुंदर सुंदर डिजाइन भी आसानी से बन जाती है। जी हाँ, और कई बार छाप कर भी मेहंदी लगाते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ता है कि कहीं कुछ हाथ में इन्फेक्शन ना हो जाए। एक और हमारे श्रोता ने लिखा है कि आजकल मैं अपनी बेटी के घर बर्लिन आई हुई हूँ और यहाँ जो टाइम है थोड़ा पीछे चलता है, और इन्होंने वहाँ के टाइम के बारे में भी लिखा है। एक और हमारे श्रोता ने लिखा है कि सावन तो नहीं बरस रहा पर विविध भारती हमको रोज सावन के गीतों से भिगो रही, अच्छा लगता है। शुक्रिया विविध भारती। जी हाँ, आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे सावन है तो भीगना तो पड़ता ही है। एक और श्रोता ने लिखा है कि पतझड़ सावन बसंत बहार एक बरस के मौसम चार तमाम सारे गीतों को इन्होंने लिखा है, अब इनमें छठे मौसम का इजाफा कर देते हैं, वो मौसम है सुरीले सफर का इंतजार। जी हाँ, वो तो पूरा हुआ। एक और श्रोता लिखती हैं कि सावन की हर बूंद में एक कहानी है, हर पुहार में प्रेम की रवानी है, भीगी धरती कहती चुपके से ये मौसम नहीं किसी के आने की कहानी है।

आरडी बर्मन की तर्ज थी छोटे नवाब फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे, शीला आवाज पर फिल्माया गया। श्रोताओं, बारिश का मौसम जो होता है वो अपने आप में बड़ा सुहावना होता है। अगर किसी एक जगह आपको जाना हो बारिश के मौसम में, तो आप कहाँ जाएंगे और क्या आपको तस्वीरें उतारना बारिश के मौसम का अच्छा लगता है? तो कुछ तस्वीरें तो ज़रूर आपके पास होंगी जो आज भी आपने सहेज कर रखी होंगी, तो ये बातें आप हमसे साझा कर सकते हैं। एक श्रोता लिखती हैं कि सावन का मौसम प्रकृति के सौंदर्य को बढ़ा देता है, चारों ओर हरियाली छा जाती है, रंग बिरंगे फूल, हरे भरे लहलाते खेत, कलकल करती नदियाँ, पहाड़ों से बहते झरने, बादल की गड़गड़ाहट, रिमझिम वर्षा और तमाम बातें इन्होंने लिखी हैं। और वैसे छोटे छोटे जो झरने होते हैं श्रोताओं, वो भी इस समय अपने पूरे शबाब पर होते हैं, तो ये झरने समय के साथ बिल्कुल सूख जाते हैं, यानी बारिश होगी उसके बाद फिर नजर नहीं आते। तो ऐसे प्यारे प्यारे झरने आपकी तरफ हैं क्या, और कौन सी ऐसी जगह है जहां बारिश में आप जाना पसंद करेंगे, ये हमने अभी आपसे पूछा था, आप बता सकते हैं। वैसे अगर ऐसी जगहों की बातें की जाए तो हो सकता है कि आपका खुद का शहर हो, खुद का प्रदेश हो, जो ऐसे सुंदर जो चित्र कह सकते हैं बारिश के मौसम का, वहाँ नज़र आता है। हमारी एक श्रोता ने लिखा है कि हम आपका प्रोग्राम सुनते हुए हम देख रहे हैं कबूतरों को, वो इतने खुश हैं कि साथ नीचे घास पर बैठे हैं, मानो उनकी अपनी कोई महफिल चल रही हो, हमने उन्हें उस तरह पहले कभी नहीं देखा। अरे वो तो उड़ गए बहुत जल्दी। जी हाँ, पंछी होते हैं ये तो उड़ जाते हैं, और गौरैया भी बहुत नहाती है पानी में, आपने देखा है। तो आप गौरैया की जो बातें हैं वो भी ताज़ा कर सकते हैं, गौरैया बड़ी ही सुंदर होती है श्रोताओं। एक और हमारी श्रोता ने लिखा है कि पूर्णिमा की सुनहरी रात और चंचल पुरवैया, हवा के झोंके गगन में तैरते उमड़ते घुमड़ते मेघ और चपला की चमक, रिमझिम फुहारों के बीच भीगी बलखाती वसुंधरा और मयूर का मनभावन नृत्य,

इस गीत से जो सवाल वाबस्ता है उसका जवाब अभी मुझे तो नजर नहीं आया श्रोताओं। फिलहाल एक श्रोता लिखते हैं कि श्री 420 का गाना प्यार हुआ इकरार हुआ बहुत ही प्रसिद्ध है। जी हाँ, ये तो है बारिश का गीत। और एक और श्रोता लिखते हैं कि मेघालय का जो दुनिया है, मेघालय की मैसंजाम दुनिया सबसे अधिक वर्षा होने वाली जगह के रूप में ये प्रसिद्ध है। जी हाँ, मेघालय जो है वो बड़ा ही प्रसिद्ध जगह है श्रोता। वैसे अगर हम सेवन सिस्टर्स की बात करें, इन जगहों की बात करें सेवन सिस्टर्स की, तो यहाँ बारिश बहुत ज़्यादा होती है। और एक श्रोता ने लिखा है कि सावन की ऋतु कितनी अनोखी, कितनी अलहदा है, इस पर जितना लिखा जाए कम ही लगता है। सावन की ऋतु में प्रकृति अपने पूरे उफान पर पूरा श्रृंगार किए एक आमंत्रण सा देती है। सावन रंगों में सराबोर होने के दिन लेकर आता है धानी चादर में लिपटी, ये धरती नीले आसमान को ओढ़े ऐसे प्रतीत होती है जैसे ऋतुराज हो। सावन की हरियाली संदेश लेकर आती है कि जीवन हरा भरा तभी हो पाता है जो इंसान प्रतीक्षा करना जानते हैं। तो इस सावन आप कहाँ हैं बताएं, क्योंकि कुछ तो हमारी सखियाँ ऐसी हैं जो अपने मायके में होंगी, कुछ होंगी जो अपने ससुराल में होंगी।

हेमा मालिनी पर फिल्म आया गया, ये गीत आप सुन रहे थे नया जमाना फिल्म से। और हमारे श्रोताओं के कमेंट्स, हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि आज पहाड़ से घूम के लौट रहे थे तो हल्की हल्की बारिश हो रही थी और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, अच्छा लग रहा था भीगते भीगते पहाड़ों का मौसम और वहां का नज़ारा। जी हाँ, पहाड़ों का मौसम बड़ा ही अलग होता है बारिशों में। अगर आप ऐसे किसी क्षेत्र में रह रहे हों तो आप लिख सकते हैं कि वहाँ इस समय क्या मौसम है। एक और हमारे श्रोता ने लिखा है कि लिखती हैं कि आज की भीगी भीगी सुरमई ये सफर आज का है, सावन का मेला, मेले में बादल, बादल में बिजुरिया, बूंदों की गागर छलकी रे, कोयल की कजरी तान, पपीहे की पुकार, पिया मिलन की आस जगाए। और इन्होंने बहुत सारे शब्दों को जोड़कर एक पैरोडी सी बनाई हुई है। कलाकार आप पहचान रहे हैं श्रोताओं, और संगीतकार

0: अरुण गोविल के हाथ में जो वाद्य यंत्र होता है श्रोता, वो रावण हत्था है।
1: गजरा लगा के, गजरा सजा के,

भारत भूषण और मीना कुमारी जी के लिए लिखा है हमारे श्रोताओं ने कि उन्हीं पर फिल्माया गया बैजू बावरा फिल्म का गीत था। और एक श्रोता ने लिखा है कि बारिश में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जाना बेहद पसंद है।

हमारे श्रोता ने लिखा है कि हमारे यहाँ तो टिटेरी बहुत आती है, उसके लिए पीने का पानी सकोरे में बहुत रख देते हैं भरकर, और वो नहाती भी है, अभी भी खिड़की के कांच को अपनी चोंच से ठोक रही है, बहुत शोर कर रही है। एक और श्रोता ने लिखा है, तस्वीरें लेना, वीडियो बनाना, वो भी चिड़ियों के फूलों पर गिरते पानी की बूंदों के, अच्छा लगता है। एक और श्रोता ने लिखा है, हम तो मैदानों के उत्तर प्रदेश में रहते हैं जहाँ पहाड़ और झरने बिल्कुल नहीं है, नदियाँ तो बहुत तेरी हैं और इनमें कई जगह बांध बनाकर बिजली पैदा की जाती है, झरनों का लुत्फ इन बांधों पर लिया जा सकता है।

मुमताज और राजेश खन्ना पर फिल्माया गया अपना देश फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि भोपाल से 170 किलोमीटर दूरी पर पंचमढ़ी है, वहाँ मध्य प्रदेश का हिल स्टेशन ये है और वहाँ पर बरसात के मौसम में पहाड़ से बहुत सारे झरने निकलते हैं। ये समय यहाँ पर घूमने का सबसे अच्छा समय होता है। जी हाँ, पंचमढ़ी तो बड़ी सुंदर जगह है। और आप सभी के कमेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया। सुरीला सफर कार्यक्रम में आपके साथ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हुआ।

दोस्तों नमस्कार। अक्सर यही देखा जाता है कि लोग अपनी असुरक्षा, जलन या व्यक्तिगत कुंठा के कारण दूसरों से नफरत करने लगते हैं। हम सभी इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और मानते भी हैं कि नफरत का बोझ ढोने से मानसिक शांति और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों ही खराब होते हैं। फिर भी कभी ना कभी किसी ना किसी को लेकर हमारे मन में नफरत की भावना आ ही जाती है। नफरत को छोड़ देने में ही भलाई है, क्योंकि क्षमा और प्रेम वो भाव हैं जिनसे मन को सुकून मिलता है और जीवन में सकारात्मकता आती है। मन में नफरत या द्वेष की भावना रखना अपने कीमती समय की बर्बादी है। इसीलिए अपने दिमाग को खाली करें और उन चीजों से भरें जो मायने रखती हैं।

दोस्तों, अगर हम नफरत की भावना से खुद को मुक्त करना चाहते हैं तो अपने व्यवहार में भी थोड़े से बदलाव लाने होंगे। क्षमा या माफ करने को अपनाना होगा। जिसने हमें दुख पहुंचाया है उसे माफ करना भी सीखना होगा, क्योंकि यही बदले की भावना से मुक्ति पाने का सबसे अच्छा तरीका है। अगर हम दूसरों के प्रति सहानुभूति रखेंगे और उनके नजरिए से चीजों को समझने की कोशिश करेंगे तो नफरत से बच सकते हैं। दूसरों से तुलना और खुद को दूसरों से कम या ज्यादा आंकने की बजाय अपनी भलाई पर ध्यान देना होगा। सकारात्मक दृष्टिकोण पर ध्यान दें जो हमारे जीवन में खुशी और शांति लाते हैं।

शर्मो हया का पर्दा दुश्वार नहीं है, अजी हल्का सा एक पर्दा है, दीवार नहीं है।

0: चलो माना कि कोई और हमसे नफरत करने लगे, तो उसकी नफरत को कम करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम शांत रहें और कोई भी प्रतिक्रिया ना दें और अपनी ऊर्जा को सकारात्मक चीजों में लगाएं और उनके नकारात्मक व्यवहार को व्यक्तिगत रूप से कभी ना लें। विवाद से नफरत को और हवा मिलती है। कभी यदि कोई गलती हो भी जाए तो क्षमा मांगने में संकोच ना करें। खुद को दूसरों के मुताबिक बदलने की बजाय अपने मूल्यों पर टिके रहें। एक परिपक्व मानसिकता ही सहानुभूतिपूर्ण मानसिकता मानी जाती है। हमारा देश विभिन्नताओं का देश है। यहाँ बहुत सारे धर्म, भाषा, संस्कृति, इन सभी का अपना एक अलग महत्व है। इन विभिन्नताओं को कमजोरी नहीं बल्कि देश की ताकत मानना चाहिए। सभी देशवासियों को आपसी मतभेद और नफरत मिटाकर प्रेम और भाईचारा बढ़ाना आज के समय की सबसे बड़ी मांग है। नफरत या प्रेम, दोनों ही चीजें बचपन से सिखाई जाती हैं। हम भी अपने बच्चों को सभी धर्मों का और सभी इंसानों का सम्मान करना सिखाएं।
1: नफरत

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता का जश्न मनाने के लिए देशभर में हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, औपनिवेशिक काल के कानूनों की जगह लाए गए 3 नए आपराधिक कानूनों का उद्देश्य प्रौद्योगिकी के माध्यम से समयबद्ध न्याय प्रदान करना है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने केरलम के मलप्पुरम में जब्त की गई अवैध विस्फोटकों की बड़ी खेप के मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया। ओडिशा में बारिश से कई नदियों में जलस्तर बढ़ा, फिर से बाढ़ की आशंका। उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में आज मूसलाधार वर्षा की चेतावनी। चीन में तूफान डॉल्फिन के मद्देनजर 1,300 से अधिक उड़ानें रद्द, 3,00,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। और भारत की अश्मिता चालिया ने कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में अपना पहला BWF विश्व टूर खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। हर घर तिरंगा अभियान आज से 17 अगस्त तक चलेगा। गृहमंत्री अमित शाह ने पुदुचेरी से हर घर तिरंगा अभियान यात्रा रवाना की। अभियान का उद्देश्य देशवासियों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है।
1: हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, रथ घर तिरंगा।
2: हर घर तिरंगा अभियान पूरे देश में देशवासियों में देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने, राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने और भारत की सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने के लिए मनाया जा रहा है। यह अभियान हर घर तिरंगा पहल का 5वां वर्ष है। इसकी शुरुआत 2022 में हुई थी और तब से यह देश के सबसे बड़े जन भागीदारी आंदोलनों में से एक बन गया है। इस पहल का उद्देश्य देशवासियों को राष्ट्रीय ध्वज फहराने और देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता तथा भारत की सांस्कृतिक विरासत का उत्सव मनाने

0: करने वाली गतिविधियों में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ होने के कारण इस वर्ष का अभियान विशेष महत्व रखता है। यह अभियान देशभक्ति के एक अनूठे उत्सव में राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गीत को एक साथ लाता है। उत्सव के हिस्से के रूप में पूरे देश में सामूहिक रूप से वंदे मातरम का गायन आयोजित किया जाएगा। समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी श्री विजयपुरम स्थित फ्लैग पॉइंट पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस अवसर पर उन्होंने वीर स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति ने डॉ बीआर आम्बेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान के सभागार में आयोजित राजकीय समारोह वंदे मातरम पर तिरंगा संगीत कार्यक्रम में भी भाग लिया। अपने संबोधन में उपराष्ट्रपति ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के गौरवशाली इतिहास को स्मरण किया। उन्होंने 30 दिसंबर 1943 के उस ऐतिहासिक दिन को भी याद किया जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पोर्ट ब्लेयर में तिरंगा फहराया था।
2: इट इज इंडीड टू प्लेजर टू लॉन्च दिस कैंपेन टुडे ऑन द ऑगस्ट क्रांति दिवस एज वी कमेमोरेट द क्विट इंडिया मूवमेंट ऑफ 1942। मिलियंस ऑफ इंडियंस रिस्पॉन्डेड टू दिस कॉल एंड रोज अगेंस्ट द ब्रिटिश विद द अनवायरिंग रिजॉल्व ऑफ डू ऑर डाई ऑन दिस डे। इट इज देयरफॉर डीपली सिग्निफिकेंट दैट वी लॉन्च द हर घर तिरंगा कैंपेन फ्रॉम द हिस्टोरिक आइलैंड्स ऑन दिस हिस्टोरिक डे।
1: उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन 2 दिवसीय अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की यात्रा पर हैं। इधर दिल्ली में अभियान के हिस्से के रूप में लोकसभा में भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने मालवीय नगर में पंडित मदन मोहन मालवीय के स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की, जिसके बाद पिलांजी गांव से ग्रेटर कैलाश तक तिरंगा यात्रा निकाली गई। संवाददाताओं से बातचीत में सुश्री स्वराज ने कहा कि ये स्वतंत्रता दिवस विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत अपनी स्वाधीनता का 80वां वर्ष मना रहा है।
3: भारत अपना 80th इंडिपेंडेंस डे मना रहा है और भारतीय जनता पार्टी ने आज से एक सप्ताह की मुहिम शुरू करी है जहां पर हम हमारे राष्ट्र के नायक जितने भी हमारे शहीद स्मारक हैं वहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लोकल RWAs MWAs और स्थानीय निवासियों के साथ जाकर हमारे स्वच्छता वॉरियर्स के साथ यहां पर आकर स्वच्छता का अभियान भी शुरू करेंगे और पुष्पांजलि का भी कार्यक्रम करेंगे।
1: केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में भी आज से हर घर तिरंगा अभियान 2026 के तहत सभी 20 जिलों में सप्ताह भर के कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि मोदी सरकार द्वारा औपनिवेशिक काल के कानूनों की जगह लाए गए 3 नए आपराधिक कानूनों का उद्देश्य प्रौद्योगिकी आधारित और समयबद्ध प्रणाली के माध्यम से नागरिकों को समयबद्ध न्याय सुनिश्चित करना है। गृह मंत्री ने गोरीमेडू स्थित पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय के मैदान में पुदुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्रदान करने के समारोह में ये बात कही।
4: नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने अंग्रेजों के बनाई हुई दंड संहिता को बदलकर 3 भारतीय न्याय संहिताओं को लागू किया है। ये न्याय संहिताओं की सोच दंड आधारित नहीं है। ये न्याय संहिताओं की सोच नागरिकों को न्याय दिलाने के लिए केंद्रित तकनीक सक्षम और समयबद्ध बनाने की है। ये तीनों न्याय संहिताएं टेक्नोलॉजी टाइमलाइन और ट्रस्ट ये 3 पिलर पर खड़ी की गई है।
1: श्री अमित शाह ने पुदुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्राप्त करने पर बधाई दी।
4: राष्ट्रपति ध्वज किसी भी डिसिप्लिन फोर्स के लिए उसके जीवन काल का सबसे गौरवपूर्ण क्षण होता है। पुदुचेरी पुलिस भले ही संख्या में 5,000 से कम हो मगर आप इस देश की आध्यात्मिक धरोहर को संभाले हुए पुदुचेरी की रक्षा आंतरिक सुरक्षा और पुदुचेरी के सम्मान की रक्षा करने का काम करते हैं।
1: राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित होने की इस उपलब्धि के साथ ही पुदुचेरी देश का 18वां राज्य केंद्र शासित प्रदेश बन गया है जिसे पुलिस बल को दिए जाने वाले इस सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को यह स्पष्ट संदेश दिया है कि भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और

0: देश की महिलाओं के माथे के सिंदूर की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। रक्षा मंत्री ने ये बात नई दिल्ली के बेस अस्पताल में सिंदूर महारक्तदान यात्रा के शिविर उद्घाटन के अवसर पर कही। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने केरलम के मलप्पुरम में जब्त की गई अवैध विस्फोटकों की बड़ी खेप के मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। एजेंसी के अनुसार आरोपी को कल मलप्पुरम जिले के मंजेरी से गिरफ्तार किया गया। एजेंसी ने बताया कि आरोपी इस मामले का मुख्य साजिशकर्ता है। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर गतिरोध जारी है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि रांची के स्टेट गेस्ट हाउस में सरकार और आंदोलनकारी छात्र प्रतिनिधियों के बीच तीसरे दौर की वार्ता जारी है।
1: सरकार की 4 सदस्यीय मंत्री स्तरीय टीम छात्रों की मांगों पर चर्चा कर रही है। इधर जेकेएलएम विधायक जयराम महतो ने छात्रों के समर्थन में एक दिन की भूख हड़ताल शुरू की है। उन्होंने कथित परीक्षा अनियमितताओं की सीबीआई जांच और मुख्यमंत्री से छात्रों के सीधे संवाद की मांग की है। वहीं राज्य के सांसद और केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंचकर आंदोलनकारी छात्रों से मुलाकात की और उनकी मांगों का समर्थन किया। उन्होंने सीबीआई और ईडी जांच, जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाएं रद्द करने तथा पुलिस टेबल शारीरिक परीक्षा के दौरान जान गंवाने वाले 19 युवाओं के परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा देने की मांग की। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: केंद्र सरकार ने 4 उच्च न्यायालयों में 30 नए न्यायाधीशों की नियुक्तियों की अधिसूचना जारी की है। इनमें मद्रास, कलकत्ता, मध्य प्रदेश और कर्नाटक उच्च न्यायालय शामिल हैं। नवनियुक्त न्यायाधीश जल्द ही शपथ लेकर कार्यभार संभालेंगे। इन नियुक्तियों से चारों उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की कमी दूर करने और लंबित मामलों के निपटारे में तेजी आने की उम्मीद है। सरकार ने पंजाब की मंडियों में पड़े 18 लाख मीट्रिक टन पुराने अनाज के भंडार को 20 सितंबर तक उठाने पर सहमति व्यक्त की है, ताकि राज्य में धान की बम्पर फसल की उम्मीद के चलते भंडारण की जगह खाली हो सके। पंजाब से इस वर्ष केंद्रीय पूल में 170 लाख मीट्रिक टन अच्छी गुणवत्ता वाले चावल की आपूर्ति होने की उम्मीद है। पंजाब में आज तड़के सरहिंद जीटी रोड पर एक कार की टक्कर में 3 कांवड़ियों की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। वे उत्तराखंड के गंगोत्री से पवित्र जल लेकर पंजाब के फरीदकोट जिले के कोटकापुरा लौट रहे थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मौके से फरार चालक की तलाश जारी है। जम्मू कश्मीर में रेल संपर्क को मजबूत करने के लिए कई बड़ी रेलवे परियोजनाओं का काम प्रगति पर है। जम्मू रियासी को पुंछ से जोड़ने वाली नई रेल लाइन सहित प्रमुख परियोजनाओं के लिए अंतिम स्थल सर्वेक्षण को मंजूरी दे दी गई है। 190 किलोमीटर लंबी जम्मू रियासी पुंछ रेल लाइन की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए फील्ड सर्वे शुरू कर दिया गया है। जम्मू और श्री माता वैष्णो देवी कटरा के बीच 78 किलोमीटर लंबी अतिरिक्त रेल लाइन के लिए भी सर्वे को मंजूरी दी गई है। इस बीच जालंधर कैंट जम्मू तवी के बीच 216 किलोमीटर लंबी तीसरी रेल लाइन की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट भी तैयार कर ली गई है। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण एनबीए ने 33 राज्य जैव विविधता बोर्डों, केंद्र शासित प्रदेशों की जैव विविधता परिषदों और राष्ट्रीय संस्थानों को अभिगमन तथा लाभ साझाकरण के तहत 3 करोड़ रुपए से अधिक की राशि वितरित की है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बताया कि ये राशि भारत के कृषि और पशुपालन क्षेत्र की जैव विविधता संरक्षण के लिए भी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। चीन में तूफान डॉल्फिन के मद्देनजर शंघाई के दोनों हवाई अड्डों पर 1,300 से अधिक उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। आसपास के क्षेत्रों के 3 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। एक रिपोर्ट।
2: तूफान के बाहरी हिस्से ने कल राजधानी ताइपे सहित उत्तरी ताइवान को भी प्रभावित किया और उन क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश हुई। ताइवान की कुछ एयरलाइंस ने भी चीन जाने वाली अपनी उड़ानें रद्द कर दी हैं। तूफान की अधिकतम निरंतर हवा की गति आज सवेरे तक लगभग 162 किलोमीटर प्रति घंटा आंकी गई थी। इससे तेज बारिश हो रही है, जिससे भीषण बाढ़ और भूस्खलन का खतरा मंडरा रहा है और इसके चाचियांग प्रांत और पड़ोसी फुचियान प्रांत के उत्तरी हिस्सों को प्रभावित करने की आशंका है। अधिकारियों ने चाचियांग में भीषण भूस्खलन के खतरे की चेतावनी जारी कर दी है। शंघाई के हांगचाओ और पुडोंग हवाई अड्डों ने भी लगभग 60% अपेक्षित उड़ानों को रद्द कर दिया है। समाचार कक्ष से मुनीष शर्मा।
0: जापान में आज नागासाकी पर अमेरिका के परमाणु बम हमले की 81वीं बरसी है।

0: इस अवसर पर प्रधानमंत्री सानाई ताकाइची ने परमाणु हथियारों से मुक्त दुनिया के लक्ष्य को हासिल करने के लिए यथार्थवादी और व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाने की अपनी नीति दोहराई। ओडिशा में बारिश से कई इलाकों में नदियों का जलस्तर दोबारा बढ़ने से बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रशासन राज्य भर में निचले इलाकों और नदियों के जलस्तर पर लगातार नजर रख रहा है।
1: उड़ीसा में लगातार हो रही बारिश से बाढ़ का खतरा फिर बढ़ गया है और कई बाढ़ प्रभावित इलाकों में और ज्यादा पानी भरने की आशंका है। बालेश्वर के बस्ता इलाके में हालात फिर गंभीर हो गए हैं क्योंकि मयूरभंज के ऊपरी इलाकों में भारी बारिश के बाद जलका नदी का जलस्तर बढ़ गया है। राजगोविंदपुर, सुलियापदा, मोरड़ा और चित्रड़ा में बारिश से जलका नदी उफान पर है, जिससे निचले इलाकों में पानी भर गया है और सैकड़ों हेक्टर खेती की जमीन जलमग्न हो गई है। भद्रक में बैतरणी और सालंदी नदियों के बढ़ते जलस्तर ने चिंता बढ़ा दी है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: इस बीच मौसम विभाग ने उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश, असम और मेघालय में भी कल तक तेज बारिश की संभावना है। आज शाम राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हल्की बारिश हो सकती है। भारत की अश्मिता चालिहा ने कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब जीतकर अपना पहला BWF विश्व टूर खिताब हासिल किया है। फाइनल में अश्मिता ने चीन की हान चेन शी को हराया। अमेरिका में आयोजित विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में भारत के पदकों की संख्या बढ़कर 3 हो गई है। भारत के बसंत कुमार मेघवाल ने हाई जंप में रजत पदक जीता जबकि शाहनवाज खान ने लॉन्ग जंप में कांस्य पदक अपने नाम किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता का जश्न मनाने के लिए देशभर में हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, औपनिवेशिक काल के कानूनों की जगह लाए गए 3 नए आपराधिक कानूनों का उद्देश्य प्रौद्योगिकी के माध्यम से समयबद्ध न्याय प्रदान करना है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने केरलम के मलप्पुरम में जब्त की गई अवैध विस्फोटकों की बड़ी खेप के मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया। ओडिशा में बारिश से कई नदियों में जलस्तर बढ़ा, फिर से बाढ़ की आशंका। उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में आज मूसलाधार वर्षा की चेतावनी। और अश्मिता चालिहा ने कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में अपना पहला BWF विश्व टूर खिताब जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरी।

रवि ने इस गीत को सुरबद्ध किया। सहल लुधियानवी की रचना थी, महेंद्र कपूर की आवाज में। हमराज फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। हरे कांच की चूड़ियां इस फिल्म का गीत है। आशा भोसले की आवाज, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन की तर्ज।

पालकी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, मोहम्मद रफी का गाया। शकील बदायूनी के बोल थे, नौशाद का संगीत था। और इस गीत से पहले सगाई फिल्म का गीत हमने आपको सुनवाया था, महेंद्र कपूर की आवाज थी, राजेंद्र कृष्ण के बोल थे, रफी का संगीत था।

0: आ रही हैं
1: महबूबा महबूबा महबूबा
0: विविध भारती पर
1: जरा
0: 12 अगस्त दिन में और रात में 11 बजे।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं तृप्ति कुमारी। राज्यपाल संतोष गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज संयुक्त रूप से रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित झारखंड आदिवासी महोत्सव का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सभी राज्यवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उद्घाटन के बाद राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने आयोजन स्थल पर लगे स्टॉलों का निरीक्षण किया। इधर बोकारो में भी विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर शिबू सोरेन स्मृति भवन में आयोजित आदिवासी महोत्सव का शुभारंभ पारंपरिक अंदाज में हुआ। इस अवसर पर मंत्री योगेंद्र प्रसाद, विधायक उमाकांत रजक, विधायक श्वेता सिंह और उपायुक्त अजय नाथ झा ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर महोत्सव का उद्घाटन किया। राज्य में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों और राज्य सरकार के बीच आज नए दौर की बातचीत हुई है। बातचीत का ये छठा दौर रांची स्थित राज्य अतिथि गृह में हुआ। इस बीच छात्रों का प्रदर्शन रविवार को सोलहवें दिन भी जारी है और छह प्रदर्शनकारी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हैं। प्रदर्शनकारी कथित अनियमितताओं की स्वतंत्र जांच कराए जाने की भी मांग कर रहे हैं। उनकी मांग है कि जांच या तो केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई से या राज्य के बाहर के सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय न्यायाधीशों की समिति से कराई जाए। रक्षा राज्य मंत्री और रांची के सांसद संजय सेठ ने आरोप लगाया है कि जेपीएससी और जेएसएससी में हुए नियुक्ति घोटाले के मामले में राज्य सरकार बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। आज भाजपा की प्रदेश अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद आदित्य साहू और विधानसभा में मुख्य सचेतक नवीन जायसवाल के साथ जयपाल सिंह स्टेडियम पहुंचे श्री सेठ ने आंदोलनरत युवाओं से मुलाकात की और इनके आंदोलन को अपना समर्थन दिया। मंत्री ने राज्य सरकार से इन विद्यार्थियों को जल्द से जल्द न्याय और अधिकार देने का आग्रह किया है।
1: ये झारखंड के युवा है, उलगुलान कर चुके हैं। आपको सीबीआई जांच कराना ही होगा, ईडी की जांच कराना ही होगा और लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर सर्वोच्च न्यायालय, देश इन युवाओं को साथ खड़ा है। झारखंड के बच्चों ने देश और दुनिया को दिखा दिया कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और लोकतंत्र का जो अधिकार होता है कैसे अपनी आवाज को बुलंद करना।
0: स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने राज्य के सभी सरकारी और निजी अस्पतालों को आंदोलन के दौरान बीमार पड़ने या अस्पताल में भर्ती होने वाले विद्यार्थियों के बेहतर और निशुल्क इलाज के निर्देश दिए हैं। मंत्री ने कहा है कि बीमार पड़ने वाले छात्रों के इलाज से संबंधित आवश्यक खर्च का वहन राज्य सरकार करेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की पूरी कोशिश है कि बातचीत और संवेदनशीलता के साथ इस मुद्दे का सकारात्मक समाधान निकाला जाए।

0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की जिला कमेटी ने आज जमशेदपुर में तिरंगा यात्रा निकाली। आम बागान मैदान से शुरू हुई ये यात्रा साकची गुलचक्कर होते हुए जेएनएसी गुलचक्कर पहुंची। यात्रा में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो और विधायक पूर्णिमा साहू समेत बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता शामिल हुए। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि तिरंगा महज तीन रंगों का ध्वज नहीं बल्कि देश की आन बान और शान है। अमेरिका में आयोजित विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में भारत के पदकों की संख्या बढ़कर तीन हो गई है। भारत के बसंत कुमार मेघवाल ने हाई जंप में रजत पदक जीता जबकि शाहनवाज खान ने लॉन्ग जंप में कांस्य पदक अपने नाम किया। राजकीय श्रावणी मेला की कल दूसरी सोमवारी को देखते हुए देवघर जिला प्रशासन पूरी तरह चौकस बना हुआ है। जिले के उपायुक्त सौरभ कुमार भुवानिया और पुलिस अधीक्षक प्रवीण पुष्कर लगातार मेला क्षेत्र की निगरानी कर रहे हैं। इधर उपायुक्त ने सभी अधिकारियों को सीसीटीवी, लाइव फीड और कम्युनिकेशन सिस्टम को 24 घंटे चालू रखने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
1: जो तैयारियां अभी तक की हैं उसको हम लोगों ने रोबस्ट रखा है और साथ में जहां जहां मैक्सिमम भीड़ होने की संभावना है वहां हम लोगों ने एडिशनल फोर्स डिप्लॉयमेंट, मजिस्ट्रेट डिप्लॉयमेंट और बहुत ही बढ़िया से टीम्स की काउंसलिंग कर ली है और बहुत क्लियरली उनको एक एसओपी बता दिया गया है कि किस तरह से इंस्ट्रक्शन मिलेंगे और कैसे उनका इमीडिएट रिस्पॉन्स टाइम होना चाहिए।
0: इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

विविध भारती से लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम मन चाहे गीत। सभी श्रोताओं का इस प्रोग्राम में हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बादलों का दिल लिए, फूलों की मुस्कान लिए आ चुका है आपके रेडियो सेट पर आप ही के पसंदीदा गीतों का कार्यक्रम मन चाहे गीत। चलिए देखते हैं श्रोताओं आज कौन से गीत हैं शामिल और किन श्रोताओं की पसंद है शामिल आज के इस प्रोग्राम में। सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार।

गीत और संगीत थे रविंद्र जैन के, किशोर कुमार, लता मंगेशकर के युगल स्वरों में आप सुन रहे थे फकीरा फिल्म का ये गीत। सुनना चाहा आप सभी ने धमतरी राजम से रमेश लाल धीवर, यदुवंश धीवर, कुणाल ममता और मुन्नी धीवर ने इस गीत को सुनना चाहा। रियासत हुसैन सिद्दीकी, नजमा रियाज, शमरीन मोहम्मद रेहान, माहिरा नूर, ये हमारे श्रोता हैं जसपुर उत्तराखंड के। और पालदा नाका इंदौर से इसी गीत को सुनना चाहा हसीना बी मंसूरी, मोहम्मद रफी मंसूरी और बबलू मंसूरी ने इसी गीत की फरमाइश की। कुंडलिक मोरे, पांडुरंग मोरे, अश्विनी वैष्णवी ने हिंगोली वारंगा से और मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से, अभिजीत गवाड़कर, श्रीमती सरिता गवाड़कर, प्रिंस और बदलापुर मुंबई के हमारे श्रोता हैं सिद्धांत गवाड़कर, प्रणीता, अर्जुन गवाड़कर और बहादुरा नाका।

कपूर के ये श्रोता हैं वैशाली शैलेश, सुमित और कुमार ध्वनि। और इसी गीत को सुनना चाह जफर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली, जुनैद अब्बासी, ये हमारे श्रोता हैं दौलत बेग, दौलताबाग, मुरादाबाद से।

रोटी कपड़ा और मकान इस फिल्म का गीत आपने सुना। लता मंगेशकर, मुकेश और साथियों की आवाजें थी। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की बनाई धुन पर ये गीत था और लिखा संतोष आनंद ने। गीत की फरमाइश की भुज कच्छ गुजरात से विपिन भाई देविका और इनके परिवार के सभी सदस्य, और इस गीत को सुनना चाहा छत्तीसगढ़ बेमेतरा से हमारे श्रोता हैं भरतलाल सिन्हा, लव कुमार सिन्हा और लकी सिन्हा। इसी गीत के लिए हमें पत्र लिखे ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम और मेहराज जहानी। इन्होंने लिखा है आजाद नगर लक्सर से, ये हरिद्वार से ये पत्र आया है। और हमारे जो श्रोता हैं ये हैं कालेगांव जाफराबाद के सुधाकर, प्रशांत, सचिन, सर्वद, प्रथमेश प्रणाली और कल्पना ने इस गीत को सुनना चाहा। इसी गीत के लिए हमें पत्र लिखे मानिक सिंह बैसे, कावेरी विनीत बैसे, लल्ली लेखमणि बैसे। इन्होंने लिखा है शंकर नगर दुर्ग से। और ये हमारे श्रोता हैं शुभांगी अनिल वागबेकर, ये हैं ग्राम बालिंगा करवीर कोल्हापुर महाराष्ट्र के श्रोता। विविध भारती से आप सुन रहे हैं अपने ही पसंदीदा गीतों का कार्यक्रम मन चाहे गीत।

लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की बनाई धुन पर साहिर लुधियानवी की ये रचना आपने सुनी लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की गई इज्जत फिल्म का ये गीत था। बड़ा बाजार उदयपुर राजस्थान से गोपाल तंबोली, कांता तिलक, किरण सक्षम और लावण्या तंबोली की ये फरमाइश थी। हिच्छा महासमुंद से अदालत दास वैष्णव, मानसी शांति, मानस और शांति, ऋचा गायत्री वैष्णव की ये फरमाइश थी। और ये पत्र है छत्तीसगढ़ के इस जगह का, नाभा जिला पटियाला से पंजाब सोमदत्त, केरव और ज्योति रानी और गुरमंत की ये फरमाइश थी। और जोधपुर से गिरधारी लाल विश्वकर्मा ने इस गीत को सुनना चाहा था। नचगांव जिला वर्धा महाराष्ट्र से आरती भगत, वैशाली भगत, पूर्वी भगत, लता, प्रदीप, विशाल, रामचंद्र भगत और चंद्रकांत भगत और इनके परिवार के सभी सदस्य इस गीत को सुनना चाहते थे।

भुवन बख्शी का लिखा अनजाना फिल्म का ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर, आवाजें थी सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफी की, ये आवाजें थी अनजाना फिल्म का गीत आपने सुना, आनंद बख्शी का लिखा। पुराना तालाब डुमराओं से वलीउल्लाह अंसारी, आसमान नाज वसीम अकरम की ये फरमाइश थी। और इस गीत को सुनना चाहा, इसी गीत को बीकानेर राजस्थान से हुसैन भिश्ती, सुल्ताना भिश्ती, असलम और विनोद, इस गीत के लिए हमें पत्र लिखे। इस्लामपुर जिला बुल्ढाना, सहदेव दामोदर, शशिकला कुमारी, साधना सुमेद कुमार दामोदर की ये फरमाइश थी। चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, विमला शेफाली, मास्टर डेविस और शेफी की ये फरमाइश है। और टीवी टावर नागपुर से डूंगर दिवे और दीक्षा रमाताई, सीमाताई और राहुल की ये फरमाइश है। और इसी गीत के लिए लेक सिटी उदयपुर से पत्र आया है। प्रकाश चंद्र, इंदिरा देवी, शैलेंद्र बाबू, सुरुचि, नेहा और इनके परिवार के सभी सदस्यों की ये फरमाइश है। और श्रोताओं, इस गीत के पहले हमने आपको इज्जत फिल्म का गीत सुनवाया था। चंद्रेश गौहर, वंदना गौहर, मयंक गौहर और तन्वी गौहर की भी फरमाइश थी।

आप ये गीत सुन रहे हैं श्रोताओं, कभी कभी फिल्म से लता मंगेशकर, किशोर कुमार की आवाज़ें हैं, साहिल ध्यानवी के बोल खयाम की तर्जी है। और इस गीत के लिए फरमाइश भेजी मछली गोदाम कौदीमुड़ा रायगढ़ से भाई पुरुषोत्तम सिंह, उषा सिंह, ऋषभ, प्रियंका, पूजा सिंह, लीलू और रीतू की फरमाइश है। ये बाबूराम आनंद, बीना खुशी, नंदग्राम, गाजियाबाद से इन्होंने पत्र भेजा है। पी बी कुलथे, हनुमंत कुलथे, समर्थ कुलथे, इनकी फरमाइश आई है बीड़ शहर से।

और कभी कभी फिल्म के इस गीत के लिए जिसे गाया लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने, जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, इनकी फरमाइश आई हनुमान जंक्शन राजस्थान के। ये हमारे श्रोता हैं बागपत उत्तर प्रदेश से, संजय ढींगिया, नमन ढींगिया, अपार ढींगिया, और ये हमारे श्रोता हैं मालेगांव से अरविंद, सुनीता, रोहित और निखिल सारकर, ये हमारे श्रोता हैं। और चौक रोड यानी गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव, बलविंदर, जितेंद्र और मीका विरक की फरमाइश हमने आज शामिल की। आपके पत्रों का श्रोता रहता है हमें इंतज़ार। मनचाहे गीत कार्यक्रम का यही था आखिरी गीत और हमें रहेगा आपके पत्रों का इंतज़ार। मनचाहे गीत कार्यक्रम अब संपन्न होता है, दीजिए इजाज़त संगीता श्रीवास्तव को, नमस्कार। और जरूर लिखिए पत्र अपने पसंदीदा गीत मनचाहे गीत कार्यक्रम के लिए। नमस्कार।

0: नाट्य तरंग में कल हमने आपको सुनवाया था नाटक किसी एक फूल का नाम लो का पहला भाग। मूल गुजराती लेखक मधुराय, हिंदी रूपांतरण ज्योति व्यास, संपादन चिरंजीत, निर्देशक सुशील बनर्जी। आज सुनिए दूसरा भाग किसी एक फूल का नाम लो।
1: नहीं, आप सब लोग को छिपा रहे हैं। अदालत फिर आपसे पूछती है, शेखर खोसला को आप जानते हैं? शेखर खोसला को आप जानते हैं? शेखर खोसला को आप जानते हैं?
2: शेखर खोसला के बारे में आप क्या जानते हैं? शेखर खोसला के बारे में आप क्या जानते हैं? शेखर खोसला के बारे में आप क्या जानते हैं? शेखर खोसला के बारे में आप क्या जानते हैं?
3: जज की आवाज,
4: मुकदमा खत्म हुआ। कामनी को उम्र कैद की सजा हो गई, लेकिन अदालत की ये आवाज मेरा पीछा नहीं छोड़ रही, मेरा पीछा नहीं छोड़ रही।
5: प्रीतम सोनी,
4: कौन?
5: मुझे नहीं पहचानते? प्रीतम, अपने अंतःकरण की आवाज को भी नहीं पहचानते? उस अदालत में तुमने झूठ बोला। स्वाति, पाठक, सुंदर और केशव सबके साथ मिलकर तुमने अदालत में कहा था कि तुम शेखर खोसला के बारे में कुछ नहीं जानते।
4: नहीं,
5: लेकिन क्या ये सच है?
4: कामनी को बचाने के लिए औरों की तरह मुझसे जो कुछ बनपड़ा किया, सच को छिपाया।
5: क्या अब अपनी अदालत, अपने अंतःकरण की अदालत में भी वो सब छिपाओगे? झूठ छिपाओगे?
4: नहीं,
5: बोलो।
4: नहीं, अब सच सच कहना होगा। मैं जानता हूं कि कामनी ने जानबूझकर, सोच समझकर शेखर खोसला का खून किया।

0: शेखर खोसला उसे ब्लैकमेल करना चाहता था, ब्लैकमेल करना चाहता था।
1: वाह, वो तुम्हें कैसे ब्लैकमेल कर सकता है? तुम्हारे पास पैसे कहाँ है कामनी?
2: प्रीतम भाई, मेरे पास पैसे ना हो लेकिन जो है वही मांगता है वो।
1: क्या मतलब?
2: मतलब मेरा रूप, मेरा शरीर, मैं आपको कैसे समझाऊं?
1: ये बात और कोई भी जानता है?
2: नहीं।
1: पाठक भी नहीं?
2: नहीं, पाठक भी नहीं। सबसे ज्यादा डर तो मुझे पाठक का ही है। ये बात जानते ही पाठक समझ जाएगा कि मैं उससे डरती हूँ, उसे खो देने के लिए तैयार नहीं। तब क्या वो मुझे अपनी बांदी न समझेगा, मेरा मनमाना इस्तेमाल नहीं करेगा? शेखर खोसला की तरह वो मुझे ब्लैकमेल नहीं करेगा?
1: तुम्हारी बात सही है कामनी, प्रेमी कमजोरी जानकर और भी बेरहम हो जाता है। स्वाति मेरी कमजोरी जानती है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता उसका। और सुंदर का कड़वा प्रसंग छेड़ने की मुझमें हिम्मत नहीं है, और वो जानती है कि मैं उसे प्यार करता हूं, मैं उदारता का ढोंग रचता हूं। पर रात दिन क्या बीतती है मुझ पर वो मैं ही जानता हूं। कई बार सोचता हूं नाटक ही नाटक में पिस्तौल के अंदर असली गोली भरकर आत्महत्या कर लूं, या कहीं चला जाऊं। पर मुझे डर है स्वाति और सुंदर मुझ पर हंसेंगे, हंसेंगे। और इस तरह अनजाने ही मैंने यह ख्याल कामनी के दिमाग में डाला, पिस्तौल में असली गोली भरकर आत्महत्या करने की। उसने आत्महत्या न करके खून किया, और जिंदगी भर की कैद पाई। उस घटना के लिए मैं अपने आप को अपराधी मानता हूं। भले ही अदालत में कोई बात नहीं खुली, आखिर तक बिल्कुल चुप रही। शेखर खोसला का राज अभी तक राज ही है, पर मैं अपने आप को उसकी आत्महत्या के लिए जिम्मेदार मानता हूं, जिम्मेदार मानता हूं, जिम्मेदार मानता हूं।
3: ओ, ये कौन आमर आज समय कौन है?
4: भैया मैं हूँ, मैं यानी केशव ठाकर।
3: क्या है?
4: गुड इवनिंग यानी नमस्कार। आपने मुझे बुलाया था ना?
3: ओह हाँ।
4: नमस्कार कामनी जी।
2: नमस्कार, कैसे हैं केशव जी?
4: अजी मजे में हूँ। सुंदर भाई ने कहा था एक नाटक चाहिए, सोचा दे आऊं।
3: तुम जरा जल्दी आ गए।
4: मैं पहले पैदल आ रहा था, फिर सोचा बस में चलूं। ये रही नाटक की काफी था। ठीक है तो मैं जाऊं।
2: फिक्र कीजिए, जल्दी भी क्या है?
4: क्यों, जल्दी होगी तभी बस में आए हैं। नहीं नहीं, मुझे कोई जल्दी नहीं। हाँ हाँ, मैं तो नाटक सुनाना चाहता था।
2: बैठिए बैठिए, क्या जल्दी है?
3: हम कुछ जरूरी बात कर रहे थे।
4: जरूरी बात? अति सुंदर, अति सुंदर। हाँ हाँ कहिए, मैं कुछ सलाह दे सकता हूँ तो
3: हमारी निजी बातें थी।
4: निजी बात? ओ हाँ, समझा। आप लोग शायद, मेरा मतलब है शेखर खोसला के बारे में बात कर रहे थे। वो बात ये थी कि मैं बाहर ही सोच में खड़ा था कि दरवाजा खोलूं या नहीं, और तभी आपकी बातें सुनाई पड़ी जी।
3: छिप छिप कर बातें सुनते हो बदतमीज।
2: क्या हुआ केशव जी?
4: जी
2: आप नाटक पढ़िए ना, देखक के मुंह से सुनने में कुछ और ही मजा है।
4: जी जी, बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ तो सुनाता हूँ, लेकिन सुनिए।

0: आप लोग शेखर खोसला को जानते हैं
1: क्या? तुम जानते हो?
0: जरूर जरूर, बहुत अच्छी तरीके से। अरे कुछ ही दिन पहले वो अफ्रीका से आया है।
2: ओ, वो शेखर खोसला? आपके शेखर खोसला कोई और ही होंगे।
0: अजी तो आप किस खोसला की बातें कर रहे थे?
2: होगा कोई, छोड़िए नाटक पढ़िए ना।
0: हाँ तो वो नाटक का नाम है रात की रानी।
2: वाह कैसा खूबसूरत नाम है, रात रानी। आगे
0: आगे आगे उसमें पात्र हैं, एक लेखक और
1: आत्मकथा लिख लाए हो?
0: नहीं नहीं, आत्मकथा नहीं लिख लाया। हाँ वैसे देखा जाए तो आत्मकथा ही है।
1: ये क्या झमेला है?
0: हाँ वो मैं ये कह रहा था कि मैं शेखर खोसला नाम के आदमी को जानता हूँ।
1: क्या कहा?
0: आपने पूछा था ना कि मैं शेखर खोसला नाम के आदमी को जानता हूँ या नहीं।
1: तो तुम जानते हो?
2: जानते होंगे, इसमें क्या खास बात है? एक ही नाम के बहुत से लोग हो सकते हैं, इसमें क्या?
0: नहीं नहीं, शेखर खोसला को तो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। अरे हमने अपने बुरे और अच्छे दिन साथ साथ बिताए थे। हाँ सालों गुजर गए, 5-6 साल पहले हम बंबई की एक कोठरी में साथ साथ रहते थे। अरे वो बेकार था और मैं भी। फिर वो अफ्रीका चला गया, वहां से बहुत सा धन कमाकर जब लौटा और अरे छोड़िए भी, किस पछले में मैं पड़ गया। हाँ अजी वो अब मैं नाटक पढ़ूं?
2: हाँ हाँ पढ़िए ना।
1: नहीं पहले शेखर खोसला के बारे में सब कुछ बताओ।
0: शेखर खोसला? हाँ शेखर खोसला बड़ा होशियार आदमी था, हाल ही में अखबार में नाम भी छपा था उसका और फोटो के साथ।
1: अच्छा?
0: हाँ अरे अपनी जात के किसी समारोह में मुख्य अतिथि था वो।
1: उम्र क्या है?
2: सुंदर तुम बेकार परेशान हो रहे हो, केशव जी किसी दूसरे शेखर खोसला की बात कर रहे हैं।
0: मुझसे यही कोई 2 साल बड़ा होगा।
1: मतलब ये कि शेखर खोसला 30-32 का है, ठीक?
0: और वो कहता था अरे लड़कियां उस पर जान देती हैं जान।
2: और क्या?
0: और मैं सोचता था कि कामनी देसाई का मतलब ये है कि आपका रूप ऐसा है कि
1: क्या
0: कि शेखर इन पर जान दे।
1: शेखर खोसला का रंग कैसा है?
0: जी गोरा।
1: रंग गोरा है, आंखों में भूरापन, काले बाल और चौड़ा माथा। वो आदमी कैसा है?
0: अजी बहुत चालाक। उसी पर तो ये नाटक लिखा है मैंने। हाँ
1: देखो केशव, मुझसे बाद में मिलना, एक जासूसी कहानी बताऊंगा।
0: अरे लेकिन भैया ये नाटक पढ़कर तो देखिए।
1: कह दिया ये नहीं चलेगा, नया नाटक तुम्हें सामने बिठा कर लिखवाना पड़ेगा।
0: अच्छी बात है।
1: और इस तरह अपने पास बैठाकर हमने उस बौड़म से नाटक लिखवाया। बाद में कामनी ने माना कि शेखर खोसला ने उसके साथ बलात्कार किया था। कुछ दिनों वो उसके प्रेम में पागल रही और उसने शेखर को बेशुमार पत्र भी लिखे थे। अफ्रीका से लौटने पर शेखर ने कामनी को कीर्ति वैभव के शिखर पर देखा तो उसे अपने वश में रहने के लिए पुरानी बात जाहिर करने की धमकी दी। कामनी ने पाठक के दर से शेखर के सारे पत्र जला दिए। नाटक में पिस्तौल वाला प्रसंग मैंने ही रखवाया था, पता नहीं कैसे कामनी ने उसमें असली गोलियां डाली और शेखर खोसला का खून कर दिया।
3: शेखर खोसला को आप जानती हैं? स्वाति सोनी बताइए, शेखर खोसला के बारे में आप कुछ जानती हैं?
2: मैं जानती हूं लेकिन ओह, कामिनी को उम्र कैद की सजा हो गई, वो हमारे बीच से चली गई। लेकिन अदालत का ये प्रश्न मेरे दिल में दिमाग में अब भी गूंज रहा है, मुझे बेचैन कर रहा है। हाँ

0: खर खोसला से उसे बदला लेना था। क्या कहा, अब वो तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा है?
1: हाँ भाभी।
0: अरे बुद्धू, अगर किसी भी तरह वो तुम्हें ब्लैकमेल करता तो तुम्हारा व्यवहार ऐसा ना होता जैसा है। मुझे तो लगता है तुम कोई धोखा खड़ा कर रही हो।
1: अभी ये धोखा नहीं, हकीकत है। और अब मैं तुम्हें साफ साफ बता दूं, मुझे शेखर खोसला से बदला लेना है।
0: तुम्हारे प्यार को ठुकराया इसलिए? कैसे लोगी बदला?
1: लगता है वो मेरे साथ चाल चल गया।
0: क्यों, तुमसे शादी करने से इनकार कर दिया?
1: लेकिन नहीं, तब वो अफ्रीका जा रहा था। मैंने जब उससे कहा कि मैं उसके साथ किसी भी तरह नहीं चल सकती तो उसने साफ कह दिया, चिंता रहे तो फिर मिलेंगे वरना अलविदा।
0: वो अफ्रीका से लौट आया है?
1: हाँ हाँ भाभी, ये देखो अखबार में छपा हुआ उसका ये फोटो देखो। ये देखो, इस ग्रुप में दाएं से तीसरा, यही है शेखर खोसला।
0: हाय, कैसा है?
1: गोरा, पूरी आंखें, चौड़ा माथा, नुकीली नाक, तेज मिजाज, मजबूत जिस्म।
0: तो क्या आप उससे शादी करेगी और उसकी जिंदगी तबाह करके बदला लेगी?
1: क्या करूं भाभी, मेरी कुछ समझ में नहीं आता। भाभी मेरी कुछ समझ में
0: अरे
1: नहीं आता।
0: ये सब चालबाजियां छोड़ दे, समझी? अब उसे भूल जाओ और पाठक से शादी करके चैन से जिंदगी बसर करो।
1: भाभी आप समझती क्यों नहीं, जिस आदमी को तुमने उसकी कच्ची जवानी में पाया हो और बहुत दिनों अपनी अमानत समझा हो, अब वो आदमी अचानक भव्य पुरुष बन जाए, कसकर तुम्हारी उंगलियों में फंसे शीशे की तरह एक-एक सारी दुनिया का चकमकाता सितारा बन जाए, तो तुम्हें ऐसा नहीं लगेगा कि तुम लुट गई?
0: तुम्हें जो करना है करो, लेकिन कामनी प्लीज मेरे साथ ऐसी बातें ना करो, नहीं तो मुझ पर भी भूत सवार हो जाएगा।
1: अभी मैं बदला लेना चाहती हूँ, मुझे उस आदमी को मिटा देना है।
0: तो शादी कर लो और इस तरह तुम्हारा घायल अहम शांत हो जाएगा, फिर उसे सारी जिंदगी सता कर मारना, तड़पा तड़पा कर खत्म कर देना उसे। लेकिन कामनी को इतना सब्र न था, उसने केशव ठाकर के जरिए शेखर खोसला को नाटक में आने का निमंत्रण भिजवाया और उसे मार कर ही चैन की सांस ली। मैंने ही उस मन उस घड़ी में उसे ऐसी बुरी सलाह दी। मैं उस अपराध के लिए जिम्मेदार हूँ, सजा मुझे मिलनी चाहिए, मुझे मिलनी चाहिए सजा, मुझको सजा मिलनी चाहिए, मुझको सजा मिलनी चाहिए, मुझको मुझको सजा मिलनी चाहिए।
2: शेखर खोसला को आप जानते हैं? शेखर खोसला के बारे में आप कुछ जानते हैं? बोलिए जगन्नाथ महाशंकर पाठक, शेखर खोसला को आप जानते हैं?
3: हाँ जानता हूं, लेकिन ओ, शिव अदालत की आवाज मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रही?

0: कैसे परेशान कर रहा है?
1: वो कहता है तू जगन्नाथ पाठक से शादी कर, नाटक कर, सब ठीक है, लेकिन मुझसे संबंध रख।
0: मतलब?
1: मतलब वो जब भी चाहे किसी बहाने में उससे मिलूं।
0: और तुम ये सब ना मानो तो?
1: तो वो तुम्हें उड़ा ले जाएगा।
0: उस आदमी का नाम क्या है?
1: शेखर खोसला।
0: शेखर खोसला?
1: हाँ हाँ पाठक, पर मैं तुम्हें ये बताती कैसे?
0: काम नहीं, या तो वो आदमी पागल है या बेवकूफ, या फिर तुम मेरे सामने ढोंग रच रही हो।
1: क्यों?
0: तुम्हारी बात मुझे सच्ची नहीं लगती।
1: तुम डर गए ना, तुम कायर हो, तुम दर्शकों के सामने अपनी महानता सिद्ध करना चाहते हो, शेखर और अपने दोस्तों के सामने तुम दोनों मेरा इस्तेमाल करना चाहते हो, चतुर स्वार्थी नीच कंगाल।
0: एक शब्द भी और कहा तो गला घोट दूंगा।
1: वाह मेरे प्रेमी, मुझे बचाने के बदले खुद ही मुझ पर हाथ उठा रहे हो, शक करते हो, और तुम मुझसे शादी करना चाहते थे।
0: हाँ, शक के इसी डरावने क्षण में मेरे दिमाग में पिस्तौल के अंदर असली गोलियां भर देने का ख्याल आया, और उस दिन मंच पर नाटक शुरू होने से कोई 15 मिनट पहले मैंने पिस्तौल में चुपके से असली गोलियां भर दी, ये जानते हुए कि कामनी ने एनसीसी में पिस्तौल चलाना सीखा है और हाथ में आते ही वो पिस्तौल चलाएगी, और इस प्रकार देश पांडे की भूमिका करने वाला वो लेखक केशव ठाकर मर जाएगा, और ये दुर्घटना ही मानी जाएगी। ठाकर बात झूठी नहीं थी, शेखर खोसला सचमुच जीता जाता इंसान था। कामनी उसे दर्शकों में बैठा देख सुखबुद्ध खो बैठी और उसे गोली का निशाना बना डाला, लेकिन सजा उसे नहीं मुझे मिलनी चाहिए, सजा मुझे मिलनी चाहिए, क्योंकि शेखर खोसला की हत्या के लिए जिम्मेदार मैं हूं।
2: शेखर खोसला को आप जानते हैं? केशव ठाकर आप चुप क्यों बोलिए, शेखर खोसला के बारे में आप क्या कुछ जानते हैं?
0: ये आवाज, कामनी को सजा हो गई, शेखर खोसला हमेशा के लिए खत्म हो गया, लेकिन अदालत की आवाज खत्म नहीं हुई। शेखर खोसला मेरा मित्र था, उससे कई बार रुपए पैसे से मैंने मदद मांगी, लेकिन वो अच्छा आदमी नहीं था, वह बदमाश था, उसने मेरी पत्नी को भी मेरी आंखों में धूल झोंककर अपना बंदी बना लिया था। सुध-बुध खत्म कर देने वाले कुत्तों की तरह वो मुझे निकले जा रहा था, उसका दर्द उसकी छूत किसी दूसरे को दे देने के सिवा मेरे पास कोई चारा नहीं था।
1: केशव जी,
0: कहिए जी,
1: आपको नाटक के लिए कथानक हमेशा जीवन से मिलता है ना?
3: आप नाटक रात की रानी की बात कर रही हैं कामनी जी?
1: आप बता रहे थे ना कि आपने ये नाटक अपने आप अपनी पत्नी और शेखर खोसला पर लिखा है।
3: और क्या?
1: और ये नया नाटक किसी एक फूल का नाम लो।
3: वो हाँ, वो तो जैसा आप सबने कहा वैसा।
1: बड़े गहरे हैं कवि जी,
0: बड़े गहरे हैं कवि जी। कोकेन जैसा नशा था कामनी के दिमाग में शेखर खोसला की मित का, कहानी का। उसे नशे की आदत पड़ गई थी, रोज रिहर्सल के बाद नृत्य का अभ्यास करते वक्त उच्चारण ठीक रखने के बहाने मुझे बुलाती और मुझसे बातें करती रहती, इसी तरह उसके अहम को संतोष मिलता, और पाठक अंधे प्यार के अंधी चलन में दीवाना होकर मुझसे और भी ज्यादा शराफत से पेश आता। उसके कहने से मैंने नाटक में देश पांडे का पाठ करना स्वीकार कर लिया था, और फिर नाटक के प्रदर्शन से एक दिन पहले।
1: सुनिए कवि जी,
0: जी
1: कल शो है ना?
0: हाँ।
1: कल पाठक में सवेरे

0: 10 बजे ड्रेस रिहर्सल रखी है, क्या आप उससे 1 घंटा पहले ठीक 9:30 बजे आ सकते हैं?
1: जी।
0: एक जरूरी बात करनी है आपसे।
1: कामनी जी, कामनी जी, मैं ठीक 9:30 बजने से 2 मिनट पहले थिएटर हॉल में पहुंच जाऊंगा आपकी खातिर।
0: कवि जी।
1: जी जी।
0: आप आ गए।
1: मैं बिल्कुल आ गया।
0: चलिए, ये पहली पंक्ति के तो टिकट।
1: टिकट
0: मैंने खरीदे हैं अपने पैसे से।
1: टिकट किस लिए?
0: ये तो टिकट शेखर खोसला को पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी। सीट नंबर A14 और 15। उससे कहिएगा जरूर आए, नहीं तो उसके घर जाकर मैं उसका खून करूंगी।
1: समझ गया। मतलब ये कि आप शेखर खोसला को देखना चाहती हैं और अपनी मनगढ़ंत कहानी को।
0: हाँ, अपनी मुट्ठी के शीशे को देखना है। देखो, मेरे मन की कल्पना से ज्यादा उजला है या ज्यादा काला? देखो आपके उस खूबसूरत चित्र को।
1: और आपको अपनी खोज भी तो सच्ची कर दिखानी है कामनी जी।
0: आप बड़े गहरे हैं कवि जी।
2: और दूसरे दिन शाम को नाटक शुरू हुआ। पर्दा उठने से कुछ ही देर पहले थिएटर हॉल में शेखर खोसला सबसे अगली पंक्ति की A14 नंबर की सीट पर आकर बैठ गया था। पता नहीं कामनी ने कब और कैसे पिस्तौल में असली गोलियां भरी। कोई नहीं जानता उसे मेरा खून करना था या शेखर का। और शेखर खोसला की हत्या के अपराध में कामनी को उम्र कैद की सजा हुई। और जेल में मैं उसे देखने गया। मैंने उसे अजीब हालत में पाया।
3: शेखर खोसला
2: जेल की कोठरी।
3: हाँ, पूरा सच।
2: बकली
3: सच के सिवा कुछ नहीं।
2: शेखर खोसला की बातें कर रही
3: है। शेखर खोसला, झूठ बोलोगे तो जेल की हवा खानी पड़ेगी। बताओ इस मुलसिमा कामनी देसाई को जानते हैं? जवाब तो हाँ या ना।
0: को गरमाई मिली है जिसे तुम काया प्रेमी चट्टो भाई और नीच माँ की कैद से छुड़ा लाए, उस कामनी देसाई को तुम नहीं जानते। पर शेखर, मैं तुम्हें जानती हूँ। मैंने तुम्हारी पूरी पत्नियों में अपना घोंसला बनाया है। तुम्हारी लंबी तीखी नाक से मैंने अपनी जिंदगी में गर्म सांसें ली हैं। तुम्हारी प्यारी मजबूत बाहें पकड़कर तुम्हें मैं आसमान से यहां उतार लाई अपने हाथों ने। और अब कहां गई तुम्हारी वो छेत्री हुई आंखें? कहां गई तुम्हारी वो घमंड से तनी हुई गर्दन? चुप क्यों शिखर? जवाब तो, उससे बातें करो, मुझसे बातें करो, मुझसे बातें करो शिखर, मुझसे बातें करो।
4: किसी एक फूल का नाम लो, इस नाटक का दूसरा और अंतिम भाग अभी आपने सुना। मूल गुजराती लेखक मधुराय, हिंदी रूपांतरण ज्योति व्यास, संपादन चिरंजीत, निर्देशक सुशील बनर्जी और प्रस्तुति आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र की। हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे पर दूर।
5: उन्होंने कहा कि देखो अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा

0: सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
1: और आ गया।
0: एक और आ गया।
2: जल्दी बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
3: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
4: दास्तान सई परांजपे की, उजाली उनकी यादों की, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर सुनिए।

0: ये है विविध भारती।
1: चार बजने को हैं, आइए सुनते हैं प्रादेशिक मुख्य समाचार।
2: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं तृप्ति कुमारी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षा में कथित गड़बड़ियों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे युवाओं को न्याय दिलाने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि अनियमितताओं के दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। श्री सोरेन आज रांची के मोरहाबादी मैदान में विश्व आदिवासी दिवस के उद्घाटन के अवसर पर लोगों को संबोधित कर रहे थे। राज्य में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों और राज्य सरकार के बीच आज नए दौर की बातचीत हुई। बातचीत का ये छठा दौर रांची स्थित राज्य अतिथि गृह में हुआ। इस बीच छात्रों का प्रदर्शन रविवार को 16वें दिन भी जारी है और 6 प्रदर्शनकारी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर है। रक्षा राज्य मंत्री और रांची के सांसद संजय सेठ ने आरोप लगाया है कि जेपीएससी और जेएसएससी में हुए नियुक्ति घोटाले के मामले में राज्य सरकार बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। आज भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद आदित्य साहू और विधानसभा में मुख्य सचेतक नवीन जायसवाल के साथ जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंचे श्री सेठ ने आंदोलनरत युवाओं से मुलाकात की और इनके आंदोलन को अपना समर्थन दिया। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने राज्य के सभी सरकारी और निजी अस्पतालों को आंदोलन के दौरान बीमार पड़ने या अस्पताल में भर्ती होने वाले विद्यार्थियों के बेहतर और निःशुल्क इलाज के निर्देश दिए हैं। मंत्री ने कहा है कि बीमार पड़ने वाले छात्रों के इलाज से संबंधित आवश्यक खर्च का वहन राज्य सरकार करेगी। भारतीय जनता पार्टी की जिला कमेटी ने आज जमशेदपुर में तिरंगा यात्रा निकाली। आम बगान मैदान में शुरू हुई ये यात्रा साकची गुलचक्कर होते हुए जेएनसी गुलचक्कर पहुंची। यात्रा में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो और विधायक पूर्णिमा साहू समेत बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता शामिल हुए। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: और बहुत ही बढ़िया मुझे लगा। मैंने कहा वाह वाह वाह, ये क्या बात है। अगर ये मैं लेके, ये तत्व को लेकर मैं एक फिल्म बनाऊं और कहानी मैं पूरी अपनी अलग ही बनाऊं तो चलेगा क्या? मैंने टाटे साहब से कहा कि आइडिया तो आपका है, आपको पूरी तरह हम क्रेडिट दे देंगे कि आपसे हमने प्रेरणा ली, लेकिन बाद का सब मेरा, चलेगा क्या? उन्होंने कहा जो मर्जी करो। वो अच्छी तरह जानते थे मुझे, बहुत मतलब घरेलू हमारी पहचान और दोस्ती सी थी। तो उन्होंने कहा जो मर्जी करो। ठीक किया, जो मर्जी किया मैंने और पूरा ही वो बदल दिया। उसमें सारे कैरेक्टर्स, वो तो प्ले में नहीं है, जो वो बापू का कैरेक्टर आता है जो घंटी बजाते रहता है, या वो सिंधी नमिया बीबी है, या ये जो डालडा का टमरेल लेके घूमता है वो आदमी, या वो दादी अम्मा किस्से सुनाने वाली, वो सब सब सब मेरी कल्पना के बच्चे।
4: और चौल को आपने जिस तरह से पकड़ा अपने सीरियल्स में भी और अपनी फिल्मों में भी, तो वो गुलजार साहब ने जो कहा था द मिनिस्टर ऑफ चौल,
3: आपको मालूम है वो बहुत ये करते थे, मजाक उड़ाते थे मेरा कि सही है, चौल का क्या चक्कर है यार, तुम तो मिनिस्टर ऑफ चौल थो। तो ये मुझे बड़ा बचपन से ही फैसिनेशन रहा है चौल्स का, शायद इसलिए कि हमारे घर में, हमारे बंगले में मैं अकेली, मेरी माँ अकेली, अदाना अकेले, मतलब हम तीनों, तीन जनरेशन के तीन लोग,

0: और बड़े प्यार से हम रह रहे थे, लेकिन मुझे अपने उम्र का या और भी तो जरूरतें होती है ना बच्चे की, तो फिर मैं इधर उधर पड़ोस में बगल में इधर उधर जाती थी, या हमारे और दूर के कोई रिश्तेदार हो उनके यहाँ जो ढेर सारे बच्चे होते थे, खूब मामा मामियां मौसी चाचियां होती थी, उधर जाती थी। और इतना मुझे वो अच्छा लगता था, उनका आपस में लेन देन सुनना, उनकी नोक झोंक सुनना, उनके झगड़े सुनना, उनका त्योहार मनाना वगैरह वगैरह वगैरह। तो मैं बड़ा जाके उसमें समाने की कोशिश करती थी। और मुझे लगता है ये चॉल्स का और ये इकट्ठा रहने का जो फैसिनेशन है ना, कि मतलब अलग अलग बेशक तुम्हारे घर हो, दीवारें अलग अलग हो, लेकिन छप्पर तो एक है।
1: बहुत सुंदर बात। हाँ। वाह,
0: तो इसका मुझे बहुत मोह रहा है बचपन से।
1: गुलजार साहब से जुड़ी एक और घटना है।
0: हाँ।
1: वो भी बताइए।
0: कौन सी?
1: वो डायलॉग सुधरवाने वाली।
0: नहीं, कहीं वो सुन ले तो। नहीं, वो एक जमाना था, वो अफसोस कि इतना मिल नहीं सकते हम, लेकिन तब मैं बार बार उनको कुछ उर्दू लफ्ज अगर मुझे चाहिए होता या किसी उर्दू लफ्ज का सही मतलब चाहिए होता तो मैं उनको फोन करती थी कि साहब इसका क्या मतलब है वगैरह वगैरह। तो एक दिन उन्होंने कहा, सही, अब मैंने तय कर लिया, मैंने बहुत सोचा है इस बात पर, बहुत सीरियस लिया कि ये मैं तुम्हें बहुत मुफ्त में सलाह देता रहता हूँ और अब आगे से मैं चार्ज करूंगा। तो और सचमुच फिर वो कहते थे, देखो 2 रुपए 50 पैसे हो गए अभी तक, वो कुछ 88 चार्ज होता, तो क्या अब
1: एक बार की सलाह पे 88 यानी 5 बार की सलाह पे 2.5 रुपए हुए थे।
0: तो वो याद दिलाते थे कि तुमने मेरे पैसे अभी नहीं चुकाए, नहीं वो करो जल्दी, ऐसी बात अच्छी नहीं वगैरह वगैरह। तो वेरी लवली पर्सन, वेरी डिलाइटफुल।
1: ये जो कथा की कास्टिंग आपने की थी तूफानी, इसके बारे में बताइए कि आपने ये कैसे सोचा कि इन दोनों बंदों को उलट कैरेक्टर दिए जाए।
0: ये कोई खास बैठ के सोचने की बात ही नहीं थी ना, अब मुझे सच पूछो तो याद नहीं कि कैसे क्यों सोचा, लेकिन नसीर तो जाना माना स्मार्ट बंदा, कुछ थोड़ा सा रोबीला,
1: शरारती भी
0: और दूसरे पे हावी होने वाला। हाँ, और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा, मुस्कुराता हुआ, शरीफ, जैसे चश्मे बद्दूर में था। तो मैंने कहा ये तो टेलर मेड नहीं चाहिए, है ना। तो कथा में नसीर विल बी द स्लाइटली बुद्धू भोला भाला राजा राम, जो बिल्कुल सही नेक आदमी, नाक के सीधे जाने वाला, और ये दूसरा जो है चंट होगा, कि दूसरे को ठगाने वाला, अपनी चलाने वाला वगैरह वगैरह। तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया, दोनों ने कहा बढ़िया स्क्रिप्ट, मजा आ गया। कब करें? तो मैंने कहा कौन से रोल करना? नसीर ने कहा वो ये तो मैं हूँ ना बासु, और फारूक ने कहा वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा ना ऐसा नहीं है, उल्टा है। तो मैंने कहा क्या, जैसे क्या बात कर रही हो, डोंट बी सिली। एंड आई सेड नहीं, आई एम सीरियस, एब्सोल्युटली अ फैक्ट। तो नसीर ने कहा मैं राजा राम, तुम भूल गई हो मैं कितना स्मार्ट बंदा हूँ और कैसे मेरा रॉब है ये फलाने का, क्या लोग मुझे मान लेंगे ये भोला भाला बुद्धू राजा राम? डू यू थिंक एनीवन विल एक्सेप्ट मी एज राजा राम? एंड फारूक ने यही कहा कि तुम बताओ कि मुझमें कहाँ बदमाशी तुम्हें नजर आई, बता तो दो जरा, इतना मैं सीधा साधा नेक आदमी वगैरह वगैरह। तो मैंने कहा यार तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम पोस्टर बॉयज हो क्या या एक्टर हो? तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए? वही घिसा पिटा रोल करने में क्या मजा है? हाँ वही करते रहोगे, अच्छा ये भोला भाला दिखता है तो भोला भाला, और तुम शरारती हो तो तुम दो चैलेंज, डोंट यू वांट एनीथिंग मोर एक्साइटिंग इन लाइफ? तो फिर आई डोंट नो, आई मस्ट हैव डन अ गुड जॉब, क्योंकि दोनों मान गए फिर और दोनों ने फिर लाजवाब रोल्स किए।
1: बिल्कुल, तो बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल।
0: बहुत सुंदर रोल्स।
1: और वहाँ पर फिर दीप्ति चली आई,
0: दीप्ति चली आई, और दीप्ति को तो लिया ही था चश्मे बद्दूर, बाद हमारा बहुत आपस में प्यार भी था, और आई रियलाइज दैट शी इज अ फैंटास्टिक एक्टर। दीप्ति इतनी अच्छी कलाकार है, अरे बाबा बाबा। वो देखो इन दोनों की बड़ी तारीफ हुई, लेकिन दीप्ति को भी देखो ना, तो वो सीधी एकदम चौल में रहने वाली सीधी सी, और इतना प्यार से वो, एक फारूक उसका सीन है कि आजकल देखा नहीं कि लड़कियां कितनी लिबरेटेड है, और आप क्या काकू बन के रहती है? तो दीप्ति कहते हाँ वैसे लिबरेटेड मैं भी हूँ। मतलब काफी लिबरेटेड हूँ, ऐसे इतना वो प्यारी, प्यारा से मासूम।
1: बल्कि एक सीन चश्मे बद्दूर का भी याद आता है, जब वो इसको 5 मिनट के लिए भिगो के रख देते हैं। अब वो 5 मिनट बीत नहीं रहे हैं और वो इधर उधर देख रहे हैं और वो रेडियो लगता है हम तुम एक कमरे में बंद हो, और वो सुंदर सीन है उसमें जो असहजता है तो दीप्ति जी ने जिस तरह से किया है कमाल कमाल,
0: बहुत सुंदर किया ना दोनों ने। वो जो प्यार का एक मासूमियत जो प्यार की है इतनी दोनों के तरफ से इतनी सुंदर तरीके से टपकती है, इट्स ब्यूटीफुल। इवन आई लव दिस, वन ऑफ माय फेवरेट सीन्स टोटली।

0: जी
1: माई एंटायर करियर इफ यू आस्क मी नेम फाइव सीन्स व्हिच आई फील आर रियली रियली गुड दैट्स वन ऑफ देम.
0: क्या बढ़िया सीन की बात हुई है. अच्छा, फिल्मों की पटकथा कितने दिनों में आप अमूमन लिखा करती थी?
1: अरे बाबा, ऐसा नहीं मैं कह सकती, इट डिपेंड ऑन द फिल्म. जैसा कि दिशा का पूछो, तो दिशा को लिखने में मुझे लगा 17 साल.
0: ओ गॉड.
1: मैं मजाक नहीं कर रही, मतलब ये नहीं कि मैं 17 साल हर एक दिन लिखती रही.
0: लेकिन
1: थोड़ा
0: वो
1: थोड़ा
0: प्रोसेस में था.
1: नहीं, लेकिन वो दिशा के लिए एक कुछ देखा, फिर वो जहन में बैठ गया कि इसको कभी न कभी कहीं न कहीं इस्तेमाल करना है, तो वो दिमाग के कंप्यूटर में दर्ज हो गया. फिर और कुछ ऐसा ही हुआ, फिर और कुछ, इस तरह छोटा छोटा छोटा छोटा वो समेटता गया मेरे अंदर. और फिर एक दिन विस्फोट हुआ और फिर मैं लिखने लगी, और फिर 7 दिन में लिखी. तो टेक योर चॉइस, अगर 17 साल लगे कहो या 7 दिन लगे कहो.
0: वाह, ये भी बात है. और जब आपने कहा कि ये कुछ देखा और दिमाग के कंप्यूटर में जमा हो गया, तो मुझे याद आता है कि आपने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था कि आप गई ब्लाइंड स्कूल में
1: जी.
0: और वो रस्सा कशी का खेल रहा था. वो सीन बाद में स्पर्श में आता है ना. तो कोई कोई चीजें जो दर्ज होती जाती हैं दिमाग में, वो पटकथा का हिस्सा बनती जाती है.
1: अरे ये रस्सी जाने दो, लेकिन दिशा का एक एस ऑफ स्पेड्स कहो या ट्रम्प्स कहो, क्या है, कौन सा सीन, तो वो अंधे बच्चे क्रिकेट खेलते हैं. इससे और क्या चाहिए. अब वो मैं बैठ के थोड़े ना सोचा है वो सीन, वो देखा तो लिख लिया, क्योंकि एक्चुअली वो करते हैं बच्चे वैसे, वो क्रिकेट खेलना चाहते थे. वो उनका गेंद क्या है, एक रिंग है, और उस रिंग में उन्होंने बॉटल टॉप्स होते हैं ना सॉफ्ट ड्रिंक्स के, उनको छेद करके उनको पिरोए हैं और रिंग फिर फिक्स कर दी, ताकि वो रिंग में वो सब झुनझुन झुनझुन करके बचते हैं ढक्कन सब. और फिर वो रिंग फेंको तो झुनझुनाती हुई जाती है हवा में, झुन झुन झुन झुन झुन. फिर जो बैट्समैन है उसको एक बड़ा सा चौड़ा सा क्रिकेट बैट से भी चौड़ा फट्टा दिया होता है, प्लाईवुड का कहो या लकड़ी का फट्टा, नॉट वेरी हेवी, तो लकड़ी का फट्टा उसकी बैट है. तो ये बॉलर फेंकता है, ये झुनझुना या बॉल कहो, का बॉल है वो, बॉल फेंकता है, ये सुनता है और जैसे पास आया ठाक करके
0: क्या
1: मारता है, तो या तो सिक्सर या तो कैच.
0: वाह वा.
1: और ये खेल देख के रोंगटे खड़े हो गए. अभी मैं आपको बता रही हूँ तब फिर भी मेरे रोंगटे खड़े
0: हो
1: गए. इट इज सो ब्यूटिफुल, इट वॉज सो ब्यूटिफुल. तो बस ये बच्चे खेले सुंदर तरीके से, स्क्रीन पे सैनी ने उनको उतारा और मैंने फिल्म में दिखाया.
0: इसीलिए तो सेल्यूलाइट के पर्दे पर जीवन धड़का
1: जी.
0: क्योंकि जीवन से चीजें निकाली गई थी. मैं एक चीज का और जिक्र करना चाहता हूँ ताकि वो इस इंटरव्यू में दर्ज हो, और वो ये है कि ये जो चौल है, मिनिस्टर ऑफ चॉल्स ने ये चौल ढूंढने में जो जमीन आसमान एक किया और वो मुंबई में नहीं मिली.
1: नहीं, क्या मजे की बात है ना. मुंबई की खास चौल पुणे में. दिस इज फिल्म यार, यू नो फिल्म ए टू जेड फिल्मी एवरीथिंग इज फेक. तो ये भी फेक ही है, चौल भी फेक है हमारी, लेकिन चौल फेक नहीं है, पोजीशनिंग फेक है.
0: पोजीशनिंग फेक है कि वो आपको बंबई में मिलती ही नहीं.
1: नहीं ना, बंबई में कितनी चौल है रे बाबा बाबा बाबा, हम पागल हो गए ढूंढते ढूंढते, मतलब दादर से लेके गोरेगांव तक, उधर थाना तक, कहां कहां नहीं घूमे हम. तो कई चौल तो होती थी, वहां के मालिक बहुत बदतमीज होते थे, बेतहाशा पैसा मांगते थे, या वहां सुना कि कोई गुंडागर्दी थी बहुत ज्यादा. कई चौले थे इतनी खराब थी, मतलब सीढ़ियां लगे पैर रखो तो कब कोलैप्स हो जाए, और कहीं तो इतनी गंदगी थी, कहीं कुछ था, कहीं भीड़ जा ही नहीं पाते थे चौल तक. तो इस तरह से एक भी चौल हमें रास नहीं आई, और फिर परेशान हो गए. फिर हमने सोचा चलो किसी स्टूडियो में नकली चौल बनाते हैं, अब क्या करें. तो मैंने कहा कि अरे ये चौल करना और वो भी सेट बनाना, हाय हाय, कभी नहीं ये हो सकता, लेकिन क्या करे, मानना पड़े. फिर किसी ने बताया कि पुणे में देखो ना, पुणे में जरूर मिल जाएगी चौल. तो मैंने कहा नहीं नहीं, बम्बई की चौल पुणे में क्यों. तो कहता है अच्छा, तुम स्टूडियो में नकली चौल लगाने को तैयार हो, लेकिन पुणे में असली चौल नहीं चाहिए, क्योंकि वो पुणे में है. मैंने कहा हाँ, ये तुम ठीक कह रहे हो, यू आर राइट. फिर मैं भी समझ गई कि मतलब अड़ियलपना नहीं करना चाहिए ज्यादा. तो फिर हम पुणे गए और पुणे में तो उल्टा ही हुआ, जो चौल देखो हमें पसंद आए, जो चौल देखे वो हमें रास आए. तो फिर हमने 5 चौले शॉर्टलिस्ट की. और फिर एक जो बहुत हमारे मतलब की थी, जो हमारे घर से दूर नहीं थी, सेंट्रल भी थी, जहाँ के लोग भी बड़े माशाल्लाह अच्छे थे वगैरह वगैरह, और वो एक ताड़ुग के चौल करके केसरीवाड़ा के बिल्कुल करीब में थी, सेंट्रल पूना में। तो वो बढ़िया चौल थी और चारों ओर वो बीच में ये

0: था पूरा, एक ग्राउंड था
1: चौल
0: के बीच में आंगन, और चारों ओर बैल्कनीज थी, बैलुस्टेड और कटघरे लगे हुए, एक एक एक एक फ्लैट था चौल का। हाँ, मतलब कोई भी आदमी चौल वाला किसी भी चौल वाले को पुकार सकता था अपने घर से।
1: बिल्कुल।
0: और फिर इतनी वो सुंदर चौल, और वो क्या चौल वाले, और वहाँ के बच्चे भी और ये भी, और इतना उन्होंने हमें सहयोग दिया कि मैं क्या बताऊँ। फिर हम कुछ बहुत ही ढीठ बन गए कि कहने लगे, तात्या कल आपके घर हम आ रहे हैं, हाँ तो वो सब वो तोते का पिंजरा जरूर लगा के रखिए, वगैरह वगैरह वगैरह। और बड़े प्यार से फिर हमको सब शूटिंग करने देते, कहीं खुद चले जाते बगल में पड़ोस में।
1: इस तरह पूना की साड़ुम के चौल कथा फिल्म में बंबई की चौल बनके हमेशा के लिए अमर हो गई, है ना। ये कमाल है। इस फिल्म का वो गाना बजाते हैं,
0: कौन सा,
1: जो हमने तब बजाया था जब आपने विविध भारती की पहली सीडी पे कदम
0: रखा
1: था।
0: इतना प्यारा लगा मुझे। अगर सुनो, एक से जल्दी से बताती हूँ कि जिंदगी में प्यारे प्यारे इंसिडेंट्स फिल्मी करियर में मेरे बहुत आए, उसमें से ये एक दर्ज हो गया जो आपने गाना बजाया विविध भारती में।
1: क्या बात है, कौन आया। हम अपने सुनने वालों को बता दें कि जब सई जी विविध भारती के स्टूडियो में आ रही थी, तो जैसे ही वो गाड़ी से उतरी और पहले स्टेप पर उन्होंने कदम रखा और तुरंत गाना बजा, कौन आया। तो यही गाना सुनते हैं
0: जी। कौन

0: अब दिशा की तरफ चलते हैं, आपकी जिंदगी की आपकी नजर में सबसे महत्वपूर्ण फिल्म है ये, और इसका बीज विलासराव सालुंके से मिलके पड़ा था।
1: विलासराव सालुंके वाज द फर्स्ट स्टेप और द फर्स्ट थिंग, ही वेरी डियर फ्रेंड्स ऑफ माइन विजय एंड सरोजा परुलकर, पुणे में दोनों अब नहीं रहे, लेकिन बहुत ही प्यारे दोनों पति पत्नी थे और हमेशा कुछ न कुछ सोशल काम में लगे रहते थे। कहीं कुछ किसी के साथ जाती हो तो ये दोनों वहां हाजिर लड़ने के लिए।

0: उनको ये दिलवाने के लिए वगैरह वगैरह। तो उन्होंने मुझे कहा कि सही, ये तुमने विलास राव की पानी पंचायत नहीं देखी, उनके गांव में वो गांव पूरा पानी को उन्होंने अर्पित किया है जैसे, और पानी पर उनका बहुत रिसर्च हो रहा है, और उनका कहना है कि बारिश की हर बूंद पर हर गांव वाले का हक होना चाहिए।
1: बहुत बढ़िया बात है।
0: और उन्होंने क्या क्या परियोजनाएं बनाई है। एनीवे, मैं देखने गई उनके गाँव में, नायगांव गई थी। तो वहाँ नायगांव में उन्होंने कहा सब पूरा देख लिया, ये हो गया वो गया। उन्होंने कहा अच्छा, एक हस्ती से आप नहीं मिलिए, हमारे नायगांव में एक बड़ा मशहूर आदमी है, मिलवाइए। तो एक किसान सामने आया, दुबला पतला ठिंगना सा, एक टोपी सर पे जिसका ऊपर का हिस्सा पूरा गायब हो गया था, धूप में काम कर करके सिर्फ उसका दे रहा था चारों ओर का, ये है हमारे सोमा। तो मैं जरा सी चौंके, मैंने कहा ये अच्छा, नमस्कार, बड़ी खुशी हुई। सोमा अपना कुआं दिखा दो सही टाइप को। तो मुझे सोमा ने अपना कुआं दिखाया, बाकायदा कुआं, पत्थर से चारों ओर बांध बनाया हुआ, ये वो, नीचे पानी, अंदर कुएं में पानी। कहता ये सोमा ने खुद खोद खोद के पानी निकाला। 12 साल सोमा कुआं खोद रहा था, क्योंकि सोमा को पूरा यकीन था कि मेरे खोपटे के बाहर, मेरे झोपड़े के बाहर जो छोटी सी बंजर जमीन है खरकाली, उसके अंदर पानी है। ऐसे उसको पता नहीं कहां और क्यों और कैसे, लेकिन उसको ये पूरी उसकी धारणा थी। और वो उस हिसाब से पूरे दिन काम पे जाता था, बेचारा करेगा क्या, पैसे तो कमाने थे, तो वो काम पे जाता, मेहनत से कमाता रोजी रोटी, घर आके कुआं खोदता। और बीवी उसकी झगड़ा करके कितनी बार पता नहीं मायके चली गई, फिर वापस आ गई, बेचारी जाएगी कहां, बच्चे उसके 3-4, और पूरा गांव सोमा पे हंसता था। उसका नाम था पगला सोमा, क्योंकि सारे देखते सोमा क्या है, अरे खोद रहा होगा और क्या करेगा सोमा। और जब सोमा को पानी मिला तो फिर पूरा गांव पगला गया बिल्कुल। तो ही हैड द लास्ट लाफ। फिर गांव वालों ने आगे बढ़ बढ़ के फिर उसका कुआं बांधा, ये किया वो किया। तो विलास राव ने कहा सही, ये फिल्म बनाने लायक है। मैंने कहा जरूर है, और ये मैं अपने दिमाग में दर्ज कर।
1: इंसान की जुझारूपन की मिसाल,
0: जुझारूपन की क्या मतलब, किस हद तक उफ। और फिर ये जब हुई फिल्म, ओम पुरी ने ये रोल किया
1: जी,
0: और शबाना ने उसके बीवी का किया, और वो इतना उनके प्यारे सीन है, वो कहती है कि अरे इस चुड़ैल को लेके मैं क्या करूं, कोई औरत होती तो मैं देख लेती, लेकिन ऐसी सौत का क्या करूं जो कुआ, मतलब उसकी सौत।
1: तो,
0: और हाँ, तो वहां से शुरुआत हुई
1: जी।
0: फिर वो कुआ हो गया, लेकिन मैंने सोचा कि ये एक पूरी फिल्म के लिए ये शायद इट्स नॉट मीटी इनफ, नॉट फ्लेशी इनफ। हाँ, आगे इतना रोजमर्रा के काम में लग गई। और फिर काफी साल गुजरे, और मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त सुभाषिनी अली,
1: जी बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल
0: मालूम है, कैप्टन लक्ष्मी की बेटी और खुद मार्क्सिस्ट है, और बहुत धड़ल्ले वाली औरत और मेरी बड़ी प्यारी दोस्त है। तो वो बहुत मिल मजदूरों का काम करती थी मुंबई में, और वो एक दिन मेरे घर के पास ही रहती थी तब। तो मेरे घर आई और दो चटाइयां देखी सुभाषिनी ने, कहती है सही दो चटाइयां क्या करनी। मैंने कहा है पड़ी है। कहते एक चटाई तो दे दो ना मुझे। मैंने कहा तुम क्या करोगे चटाई लेके। कहते मेरे लिए नहीं रे, मुझे अपने गाड़ा में काम आएगी। मैंने कहा क्या, कहाँ काम आएगी। कहते गाड़ा गाड़े में जाती हूँ ना मैं, तो गाड़े में काम आएगी। मैंने कहा गाड़ा मतलब क्या बोल रही हो, क्या गाड़ा। तो सुभाषिनी ने ऐसी आंखें फाड़ के मुझे देखा, कहती है तुम मराठी औरत अपने आप को डायरेक्टर कहती हो, लेखिका कहती हो, और तुम्हें गाना नहीं मालूम बम्बई में रहकर। मैंने कहा नहीं सच्ची नहीं मालूम मुझे क्या गाना मतलब। कहती है चल मेरे साथ चल। और फिर मैं सुभाषिनी का पल्लू पकड़ के उसके साथ गई, और हम चिंचपोकड़ी और यहाँ वहाँ वो सब मिल एरिया में वो मुझे ले गई, और गाड़ा देखा मैंने। गाड़ा क्या होता है, इट्स अ डॉर्मेटरी, बड़ा कमरा जिसमें 20 से लेकर 40 बंदे एक साथ रहे,
1: एक लंबा सकरा,
0: लंबा बड़ा एक हॉल, हॉल ही गाड़ा मतलब हॉल कमरा। हाँ, लेकिन उस कमरे में साथ रहते हैं, साथ काम करने वाले मिल मजदूर, 40-40 मिल मजदूर एक कमरे में। तो वो जैसे मैं दहलीज पर खड़ी हुई, सुभाषिनी तो अंदर गए ठका ठक करके, और मैं आंखें फाड़ के देखती रही 40 जने अंदर कमरे में, और अलग अलग उनका हर एक का कुछ ना कुछ चल रहा था। कोई पेपर पढ़ रहा था दिन का, कोई लेटर लिख रहा था पोस्ट कार्ड पे, कोई फ्लूट बजा रहा था, चार जने पत्ते खेल रहे थे, ताश खेल रहे थे, एक जन स्टोव पे चाय बना रहा था, एक जन कुछ भी, मतलब अलग अलग अलग अलग उनके सवाल। और बहुतेरे लोग सोए थे चटाइयों पे, गहरी नींद सो रहे थे, चारों तरफ ये झमेला चल रहा है, लेकिन बीच बीच में लोग मेरे मजे के

0: फर्राटे भी भर रहे, तो मैं देखती रह गई, देखती रह गई, खड़ी रह गई। फिर उसने कहा, अरे आओ ना, क्या देख रही हो। फिर मैं अंदर गई और फिर बातें करने लगी लोगों का। वो सब कहते हम अपना देहात छोड़ के आए हैं, अपने माँ बाप, अपने बीवी बच्चे, अपने घर बार सब छोड़ के हम वो अपने पेट भरने के लिए, रोजी ढूंढने के लिए बंबई शहर में आ गए हैं, लेकिन हमारा दिल तो गांव में रह गया पीछे। दिल छोड़ के आए हैं, बाकी सब लेके आए। तो मैंने कहा, तो फिर आपको सिर्फ एक 6 फुट जगह मिलती है। कहते हाँ, ये हक की हमारी 6 फुट जगह जहां हम सो सकते हैं आराम की नींद। कहते हाँ, सो सकते हैं लेकिन करवट बदल सकते। मैंने ये फिल्म में डायलॉग इस्तेमाल किया है कि हम सो सकते हैं, करवट नहीं बदल सकते। किसी ने मुझे कहा, क्या तुम बहुत अच्छा डायलॉग लिखती हो। मैंने कहा, मैं डायलॉग चोरी करती हूँ। मेरा अपना
1: आम जीवन से आया है जी।
0: तो एनीवे, तो ये इस तरह वो देख के मैंने कहा, ये तो इट्स टू ड्रामेटिक, टू फिल्मी टू नॉट डील विथ। तो फिर ये भी वो कुएं के साथ ये
1: जुड़ गया।
0: और देन द लास्ट थिंग वॉज विजय सरोजा अगेन, दे वर रिटर्निंग फ्रॉम निपानी। निपानी इफ यू नो
1: इंडस्ट्रियल एरिया,
0: इज द इंडस्ट्रियल एरिया नोन फॉर बीडी वर्क्स। हाँ, निपानी की तंबाकू और निपानी की बीड़ियां मशहूर है। तो वहां औरतों ने एक जंग खड़ा किया था क्योंकि उन पर बहुत अत्याचार हो रहे थे, उनको पैसे ठीक से नहीं दे रहे थे उन पर, वो बहुत ही क्या क्या तरह तरह के जुल्म होते थे वगैरह वगैरह। तो विजय और सरोजा वो के साथ शामिल होने के लिए गए थे निपानी और वहां से लौट रहे थे। और विजय ने मुझे जो किस्से कहानियां सुनाई तो मुझे लगा मैं चारों तरफ मेरे तम्बाकू ऐसे
1: उड़ रहा है
0: और मेरा दम घुट रहा है ऐसे। तो ये फिर तम्बाकू वाली औरतें भी खड़ी हो गई लाइन में और फिर देखते ही देखते जैसे जादू हुआ और फिर 7 दिन के अंदर इसका मेल हो गया और फिर पटकथा मेरी बन गई।
1: क्या बात है। और मैंने हमेशा हर जगह ये देखा है कि आप ये कहती हैं कि आपकी नजर में ये आपकी सबसे अच्छी फिल्म है।
0: जी जी, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि ये इस तरह कह सकते हैं कि ये परिपूर्ण फिल्म है। इसका अब तक मुझे लगा कि एक तो ये मेरी 4थी-5वीं फिल्म थी, मतलब फीचर फिल्म, बाकी छोटी मोटी छोड़ो, डॉक्यूमेंट्रीज और टेलीफिल्म। लेकिन तब तक मुझे ये मीडियम भी खासा समझ में आया था और लोग भी बहुत बढ़िया मिल गए। एक्टर्स भी नाना पाटेकर और रघुवीर यादव, निरू फुले, शबाना आजमी, ओमपुरी और बाकी सब मिल वाले, एक्चुअल मिल वाले, ऐसे एक से एक बढ़कर लोग मुझे मिल गए फिल्म के लिए। और म्यूजिक के लिए आनंद मोडक ने बहुत बढ़िया एक गाना, जो सबसे मेरा अच्छा गाना मैं सोचती हूँ, लिखा हुआ बम्बई बम।
1: हाँ, वो आपने खुद लिखा है?
0: जी,
1: ये भी कमाल की बात।
0: मैंने खुद लिखा और दिशा के सारे गाने मैंने लिखे और म्यूजिक उसका आनंद मोडक ने दिया और राहुल रानडे ने बढ़िया पार्श्व संगीत दिया। बैकग्राउंड म्यूजिक भी बहुत बड़ा हिस्सा है उसका, बैकग्राउंड म्यूजिक का इस फिल्म में। और फिर एडिटिंग क्या, फोटोग्राफी क्या, फोटोग्राफी के लिए 2 जने थे, गांव की फोटोग्राफी मधु अम्बट ने की, केरल का मशहूर कैमरामैन, और जी.एस. भास्कर ने बंबई की फोटोग्राफी की।
1: क्या तो बात,
0: दोनों
1: है?
0: ने कमाल किया, मतलब इट वाज अ फैंटास्टिक एक्सपीरियंस।
1: जब एक काम की ऊर्जा आगे बढ़ती है तो समान विचार के लोग जुड़ते चले जाते हैं।
0: सही बात है,
1: है ना?
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: जी। यहाँ मैं 2 चीजों का जिक्र करना चाहता हूँ, एक तो नाना पाटेकर से हुई लड़ाई और उनकी दादागिरी और दूसरा रघुवीर यादव का आगमन इस फिल्म में।
0: तो नाना की तो दादागिरी क्या बताऊं, कि नाना का मेरा बहुत पुराना परिचय, दोनों थिएटर के बंदे
1: जी।
0: और कभी काम नहीं किया था हालांकि, लेकिन हाँ, नाना का जो फिल्म इंडस्ट्री में पदार्पण हुआ वो मेरी तरफ से है।
1: जी जी
0: हाँ, बिकॉज मुजफ्फर वॉज मेकिंग गमन एंड ही सेड, सही, आई वांट सम अ गुड एक्टर, इट्स नॉट अ बिग रोल बट ही शुड बी हैव अ लॉट ऑफ पैशन, ये वो। सो आई सेड आई विल गिव यू अ फर्स्ट क्लास एक्टर फॉर द रोल एंड आई gave him Nana Patekar.
1: Wow.
0: And Nana, it was such a small role, वो आया गया ऐसा ही रोल था, कुछ था नहीं उसमें। लेकिन वो पहली बार जो स्क्रीन पे आया वो गमन में आया मुजफ्फर के, और वो मैंने उसको मुजफ्फर से मिलवाया। खैर, लेकिन मेरी अपनी फिल्म में तो कहीं मौका ऐसा लगा नहीं कि उसको लिया जाए। और देन फॉर दिशा आई सेड कि नाना एक्चुअली, सच बताऊं तो मुझे परशुराम के रोल के लिए चाहिए था। परशुराम मतलब कुआं खोदने वाला
1: जी,
0: क्योंकि वो जो उसका एक हल्का सा पागलपन, उसका एक
1: जुनून,
0: एग्जैक्टली उसका जुनून बिल्कुल मुझे नाना में नजर आया कि ये जरूर कुआ खोदेगा 12 साल बिना रुके। तो मैंने नाना

0: को बुलाया नाना, आ गया मेरे घर और चटाई पे लेटे उसने स्क्रिप्ट पढ़ा एक ही दम में, जो एक टांग पे दूसरी टांग लेट के वो पढ़ता गया पढ़ता गया पढ़ता गया।
1: ये भी कितना सुंदर दृश्य है।
0: हाँ, और मैं आसपास मैं कुछ अपना करती रही, उसने कहा तुम करो तुम्हारा, मेरी तरफ मत देखो। और फिर पढ़ा उसने, बंद किया, फर्स्ट क्लास बना लो, करना रपन। हाँ, मैं करूंगा। तो मैंने कहा अरे वाह वाह बहुत अच्छा, कहता हाँ लेकिन परशुराम नहीं, मैं वसंत। ऐसे क्या वसंत, कैसे तुम वसंत की तो फिल्म के शुरुआत में शादी होती है और वो बहुत जवान है ये वो। तो नाने ने कहा कि बताओ क्या मैं 30 से ऊपर लगता हूँ। तो मैं चुप रही, फिर हमारी थोड़ी बहसबाजी हुई इस बात को लेकर, और आखिर में वसंत का रोल नाना ने किया तो जीत किसकी हुई जाहिर है।
1: मुझे लगता है पहली बार किसी ने आपको हराया होगा।
0: पहली बार तो नहीं लेकिन हाँ ऐसा कम ही मौका था, लेकिन उसने हराया। यस, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये भी मानना पड़ेगा कि ऐसा किसी ने भी नहीं कहा कि अरे वो बहुत बड़ा लगता है उस रोल के लिए। नहीं, वो सही लगता है अपनी जगह पे, उसने अच्छा काम किया। लेकिन हुआ क्या कि लोगों ने मुझे फिर बहुत आगाह किया, दादा को ले रही हूँ, देखो तुम्हें मालूम है ना वो झगड़ा करता है, बहुत उल्टी खोपड़ी का आदमी है और कभी कभी गुस्सा आता है तो इतना वो शोर मचाता है, ये करता है वो करता है। मैंने कहा देख लूंगी। और वाकई में फिर एक बार ऐसा हुआ कि बकुरी गांव में हमारा शूटिंग था और वो किसी बात को लेकर खूब बिगड़ गया, खूब चिल्ला चिल्ली ये वो, मैं नहीं करूँगा, मैं जा रहा हूँ फला। तो फिर विनी मेरी बेटी, विनी की नाना की अच्छी दोस्ती थी, तो विनी ने फिर जाके उसको समझाया दादा बाबा करके, फिर वो शाम तक ठंडा हो गया, फिर शूटिंग चालू रही। ऐसे और एक बार कभी हुआ, अब वो मुझे डिटेल याद नहीं है। तो ये दो बार हुआ, दो बार निपटाया, दोनों बार हम बड़े डरे हुए थे और मैंने भी कि नाना ऐसा कहे ये वो, मन में ना होते हुए भी बड़ा प्यार से समझाने की कोशिश की, लेकिन वो ऐसे हुआ। फिर तीसरी बार डबिंग कर रहे थे हम, तैयार हो गई थी, शूटिंग पूरा हुआ था और अब डबिंग बाकी, तो बीआर में अगेन बीआर में डबिंग चल रही थी और किसी बात को लेके वो बिगड़ा स्क्रिप्ट, ये कहे ये वो करके चिल्लाने लगा। अब मेरा भी माथा ठनका और गुस्सा मेरा भी थोड़ा सा वो
1: खतरनाक वाला है,
0: खतरनाक वाला हो सकता है कभी कभी। तो फिर इस बार मेरा भी एकदम से मेरी घंटी बजी, फिर मैंने कहा नाना तुमको इस तरह पेश आना है तो यहाँ जगह नहीं है, बाहर हो जाओ एकदम, यहाँ कोई जगह नहीं है तुम्हारे लिए, और यहाँ अगर रहना है तो तमीज से पेश आना पड़ेगा वगैरह वगैरह जो भी है, तू मैं बहुत हुई। फिर कहता तुम मुझे बाहर निकाल रही हो, मैंने कहा हाँ बिल्कुल। तो गया दरवाजे तक, जा रहा हूँ वापस नहीं आऊंगा, मैंने कहा यही आइडिया है जाओ। तो गया और सब हक्का बक्का, अंदर 7-8 लोग थे हम बाकी, अब सब एक दूसरे को देख रहे, कह तो दिया जोर से। फिर किसी ने कहा अब क्या होगा, मैंने कहा एनीवे बाकी लोग अभी काम अपने पास है तो काम जारी रखते हैं। नाना फिर आ गया दरवाजा खोल के,
1: कितनी देर बाद,
0: कुछ 20 मिनट बाद, आधा घंटा बाद। मैंने कहा अरे तुम आने वाले नहीं थे आगे, कहते हाँ सुनो इसलिए आया हूँ तुम्हें बताने के लिए कि तुम औरत जात हो इसलिए बच गई, नहीं तो कोई ठिकाना नहीं था।
1: अरे बाप,
0: तो तुम औरत हो इसलिए बच गई करके धड़ाम से बड़ा ड्रामेटिकली निकल गया। तो निकल गया फिर अब चुप।
1: ये बहुत ड्रामेटिक सीन,
0: वेरी ड्रामेटिक। और फिर सबने कहा कि फलाने को कहें जाके, अब क्या दूसरे ने डबिंग करने का सवाल ही नहीं था और हाँ। वो ये कर सकता था बिल्कुल कायदे से, कानून के खिलाफ होगा। तो मैंने कहा नहीं सुनो देखते हैं जरा, अभी आज तो कुछ नहीं करेंगे, आज बाकी काम करेंगे देखते हैं। सब घर गए। अब मैंने कहा पता नहीं क्या होगा क्या होगा। सुबह सुबह बड़ी जल्दी फोन आया, फोन उठाया, सही नाना, अगर मैं नाना भूलते, बड़ी मीठी प्यारी आवाज हमेशा बोली कायरे नाना, मैं भी उतनी ही मीठी आवाज में, अगर आज कितनी वस्ता शिफ्ट है, कितने बजे की शिफ्ट है आप? तो मैंने कहा दो शिफ्ट है, एक 9 बजे और एक 3 बजे, तुम्हें कौन सी पसंद है? वो कहता मैं 3 बजे आऊं तो चलेगा? मैंने कहा हाँ हाँ जरूर चलेगा, आ जाओ, अच्छा मिलते हैं, बात खत्म।
1: मतलब क्या बात है,
0: प्याले में, मराठी में कहते हैं ना
1: प्याले में तूफान,
0: प्याले में तूफान वैसे वो हुआ, लेकिन ये अच्छा। तो अभी किस्सा खत्म नहीं हुआ
1: जी।
0: अभी फ्लैश फॉरवर्ड तो कुछ मेरे ख्याल से 15 साल बाद की बात होगी, मे बी इवन मोर, अब साल वाल मुझे याद नहीं रहते, लेकिन महाराष्ट्र टाइम्स से मुझे फोन आया कि इस साल का जीवन गौरव।

0: पुरस्कार हम नाना पाटेकर को दे रहे हैं।
1: जी जी।
0: मैंने कहा बहुत अच्छी बात है
1: जी,
0: तो मुझे क्यों बता रहे हैं आप? कहते इसलिए कि वो आपके हाथों देने का हमारा इरादा है, हमें बहुत अच्छा लगा, आप देंगी क्या? मैंने कहा दूंगी, जरूर दूंगी। हाँ, तो बड़े खुश हुए, अच्छा अच्छा तो फला वक्त ये वो आपको लेने आएंगे वगैरह। तो फिर मैं स्टेज पे गई और मैंने ये किस्सा सुनाया नाना का। मैंने कहा आज मैं हूँ तो एक छोटा सा किस्सा सुनाती हूँ, नाना भी खड़ा पास में। फिर बाद में मैंने कहा कि अंत में मुझे इतना ही कहना है कि देवा परमेश्वरा मला स्त्री जन्माला घातलं से फार उपकार केलेस, कारण आज मी म्हणून नानाला हा मुजरा देऊ शकतो।
1: बहुत शानदार, अद्भुत।
0: एंड आई गॉट अ स्टैंडिंग ओवेशन, सब लोग उठ के तालियां बजा रहे और नाना ने जो मुझे जब पिलाई, बहुत हंसा नाना, बहुत हंसे हम दोनों।
1: क्या बात है। उसका हिंदी बता देते हैं कि स्त्री के रूप में जन्म लिया, इसलिए आप बच गई और इसीलिए आज नाना को आप जीवन गौरव पुरस्कार दे पा रही
0: हैं। मानती हूँ कि हे भगवान, मुझे आपने स्त्री जन्म दिया, इसका लाख लाख शुक्रिया, ताकि आज मैं ये दे पाई।
1: बिल्कुल, क्या बात है। बड़े प्रेम से आपने नाना को याद किया। ये गाना सुनते हैं
0: जी। क्या बात।

0: रघुवीर यादव का इस फिल्म में आना भी एक घटना है।
1: रघुवीर यादव का मेरे समझ में नहीं आ रहा कि क्या मतलब है। रघुवीर मेरा हमेशा का बहुत लाडला एक्टर रहा है, बहुत ही प्यारा, एंड आई लव हिम एज अ पर्सन, आई लव हिम एज एन एक्टर। और इसलिए मैंने ये जब लिखी कहानी तो सोमा तो और कोई हो ही नहीं सकता था, रघु तो मतलब ओमपुरी का छोटा भाई
0: जी जी,
1: जो देखता है कि अपना भाई और भाभी कितने परेशान हैं और मैं बोझ बन के रह रहा हूँ, इसलिए वो बेचारा छोड़ के जाता है। तो रघु किसी और फिल्म में बिजी था
0: जी,
1: तो उसने कहा सही जी ये तो डेट बिल्कुल नहीं हो सकती किसी तरह, मैं बिल्कुल बुरी तरह फंस गए हो, मैं नहीं मना कर सही ये वो। मैंने कहा नहीं नहीं तुम किसी तरह पटा लो उनको।

0: ये वो, कहता हाँ कोशिश करता हूँ, लेकिन फिर मैंने कहा कोशिश मतलब, और नहीं हुआ तो फिर क्या करोगे, कहता है फिर तो आपको पटाऊंगा।
1: बिल्कुल मासूमियत इंटैक्ट।
0: और उसने किया रोल, और क्या रोल, बहुत सुंदर रोल किया, वेरी ही लिव्स द रोल, रियली लिव्स द रोल।
1: जी जी, और ये दिशा जिसकी बात हम कर रहे हैं, सई परांजपे की नजर में उनकी सर्वश्रेष्ठ फिल्म है।
0: जी,
1: आपने बीच में एक कहा था कि अगर आपके फिल्माए गए बेस्ट सीन की बात करें, तो मैंने चश्मे बद्दूर के जिस सीन का जिक्र किया था वो शामिल है,
0: वो एक है।
1: तो एक सहज जिज्ञासा है कि हाँ, बाकी कौन से सीन है?
0: बाकी दो जो है वो दिशा के ही है।
1: जी
0: हाँ, एक वो है जहाँ परशुराम को पानी लगता है कुएं में।
1: वाह वाह वाह,
0: क्या सीन है, मैं बताऊं कि परशुराम खोद रहा है कुदर से, और वो देखता है कहता है है है, फिर हाथ डालता है देखता है तो कीचड़, कहता है पानी पानी, और चिल्लाने लगता पानी लग गया मेरे कुएं में, पानी लग गया, हौसा मतलब बीवी का नाम, बच्चों के नाम। और इधर घर में शबाना मतलब उसकी बीवी हौसा अपने बेटी के बाल बना रही है, वो छोटी कंघी होती है ना वो मराठी, और वो एक हमारा करंडा होता है ये रखने का, वो तो वो लेके, तो एक छोटा बच्चा आता है कि कद्दू की माँ कद्दू की माँ, उसके छोटे बच्चे का नाम कद्दू है, कद्दू की माँ कद्दू की माँ, वहां परसा चाचा चिल्ला रहा है कुएं पे पानी लग गया करके, तो ये कहते हे राम मुझे मालूम ही था पगला ही गया आखिर। और वो बेचारी इतनी वो तैयार है ये झेलने के लिए कि अब मियाँ की तो फाइनली घंटी बज गई, इज गॉन मैड। तो वो उठती है उसके पीछे बच्चे, और दौड़ दौड़ के वो कांटे कटोरे में, वो कांटे लगता रहता है, दौड़ के बेचारे जा रहे कुएं की तरफ, और फिर वो देखते हैं नीचे, और वो फिर दिखाता है कीचड़, और ये कहते हैं कुआ, एंड देन दे कांट बिलीव इट, एंड देन दे गो इन, एंड देन यू नो वो पानी लेके पहले तो अपना माथे पे लगाती है, फिर बच्चे एक दूसरे को लगाते हैं, पानी डालते हैं एक दूसरे पे, और फिर रघुवीर को पोस्टकार्ड एक आता है, और वो पोस्टकार्ड के जैसे हमारे यहाँ शुभ तिलक करके केसर का लगाते हैं, किसी की शादी का ये बताना हो या कुछ है केसर का, तो इसे मिट्टी का लगाया हुआ है
1: नीचे
0: के, कि ये जो शुभ तिलक है ये अपने कुएं की मिट्टी का है पानी, तो और फिर वो कुएं का ये होता है। तो फिर शबाना जो आज तक गालियां देती है कुएं को, वो कहती है कुआ माता आपको हमारी वगैरह वगैरह करके बोलती है, तो वो छोटा बच्चा कहता है कि बाबा सौत माता बन गई।
1: छोटा बच्चा कहता कितना सुंदर है,
0: तो दैट्स सो आई जस्ट लव दिस फिल्म बिकॉज आई थिंक इट्स अ वेरी true film and it keeps you absorbed and it's a very serious subject but it is so entertaining in the right sense, I mean you know, उसमें बहुत हंसी मजाक भी है, बहुत human give and take है, बहुत चीजें हैं, मैं सोचती हूँ उसमें सचमुच मैंने अपना सब कुछ डाला है। दिशा
1: जी, एक और किसी दृश्य की बात आप करना चाह रही थी।
0: हाँ, वो दृश्य बहुत ही कमाल का दृश्य है कि एक दिन ऐसा होता है कि नाना नाना भी अब पहुंच गया है, नाना मतलब वसंत, वसंत और सुमा अब दोनों दोस्त बंबई पहुंच गए हैं, और वसंत की बेचारे की नई नई शादी हुई है, लेकिन उसको छोड़ना पड़ता है गाँव, पैसे ही नहीं है, और वो तरसता रहता है बीवी के लिए, बहुत प्यार करता है उससे। फिर एक उनका मिल वाला है जिसका एक छोटा कमरा होता है कहीं, तो वो कोई कहता है कि अरे वो बापू का एक कमरा है, वो कभी कभी दे देते हैं किसी को जरूरतमंद को, तुम क्यों नहीं भाभी को बुलाता यहाँ वगैरह वगैरह, तो बापू को पूछता है, कहता है हाँ हाँ बुलाओ बेशक बीवी को। तो एनीवे वो आती है फूलवंती उसकी बीवी, वो आती है, और एक शाम को फिर वो कमरा उसका हाँ, और वो दिखाता है, जो बहुत अच्छा एक्टर है जिन्होंने कमरे का मालिक बताया, वो किशोर नांदलस्कर
1: जी,
0: हाँ,
1: जी
0: ग्रेट कॉमेडियन, तो किशोर नांदलस्कर ही हैज द कमरा, ही सेज कि हाँ भाभी पानी आता है सुबह 4 बजे हाँ, और फिर वो निकल जाता है, फिर ये दोनों बहुत मशगूल किए प्राइवेसी और इतने दिनों बाद वगैरह वगैरह, और वो दोनों लेटते हैं इतने में खट खट खट खट खट खट, तो दरवाजा खोलो खोलो दरवाजा, होता है कि कौन है रात के इस वक्त, तो कौन है हमें और कौन है, तो जिसका कमरा है उसकी बहन कोल्हापुर से आई है अपने बच्चे लेकर, और टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट इन दोनों को खाली करना पड़ता है फिर, और अब दिस इज द सीन दैट आई एम टॉकिंग अबाउट
1: जी,
0: दे रीच द गाड़ा, गाला के बाहर एक गली सी है छोटी बहुत पतली गली, वहां वो फुलवंती सर पे पल्लू और इसके साथ ट्रंक उसका छोटा, वसंत और सोमा भी साथ है, और वो रो रही है, और वो कहते हैं कि

0: 40 बंदों के साथ एक कमरे में मैं सोऊं, तो वो कहता है सोमा और चारा भी तो नहीं है ना भाभी, जिसे और कुछ तो चारा होगा, तो वसंत कहता है सड़क पे सोना होगा, फुटपाथ पे सो सकते हैं वगैरह। तो सोमा कहता है रुको, अंदर आता है और अंदर पर एकदम सब बंदे कोई ये बनियान पहना हुआ, तो छोटी छोटी अपने कच्चे में है चड्डियां पहने, और वो सब चिल्ला चिल्ली तो कहते हैं क्या एक औरत यहाँ, ये कैसे हो सकता है, नहीं हम ये नहीं होने देंगे, आज एक आई ये कल ये दूसरा कोई ले आएगा वगैरह वगैरह। फिर वो सयाजी शिद्दे भी है उन गाले वाले में, वो कहते हैं अरे लानत भेजी तुम पर, तुम अपनी गांव की बहन को सड़क पे सोने दोगे वगैरह वगैरह, कहते हैं लेकिन जगह कहाँ है, तो फिर सोमा कहता है मैं बाहर सो रहा हूँ तुम मेरी जगह वगैरह वगैरह, फिर सब मानते हैं, कहते हैं रुको रुको रुको। और फिर हमने ऊपर कैमरा लगाया था क्योंकि एक वहां ये था जहां कैमरा रख के हम ऊपर से देख रहे थे, तो टॉप शॉट था और सब ये लोग आधे लोग सोए हुए हैं, और ये भगदौड़ मची है कि अब औरत आएगी तो कोई पैजामा पहन रहा है, कोई ये डाल रहा है, कोई एक लुंगी के लिए दोना खींचा खींचा होती है, एक जना तो एक सोया हुआ आदमी उसको उठो उठो कहते हैं वो गहरी नींद सोया, तो उसका चटाई के साथ उसको ऐसे ऐसे लेते हैं, ब्यूटीफुल इट्स वेरी फनी दिस थिंग। तो ये सब होके फिर नाना और ये दोनों चुपके से अंदर आते हैं, सब सन्नाटा, अब सब लेट जाते हैं, और फिर नाना सोता है, वो भी सोती है, और जैसे दोनों सोते हैं उनके बगल में एक बुजुर्ग उनमें से जो है वो उनकी तरफ पीठ करता है और साइड वाले को इशारा करता है, फिर वो भी पीठ करता है और सब लोग उनकी तरफ पीठ करते हैं ताकि थोड़ी प्रिवेसी उनको मिले, मतलब ये क्या है कि प्रिवेसी है पीठ करने से, लेकिन उतने में वो कोशिश करते हैं अपनी तरफ से शराफत दिखाना, तो सब एक एक एक एक करके ऐसे, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल, यू सीन इट फ्रॉम द टॉप, सब एक करते हैं और फिर सन्नाटा है। ठीक, आई थिंक दैट्स वन ऑफ माय फेवरेट शॉट्स।
1: क्या बात, अद्भुत दृश्य, राजश्री सावंत थी वो एक्ट्रेस।
0: राजश्री सावंत
1: जी, कमाल। अब पपीहा है जो चिपको आंदोलन पर बनी, हाँ। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि पपीहा का जिक्र करें।
0: तो पपीहा का जल्दी जल्दी मैं बताती हूँ, ये फिल्म कह सकते हैं कि अपने भारत के वन अरण्य, हाँ, जंगल और आदिवासी, इनको ये मेरा एक सलाम है।
1: वाह,
0: हाँ, इसका ये पढ़ के
1: चिपको आंदोलन की
0: आंदोलन का मैंने कहा ये तो कुछ इसको तो करना ही चाहिए, तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं अपन एक फेरी टेल फॉर एडल्ट्स करें, हाँ, बड़ों के लिए एक परी कथा, हाँ? तो अभी तक मैंने कभी प्यार का ट्रायंगल नहीं हैंडल किया था, तो एक प्यार का ट्रायंगल करें, एक कोना फॉरेस्ट ऑफिसर हीरो जिसके लिए वन और जंगल और उनकी रक्षा यही सब कुछ है, ही इज ऑन अ मिशन, मिलिंद गुना जी, देन द गर्ल विनी माय डॉटर हु इज अ सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट हु स्टडिंग समाज
1: मानवी की,
0: हाँ, लेकिन आदिवासियों की,
1: जी,
0: शी स्टडिंग ट्राइबल्स और इसलिए वो इस जंगल में आई है, और तीसरा एंगल है फॉरेस्ट, खुद जंगल, तो ये इन तीनों को लेके ये ऐसे एक कहानी ये की, और बहुत आदिवासी है उसमें नेचुरली, तो अब उस पे एक जैसे प्रॉब्लम्स आते हैं और वो कैसे सुलझते हैं, ये भी एक मजे का बता सकती हूँ इस फिल्म को लेकर, कि हमने सोचा कि ये आदिवासी तो दिखाया है बड़े चाव से कि हाँ आदिवासी है, लेकिन अब कौन से आदिवासी, देर आर 300 आदिवासी ट्राइब्स इन इंडिया, भील या डागर या महादेव कोड़ी या वारली या कौन, मतलब इतने हैं और उनकी भाषाएं अलग है थोड़ी सी, उनके रिवाज अलग है, तो क्या करे फिर, बहुत और गलत भी नहीं करना चाहिए, इफ यू आर मेकिंग अ फिल्म यू कांट टेक लिबर्टीज विद एक्चुअल फैक्ट। फिर सोचा कि कह तो रहे कि ये परिकथा है बड़ों के लिए,
1: जी,
0: तो व्हाई नॉट टेक लिबर्टी एंड हैव एन जेनेरिक ट्राइबल, यू ना भींड है ना भील है ना महादेव कोड़ी है, वो ट्राइबल है बस, एंड ट्राइबल्स हैव अ वेरी यूनिक कॉमन फैक्टर, दे आर ऑल वेरी इनोसेंट,
1: yes,
0: they're all very believing, huh? And they're all very scared, insecure, and they're all very helpful and very loving. So, ये सब जो है, तो वो सब लेके हमने tribals तो बना दिए, और जंगल को भी जूटी बूटी का जंगल किया, मंतरबन नाम दिया जंगल को मंतरबन,
1: जी,
0: और फिर भाषा, भाषा क्या करें, फिर ये सोचा कि एक नई भाषा बनाई जाए, क्योंकि वो जो हर कहीं हम गए और आदिवासियों से बोले।

0: बनाया और फिर वो इतना मुझे इरिटेशन है, तो गलतियां निकालते थे, नहीं नहीं सही, वो न्यूट्रल है, ये नहीं स्त्रीलिंग ही नहीं है पुलिस। अरे चुप कर यार, इससे सही भाषा थोड़ी है ना।
1: गजब गजब गजब
0: इतना सीरियसली वो लेते थे, अरे नहीं
1: जी।
0: नहीं वो गलत बोला गलत बोला। मैंने कहा भाषा ही गलत है तो क्या गलत बोला। तो एनीवे तो बहुत मजा आता था वो सब,
1: जी
0: हम जंगल में वो किया और वो फैंटास्टिक, इट वाज अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। इट वेंट टू वन फेस्टिवल इन इटली,
1: जी
0: बट अनफॉर्चुनेटली प्रोडक्शन में लकीली मेरा जेब का पैसा नहीं खर्च हुआ, लेकिन हमको मिनिस्ट्री ने दिया काफी, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट, दैट वेंट ऑफ वेरी वेल एंड इट हैड अ लॉन्च ऑन दिल्ली दूरदर्शन।
1: जी
0: तो वो जेब से गया नहीं, लेकिन फिल्म ने कमाया नहीं कुछ और दिखाई भी नहीं गई, लेकिन उसकी कैसेट्स बिकती थी बहुत, कैसेट्स तरह तरह के वन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स में या फॉरेस्ट के शिक्षा केंद्रों में या स्कूलों में कॉलेजों में, ऐसे बहुत कैसेट्स खरीदे लोगों ने
1: जी
0: और द फिल्म वॉज यूज फॉर वर्कशॉप्स
1: जी
0: अलॉट।
1: ये गाना सुनते हैं।
0: जी क्या बात।

0: जीवन की नाटकीयता की एक मिसाल और है इस फिल्म से जुड़ी हुई, और वो ये है कि चुनाव में जिस व्यक्ति ने आपको हराया था।
1: यस यस,
0: मैं पूरी नहीं करूंगा ये बात, आप ही बताएंगी।
1: जब कॉलेज में मैं थी तो पहली बार मैंने जो एक प्ले डायरेक्ट किया, अंग्रेजी प्ले था, डियर डिपार्टेड, विच वन द बेस्ट इंटर कॉलेजिएट प्राइज फॉर द बेस्ट प्ले। आई वन द बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड एंड आई ऑल्सो एक्टेड इन दैट प्ले, आई वन द बेस्ट एक्ट्रेस। तो ये हो गया। तो एनीवे तब थोड़ा सा हौसला बढ़ गया। मैंने कहा दे यूज टू बी डिफरेंट इलेक्शंस इन द कॉलेज, हाँ, फॉर डिफरेंट पोस्ट, दे वर लाइक स्पोर्ट्स सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी, लेडीज रिप्रेजेंटेटिव, फाइनेंस का। सो देयर वाज अ पोस्ट कॉल्ड सेक्रेटरी एंटरटेनमेंट। सो

0: आई सेड आई वॉन्ट टू स्टैंड फॉर दैट, तो लोग हक्का बक्का नहीं, लेकिन आज तक कोई लड़की नहीं कभी ये पोस्ट के लिए खड़ी है। मैंने कहा क्यों, क्या ऐसा कानून थोड़ा है कि लड़की नहीं है? नहीं नहीं ऐसा नहीं, लेकिन लेडीज रिप्रेजेंटेटिव है ना, तो उसके लिए खड़ी रहो। मैंने कहा मुझे नहीं लेडीज रिप्रेजेंटेटिव होना, ये दिस इज कंसर्निंग द वर्क दैट आई डू प्लेज वगैरह, सो आई वॉन्ट टू स्टैंड फॉर दैट। And I got elected in a very thumping majority. बहुत क्योंकि वो अजूबा था ना उन दिनों, लड़की खड़ी वगैरह वगैरह, और मेरा ये प्ले भी जीता था, तो ये हुआ। अच्छा, उससे एक बड़ी पोस्ट थी ड्रामा सेक्रेटरी, तो अगले साल मैंने कहा ड्रामा सेक्रेटरी के लिए
1: चुनाव लड़ा जाए,
0: तो वो नाम दिया, और अब पूरा मामला पलट गया। सब लड़के कहने लगे ये लड़कियां सर पे बैठ जाती है, जरा सा मौका दो तो अब ये ड्रामा सेक्रेटरी बनेगी। तो देन देयर वाज अ हवा चलती है ना, जैसे हवा चली कि इसको हराना है, तो मुझे अच्छी मेजोरिटी से हराया, बहुत बुरी तरह पिटाई हुई मेरी। तो अब फ्लैश फॉरवर्ड, और ये हम इसका कर रहे थे, एंड मिनिस्ट्री हैड गिवन अस देयर ब्लेसिंग्स की करो फिल्म वगैरह,
1: पपीहा बनाओ,
0: और मैं फिर जंगल का सबसे कौन फॉरेस्ट ऑफिसर सबसे नंबर वन था माशेलकर, उनके पास पहुंच गई, तो बड़ा सीनियर सा आदमी और बहुत तमीज वाला वगैरह वगैरह, हमारे अच्छी बात हुई। फिर उन्होंने कहा पहचाना नहीं, मैंने कहा नहीं नहीं पहचाना। He said क्यों पहचानोगी? क्या क्या? He said वो फर्ग्यूसन कॉलेज अबू कमक साल, हो मी तुमच्या वर्गात होतो, मैं आप ही के बैच में था, आप ही के क्लास में मैं। ओह, मैंने कहा। He said yes of course, and he said you were standing for the drama post, and he said someone forget his name stood opposite me who won. He said I was his number one supporter. तो and we saw to it that you lost. So I said अच्छा तो ये है वगैरह, फिर बड़ी हंसी मजाक की बातें हुई। He said अच्छा तो मुझे अब कुछ पापक शालन करना चाहिए, I have to make up for that. So I said हाँ करो। He made everything possible. Wherever we went, we had the forest guest house to stay. We had a forest expert committee to guide us. We had a forest retinue, bodyguards, etc. We had jeeps. क्या नहीं बोलो, and permission everywhere. ताड़ोबा जाना है जाओ, संजय गांधी उद्यान जाओ, महाबलेश्वर जाना है जाओ, नागजीरा जाना है जाओ, you know. So we shot all over, fantastic, and it really went up very well.
1: क्या बात है!
0: It's sad that the film didn't. People have not seen it so much.
1: जी जी जी. अभी हाल ही में आपको जी गौरव अवार्ड मिला आपके नाट्य कर्म के लिए. आपने अभूतपूर्व काम किया है, अप्रतिम काम किया है. मुझे लगता है कि इस लंबी बातचीत के आखिर में कुछ बातें आपके बहुत महत्वपूर्ण नाटकों की कर ली जाए.
0: बात यह है यूनुस कि ये मेरे नाटकों के बारे में मैंने बहुत अच्छा लिखा है, और क्यों नहीं आप वो पढ़ते हैं, ये मैं रिक्वेस्ट करूंगी. और अब मेरी ये जो किताब है, जो मेरे क्या कहते हैं, जो मेरे क्रिएटिव एक्सपीरियंस पे लिखी है, तो वो अब हिंदी में छप रही है
1: जी.
0: और वो पब्लिकेशंस डिवीजन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा छपी जाएगी. तो मैं आपसे बहुत प्यार से रिक्वेस्ट करती हूँ, बल्कि इनवाइट करती हूँ आपको कि आप उसमें पढ़ें, मैंने बहुत तफसील से लिखा है.
1: बिल्कुल बिल्कुल. और हम अपने सुनने वालों को ये भी बताना चाहते हैं कि ये जो आपकी किताब है ये मराठी में उपलब्ध है, और उसके अलावा ये किताब अंग्रेजी में भी उपलब्ध है
0: जी,
1: और अब हिंदी वर्जन भी आ रहा है.
0: हाँ, मराठी में उसका नाम है सय, जो राजहंस प्रकाशन ने किया है. फिर अंग्रेजी हार्पर कॉलिंस की छपी है. इट्स कॉल्ड अ पैचवर्क क्विल्ट. अ पैचवर्क क्विल्ट इसलिए कि वो टुकड़े टुकड़े जोड़ के क्विल्ट बनाया जाता है ना सुंदर सा.
1: जी, जी.
0: तो मेरी माँ कहती थी हमेशा कि तुम एक चीज पे क्यों नहीं ध्यान देती हो, आज नाटक, कल टेलीविजन, परसों फिल्म. हाँ, ये 50 एक ना भर मारा भर चिंदिया, दैट मीन्स ना एक कुछ ठीक से करती है, ये टुकड़े टुकड़े जमा कर बैठती है. तो इसलिए मैंने कहा कि ये टुकड़े जोड़कर मैंने ये क्विल्ट बनाया है, तो पैचवर्क क्विल्ट. और अब ये हिंदी में जो छपरी है उसके दो टाइटल्स हैं, अभी पक्का नहीं तय हुआ. आप बताओ कौन सा आपको अच्छा लगता है. एक है सहनामा या सही नामा, और दूसरा है सही बात या सही बात.
1: क्या बात है, अब ये तो बड़ा मुश्किल है, हम अपने श्रोताओं से कहते हैं कि वो तय करेंगे
0: कि क्या नाम होगा। आई लव टू हियर व्हाट दे फील, आई ट्रूली वुड सिंसियरली, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस
1: जी। सही जी, एक बात कहना चाहता हूँ, आज से तकरीबन

0: 20 बरस पहले
1: हाँ
0: मैंने बड़े डरते डरते आपसे फोन पर बात की थी और आपसे
1: हाँ
0: इंटरव्यू चाहा था।
1: हाँ
0: तब मैं बहुत नया था
1: हाँ
0: और तब भी आपसे डरता था, अब भी डरता हूँ।
1: अभी तो मैं ये कहूंगी कि ऐसे ही आप डरते रहिए, अच्छी बात है। ये अच्छा लगा कि कोई मुझसे डरता है
0: जी। तो आपने कहा था कि इंटरव्यू करने का अभी मन नहीं है,
1: बर
0: आगे कभी बात करेंगे।
1: तो किए ना,
0: मुझे पता नहीं
1: वादा
0: था
1: निभाया
0: कि 20 साल इस वादे में लग जाएंगे। मैं बहुत खुश हूँ कि आपने इतनी लंबी बात इतने धीरज के साथ की। थोड़ी ज्यादती है इतने
1: अच्छा
0: सारे सवाल कर, बहुत
1: क्या,
0: बहुत शुक्रिया।
2: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आप सुन रहे थे निर्देशिका और पटकथा लेखिका पद्मभूषण सई परांजपे से यूनुस खान की बातचीत की 4वीं और अंतिम कड़ी। संपादन नेहा शर्मा और मनीषा सिंह का। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेज श्री कामले। अगले सप्ताह फिर हाजिर होंगे किसी और मशहूर हस्ती की यादों के उजाले लेकर। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
3: उजाले उनकी यादों के।
4: मैदान में विश्व आदिवासी दिवस के उद्घाटन के अवसर पर लोगों को संबोधित कर रहे थे। राज्य में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों और राज्य सरकार के बीच आज नए दौर की बातचीत हुई। बातचीत का ये 6वां दौर रांची स्थित राज्य अतिथि गृह में हुआ। इस बीच छात्रों का प्रदर्शन रविवार को 16वें दिन भी जारी है और 6 प्रदर्शनकारी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर है। प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद आदित्य साहू ने आज रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और पार्टी के मुख्य सचेतक नवीन जायसवाल के साथ रांची स्थित जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंचकर प्रदर्शनकारी छात्रों से मुलाकात की। इस मौके पर श्री साहू ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आंदोलन के पहले ही दिन छात्रों से मिलना चाहिए था, लेकिन वह चुप रहे। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने राज्य के सभी सरकारी और निजी अस्पतालों को आंदोलन के दौरान बीमार पड़ने या अस्पताल में भर्ती होने वाले विद्यार्थियों के बेहतर और निःशुल्क इलाज के निर्देश दिए हैं। मंत्री ने कहा है कि बीमार पड़ने वाले छात्रों के इलाज से संबंधित आवश्यक खर्च का वहन राज्य सरकार करेगी। गुमला जिले से पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय आपराधिक गिरोह के 11 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। जिले के पुलिस अधीक्षक हरीश बिनजमा ने बताया कि इस गिरोह के अपराधी झारखंड समेत अन्य राज्यों में आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर आज सिमडेगा, बोकारो, गोड्डा, जामताड़ा और पाकुड़ समेत अन्य जिलों में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। सिमडेगा के परमवीर अल्बर्ट एक्का स्टेडियम में आयोजित रंगारंग कार्यक्रम में बड़ी संख्या में उपस्थित लोगों ने मांडर की थाप के साथ सुंदर लोक नृत्य का आनंद लिया। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
5: ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है, FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, संध्या के 5:02 हुए हैं। आइए सुनते हैं रोजगार एवं विकास के पथ प्रदर्शित से संबंधित कार्यक्रम नया संकल्प नई पहल।

कार्यक्रम नया संकल्प नई पहल में आप सभी का स्वागत है। साथ ही अंजलि का नमस्कार जोहार। उम्मीद है दोस्तों आप सभी अच्छे से होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे और उसे सही ढंग से पूरा कर रहे होंगे। कोई भी काम को मिलकर खुशी से किया जाए तो वह काम आसानी से सही समय पर पूरा हो जाता है। तो दोस्तों कार्यक्रम में आगे ढेर सारी बातें होंगी, जानकारी भी सुनवाएंगे। अभी साथ मिलकर सुनते हैं ये गीत और साथ ही जरूरी

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: दोस्तों, गीत और जरूरी संदेश के बाद कार्यक्रम में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए हम लोग कुछ न कुछ काम करते हैं ताकि अच्छी आमदनी हो। दोस्तों, आज हम बात करेंगे विकासशील भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन के बारे में। दोस्तों, इसे संक्षेप में भीभीजी रामजी अधिनियम 2025 कहा जाता है। इसकी शुरुआत 1 जुलाई 2026 में हुई। यह नई ग्रामीण योजना प्रत्येक वर्ष ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन के बजाय 125 दिनों के अकुशल मजदूरी रोजगार की वैधानिक गारंटी देती है। दोस्तों, इस योजना का मुख्य उद्देश्य है रोजगार के दिनों को बढ़ाना। रोजगार गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की सुरक्षा, आजीविका के साधन को ग्रामीण हसो इंफ्रास्ट्रक्चर और आपदा प्रबंधन से जुड़े टिकाऊ परिसंपत्तियों का निर्माण करना, ग्रामीण विकास की योजनाओं को देश के दीर्घकालिक विकास लक्ष्य विकसित भारत 2047 के साथ जोड़ना भी इसका उद्देश्य है। इन सब के साथ साथ बायोमेट्रिक उपस्थिति, जियो टैगिंग और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए भ्रष्टाचार रोकना और कामकाज में पारदर्शिता लाना है। ग्राम पंचायत स्तर पर विकसित ग्राम पंचायत योजना तैयार करके जमीनी स्तर पर विकास गति देना है। इस योजना की जानकारी लेकर ग्रामीण अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, इस बारे में आगे भी बातचीत करेंगे। अभी आपको एक पूर्व प्रसारित भेंट वार्ता सुनवा रहे हैं। स्वच्छ भारत मिशन भेंट वार्ताकार हैं राम कुमार और इनसे बातचीत कर रहे हैं प्रकाश कुमार राणा।
2: सफलता के लिए बहुत सी परंपराओं और कुरीतियों को तोड़ना होगा, विभिन्न समुदायों की भागीदारी बढ़ानी होगी और सरकार को हर स्तर पर गंभीर प्रयास करने होंगे। महात्मा गांधी ने कहा था, जन सुविधाएं स्वतंत्रता से भी अधिक महत्वपूर्ण है। यह महात्मा गांधी के स्वप्न को साकार करने का समय है। तभी हम खुले में शौच करने की शर्मिंदगी से मुक्त होकर भारत को सही अर्थ में स्वतंत्रता की ओर ले जाएंगे। इसी संदर्भ में आज हमारे साथ हैं पेयजल स्वच्छता प्रमंडल हजारीबाग के राम कुमार जी, जो कि ग्रामीण स्वच्छ भारत मिशन के जिला समन्वयक हैं। तो राम कुमार जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार।
3: नमस्कार।
2: तो सर, आपसे हम जानना चाहेंगे कि ये स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण जो है, ये योजना क्या है?
3: ये स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण भारत सरकार की एक अति महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका मूल उद्देश्य हमारे ग्रामीण परिवेश को खुले में शौच से मुक्त करना है। एक ऐसी कुप्रथा जो वर्षों से चली आ रही है, जिससे हमारा जीवन स्तर लगातार गिरता चला जा रहा है। ग्रामीण परिवेश का जीवन स्तर में हम मूल चूल सुधार, आवश्यक सुधार जो हम चाहते हैं वो नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। इससे निजात पाने के लिए स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की योजना चलाई जा रही है, जिसके तहत सभी ग्रामीण परिवेश को सदा के लिए खुले में शौच मुक्त करने का अभियान स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत चलाया जा रहा है।
2: ये स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण जो है, ये कब लागू किया गया और इसका क्रियान्वयन कैसे करते हैं आप?
3: ऐसे

0: योजना हमारी विभिन्न नामों से 1996 से चल रही है, लेकिन 2 अक्टूबर 2014 से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण कार्यक्रम की शुरुआत की गई एक नए रूप में, एक नए उद्देश्य के साथ, जिसका मूल उद्देश्य था सिर्फ शौचालय निर्माण न करके ग्रामीण परिवेश को खुले में स्वच्छ से मुक्त करना, जिससे ग्रामीणों की ग्रामीण परिवेश को एक स्वच्छ एनवायरमेंट दिया जा सके और उनके जीवन स्तर में अपेक्षित सुधार प्राप्त किया जा सके।
1: इसमें कैसे लाभुकों को शामिल करते हैं और कितना प्रोत्साहन राशि दी जाती है, इसका क्या तरीका है?
0: इसके तहत 12,000 की प्रोत्साहन राशि ऐसे लाभुक जो जिनके पास 5 एकड़ से कम जमीन है, जिसे हम सीमांत किसान और लघु किसान कहते हैं, जिनके पास भूमिहर जो मजदूर हैं, जो भूमिहर मजदूर हैं, दूसरे से जगह से वासित हैं उस गांव में, सभी वो SC ST हैं, अनुसूचित जाति जनजाति के परिवार हैं, फिजिकली हैंडीकैप हैं और विधवा परिवार जो विमेन हेडेड फैमिली है
1: जी।
0: ये सभी लोग इस लाभुक की कैटेगरी में आते हैं। इसके लिए वर्ष 2012 में एक बेसलाइन सर्वे किया गया, जिसमें ऐसे लाभुकों को चिन्हित किया गया जिनके पास शौचालय की सुविधा नहीं है और वो शौचालय बनाने में असमर्थ है। इस बेसलाइन 2012 के अनुसार ही ऐसे लोगों को शौचालय उपलब्ध कराने के लिए सरकार स्वच्छ भारत मिशन के तहत 12,000 रूपये की प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराती है
1: जी। खुले में मल त्याग खासकर महिलाओं का अपमान है और उनके स्वाभिमान पर खुली आघात है। इससे पता चलता है कि साफ सफाई केवल स्वास्थ्य का ही मुद्दा नहीं, बल्कि यह जीवन जीविकोपार्जन और इन सबसे ऊपर मानवीय गरिमा को भी प्रभावित करता है। तो आप बताएं कि ग्रामीण स्वच्छ भारत मिशन का क्रियान्वयन कैसे करते हैं और लाभुक को लाभ कैसे पहुंचता है?
0: इसके लिए क्या करते हैं कि हम लोग प्रखंडों को, पंचायतों को चयन करते हैं, ग्राम सभा के द्वारा ये चयन होके आता है, जो मुखिया काफी एक्टिव होते हैं, जहां के ग्रामीण काफी एक्टिव होते हैं, उनको प्रायोरिटी में चयन किया जाता है। वित्तीय वर्ष 15-16 में इस जिले के सभी 16 प्रखंड पंचायतों का चयन इस हेतु किया गया था, ODF हेतु लक्षित किया गया था। इसी दौरान हमारे उपायुक्त महोदय के द्वारा और ग्रामीणों के सकारात्मक पहल के कारण चमकता चुरचू अभियान चुरचू प्रखंड को ODF करने का कार्यक्रम चलाया गया। विगत 2 माह से निरंतर प्रयास करके लगभग शौचालय निर्माण का कार्य सभी चिन्हित लाभुकों के लिए चमकता चुरचू अभियान के तहत चुरचू में करा लिया गया है। इसके कार्यान्वयन की पद्धति यही है कि हम लोग पहले जो चिन्हित लाभुक हैं उनके अनुसार ग्राम जल स्वच्छता समिति को 12,000 की राशि उपलब्ध करा देते हैं और उस 12,000 राशि को उपलब्ध कराने के बाद ग्राम सभा के द्वारा बैठक की जाती है कि ऐसे लाभुक जो अपना शौचालय स्वयं बनाना चाहते हैं, बनाने को इच्छुक हैं, जो चिन्हित परिवार में आते हैं, जो बेसलाइन सर्वे में जिनका नाम है, उनको कहा जाता है कि भाई आप अपना शौचालय बनवा लो और जो पहले शौचालय बनाएगा उससे पहले उसकी राशि उपलब्ध होगी। तो पहले आओ पहले पाओ का ये एक रेस टाइप का, एक कंपटीशन टाइप का लोगों में किया जाता है, ताकि एक देखा सीखी लोग सीख सकें और अपना अपना शौचालय बना सकें। जहां तक देखा गया शौचालय की मांग बहुत देखी जाती है, हर कोई चाहता है कि मेरा शौचालय बने, लेकिन शौचालय के उपयोग की बात आती है तो लोगों में थोड़ा सा आनाकानी की भावना आ जाती है। तो शौचालय निर्माण में एक पद्धति यह है कि हम ग्रामीणों को, ग्राम जल स्वच्छता समिति को राशि उपलब्ध कराते हैं, वहां से जब सभी लोग शौचालय अपना बना लेते हैं, सरकारी प्रक्रिया के तहत जांच हो जाती है, मुखिया सत्यापित करते हैं कि भाई शौचालय इनका बन गया और इसकी लागत कम से कम 12,000 है, हमारे कनीय अभियंता भी इसका 100% सत्यापन करते हैं, उसका फोटोग्राफ होने के बाद 12,000 की राशि कोई समारोह आयोजित करके माननीय चुने गए पंचायत प्रतिनिधियों के द्वारा लाभुकों को उपलब्ध करा दी जाती है।
1: तो क्या वे अपने जमीन में करते हैं या तो?
0: नहीं, शौचालय का निर्माण सिर्फ और सिर्फ अपनी जमीन पे की जानी चाहिए और वही हम लोग प्रमोट भी करते हैं। अगर वो दूसरे की जमीन पे करेंगे तो फिर कोई मतलब नहीं होगा, वो उसे अक्वायर कर लेगा तो दिक्कत होगी उनके लिए। तो बेहतर यही होता है कि अपने जमीन पे ही लोग बनाएं और अभी तक तो ऐसा ही देखा गया है कि लोग अपनी जमीन का ही उपयोग अपना शौचालय बनाने के लिए करते हैं।
1: खुले में शौच करने से क्या क्या दुष्परिणाम देखने को मिलता है और इसके विषय में आप क्या कहना चाहिएगा?
0: एक बार शौचालय बनने के बाद लोगों को एक बार समझ में आ जाता है कि भाई ये शौचालय क्यों बनाया गया, उनको ये बात समझाने की जरूरत पड़ती है। कई बैठकें आयोजित की जाती है, बैठकों में हम चर्चा करते हैं कि अगर आप खुले में शौच को जाते हैं तो इस खुले में शौच जाने की वजह से जो हमारी जो बच्चियां हैं उनका हाइट हम लोग देख रहे लगातार गिरता चला जा रहा है
1: जी।
0: तो अभी एक किसी पत्रिका में मैंने पढ़ा था, WHO का सर्वे आया था, उसमें बताया गया था कि लड़कियों का कद कम होने का एक बहुत बड़ा कारण है ये खुले में शौच जाना। इसमें जो कृमि है, इसमें जो माइक्रोब्स हैं, वो हमारे खाने तक, हमारे मल जो है मुख तक आता है, जिसके वजह से ऐसी घटनाएं देखी जा रही है। दूसरी बात, बरसात के दिनों में अगर हम देखते हैं तो खुले में शौच जाने से जो शौच का जगह होता है वहां से जो गंदगी है वो शौच किसी न किसी रूप में हमारे जल स्रोत तक पहुंच जाता है और उससे बुरी तरह से दूषित करता है, प्रभावित करता है।

0: अब उस जल को हम ग्रहण करते हैं तो इस तरह से हम न सिर्फ बल्कि अपने स्वास्थ्य को भी बुरी तरीके से प्रभावित कर रहे हैं। तो जब इस तरह की चर्चा लोगों में की जाती है तो उनको एक सेंसिटाइज करने का प्रयास किया जाता है कि आपके इस गलत बिहेवियर के चलते, गलत आदतों के चलते ये असर पड़ रहा है, आपके घर के लोग बीमार पड़ रहे हैं। एक शौचालय जो बनाया गया है जिसका नियमित इस्तेमाल करके इन सब चीजों को रोका जा सकता है और मल से मुक्त तक का एक बैरियर को क्रिएट करने का कार्य इस शौचालय के द्वारा किया जाता है जिससे मानव मल का समुचित निपटान किया जा सके।
1: शौचालय बनाने के बाद रख रखाव में भी हमें सावधानी बरतनी चाहिए क्योंकि स्वच्छता जहां होगा वहां रोग या बीमारी का प्रभाव वहां पे कम पड़ेगा।
0: देखिए शौचालय अगर मेरा है तो उसका रख रखाव करने की जिम्मेवारी हमारी है। हम अपना घर बनाते हैं, हम आंगन बनाते हैं तो हम देखते हैं हर पर्व त्योहार में डेली उठ के उसमें झाड़ू करते हैं, पोछा करते हैं। तो अगर हम उसका नियमित उपयोग करेंगे तो उसको साफ करने की भावना हमें जगेगी। लेकिन अगर बना के उसे छोड़ देंगे तो अन्यत्र कार्यों के लिए वो उपयोग किया जाएगा और वो कुछ दिनों के बाद डिफंक्ट शौचालयों की सूची में आ जाएगा। इससे सरकारी राशि का न सिर्फ दुरुपयोग होगा बल्कि एक जो उनको सुविधा दी गई थी उस सुविधा से वो फिर दोबारा वंचित हो जाएंगे और उनका घर फिर से बीमारियों से पीड़ित रहेगा और वो बाकी चीजों के लिए भी परेशान ही रहेंगे।
1: और हमारे ग्रामीण समाज में छोटे परिवार बड़े परिवार दोनों ही रहते हैं और खासकर देखा जाता है कि अगर शौचालय बन गया मेरा तैयार हो गया है जहां आत्मसम्मान की बात आती है तो वहां क्या करते हैं कि दो या तीन परिवार तो शौचालय का उपयोग कर रहे हैं, बाकी लोग क्या करते हैं बाहर चले जाते हैं। तो उसके लिए क्या कहना चाहिए ताकि वे अपने शौचालय का उपयोग करेंगे और अपने गांव को, अपने समाज को, अपने क्षेत्र को वे मतलब इस गंदगी से दूर रखेंगे।
0: देखिए खुले में शौच मुक्त की मूल भावना यही है कि उस ग्रामीण परिवेश में जितने लोग रहते हैं सभी शौचालय का नियमित उपयोग करें
1: जी।
0: कोई भी एक भी व्यक्ति बाहर शौच के लिए ना जाए, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, या जवान हो, या स्त्री हो, या पुरुष हो। तभी हम कह सकते हैं कि ये पूरा हमारा गांव, पूरा हमारा समाज, पूरा प्रखंड खुले में शौच मुक्त हो गया। तो हम देखते हैं कि महिलाओं को इस शौचालय की आवश्यकता सबसे अधिक पड़ती है क्योंकि अगर उन्हें शौच आता है तो या तो वह रात होने का इंतजार, अंधेरा होने का इंतजार करती है या सुबह सूर्य उगने से पहले जाती है। अगर बीच दौरान में कभी उनकी तबीयत खराब हो गई, कुछ हो गई तो उनके लिए बड़ा एम्बेरेसिंग हो जाता है कि भाई वो शौच के लिए कैसे जाएं। ऐसे में उनको पेट दर्द और कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो महिलाएं एक ऐसे साधन है, अगर महिलाओं को हम तरीके से सेंसिटाइज कर लें तो वो एक इसे आंदोलन का रूप दे सकती हैं और जो हमारे लोकल महिला मंडल ग्रुप्स होते हैं, जल सहिया होते हैं, आंगनवाड़ी सेंटर्स होते हैं जिसमें सेविका सहायिका होती है, इन सबके ग्रुप के द्वारा महिलाओं को, व्यक्तियों को, बच्चियों को सेंसिटाइज करने का प्रयास किया जाता है ताकि वो अपने व्यवहार में एक परिवर्तन लाते हुए शौचालयों का नियमित उपयोग करें जिससे कि किसी तरह की परेशानियों का सामना उन्हें भविष्य में न करना पड़े। क्योंकि अगर वो बाहर जाते हैं तो न सिर्फ उन्हें रात में सांप का डर है, बरसात में गिरने का डर है और अगर छेड़खानी वगैरह हो गई तो फिर एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती है
1: और गांव में जो जितने भी प्राकृतिक स्रोत हैं, हमारे जल स्रोत हैं,
0: और सबसे बड़ी बात दूषित होना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए आवश्यक है कि इस मानव मल का समुचित निपटान किया जा सके और हर व्यक्ति खुले में शौच जाना हमेशा के लिए बंद कर दे।
1: तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि गांव में आप कैसे कैसे प्रतिनिधियों को आप सचेत किए हैं या तो इससे जोड़ के रखे हैं ताकि ये जो कार्य है आपका सफल हो और हमारा समाज, हमारा गांव इस मुझे खुले में शौच से मुक्त हो।
0: इस कार्यक्रम को गांवों तक ले जाने के लिए, वहां के ग्रामीणों तक पहुंचाने के लिए हमारा एक बहुत सशक्त संस्था है, वो ग्राम जल स्वच्छता समिति है। ये संस्था अन्य संस्थाओं जैसे VHND की संस्था है, आपके विद्यालय की समिति, विद्यालय समिति, विद्यालय प्रबंधन समिति है
1: जी।
0: इसके अलावा आंगनवाड़ी की जो समिति है, इन सबके साथ कोऑर्डिनेट समन्वय स्थापित कर बैठकों को, नियमित बैठकों को आयोजित करते हैं क्योंकि और इसके बारे में इसकी सभी जानकारी लोगों को देते हैं, उन्हें सेंसिटाइज करने का प्रयास करते हैं, उन्हें प्रेरित करने का प्रयास करते हैं कि भाई आप खुले में शौच ना जाएं। अगर खुले में शौच जाते हैं तो इतनी सारी समस्याओं का आपको सामना करना पड़ सकता है और एक व्यवस्था, एक सुविधा जो सरकार के द्वारा आपको उपलब्ध कराई गई है उसका नियमित उपयोग करें तो आपके जीवन स्तर में, आपके स्वास्थ्य में, आपके आर्थिक स्थिति में काफी अपेक्षित सुधार पाया जा सकता है,
1: बदलाव हो सकता है।
0: हमारे यहाँ से ये इस वित्तीय वर्ष के पूर्व तक, मतलब ये अभी हम लोग 16-17 में आ गए, 15-16 तक जितने हमारे विद्यालय थे उनको शौचालयों से आच्छादित किया जाना था। उसके बाद कुछ कॉरपोरेट के सहयोग से, जैसे हमारे NTPC है, CCL है और कुछ हम लोगों के द्वारा, इस विभाग के द्वारा, जिला जल स्वच्छता मिशन प्रकल्प के द्वारा, ऐसे सभी विद्यालय जो शौचालय की सुविधा से विहीन थे उन सबों को शौचालय के निर्माण से आच्छादित कर दिया गया। इसके अतिरिक्त जितने भी सरकारी भवनों में संचालित आंगनवाड़ी केंद्र हैं उनमें भी शौचालयों का निर्माण पूर्ण किया जा चुका है। कुछ 80 या 81 शौचालयों की सूची

0: भी प्राप्त हुई है। जो सरकारी आंगनबाड़ी केंद्र है जहां शौचालय की सुविधा नहीं है वहां शौचालयों का निर्माण कराया जा रहा है
1: जी।
0: उसके बाद अभी हमारे स्कीम में जो इस वित्तीय वर्ष से किसी भी संस्थागत शौचालयों का निर्माण नहीं किया जाना है, क्योंकि जो हमारे निर्धारित लक्ष्य थे उसे प्राप्त किया जा चुका है। और अगर हम वैसा करते हैं तो हम एक ही योजना का दोहरीकरण करते हैं बार बार, जिससे पैसा का अनावश्यक दुरुपयोग होगा, अनावश्यक उसका व्यय होगा।
1: ग्रामीण स्वच्छ भारत मिशन का निर्धारित लक्ष्य क्या है
0: जी? हमारा जो लक्ष्य था इस वित्तीय वर्ष का 18,108 शौचालय बनाए जाने थे
1: जी।
0: इसके विरुद्ध हम लोगों ने 20,373 शौचालयों का निर्माण
1: हो चुका है
0: जी, किया है। इस वित्त वर्ष का लक्ष्य हम लोगों ने प्राप्त कर लिया। हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि इस वित्तीय वर्ष में पूरे हजारीबाग जिले को ODF खुले में शौच मुक्त के लिए लक्षित किया गया है। और हम लोगों का प्रयास होगा, हम सभी माननीय हमारे जितने भी पंचायत प्रतिनिधि हैं, हमारे जितने भी माननीय विधायकगण सांसदगण हैं, हमारे जितने भी नेचुरल लीडर्स हैं, धार्मिक लीडर्स हैं, सबसे हम अनुरोध करेंगे कि ग्रामीण परिवेश में एक ऐसा माहौल बनाने का प्रयास करें, ग्रामीणों से चर्चा करें और ये प्रयास करें कि भाई वो अपना शौचालय बनाएं और ये प्रोत्साहन की राशि सीधे अपने खाते में पाएं, जिससे कि शौचालय का समुचित लाभ उन्हें प्राप्त हो सके और इससे न सिर्फ वो बल्कि अपने समाज को भी लाभान्वित कर सके।
1: तो अंत में आपसे ये जानना चाहेंगे कि हमारा समाज, हमारा गांव खुले में शौच से मुक्त हो, इसके लिए आप अंत में क्या कहना चाहेंगे ताकि वे जागरूक हों और अपने इस कार्यक्रम से जुड़े और लाभ ले सकें?
0: खुले में शौच जाना एक ऐसी कुप्रथा है जो सदियों से चली आ रही है और इस प्रथा को अगर हम डंटा घुमा के या छड़ी घुमा के चाहे कि हम लोगों के एक आदत को, एक व्यवहार को जो काफी जमाने से चली आ रही है बदल दें, ऐसा नहीं हो सकता है। और ऐसा तभी हो सकता है जब हर आदमी का पार्टिसिपेशन उसमें 100% होना शुरू हो जाए
1: जी।
0: तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि स्कूल इज अ गेटवे टू सैनिटेशन। बच्चों को, महिलाओं को सबसे ज्यादा इसमें सेंसिटाइज करके, प्रेरित करके अगर हम आगे बढ़ें, हमारे जितने भी नए चुने हुए पंचायत प्रतिनिधि हैं जो काफी सकारात्मक रूप से इस योजना को हाथों हाथ ले रहे हैं और लोगों के साथ वो चर्चा कर रहे हैं और इस योजना को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, उनका ये इंथुजियाज्म, उनका ये ग्रामीणों के प्रति जवाबदेही जो दिखती है, अगर इसी तरह से सकारात्मक रूप से नियमित वो बैठ के करें और लोगों के बीच इस चीज को प्रचारित करें कि भाई हर चीज हमारे पास है, फिर हम शौचालय के लिए सरकारी राशि का ही मुंह क्यों ताकते रहें, हम बना लें इसको, इससे सुविधा तो हमें मिलनी है, सरकार को तो कोई सुविधा मिलनी नहीं है। अगर हमारा स्वास्थ्य सुधरेगा तो हमारी आर्थिक व्यवस्था सुधरेगी, हमारा अनावश्यक व्यय कम हो जाएगा, हम अच्छे कपड़े खरीद सकते हैं, अच्छे खाना खा सकते हैं। तो हर चीज के लिए सरकार की तरफ देखना उचित नहीं है, लेकिन सरकार के द्वारा जो दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि है उसका सही तरीके से समुचित उपयोग तभी होगा जब हर व्यक्ति ओनरशिप लेगा कि भाई ये हमारी चीज है, ये जो बन रहा है ये हम अपना बना रहे हैं, इस उद्देश्य से बना रहे हैं। और ऐसा बनाने के बाद हम कई कुप्रथाओं से निजात पा सकते हैं, कई दुर्घटनाओं से हम निजात पा सकते हैं और कुल मिला के स्वच्छ भारत मिशन के जो मूल भावना है, खुले में शौच मुक्त करना, खुले में शौच मुक्त हजारीबाग, खुले में शौच मुक्त झारखंड और खुले में शौच मुक्त भारत की जो अवधारणा को हम लोग पूरा कर सकते हैं।
1: हम लोगों को यही मानना होगा कि स्वच्छ भारत के निर्माण एवं देश की छवि सुधारने का यही सही समय और अवसर है। जब स्वच्छता संबंधी बातें आदतों में शामिल हो जाएगी तो बदलाव भी खुद ब खुद दिखने को मिलेगा। तो आप हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े और ग्रामीण स्वच्छ भारत मिशन से जुड़ी अनेक जानकारी दिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे पूर्व प्रसारित भेंट वार्ता स्वच्छ भारत मिशन के बारे में। जानकारी दे रहे थे रामकुमार और इनसे बातचीत कर रहे थे प्रकाश कुमार राणा। तो उम्मीद करते हैं कि इस जानकारी से आप लोग जरूर लाभ उठाएंगे और स्वच्छ रहना हर कोई पसंद करते हैं। अगर हम स्वस्थ रहना चाहते हैं तो स्वच्छ रहना भी बहुत जरूरी है और ये सिर्फ अपने घर की ही सफाई नहीं बल्कि अपने आसपास की भी सफाई पर पूरा ध्यान देना चाहिए। जो काम अकेले नहीं हो सके तो समूह बनाकर आसपास की सफाई करें और हमेशा स्वस्थ रहे। तो इसी जानकारी के साथ कार्यक्रम नया संकल्प नई पहल से अंजलि को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नया संकल्प नई पहल। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम युवा तरंग।

कार्यक्रम युवा तरंग में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है, साथ ही अंजलि का सप्रेम नमस्कार। उम्मीद है दोस्तों आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। किसी भी क्षेत्र में रुचि के अनुसार लक्ष्य बनाकर मेहनत की जाए तो सफलता जरूर मिलती है। कभी कभी सफलता एक बार में नहीं मिलती, लेकिन ठान लो तो एक दिन जरूर मिलती है। दोस्तों आगे आज आप सभी से ढेर सारी बातें होंगी, जानकारी भी सुनवाएंगे, लेकिन अभी साथ मिलकर सुनते हैं ये गीत और साथ ही जरूरी संदेश।

हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट आकाशवाणी.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

0: पापा कॉलेज की फीस ज्यादा है।
1: बेटा
2: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे?
1: 2 साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
3: तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव एकदम फ्री। चलो
0: कहाँ?
3: एडमिशन कराने, खाता हुआ एक्टिव।
4: आरबीआई कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: उम्मीद है दोस्तों यह गीत आप सभी को जरूर पसंद आया होगा। दोस्तों आज 9 अगस्त है तो आज ही के दिन 1925 में काकोरी कांड हुआ था। इस दिन भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा ब्रिटिश सरकार के खजाने को लूटने का एक

दोस्तों 9 अगस्त 1925 को उत्तर प्रदेश में लखनऊ के पास काकोरी रेलवे स्टेशन के नजदीक हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के द्वारा काकोरी कांड को अंजाम दिया गया था। इस कांड में मुख्य रूप से रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, चंद्रशेखर आजाद, राजेंद्र लाहिड़ी और ठाकुर रोशन सिंह आदि क्रांतिकारी शामिल थे।

दोस्तों, क्रांतिकारियों का मानना था कि अहिंसक आंदोलनों के साथ साथ अंग्रेजों को देश से भगाने के लिए हथियारों की लड़ाई जरूरी है। हथियार खरीदने के लिए अधिक धन की जरूरत थी, इसलिए 9 अगस्त 1925 को सहारनपुर से लखनऊ आ रही 8 डाउन पैसेंजर ट्रेन जब काकोरी के पास पहुंची तो रामप्रसाद विस्मिल के साथियों ने चेन खींचकर ट्रेन को रोक लिया और क्रांतिकारी गार्ड के डिब्बे में घुसे, जहां अंग्रेजों का सरकारी धन बक्सों में रखा हुआ था। उन्होंने बक्से तोड़कर पैसे ले लिए। इस क्रम में क्रांतिकारी और गार्ड्स के बीच हल्की गोलीबारी में एक निर्दोष यात्री मारा गया, जिससे यह मामला ब्रिटिश सरकार की नजर में हत्या और डकैती का बन गया। दोस्तों, इस घटना के बाद ब्रिटिश प्रशासन ने भारी तलाशी अभियान चलाया और कई क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया। इन पर लंबा मुकदमा चला। 19 दिसंबर 1927 को रामचंद्र बिस्मिल, असाफुकुल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी और ठाकुर रोशन सिंह को ब्रिटिश सरकार ने फांसी दे दी। चंद्रशेखर आजाद अंग्रेजों के हाथ नहीं आए, वे आजादी की लड़ाई आगे बढ़ाते रहे। दोस्तों, अब कार्यक्रम में सुनते हैं एक पूर्व प्रसारित भेंट वार्ता, आकाशीय बिजली कैसे पैदा होती है और आजकल ये घटनाएं क्यों बढ़ रही है। भेंट वार्ताकार हैं साहिल राज और इनसे बातचीत कर रहे हैं विश्वनाथ सोनी।

0: श्रोतो, हमारे आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं, मौजूद हैं सैलराज। मैकेनिकल इंजीनियरिंग से इन्होंने पढ़ाई की हुई है और इनसे हम आज जानेंगे कि आकाशीय बिजली कैसे उत्पन्न होती है और आजकल ये घटनाएं क्यों घटित हो रही है। तो इन सब तमाम मुद्दों पे हम इनसे बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले सैलराज जी, हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: जी धन्यवाद।
0: जैसा कि हम देखते हैं आजकल आकाशीय बिजली का बहुत हम लोग देखते हैं, तो लोगों के मन में बहुत ही कौतूहल होता है कि आकाशीय बिजली कैसे उत्पन्न होती है। तो इस संदर्भ में आप हमें बताएं, हमारे श्रोताओं को, कि आकाशीय बिजली कैसे उत्पन्न होती है।
1: आकाशीय बिजली से बात करने के पहले को बताना चाहूंगा बिजली के सबसे छोटे इकाई के बारे में। प्रतिदिन के कार्यों में आप देखते होंगे कि जब भी आप कंघी करते हैं, कंघी का जब भी घर्षण होता है बालों या कपड़ों के साथ भी, तो आप पाएंगे कि कंघी जो है कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने में सक्षम हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब भी कंघी का घर्षण होता है बालों के साथ, कपड़ों के साथ, तो कंघी में मौजूद पार्टिकल, अगर और स्पेसिफिक बोला जाए तो कंघी के इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, कंघी अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और वो इलेक्ट्रॉन कपड़ों में या बालों में चले जाते हैं। इससे क्या होता है कि जो कंघी है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। पॉजिटिवली चार्ज, निगेटिवली चार्ज कहने का मतलब ये है कि जब भी दो वस्तुओं के बीच में इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है तो इस दरमियान जो वस्तु इलेक्ट्रॉन को लूज करता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है ऐसा माना जाता है, और जो वस्तु इलेक्ट्रॉन को गेन करता है वो निगेटिवली चार्ज होता है।
0: कभी कभी हम देखते हैं जब कंघी करते हैं तो, और उसके बाद जब हम छोटे छोटे टुकड़ों को सटाते हैं तो वो अपने आप आकर्षित।
1: हाँ जी जी, क्योंकि उस समय जो कंघी होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है और जो कागज न्यूट्रल बैठे हैं उसको वो अपनी ओर खींचने में सक्षम हो जाता है। तो ये जो घटना है, ये जो फिनोमेना है, इसको बहुत बड़े स्तर पे हम लोग लाइट

0: लाइटनिंग के रूप में ऑब्जर्व करते हैं। अब यहाँ पे तो कंघी का घर्षण होता है बालों के साथ और कपड़ों के साथ या जो भी है, वहां पे मेघों में क्या होता है जो घर्षण होता है जो ये उत्पन्न होती है वो हम समझते हैं। तो जो हमारे मेघ हैं वो जलवाष्प के छोटे छोटे कणों से बनते हैं। मेघों में छोटे छोटे जलवाष्प के कणों के साथ साथ बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े भी होते हैं जिसमें निरंतर निरंतर घर्षण की क्रिया होती रहती है। और घर्षण होती है तो जो पार्टिकल हैं, जो जलवाष्प के छोटे छोटे कण हैं, वो पॉजिटिवली चार्ज निगेटिवली चार्ज होते रहते हैं। तो इस दरमियान क्या होता है कि जो भी जलवाष्प के कण पॉजिटिवली चार्ज होते हैं उनका वजन कम हो जाता है। अब वजन कम कैसे होता है, क्योंकि देखिए वो पॉजिटिवली चार्ज क्यों हुए हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को लूज किए हैं। तो अपने शरीर से अपने बॉडी से जब वो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं तो उनका वजन कम होता है। वजन कम होने के कारण जो भी इलेक्ट्रॉन पॉजिटिवली चार्ज होते हैं वो बादल के ऊपरी सतह पर जाके जमने लगते हैं, और जो जो निगेटिवली चार्ज होते हैं उनका वजन बढ़ जाता है इलेक्ट्रॉन गेन करने के कारण, तो वो बादल के निचली सतह में जमने लगते हैं। इससे क्या होता है कि दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में दूरी आने लगती है और ये दूरी बढ़ती रहती है घर्षण क्रिया के साथ साथ, और एक खास दूरी आने पर ये दोनों में आकर्षण के कारण इतनी तेज गति से ऊर्जा का उत्पन्न होता है जिसको हम लोग विद्युत ऊर्जा कहते हैं, और वहीं हम लोग लाइटनिंग या बिजली चमकने के रूप में ऑब्जर्व करते हैं धरती पे, क्योंकि धरती एक जीरो पोटेंशियल का केंद्र है, बहुत बड़ा सिंक है, तो वो धरती अपनी तरफ अब खींचती है और हम लोग आकाशीय बिजली का अनुभव करते हैं।
1: कभी कभी हम देखते हैं कि काफी गर्जना के साथ बिजली उत्पन्न होती है, ये किस तरह से?
0: जी मैंने बताया कि दोनों के बीच में आकर्षण होता है, तो वो जब आकर्षण होता है और जो तीव्र वेग से, ये जो तीव्र वेग होता है ये इसमें इतनी क्षमता होती है कि ये करीब चंद सेकंड में ही 10,000 डिग्री फ़ारेनहाइट तक का टेम्परेचर अटेन कर लेता है और करीब मिलियंस ऑफ वोल्ट प्रोड्यूस कर सकता है। तो ये जब मिलियंस ऑफ वोल्ट जब प्रोड्यूस करते हैं तो आसपास का जो हवा होता है वो लो वायु दाब लो प्रेशर क्रिएट करता है, और उसी को फिलअप करने के लिए जब बाहर से हवा उसकी ओर बढ़ती है तो यही एक सुपरसोनिक रीजन क्रिएट करता है, और यही सुपरसोनिक वॉइस हम लोगों को सुनाई देता है, यही तेज गर्जना होती है लो प्रेशर के कारण।
1: आजकल हम ये देखते हैं कि काफ़ी जो है बिजली जो गिरने की घटनाएं हम आमतौर पर देखते हैं, उससे काफ़ी दुर्घटनाएं होती है, तो ये आजकल क्यों इस तरह से संभावनाएं बढ़ रही है आजकल?
0: जी देखिए बिजली गिरने की घटनाएं तो बहुत पहले से चली आ रही है, हाँ, लेकिन आजकल ये घटनाएं बहुत बढ़ गई है। इसका सबसे पहले तो जानते हैं कि बिजली जो बनती है वज्रपात जो होता है उसका कारण क्या है, तो उसके अनुकूल क्या परिस्थितियाँ हैं। तो हॉट एंड ह्यूमिड टेम्परेचर, गर्म और नमी युक्त तापमान जब जब वातावरण बनता है तो ये सबसे अनुकूल परिस्थिति मानी जाती है वज्रपात के लिए। तो ये तो हो गया सीधा कारण, लेकिन आजकल ये जो अनुकूल स्थिति उसके लिए बन रही है वो उसका सबसे बड़ा कारण है वायु प्रदूषण। क्या होता है, वायु प्रदूषण ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग टेम्परेचर बढ़ा रहा है, तो गर्म हो रहा है, हमारी धरती का तापमान बढ़ रहा है, और साथ के साथ वायु प्रदूषित करने वाली जो कुछ गैसें हैं जैसे सोडियम ऑक्साइड SO2 बोलते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं, ये क्या कर रहे हैं कि मेघों में जा करके जो घर्षण की प्रक्रिया चल रही है उसको और तेज कर देते हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि

0: ना हो तो कैसे रोका जाए, इन घटनाओं को कैसे कम किया जाए, और अगर ऐसी घटनाएं घटती है तो हम क्या सावधानी बरत सकते हैं, इसके बारे में बताएं।
1: देखिए, इन घटनाओं को रोकना तो खैर नामुमकिन है। ये घटनाएं पहले भी होती थी, अभी भी होती है, आगे भी होती रहेंगी, और वर्षा तो आवश्यक है हमारी, तो वर्षा के साथ साथ ये तो होगा ही। हाँ, कम कर किया जा सकता है, कम किया जा सकता है, सावधानी बरती जा सकती है, कम कर सकते हैं वायु प्रदूषण को, जो मोटरसाइकिल है, इलेक्ट्रिक वाहन का प्रदूष ये करके, इलेक्ट्रिक व्हीकलों का इस्तेमाल करके, और फैक्ट्री से जो हवनी जो वायु प्रदूषित दूषित हवाएं जो निकलती है उसको, उसकी रोकथाम करके हम लोग इसको कम कर सकते हैं। अब इससे बचाव कैसे कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो हमारे हर राज्यों के जो राजस्व एवं आपदा प्रबंधन जो विभाग है वो पहले से ही सूचित कर देती हैं ऐसी घटनाएं अगर होने वाली होती हैं, तो आप सुनिश्चित कर लें खुद को कि उस वक्त आप घर पे रहें, अपने मकान में रहें, ये तो सबसे अच्छी स्थिति है। हाँ, लेकिन मकान में भी हैं तो आपको ध्यान रखना होगा कि जितनी भी इलेक्ट्रिक से चलने वाली जितने भी आपके घर में उपकरण हैं उसको आप बंद कर दें, टीवी, टेलीफोन खास करके, और भी चीज़ें, लोहे के पाइप जो घर में लगे होते हैं उससे आप दूरी बना लें, लोहे के बेसिन जो भी धातु के बने, लोहे नहीं, कोई भी धातु के बने अगर पाइप है, बेसिन है, तो आप उससे दूरी रहें। ये तो आप घर पर रख के सबसे सुरक्षित है और सबसे बढ़िया है जगह है। अगर आप बाहर हैं तो आप सुनिश्चित करें सबसे पहले कि आप किसी ऊंचे जगह पर नहीं है, या फिर आप अगर आप आश्रय ले रहे हैं तो किसी पेड़ के नीचे तो बिल्कुल नहीं, या किसी बड़े बिल्डिंग के नीचे भी बिल्कुल नहीं लेना है आपको आश्रय। आप आश्रय ले सकते हैं मकान के अंदर ही, घर के अंदर, और समूह में नहीं खड़ा रहना है आपको, आपको थोड़ी दूरी दूरी बना करके अलग अलग खड़ा रहे तो ज्यादा बेहतर है।
0: बिजली कड़कने की घटनाओं के समय लोग अक्सर रास्ते में भी होते हैं, अपने फोर व्हीलर कार्स में होते हैं, तो क्या
1: अगर वो सफर कर रहे हैं तो अगर उनका जो उनका वाहन है उसका छत जो है वो एक मजबूत छत है तो वाहन तो कोई तकलीफ नहीं, आप वाहन में सफर को अपनी जारी रख सकते हैं। लेकिन अगर खुले छत का वाहन है आपका तो आप फौरन अपने वाहन को रोकें और सुनिश्चित करें कि आप किसी मकान के अंदर अपने आप को पनाह दे चुके हैं, क्योंकि खुले वाहन में सफर कर रहे हैं, गाड़ी या फिर आजकल गाड़ी फोर व्हीलर भी होती है जो खुले छत की होती है, तो वो बिल्कुल असुरक्षित
0: है। अक्सर गाड़ियां भी होती है तो वो लोहे की बनी होती है, तो क्या कितनी संभावना होती है उसमें?
1: लोहे की बनी गाड़ियां बिल्कुल सुरक्षित है अगर वो ऊपर से ढकी है, मजबूत छत वाली अगर लोहे की गाड़ी है तो बिल्कुल सुरक्षित है, लेकिन अगर खुले छत वाली है तो खतरे का आमंत्रण है बिल्कुल।
0: तो बहुत अच्छी जानकारी को आपने हमारे श्रोताओं को बताया, तो और क्या आप लोगों को सलाह देना चाहेंगे?
1: जी देखिए, अगर आप खुले मैदान में हैं बिल्कुल और आपको अचानक से वज्रपात की स्थिति बन रही है, वज्रपात हो रहे हैं और आप अचानक से महसूस करते हैं कि आपके सर के बाल बिल्कुल खड़े होने लगे हैं, आपके त्वचा में झुनझुनी सी महसूस हो रही है, जी बिल्कुल, तो आपको फौरन लेट जाना है और अपने कान को बंद कर लेना है, क्योंकि ये सूचक है इस बात का कि कुछ क्षण में आपके आसपास बिजली गिरने वाली है, तो आप फौरन लेट जाएं और अपने कानों को जोर से बंद कर लें, उस वक्त के लिए सबसे सही उपाय यही हो सकता है।
0: अच्छा, मान लीजिए अगर कोई खुले खेत पे है, काम कर रहा है, तो उस दौरान क्या करनी चाहिए?
1: अगर ये महसूस होता है जो मैंने बताया, बाल के खड़ा होना, रोंगटों का खड़ा होना, तो आप फौरन लेट जाएं और
0: एक तरह से एक अलार्म है आपके लिए,
1: ये बिल्कुल अलार्म, क्योंकि ये जो घटना होती है वो तीन फेज में होती है। पहला फेज, दो फेज तो हम लोग जानते हैं, ये बिजली चमकता है, आवाज करता है, ये तो दो फेज हो गया। तीसरा होता है आवेश, वो वही आवेश जब ये बिजली गिरने वाली होती है तो उसके पहले एक आवेश का अनुभव होता है, वही आवेश आपके रोंगटों को खड़ा कर देता है, आपके बालों को खड़ा कर देगा, आपको आपके त्वचा में बिल्कुल कपकपी सी मच जाएगी, और इसके ठीक बाद फिर कुछ ही क्षण में बिजली गिरती है। तो ये महसूस करके अगर आपको महसूस होता है तो आप फौरन लेट जाए और अपने कानों को जोर से बंद कर लें, और इस तरह से आपका क्षति कम होगी, क्षति तो होगी ही क्योंकि आपके आसपास बिजली गिरी, लेकिन बहुत कम क्षति होगी।
0: बिल्कुल, तो आपने अच्छी जानकारी आपने बताया कि आकाशीय बिजली से कैसे निपटना और इसे कैसे कम कर सकते हैं, बहुत अच्छी जानकारी हमारे श्रोताओं को आपने बताया। उम्मीद करते हैं जो श्रोता इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं काफी लाभान्वित होंगे और ऐसी घटनाओं से भी अपने आप को सेफ रखेंगे, बचा के रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।
1: जी धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे पूर्व प्रसारित भेंट वार्ता, आकाशीय बिजली कैसे पैदा होती है और आजकल ये घटनाएं क्यों बढ़ रही है। जानकारी दे रहे थे साहिल राज और इनसे बातचीत कर रहे थे विश्वनाथ सोनी। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी इस जानकारी से जरूर लाभ उठाएंगे और अपने को सावधानी से भी रखेंगे ताकि बिजली से किसी तरह की परेशानी ना हो, किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो। तो अब कार्यक्रम में सुनते हैं एक गीत।

दोस्तों भी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवा तरंग FM 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है। संध्या के 6 बजने को हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे हमारे रांची केंद्र से प्रादेशिक मुख्य समाचार।

0: रहे हैं, आइए सुनते हैं प्रादेशिक मुख्य समाचार। नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं तृप्ति कुमारी। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने रांची के मोरहाबादी मैदान में झारखंड आदिवासी महोत्सव का उद्घाटन करते हुए आज कहा कि जनजातीय समाज की संस्कृति, परंपराएं और प्रकृति के साथ सह अस्तित्व आज जलवायु संकट के समय पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षा में कथित गड़बड़ियों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे युवाओं को न्याय दिलाने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि अनियमितताओं के दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। श्री सोरेन आज रांची के मोरहाबादी मैदान में विश्व आदिवासी दिवस के उद्घाटन के अवसर पर लोगों को संबोधित कर रहे थे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए से संबंधित मामलों को लेकर शिक्षा मंत्रालय के सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उन्होंने संस्थागत व्यवस्था को मजबूत करने, प्रक्रिया सुचारू बनाने और विद्यार्थियों के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करने से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श किया। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने कहा है कि पीएम आवास योजना शहरी और दूसरे चरण की पीएम आवास योजना शहरी के अंतर्गत अब तक 1,25,00,000 से अधिक मकानों को मंजूरी दी जा चुकी है। इनमें से 1,00,00,000 से ज्यादा मकान बनकर तैयार हो चुके हैं और लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं। इनमें करीब 1,00,00,000 मकान महिलाओं को आवंटित किए गए हैं। स्वतंत्रता के 80वें वर्ष पर आज रांची के अल्बर्टेका चौक पर सीआरपीएफ के राष्ट्रभक्ति बैंड की विशेष प्रस्तुति आयोजित की गई, जिसमें केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री और सांसद संजय सेठ मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। देशभक्ति की धुनों से सजे इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्कूली छात्र, एनसीसी कैडेट और आम नागरिक मौजूद रहे। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: FM 102.1 MHz पर ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है। श्रोताओं, संध्या के 6:02 हुए हैं। लीजिए पेश है हमारे श्रमिक भाई बहनों को संबोधित करता कार्यक्रम मेहनत कश का।

नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आपका अपना कार्यक्रम मेहनत कस, और मैं हूं आपका दोस्त संजय। दोस्तों, हमारे देश की एक बड़ी आबादी कृषि और उससे जुड़े कार्यों पर निर्भर है। किसान खेतों में अनाज, फल, सब्जियां, दूध और कई तरह की फसलें पैदा करते हैं, लेकिन जब इन्हीं कृषि उत्पादों को प्रसंस्करण के माध्यम से नए और उपयोगी खाद्य पदार्थों में बदला जाता है तो उनकी कीमत और मांग दोनों बढ़ जाती है। यही काम करता है खाद्य प्रसंस्करण यानी फूड प्रोसेसिंग का क्षेत्र। दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में हम जानेंगे कि इस क्षेत्र में रोजगार के कौन कौन से अवसर हैं और युवा तथा मेहनत का साथी किस तरह इससे जुड़ सकते हैं। लेकिन उसके पहले आइए हम सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

दोस्तों, इस खूबसूरत से गीत के बाद एक बार फिर हम कार्यक्रम मेहनत कश में आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में हम बातें कर रहे हैं खाद्य प्रसंस्करण यानी फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में रोजगार की संभावनाओं के बारे में। तो सबसे पहले हम यह समझते हैं कि यह खाद्य प्रसंस्करण होता क्या है।

0: दोस्तों, फलों से जूस, जैम और अचार बनाना, दूध से दही, पनीर और अन्य उत्पाद तैयार करना, गेहूं से आटा, अनाज की पैकिंग, मसालों की प्रोसेसिंग और पैकेजिंग, ये सभी खाद्य प्रसंस्करण के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों, इस क्षेत्र में केवल बड़े कारखानों में ही रोजगार नहीं मिलता, बल्कि छोटे और मध्यम स्तर की इकाइयों में भी कई तरह के कार्य उपलब्ध होते हैं। दोस्तों, अगर हम इस क्षेत्र में रोजगार के प्रमुख अवसर के बारे में बात करें, तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में मशीन ऑपरेटर, पैकिंग कर्मचारी, उत्पादन सहायक, सुपरवाइजर, गुणवत्ता जांच कर्मचारी, स्टोर कर्मचारी और बिक्री एवं मार्केटिंग जैसे पदों पर कार्य किया जा सकता है। इसके अलावा डेयरी, बेकरी, फल सब्जी प्रसंस्करण, मसाला उद्योग, नमकीन निर्माण, आटा दाल मिल, अचार पापड़ निर्माण और खाद पैकेजिंग के क्षेत्रों में भी रोजगार की असीम संभावनाएं हैं। दोस्तों, इस क्षेत्र की खास बात यह है कि इसमें नौकरी के साथ साथ स्वरोजगार की भी अच्छी संभावना है। यदि किसी व्यक्ति के पास स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कृषि उत्पाद हैं, तो वह छोटे स्तर पर अचार, पापड़, मसाले, जैम, मुरब्बा, नमकीन, आटा या अन्य खाद्य उत्पाद तैयार करके अपना व्यवसाय शुरू कर सकता है। सही प्रशिक्षण, स्वच्छता, अच्छी पैकेजिंग और बाजार की जानकारी के साथ इस तरह के व्यवसाय को आगे बढ़ाया जा सकता है। दोस्तों, खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में काम करने के लिए कई तरह के कौशल उपयोगी होते हैं, जैसे खाद्य पदार्थों की स्वच्छता और सुरक्षा, मशीन चलाना, पैकेजिंग, गुणवत्ता नियंत्रण, उत्पाद को सुरक्षित रखना और बाजार में उसकी बिक्री करना शामिल होता है। तो दोस्तों, खाद्य प्रसंस्करण से आप भी जुड़े, प्रशिक्षण और कौशल विकास कार्यक्रम रोजगार की तैयारी में आपके लिए मददगार हो सकते हैं। दोस्तों, कार्यक्रम में इस विषय पर आगे हम आपसे और भी बातें करेंगे, लेकिन अब वक्त हो चला है एक भेंट वार्ता का। तो आइए, आज के इस कार्यक्रम में हम सुनते हैं कि मूर्ति के निर्माण कार्य से हम अपने जीवन में खुशहालियों को कैसे ला सकते हैं, और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे बीच मौजूद हैं मूर्तिकार सुनील प्रजापति, और इनसे बातचीत कर रहे हैं हमारी ओर से परमेंद्र कुमार मिश्रा।
1: सपनों को आकार देते हैं हमारे मूर्तिकार। कला चाहे वो किसी भी रूप में हो, सभी को स्वीकार्य है। हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई कला छुपी हुई होती है, और कला को निखारने के लिए आवश्यक है प्रशिक्षण का, डेडिकेशन का। आपके अंदर इच्छा शक्ति होनी चाहिए, तो कोई भी कला में आप अपना नाम रोशन कर सकते हैं। श्रोताओं, आज हमारी बातचीत हो रही है सुनील प्रजापति जी से, और आज इनसे जानते हैं कि मूर्ति कला के क्षेत्र में किस तरह इन्होंने अपना एक अलग मुकाम हासिल किया है, और आज हम सबों के लिए एक प्रेरणा स्रोत भी बने हुए हैं। तो सुनील प्रजापति जी, आपको आकाशवाणी परिवार की ओर से नमस्कार।
2: थैंक यू सर।
1: आप हमें ये बताए कि जो मूर्ति कला जो है, स्कल्पचर का जो काम है, वो मतलब कब से आप कर रहे हैं?
2: ये काम हम 12 से 12-13 साल से काम कर रहे हैं।
1: 12-13 साल से?
2: हाँ हाँ।
1: अच्छा, आपकी जो पढ़ाई लिखाई, वो जो शिक्षा
2: पढ़ाई की है सर, वही 5वीं क्लास तक, उसके बाद फिर काम में लग गए हम पूरा।
1: अच्छा, उसके बाद आप सीधा मूर्ति कला?
2: हाँ, फिर सारा पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दिए, इसी में पूरा मन लगा दिए। काम सीखने, मेरा पापा मूर्ति उर्ति बनाते नहीं थे।
1: हाँ, और हम फिर भी आप?
2: हाँ, हम फिर भी हम सीखे, पढ़ाई में हमको मन नहीं लगता
1: तो था। कहाँ से, किस तरह सीखे आपने?
2: जैसे दादा ये सब बनाते थे। हाँ, और चाचा लोग।
1: हाँ,
2: तो देखते थे, तो मम्मी मेरा बोलता था सबको कि मूर्ति बना दो थोड़ा सा देवर वेवर को अपने।
1: हाँ,
2: तो नहीं बना देता था, तो हमको खराब लगता था। मेरा माँ इसको बोल रहा है, नहीं इग्नोर कर दे रहा है लोग, तो हमको खराब लगता था अंदर से। तो माँ को देखते थे, गिड़गिड़ाती थी, तो अच्छा नहीं लगता। तब हमको जुनून हो गया काम करने का, कि यही काम हम करेंगे और यही काम करते।
1: जुनून ने आपको जो है सो मोटिवेट किया।
2: हाँ,
1: और आप इसको सीखे?
2: सीखे, हाँ, यही जुनून के कारण ही काम सीखे।
1: और 12-13 सालों से आप कर रहे हैं?
2: हाँ, 12-13 साल से मूर्ति बनाने लगे थे हम, मैंने छोटा इतना बड़ा बड़ा।
1: अच्छा, जब आप 12-13 साल के थे, तब से आप बनाने?
2: हाँ,
1: लगे
2: बनाने लगे थे मूर्ति हम।
1: हाँ, इसकी जो आरंभिक अवस्था है।
2: हाँ,
1: मतलब मिट्टी को लाना, उसको तैयार करना।
2: हाँ,
1: इसकी क्या विधि है ये?
2: वही तो, जैसे है ना, हम लोग फ्रेम लकड़ी

0: जुगाड़ करते हैं, फ्रेम होता है जो मूर्ति का स्ट्रक्चर, उसको जुगाड़ करके सामान उमान लाते, पटरा उटरा चिरा के मिल से, और उसके बाद फिर फ्रेम बनाते हैं, फिर बिचाली बांधते हैं, बिचाली मंगाते हैं, बिचाली बांधते हैं, फिर मिट्टी से वर्क करते हैं। तीन मिट्टी का काम है इसमें, एक आता है खेत वाला लाल मिट्टी, एक होता है नदी का चिकना मिट्टी, और एक होता है केवाल मिट्टी। तीन मिट्टी का वर्क है ये।
1: अच्छा, तीनों मिट्टी को मिलाते हैं?
0: नहीं, अलग अलग काम है। लाल मिट्टी का अलग काम है, केवाल मिट्टी का अलग काम है, चिकना मिट्टी का अलग काम है।
1: सब जैसे जो मेन जो तैयार होता है, बेस जो बोलते हैं, वो कौन सी मिट्टी से तैयार करते हैं?
0: बेस तो होता है बिचाली से तैयार सर, बिचाली मेन बिचाली है।
1: अच्छा, उसके बाद फिर?
0: उसके बाद लाल मिट्टी का काम होता है,
1: ठीक है,
0: और उसके बाद फिर चिकना मिट्टी का काम होता है।
1: इस तरह से फिर बाहर आप जो चिकना मिट्टी से उसका एक स्तर बना के उसको एक आकार देते हैं,
0: रूप देते हैं। और देखिए ना, आपके सामने है सारा चीज।
1: तो अभी देख रहे हैं कि जैसे अभी सरस्वती माँ का या शंकर भगवान जी का मूर्ति है, और भी बहुत सारे जो घर में जो सजावट की जो चीजें हैं, मूर्ति है, इसमें अभी आपके साथ साथ और कौन कौन लोग हैं जो घर में आपका मदद कर रहे हैं?
0: हाँ, मेरा मेरे साथ है, मेरा पत्नी है, मेरा बेटा है, मेरा माँ है, मेरा भाई भी है, और एक लड़का भी रखे है स्टाफ मिट्टी उट्टी लाने के लिए। मैंने 5-6 जन हम लोग, और छठ के बाद से काम स्टार्ट किए हैं, छठ के बाद से काम करते हैं अभी तक ठंडा में पूरा।
1: अच्छा, ठीक है, छठ के समय से आप काम कर ही रहे। तो ये जो अभी आप एक चीज और बता रहे थे कि जो लाल मिट्टी है, काली मिट्टी है और चिकनी मिट्टी, तो कुछ बाहर से भी मंगाते हैं
0: मिट्टी? जैसे नदी है ना, नदी, नदी से एक व्यवस्था होता है, और एक कलकत्ता से आता है चेहरा वाला मिट्टी।
1: तो उसके लिए भी आपको पैसा देना
0: पड़ता? हाँ, सारा चीज पैसा लगता है भैया। सारा चीज में मिट्टी भी हम लोग गिराते हैं गाड़ी से, 2,500-3,000 रुपए गाड़ी गिरता है। बल्ली लेते हैं जो रोला उलाती है वहाँ से नरसिंह स्थान तरफ से, 100 रुपए पीस, 50 रुपए पीस, 200 रुपए पीस, जैसा लीजिएगा उस तरह है। और पटरा हम चिराते हैं तो पटरा को सेफ्टी मैंने फीट के हिसाब से चल रहा है, 700 रुपए फीट, 800 रुपए फीट, जैसा लकड़ी रहा
1: उसके हिसाब से दाम देना पड़ता।
0: हाँ हाँ,
1: तो इसमें मतलब कौन कौन से सीजन में आपका ज्यादा मूर्ति जो है वो बिक जाता है?
0: मेन तो सरस्वती पूजा में सीजन में ज्यादा मूर्ति सेल है यहाँ पे।
1: इसके अलावा
0: विश्वकर्मा पूजा में कम सेल है,
1: लक्ष्मी पूजा हो गया
0: उसमें और कम है।
1: अच्छा, उसमें और भी?
0: हाँ हाँ, पर सरस्वती पूजा में ज्यादा सेल है, और दुर्गा पूजा में हम लोग जा जाके काम करते हैं सारा मंडप में।
1: अच्छा, उसके अलावा जो कहीं और भी मतलब अन्य जो पर्व त्योहार है उसमें जो पंडाल वगैरह में जा करके डेकोरेशन करना, हाँ, मूर्ति बनाना है,
0: हाँ, हाँ,
1: जैसे कार्तिक,
0: हाँ हाँ, आप सब बनाते हैं,
1: गणेश भगवान,
0: हाँ, हाँ, हाँ, बनाते हैं जाके।
1: हाँ, ये छोटा छोटा और भी आपको बनाना पड़ता होगा, जैसे हंस है
0: भैया? हाँ, जो भी ऑर्डर आता है हम लोग पास, स्टेचू का, हंस का, कुछ का भी ऑर्डर, तो हम लोग सारा काम कर लेते हैं ना। जैसे आपको भी चेहरा पूरा बना देंगे, आपका बॉडी पूरा बना देंगे।
1: तो वो कैसे बनाइएगा?
0: वो भी मिट्टी से बनाते हैं, मिट्टी से बना के फाइबर ढाल लेते हैं उसको, जैसे मिट्टी से खड़ा किया आपका पूरा तस्वीर, उसके बाद फिर पेरिस से मैंने
1: डिटेल ले लिए,
0: हाँ, मैंने ढांचा निकाले, फिर उससे फाइबर का ढाले, इस तरह करके फाइबर का स्टेचू
1: बना। इस तरह से 2-3 स्टेप में आप मतलब अगर चाहें तो किसी का एकदम हुबहू एकदम मूर्ति बना सकते हैं,
0: पूरा सेम डिटो। डिटो।
1: अच्छा, एक चीज और देखते हैं कि कहीं कहीं जो हम लोग चौक चौराहा पर भी देखते हैं कि
0: शहीद, हाँ हाँ, जैसे है ना बिरसा मुंडा है, सुभाष चंद्र बोस है, ये सब सारा बना हुआ है ना, वीर कुमार सिंह है, सारा चीज चौक में जो लगता है सारा चीज बनाते हैं।
1: आपके द्वारा जो निर्मित जो मूर्ति है वो मतलब हजारीबाग के अलावा और भी कौन कौन से क्षेत्र में जाते हैं?
0: हमरा तिलैया, रामगढ़, फिर यहाँ तक गया है, बिसुंगढ़ साइड गया है, बरकट्ठा गया है, चरही उरी लोकल, ये तो पूरा जाता है।
1: हाँ,
0: पूरा ये सब हर सीजन में जाता है, बड़का गांव सब तो हमेशा आता है, लक्ष्मी पूजा में, विश्वकर्मा पूजा में, दुर्गा पूजा में भी जाते हैं, मैंने हर त्योहार में आता है लोग। अभी जा रहा है देखिए सरस्वती जी का मूर्ति तिलैया जा रहा है, तिलैया जा रहा है मूर्ति।
1: इसके लिए फिर अगर किन्हीं को लेना होता होगा तो वो कितने दिन पहले आपको बयाना कर देते हैं, तब वो उनके मुताबिक फिर आप मूर्ति बनाते हैं?
0: 1 महीना पहले।
1: 1 महीना पहले बयाना देना?
0: हाँ, 1 महीना पहले अगर बयाना देंगे तो फोटो के हिसाब से, जो फोटो देंगे बना देंगे
1: उसके हिसाब से बना।
0: हाँ हाँ,
1: तो आपके हाथ में भी बहुत हुनर आ गया है, आप मनचाहा आकार दे पाते।
0: हाँ हाँ हाँ, टाइम दीजिएगा तो बढ़िया से बढ़िया काम होगा।
1: तभी तो आप 1 महीना पहले ऑर्डर ले रहे हैं। अच्छा, एक चीज आपसे और जानना चाहेंगे सुनील जी कि इसमें एक प्रक्रिया तो हो गया कि जैसे आप बताए कि बिचाली से एक रूपरेखा तैयार की, उसके बाद उसके ऊपर जो है वो लाल मिट्टी देते हैं, उसके बाद फिर काला मिट्टी और फिर चिकनी मिट्टी देके जो है वो चेहरा वगैरह बनाते हैं, हाथ पैर बनाते हैं। तो इसके बाद जो कलर करने की जो प्रक्रिया है उसके बारे में थोड़ी जानकारी आप दें।
0: कलर का वही है, उसके बाद फिर हम लोग जो श्रेष्ठ कागज से मूर्ति को घिसा करके पूरा जो बालू होता है साफ कर लेते हैं, पॉलिश मारते हैं, मिट्टी का घोल करके पॉलिश मारते हैं।

0: कौन सा मिट्टी होता है?
1: वही केवाल मिट्टी होता है।
0: ठीक है, उसके बाद?
1: उसके बाद फिर हम लोग व्हाइट वाला आता है, मैंने अस्तर मूर्ति के लिए
0: व्हाइट
1: कलकत्ता से,
0: ठीक है,
1: उसी को व्हाइट वाला अस्तर को मारते हैं दो दो बार मारने के बाद फिर वही कलर जो जो है भरना पड़ता है चारों तरफ।
0: तो जैसे व्हाइट कलर करने के बाद फिर जो चेहरे का जो वास्तविक रंग होता है उसके लिए कौन सा रंग प्रयुक्त किया जाता है?
1: वो तो आता है पेंट है, जैसे हाँ पेंट आता है ना, प्लास्टिक पेंट।
0: तो जैसे एक होता है कि लकड़ी में पेंट करने वाला, एक होता है लोहा में, तो इसमें
1: वही वाला वही
0: के लिए अलग पेंट आता है?
1: नहीं, उसी को यूज करते हैं, स्टेनर हो गया और प्लास्टिक पेंट हो गया, और थोड़ा सा मूर्ति के लिए जो पर्सनल है वो भी हम यूज करते हैं, मूर्ति के लिए ही सिर्फ आता है। जैसे वो बोले ना जो व्हाइट वाला जो होता है जो मारते हैं हम लोग, वो मूर्ति के लिए बनता है, वो खल्ली होता है, बीट खल्ली।
0: अच्छा,
1: उसी पर रंग बनता है,
0: फिनिशिंग।
1: हाँ, वो अगर नहीं रहेगा तो फिनिशिंग नहीं आएगा।
0: इसके साथ साथ जो मतलब जैसे काजल बनाना हुआ जो, या जो श्रृंगार है, जो झुमका है, या हाथ की जो चूड़ियां हैं, उन सब के लिए आप कौन सा रंग प्रयुक्त करते हैं जो मेटालिक टाइप का हो?
1: हाँ, बता रहे हैं, उसके लिए हम लोग पोस्टर कलर आता है, छोटा छोटा सीसी में आएगा एकदम, इतना उसी को यूज करते हैं आँख के लिए, आँख में बनाने के लिए,
0: जो मेन फिनिशिंग जिसको कहा।
1: हाँ, मोट बनाने के लिए, आँख बनाने के लिए, और सारा चीज महीन काम जो होता है उसी छोटा छोटा सीसी आता है पोस्टर कलर, उसी से यूज करते हैं।
0: तो इसमें जैसे आप एक जो बताए जो बेसिक जो व्हाइट कलर
1: मेन तो वही,
0: फिर लास्ट में जो मेटालिक वाला बताया वो कलर देते, तो इन सब चीजों में मतलब कितना समय लगभग लग जाता है मूर्ति बनाने से लेकर के
1: एक मूर्ति का ना? एक मूर्ति का मान के चलिए ना, एक मूर्ति का 5 से 6 दिन,
0: 5 से 6 दिन।
1: हाँ, एक मूर्ति का।
0: तो आप जैसे ये बताए कि एक महीना पहले आप ऑर्डर लेते हैं,
1: हाँ,
0: तो जो बड़ी मूर्तियां हैं, जो स्पेशल मूर्ति,
1: हाँ,
0: जो तो लेना
1: हम लोग को टाइमिंग से नहीं काम करते हैं, जैसे सुबह लगे
0: तो थोड़ा सा एक मूर्ति पे काम के फिर आप फिर बेसिक,
1: हाँ, फिर दूसरा दूसरा काम होते रहता है।
0: एक ही मूर्ति पर दिन भर नहीं लगा?
1: नहीं, ऐसा नहीं है, एक मूर्ति पर नहीं, इसमें थोड़ा किए फिर इसमें थोड़ा किए, इस तरह सारा दिन लगातार, जैसे गीला भी रहता है ना मट्टी देने बाद तो टाइट होगा तभी फिर काम
0: होगा, तभी उस पर काम। तो जैसे अभी एक मूर्ति हम देख रहे हैं कि यहाँ सरस्वती माँ की मूर्ति है कि इसमें एक चक्का लगा हुआ नीचे, ये कुछ रथ टाइप का, इसमें घोड़ा बना हुआ है, और इसमें पीछे एक ऊपर में स्तंभ बना
1: हुआ
0: है, इसके ऊपर एक मोर जो है वो देख रहे हैं, और ये सरस्वती माँ के हाथ में बहुत एक खूबसूरत वीणा भी दिखाई दे रही। तो ये इस मूर्ति को बनाने के लिए कहीं से ऑर्डर आपको ऑर्डर मिला था या आप खुद
1: बना? सोच के दिमाग से, अपना दिमाग से।
0: अच्छा, मतलब एक मूर्तिकार के दिमाग में हमेशा कुछ न कुछ इनोवेटिव चलते रहता
1: है, ये अपना मन से हम बनाए सोच के,
0: मैंने ये तो आपके जो कल्पनाशीलता की
1: कल्पना से बनाए,
0: परीक्षा भी है कि हमेशा कुछ नया आप करें।
1: हाँ,
0: और आपके इसी मतलब चीज का कीमत जो है सो आपको देते हैं, मतलब एक्चुअली वो मूर्ति का कीमत उसको नहीं कहा जा सकता,
1: नहीं नहीं,
0: वो सिर्फ और सिर्फ कलाकारी का ही कीमत है। एक कलाकार जो होता है वो अपने कला का कीमत लेता है, किसी वस्तु की कीमत वो नहीं लेता, क्योंकि आप हो सकता है कि आपके जैसे कोई दूसरे भी लोग हैं, लेकिन आपका जो अपना व्यक्तिगत जो आपकी पहचान है वही आपका जो है मूल्य निर्धारण करता है आपके कला का।
1: हाँ,
0: क्या कहना चाहेंगे?
1: हाँ नहीं, वो तो है, मेन तो वही है, पर जितना हम मेहनत करते हैं ना मूर्ति में,
0: हाँ,
1: उतना पैसा तो मिल नहीं पाता यहाँ पे,
0: नहीं मिल पाता है,
1: इसलिए जो है सो सब ठीक है, इसलिए कि यहाँ पे जो रेट है ना, ज्यादा मूर्तिकार है यहाँ पे,
0: हाँ,
1: रेट कम मिलता है, हम लोग बहुत खटते हैं, मेहनत ज्यादा करते हैं, जगह भी हम लोग देख रहे दिक्कत है, और पैसा उतना मिल नहीं पाता यहाँ पे।
0: अच्छा, किसी तरह से कोई आर्थिक मदद कोई सरकार या बैंक वगैरह से?
1: नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है,
0: अभी जो भी है खुद आपको अपने ही से पैसा लेकर या व्यवस्था करके
1: करना पड़ता है। हाँ, सारा व्यवस्था अपने पैसे से करना पड़ता है।
0: तो इन मतलब 15-20 सालों में 25 सालों में इस क्षेत्र में मतलब कला क्षेत्र में क्या कुछ बदलाव नजर आ रहा है? पहले जब आप काम सीख रहे थे, जब आप काम कर रहे थे, और आज का एक जो आधुनिक युग हो गया, अत्याधुनिक युग कह सकते हैं, इसमें क्या बदलाव आया कला के क्षेत्र?
1: इसमें बदलाव ये आया है कि आदमी लोग का उमंग पूरा बढ़ गया है, पहले तो छोटा छोटा मूर्ति भी नहीं बिकता था अच्छा से, और अब बड़ा बड़ा मूर्ति भी घट जा रहा। हाँ, मूर्ति पे बहुत डिमांड पड़ गया,
0: मतलब इस क्षेत्र में और भी ध्यान देने की जरूरत।
1: हाँ,
0: डिमांड बहुत है,
1: डिमांड बहुत है,
0: रेट उतना नहीं आपके हिसाब से मिल पाता है,
1: नहीं, पर डिमांड बहुत
0: आपके पास अगर हैंड हो और तो आप और मूर्ति बना सकें ताकि आपका पूरा डिमांड फुलफिल हो सके।
1: हाँ, एकदम बना सकते, जगह भी दिक्कत है, नहीं तो और मूर्ति हम बनाते।
0: तो पहले के समय में जो होता था वो मूर्ति में उतना ज्यादा मतलब शायद फिनिशिंग नहीं हो पाता, या फिनिशिंग के लिए कुछ दूसरे रंग प्रयुक्त किए जाते होंगे,
1: फिनिशिंग नहीं होता था, काम मॉडल हो गया है तो
0: एक से एक रंग का
1: डिजाइन आ गया, एक से सामान आ गया, मशीन से अब काम होने लगा, पहले हाथी से होता था, अब मशीन से होने लगा।
0: मशीन से क्या क्या काम आता है?
1: शेड होता है, मशीन से शेडिंग होता है, जो आप नहीं जानिएगा मूर्ति का।

0: कलर करने बाद जो मशीन से शेड मारिएगा ना
1: हाँ।
0: तो बहुत बढ़िया खिलता है उससे।
1: अच्छा, तो वो सब मशीन से ही काम हो
0: जाता है? हाँ, मशीन से।
1: तो पहले वो नहीं होता था, ये हाथ से होता था?
0: पहले हाथ से होता था, जो फिनिशिंग नहीं उतना आता था, अब मशीन वाला एक से एक फिनिशिंग आता है।
1: अच्छा ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात आपने बताई।
2: तो दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में आपने सुना भेंट वार्ता, और इस भेंट वार्ता में आप सुन रहे थे कि मूर्ति कला का कार्य दे खुशियां अपार, और इस विषय पर जानकारी दे रहे थे मूर्तिकार सुनील प्रजापति, और इनसे बातचीत कर रहे थे हमारी ओर से प्रवीण कुमार मिश्रा। दोस्तों, इस कार्यक्रम में आज हम चर्चा कर रहे हैं खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में रोजगार के अवसरों के बारे में, और हमने देखा कि कई ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जहां पर रोजगार की असीम संभावनाएं हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी चर्चा से यह साफ हो जाता है कि खाद्य प्रसंस्करण केवल भोजन तैयार करने का काम नहीं, बल्कि रोजगार और स्वरोजगार का भी एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। कृषि उत्पादों में मूल्यवर्धन करके किसानों, युवाओं और मेहनत कश लोगों के लिए आय के नए अवसर पैदा किए जा सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आज का यह कार्यक्रम आपको खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में रोजगार की संभावनाओं को समझने में उपयोगी सिद्ध हुआ होगा, और साथ ही हम यह आशा करते हैं कि हमारे द्वारा जो आज भेंट वार्ता प्रसारित की गई वह भी आपके लिए काफी उपयोगी सिद्ध होगा। तो दोस्तों, इसी संदेश के साथ आज के इस कार्यक्रम से अब हमें दीजिए अनुमति। तो आइए चलते चलते सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

दोस्तों, ये आप सुन रहे थे कार्यक्रम में मेहनत कस FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है। संध्या के 6:30 हुए हैं। अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत।

कार्यक्रम फिल्म संगीत सुनने वाले आप तमाम श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों लीजिए पेश है कार्यक्रम का पहला गीत सुरेश वाडेकर और आशा भोसले की आवाज में, जिसे हमने लिया है फिल्म सत्या से।

दोस्तों, भी आपने सुना आशा भोसले और सुरेश वाडेकर की आवाज में फिल्म सत्या से लिया गया ये प्यारा सा गीत। अब वही सुनते हैं कार्यक्रम का अगला नगमा कुमार शानू और पूर्णिमा की आवाज में, जिसे हमने लिया है फिल्म गोपी किशन से।

दोस्तों भी आपने सुना सोनू निगम और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में गाया ये खूबसूरत सा गीत, जिसे हमने लिया था फिल्म बादल से। अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला नगमा।

दोस्तों अभिजीत और अलका याग्निक की आवाज में गाए से गीत के साथ कार्यक्रम फिल्म संगीत से हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्म संगीत एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है। संध्या के 6:55 हुए हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे हमारे राज्य केंद्र से प्रादेशिक समाचार और फिर जिले में आजकल
1: कर बेरा हो जा है तो बताया चाहिए कि कार्यक्रम कर प्रस्तुति रहे प्रभु शरण कर और चलते चलते सब हमरे कर सुनो भाई बहन मन के जोहार और के भी जोहार
2: जोहार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हमारी दुनिया, ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। शाम के 7 बजने को है, बस थोड़ी देर में आप सुन सकेंगे प्रादेशिक समाचार। कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: बड़ी बहू ये तुम्हारी ना, इतनी भी क्या जल्दी थी।
2: अरे और छोटी ये तुम्हारे ना,
1: और ये
3: मेरी गुड़िया की ना।
1: तो दादी
3: हाँ?
1: आपके नाम
4: सब कुछ मैंने बैंक लॉकर फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
1: शुभ शुभ बोलो।
3: क्या
4: आरबीआई कहता है?
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: जन जन तक पहुँचे पैगाम, डेंगू में रखें इन बातों का ध्यान।
5: यदि किसी को तेज बुखार, सिर दर्द, आंखों के पिछले हिस्से में दर्द, नाक बहना, उल्टी होना, भूख न लगना जैसे लक्षण दिखें तो तुरंत अपने चिकित्सक से संपर्क करें। साथ ही प्रत्येक रविवार दिन में 10 बजे 20 मिनट अपने घर के आसपास मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए आवश्यक उपाय करें। मच्छरों से बचें, घर के आसपास सफाई रखें, पानी की टंकी, गमले, कूलर इत्यादि को साफ रखें, हमेशा मच्छरदानी लगाकर सोएं।
6: तो सुन लो भाई, सुन लो बहना, डेंगू से तुम बच के रहना।
5: वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले।
1: मैं रामकर मंडल, ग्राम पंचायत ताराबाद, ब्लॉक मोहनपुर, जिला देवघर, झारखंड का निवासी हूं। मैं पिछले 3 सीजन से अपनी फसलों का बीमा करा रहा हूं। इस योजना से जुड़कर मैं अपने को खुश और चिंता मुक्त महसूस कर रहा हूं। सभी किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है कि वे अपना फसल बीमा जरूर कराएं।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
4: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
5: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में 2-2 फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी, सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
6: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
7: हर घर सूर्य घर।
8: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं तृप्ति कुमारी। पहले मुख्य समाचार। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने किया विश्व आदिवासी दिवस का उद्घाटन। कहा, पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा स्रोत है जनजातीय समाज की संस्कृति और परंपराएं। मुख्यमंत्री हेमंत

0: सोरेन का ऐलान, प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ियों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे युवाओं को मिलेगा न्याय, दोषियों पर होगी कड़ी से कड़ी कार्रवाई। 14वीं जेपीएससी पीटी और बैकलॉग परीक्षाएं रद्द करने पर सहमत हुई राज्य सरकार, ईडी से जांच के प्रस्ताव के बीच गतिरोध बरकरार। छात्रों ने कल विधानसभा घेराव का किया ऐलान। झारखंड समेत अन्य राज्यों में कई आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने वाले गिरोह के 11 अपराधी गुमला से गिरफ्तार, सोना चांदी नकद और हथियार बरामद। और मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक राज्य के अधिकतर हिस्सों में तेज हवा और गर्जन के साथ भारी बारिश होने की जताई संभावना। और अब समाचार विस्तार से। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने रांची के मोरहाबादी मैदान में झारखंड आदिवासी महोत्सव का उद्घाटन करते हुए कहा कि जनजातीय समाज की संस्कृति, परंपराएं और प्रकृति के साथ सह अस्तित्व आज जलवायु संकट के समय में पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा है। उन्होंने जनजातीय समाज के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और कौशल विकास पर जोर देते हुए शिक्षा को आत्मविश्वास और राष्ट्र निर्माण का आधार बताया और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को इसका उदाहरण बताया। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर बोकारो में आयोजित महोत्सव में मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने गोमिया और पेटरवार प्रखंड के 6 गांवों को कुल 4,300 एकड़ रिकॉर्ड वन क्षेत्र का सामुदायिक वन अधिकार पट्टा प्रदान किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षा में कथित गड़बड़ियों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे युवाओं को न्याय दिलाने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने गड़बड़ी पकड़ ली है और अनियमितताओं के दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। श्री सोरेन आज रांची के मोरहाबादी मैदान में विश्व आदिवासी दिवस के उद्घाटन के अवसर पर लोगों को संबोधित कर रहे थे।
1: राज्य में हमारे कुछ युवा नौजवान छात्र छात्राएं अपनी कुछ मांगों को लेकर के प्रदर्शन में है, धरना में है और उनके साथ बिल्कुल खुले तौर पर बातों को सुन भी रही है। मैं स्पष्ट रूप से संदेश देना चाहता हूं कि इतनी बड़ी व्यवस्था चलती है लेकिन हमारी मनसा इस राज्य के 3.25 करोड़ लोगों के प्रति काफी संवेदनशीलता के साथ।
0: 14वीं जेपीएससी की पीटी परीक्षा को रद्द करने पर राज्य सरकार सहमत हो गई है। इसके साथ ही वर्ष 2023 और 25 के जेपीएससी बैकलॉग की परीक्षा को भी रद्द करने पर सहमति बन गई है। आज आंदोलनरत छात्रों के प्रतिनिधिमंडल और मंत्रियों के समूह के बीच दिन भर हुई वार्ता के बाद मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि छात्रों और सरकार के बीच लगभग 98% मुद्दों पर सहमति बन गई है जबकि 2% मुद्दों पर सहमति नहीं बन पाई है। हालांकि छात्रों ने कहा कि उनकी मांग सीबीआई से जांच और जीएसएससी सीजीएल समेत अन्य परीक्षाओं को भी रद्द करने की है, इसलिए छात्रों का आंदोलन जारी रहेगा और कल विधानसभा का घेराव किया जाएगा। जेपीएससी के 3 सदस्यों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने राज्य सरकार की अनुशंसा के बाद झारखंड लोक सेवा आयोग की सदस्य डॉक्टर अजिता भट्टाचार्य, डॉक्टर अनिमा हांसदा और डॉक्टर जमाल अहमद का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। इन तीनों से कल सीआईडी पूछताछ भी करेगी। प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद आदित्य साहू ने आज रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और पार्टी के मुख्य सचेतक नवीन जायसवाल के साथ रांची स्थित जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंचकर प्रदर्शनकारी छात्रों से मुलाकात की। इस मौके पर श्री साहू ने आरोप लगाया कि इन छात्रों के बीच राज्य सरकार अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति अपना रही है।
2: हेमंत सोरेन की सरकार छात्रों के साथ अन्याय, अत्याचार और राजनीति करने का काम कर रही है। झारखंड के छात्र और झारखंड के लोग समझ रहे हैं। इसी आंसू की कीमत तो झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस को चुकाना ही पड़ेगा। झारखंड में छात्रों के साथ राहुल गांधी फोन में बात करके उनको समझाने का काम करते हैं। फिर मैं कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी को माननीय मुख्यमंत्री से बात करना चाहिए। छात्रों के हक में उनका जो मांग है उसके लिए मुख्यमंत्री जी की आवाज के बाहर जाकर के कांग्रेसी धरना दें।
0: इधर कांग्रेस के नेता राकेश सिन्हा ने पलटवार करते हुए कहा कि प्रदेश भाजपा के नेता विचलित हो गए हैं।
3: आंदोलन कर रहे थे

आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNewsRanchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR

0: न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं।
1: सेवा जोहार, तैयार हो जाइए इतिहास के सबसे बड़े सांस्कृतिक महाकुंभ का गवाह बनने के लिए। माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में झारखंड सरकार लेकर आ रही है झारखंड आदिवासी महोत्सव 2026। आगामी 9 और 10 अगस्त को रांची का मोराबादी मैदान गूंजेगा 5000 से अधिक लोक कलाकारों, झूमर, छऊ और पारंपरिक जनजातीय प्रस्तुतियों से। महोत्सव में होंगे भव्य उद्घाटन एवं सम्मान समारोह, कला एवं शिल्प प्रदर्शनी, पुस्तक मेला, स्वतंत्रता सेनानी विरासत प्रदर्शनी, चित्रकला प्रदर्शनी, ट्राइबल फैशन शो, रॉक बैंड की शानदार प्रस्तुतियाँ, इमर्सिव जोन और 700 ड्रोन का भव्य शो, आधुनिक 5D थिएटर और AI तकनीक इस अनुभव को और भी यादगार बनाएंगे।
2: यहाँ मिलेगा पारंपरिक जनजातीय खान पान, आदिवासी व्यंजन प्रतियोगिता, आकर्षक हस्तशिल्प, नॉलेज पार्टनर्स और लेखकों से संवाद का अवसर। सब परिवार आइए और अपनी संस्कृति के रंग में घुल जाइए। अपनी परंपरा और अपनी पहचान का उत्सव गर्व के साथ मनाइए। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: केंद्रीय मंत्री और कोडरमा से सांसद अन्नपूर्णा देवी ने रांची में चल रहे छात्र आंदोलन को लेकर कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। मंत्री आज कोडरमा में अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत कर रही थी।
3: राहुल गांधी जी एक बार भी झारखंड के बच्चों के लिए एक शब्द भी वो बोले नहीं, न कोई कांग्रेस आगे आके बोल रही है। झारखंड के बच्चे क्या देश के बच्चे नहीं है? तो ये दोहरी नीति क्यों? अगर आप सही मायने में बच्चों का भविष्य, बच्चों का हित चाहते हैं तो निश्चित रूप से चाहे वो झारखंड हो चाहे अन्य, हर जगह बोलना चाहिए।
0: राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने आज रांची के धुरवा स्थित पारस HEC हॉस्पिटल में रोबोटिक सर्जरी सुविधा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने इसे राज्य में आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार की दिशा में अहम कदम बताया। हर घर तिरंगा अभियान आज से 17 अगस्त तक चलेगा। अभियान का उद्देश्य देशवासियों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। एक रिपोर्ट।
4: हर घर तिरंगा अभियान पूरे देश में देशवासियों में देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने, राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने और भारत की सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने के लिए मनाया जा रहा है। यह अभियान हर घर तिरंगा पहल का 5वां वर्ष है। इसकी शुरुआत 2022 में हुई थी और तब से यह देश के सबसे बड़े जन भागीदारी आंदोलनों में से एक बन गया है। समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
0: गुमला जिले से पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय आपराधिक गिरोह के 11 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। जिले के पुलिस अधीक्षक हरेश बिनजमा ने बताया कि इस गिरोह के अपराधी झारखंड समेत अन्य राज्यों में आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं।
5: कोरे गैंग के नाम से एक गैंग है जो कि विख्यात है, जिस तरह का काम करता है और जिन्होंने पहले इस तरह की घटनाओं को खारिज किया है और अरेस्टिंग होती है और दो दो अभियुक्त जो है पालकोट थाना क्षेत्र में जो घटना हुई है उसके और जो घाघरा थाना क्षेत्र में घटना हुई है वहाँ इन 11 अभियुक्तों को पकड़ा जाता है। सोना लगभग 70 ग्राम रिकवर हुआ है, चांदी लगभग 1.34 kg रिकवर हुआ है, नगद पैसा 1,70,000 रिकवर हुआ है। इन सभी 11 लोगों को हम लोग विभिन्न कांडों में फॉरवर्ड कर रहे हैं।
0: मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक राजधानी रांची, सिमडेगा, जमशेदपुर और सरायकेला खरसावा समेत राज्य के विभिन्न जिलों में गर्जन के साथ तेज बारिश होने की संभावना जताई है। इस दौरान आकाशीय बिजली गिरने की आशंका भी जताई गई है। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर हॉकी झारखंड की ओर से आज रांची के मोरहाबाद स्थित मरांग गोम के एक जयपाल सिंह मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में महिला वर्ग का मैच मोरहाबादी एकादश और बरियातू एकादश के बीच खेला गया, जिसमें मोराबादी एकादश ने 3-2 से जीत दर्ज की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने किया विश्व आदिवासी दिवस का उद्घाटन। कहा, पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा स्रोत है जनजातीय समाज की संस्कृति और परंपराएं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का ऐलान, प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ियों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे युवाओं को मिलेगा न्याय, दोषियों पर होगी कड़ी से कड़ी कार्रवाई। 14वीं JPSC PT और बैकलॉग परीक्षाएं रद्द करने पर सहमत हुई राज्य सरकार। ईडी से जांच के प्रस्ताव के बीच गतिरोध बरकरार। छात्रों ने कल विधानसभा घेराव का किया ऐलान। झारखंड समेत अन्य राज्यों में कई अपराधी घटनाओं को अंजाम देने वाले गिरोह के 11 अपराधी गुमला से गिरफ्तार। सोना चांदी, नकद और हथियार बरामद। और मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक राज्य के अधिकतर हिस्सों में तेज हवा और गर्जन के साथ भारी बारिश होने की जताई संभावना। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
6: Hey girls, आज तो पार्टी चाहिए।
7: पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
8: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
6: पिज्जा पार्टी, ये। चल अपना कार्ड और पिन दे।
8: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
6: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
8: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
9: प्रस्तुत है जिले में आज कल।

0: इस अंक में आप सुनेंगे बोकारो जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे बोकारो संवाददाता।
1: अपराध पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस को संसाधन की कमी ना हो, इसके मद्देनजर राज्य सरकार द्वारा बोकारो पुलिस को 39 वाहन उपलब्ध कराए गए हैं। उत्तरी छोटा नागपुर प्रक्षेत्र के आईजी शैलेंद्र कुमार सिन्हा ने कहा कि क्राइम कंट्रोल को लेकर राज्य सरकार गंभीर है।
2: 39 गाड़ियां इस लॉट में सरकार के द्वारा इस जिले को आवंटित की गई हैं और जिसकी वजह से जिला का पुलिस बल है उसकी मूवमेंट बढ़ेगी, उसकी कार्य क्षमता बढ़ेगी। पुलिस का जो मूल मंत्र है सेवा ही लक्ष्य, उसके आलोक में हम जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतर पाएंगे।
1: उपायुक्त अजयनाथ झा ने कहा कि जिला पुलिस के पास वाहनों की कमी थी, संसाधन होने से अपराधियों में भय व्याप्त होगा।
3: पुलिस की जो पहली प्राथमिकता है सुरक्षा प्रदान करना, आम जनता में सुरक्षा की भावना बढ़ेगी, विश्वास की भावना बढ़ेगी और अपराधियों में खौफ उत्पन्न होगा। यही उद्देश्य होना चाहिए। अपराधी अपराध करने से पहले सोचे ये गाड़ियां उनको कहीं भी वो छुपे उन्हें पकड़ लेंगी और आम जनता तक तेजी से उनकी सुरक्षा के लिए गाड़ियां उपलब्ध हो सकेंगी। इसी विश्वास के साथ पुलिस की कार्य क्षमता में विस्तार करने की दृष्टि से ये गाड़ियां राज्य सरकार ने उपलब्ध कराई है।
1: बोकारो हवाई अड्डा से बहुत जल्द व्यावसायिक उड़ान सेवा शुरू होने वाली है। निरीक्षण को आए रांची एयरपोर्ट के प्रबंध निदेशक एसपी सिन्हा ने कहा कि तैयारियां अंतिम चरण में हैं, आदेश आते ही उड़ान सेवा शुरू हो जाएगी।
4: अभी फिजिकल वेरिफिकेशन कर रहे हैं इसका, तो ये फाइनल स्टेज में है और डीजीसी से लाइसेंस प्राप्त करना है। तो जैसे ही डीजीसी लाइसेंस हम लोगों को देती है वी कैन स्टार्ट। अब उसमें थोड़ी बहुत कामियां हैं पूरा कर रहे हैं, आज उसी के लिए बैठक कर रहे हैं और उसको करके जल्दी ही कंप्लायंस इसको हो जाएगा। ये टाइमलाइन तो फिक्स होता है, हम लोग वर्क प्रोग्रेस के आधार पर करते हैं। तो वर्क प्रोग्रेस में बहुत सारा चीज होता है, बहुत सारी चीजें उसमें इश्यूज आती हैं, तो टाइमलाइन तो थोड़ा डिफर करता है।
1: जनसंख्या नियंत्रण से संबंधित आयोजित एक कार्यक्रम में उप विकास आयुक्त शताब्दी मजूमदार ने कहा कि प्राकृतिक संसाधन सीमित हैं, ऐसे में हम सभी को आने वाली पीढ़ी के बारे में सोचना होगा।
5: मेन पर्पस यही है कि कैसे पॉपुलेशन को ऑप्टिमम रखना है, ना बहुत ज्यादा भागने देना है ना बहुत ज्यादा कम हो जाए, उसको देखते हुए पॉपुलेशन को एक ऑप्टिमल ब्रैकेट में लेकर के आए ताकि जापान जैसा भी कंडीशन ना हो या ओवर पॉपुलेशन इश्यूज भी ना हो। थोड़ा सा एनालिसिस में हम लोग जाए, ओवर पॉपुलेशन के अपने इश्यूज है, जैसे हमारे नेचुरल रिसोर्सेज तो सीमित है, अगर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो रिसोर्सेज पर ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा प्रेशर आएगा और हमारे आने वाले जो जनरेशन है फ्यूचर जनरेशन को रिसोर्सेज क्रंच फेस करना पड़ सकता है। फॉर एग्जाम्पल वाटर का भी अगर हम लोग बात करें तो वाटर बीइंग अ नेचुरल रिसोर्स वो लिमिटेड है और अगर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो वाटर एज ए रिसोर्स पर बहुत ज्यादा बर्डन पड़ेगा।
1: पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश से किसान खुश हैं, जिले में धान रोपनी युद्ध स्तर पर चल रही है। मनोज कुमार, आकाशवाणी समाचार, बोकारो।
0: अभी आप
6: ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोतो संध्या के 7:15 हुए हैं। लीजिए पेश है फिल्म संगीत पर आधारित हमारा कार्यक्रम झनकार।

दोस्तों भी आपने सुना फिल्म वेलकम टू द जंगल से लिया गया ये प्यारा सा गीत। अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला नगमा जिसे हमने लिया फिल्म धमाल 4 से।

है जवानी तो इश्क होना है। दोस्तों, इसी फिल्म के इस गीत के साथ कार्यक्रम झनकार से हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।

FM 102.1 MHz आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है। श्रोताओं, संध्या के 7:30 हुए हैं। लीजिए पेश है सदाबहार फिल्म संगीत पर आधारित हमारा कार्यक्रम ऑल टाइम हिट्स।

आज हमको तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया वो छूट जाएगा, है इतना दर्द कि तेरा दामन भीग जाएगा।

0: अधूरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे हैं हम।
1: दोस्तों, भी आपने सुना सोनू निगम और सुनिधि चौहान की आवाज में फिल्म फना से लिया गया ये प्यारा सा गीत। अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला नगमा, जिसे हमने लिया है फिल्म दुश्मन से। आवाज़ें हैं लता मंगेशकर की।

पता है शेखर, इंसान को तकलीफ कब होती है? जब वो कोई सपना देखता है और वो पूरा नहीं होता। इसलिए मैंने सोच लिया है

0: कि आज के बाद कोई सपना ही नहीं देखूंगी।
1: बस हार गई। अपनी आंखें बंद करो संजना। बंद आंखों से इंसान सिर्फ सपना ही नहीं, कभी कभी उस हकीकत को भी देख लेता है जिसे खुली आंखें कभी नहीं देख पाती। आंखें बंद करो संजना।

प्यार तो होना ही था। इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे, आवाजें थी आशा भोसले और उदित नारायण की। अब ही सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज में।

दोस्तों, भी आप सुन रहे थे सदाबहार फिल्म संगीत पर आधारित हमारा कार्यक्रम ऑल टाइम हिट्स FM 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है। रात्रि के 8 बजे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत।

दोस्तों कार्यक्रम का पहला गीत आइए सुनते हैं अलका याग्निक और अभिजीत की आवाज में। फिल्म का नाम है आप मुझे अच्छे लगने लगे।

और दोस्तों भाई सुनते हैं कार्यक्रम का अगला नगमा लता मंगेशकर और कुमार सानू की आवाज में। फिल्म का नाम है कच्चे धागे।

दोस्तों, भी आपने सुना फिल्म मिशन कश्मीर से लिया गया ये गीत। अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला नगमा, जिसे हमने लिया है फिल्म बंटवारा 1947 से।

दोस्तों, भी आपने सुना सोनू निगम और हीर की आवाज में फिल्म बंटवारा 1947 से लिया गया ये प्यारा सा गीत। अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला नगमा, जिसे हमने लिया है फिल्म मातृभूमि से।

दोस्तों अलका याग्निक और सोनू निगम की आवाज में गाए इस गीत के साथ कार्यक्रम फिल्म संगीत से हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।

दोस्तों, आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्म संगीत FM 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है। रात्रि के 8:45 होने को हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार संध्या और फिर रात्रि 9 बजे न्यूज़ @9।

0: नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं हैं, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल के पदक विजेताओं से बातचीत की, लोगों से भारतीय खिलाड़ियों का हमेशा उत्साहवर्धन करने का आग्रह किया। देश भर में कई कार्यक्रमों के साथ हर घर तिरंगा अभियान शुरू, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने लोगों से अभियान में शामिल होकर विकसित भारत के लिए फिर से संकल्प लेने की अपील की। झारखंड सरकार अनियमितताओं के आरोपों के बाद जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा रद्द करने पर सहमत, प्रदर्शनकारी छात्रों ने कहा आंदोलन जारी रहेगा, जेपीएससी के 3 सदस्यों ने इस्तीफा दिया।

0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को स्पष्ट संदेश दिया कि भारत आतंकवाद कतई बर्दाश्त न करने की नीति के तहत देशवासियों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी ने लाभार्थियों को 1 करोड़ से अधिक घर सौंपकर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की और तूफान डॉल्फिन चीन के पूर्वी तट पर पहुंचा, 1300 से अधिक उड़ानें रद्द और 3 लाख लोग विस्थापित। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली स्थित अपने आवास पर इस वर्ष के राष्ट्रमंडल खेलों के पदक विजेताओं से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने कहा कि जो लोग खेलों से जुड़ते हैं वे जीवन में आगे बढ़ते हैं। उन्होंने देशवासियों से खिलाड़ियों का हमेशा उत्साह बढ़ाने की अपील की।
1: जो खेलेगा वो खिलेगा। ऑलवेज चीयर फॉर भारत। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय।
0: स्कॉटलैंड के ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 39 पदक जीतकर पदक तालिका में चौथे स्थान पर था। हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू हो गया है। 17 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य देशवासियों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस वर्ष ये अभियान राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ मनाया जा रहा है। देश भर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी होगा। दुनिया भर में 200 से अधिक भारतीय दूतावास, उच्चायोग और वाणिज्य दूतावास भी अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से इस अभियान में उत्साह के साथ शामिल होने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने का संकल्प फिर से लेने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि तिरंगा देश का गौरव है। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि इस वर्ष का अभियान वंदे मातरम को समर्पित है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी श्री विजयपुरम में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। उन्होंने वीर स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति वंदे मातरम पर तिरंगा संगीत कार्यक्रम में भी शामिल हुए। उन्होंने देश के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े भारत छोड़ो आंदोलन का स्मरण किया।
2: To launch this campaign today on the August Kranti Divas as we commemorate the Quit India Movement of 1942. Millions of Indians responded to his call and rose against the British with the unwavering resolve of do or die on this day. It is therefore deeply significant that we launch the Har Ghar Tiranga campaign from the historic islands on this historic day.
0: गृहमंत्री अमित शाह ने पुदुचेरी में तिरंगा यात्रा को रवाना किया। हजारों लोगों ने इस यात्रा में तिरंगे के साथ भागीदारी की। मध्य प्रदेश और जम्मू कश्मीर सहित देश भर में आज से हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत सप्ताह भर के कार्यक्रम शुरू हुए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। झारखंड सरकार और प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों की अधिकतर मांगों पर सहमति बन गई है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: झारखंड सरकार ने आंदोलनरत छात्रों की अधिकांश मांगों पर सहमति जताई है। राज्य के मंत्री सुदेव कुमार सोनू ने कहा कि सरकार 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा और वर्ष 2023 से 25 की बैकलॉग परीक्षाओं को रद्द करने पर सहमत है। आज सरकार और छात्रों के बीच हुई वार्ता के बाद में मंत्री ने कहा कि कथित वित्तीय अनियमितताओं की ईडी जांच और आपराधिक मामलों की सीआईडी जांच कराई जाएगी। साथ ही 90 दिनों के भीतर आरोप पत्र दाखिल करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने की भी बात कही गई है। परीक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार के लिए आईआईटी आईएसएम आईआईएम रांची और एक्सएलआरआई के विशेषज्ञों की एक समिति गठित की जाएगी। छात्रों ने कहा कि सीबीआई जांच की मांग पर कोई समझौता नहीं होगा। इस बीच झारखंड लोक सेवा आयोग के 3 मौजूदा सदस्यों ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है। तीनों को सीआईडी ने कल पूछताछ के लिए तलब किया है। महविश रहमान।

0: या कि भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए वह किसी हद तक जा सकता है। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से हमने दुनिया को बताया कि हमारी नारी शक्ति के सिंदूर की रक्षा करने के लिए हम किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं।
1: गृह मंत्री अमित शाह पुदुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्रदान किए जाने के समारोह में शामिल हुए। श्री शाह ने कहा कि राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्राप्त करना किसी भी अनुशासित पुलिस बल के जीवन के सबसे गौरवशाली क्षणों में से है। गृह मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा औपनिवेशिक काल के कानूनों की जगह लाए गए 3 नए आपराधिक कानूनों का उद्देश्य प्रौद्योगिकी आधारित और समयबद्ध प्रणाली के माध्यम से नागरिकों को समयबद्ध न्याय निश्चित करना है।
2: ये न्याय संहिताओं की सोच दंड आधारित नहीं है। ये न्याय संहिताओं की सोच नागरिकों को न्याय दिलाने के लिए केंद्रित, तकनीक सक्षम और समयबद्ध बनाने की है। ये तीनों न्याय संहिताएं टेक्नोलॉजी, टाइमलाइन और ट्रस्ट, ये 3 पिलर पर खड़ी की गई है।
1: उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रह्लाद जोशी ने आज एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में वर्तमान चीनी मौसम के लिए चीनी के भंडार की स्थिति, उत्पादन और जरूरतों का आकलन किया गया। श्री जोशी ने चीनी का पर्याप्त भंडार बनाए रखने के लिए इसकी उपलब्धता की सघन निगरानी और समय समय पर आवश्यक उपाय करने पर बल दिया, ताकि पूरे मौसम के दौरान चीनी की स्थायी आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए से संबंधित मामलों को लेकर शिक्षा मंत्रालय के सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। श्री जोशी ने संस्थागत व्यवस्था को मजबूत करने, प्रक्रिया सुचारू बनाने और विद्यार्थियों के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करने से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श किया। श्री जोशी ने कहा कि सरकार का मुख्य ध्यान मजबूत, पारदर्शी और विश्वसनीय परीक्षा व्यवस्था बनाने पर है, ताकि प्रत्येक विद्यार्थी की आकांक्षा पूरी हो सके। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने कहा है कि पीएम आवास योजना शहरी और दूसरे चरण की पीएम आवास योजना शहरी के अंतर्गत अब तक 1,25,00,000 से अधिक मकानों को मंजूरी दी जा चुकी है। इनमें से 1 करोड़ से ज्यादा मकान बनकर तैयार हो चुके हैं और लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं। इनमें करीब 1 करोड़ मकान महिलाओं को आवंटित किए गए हैं। एक रिपोर्ट।
3: दूसरे चरण की पीएम आवास योजना शहरी में स्वीकृत 2,09,000 आवासों में से 2,03,000 से अधिक आवास महिलाओं को आवंटित किए गए हैं। वहीं वरिष्ठ नागरिकों के लिए 16,600 से अधिक आवास स्वीकृत किए गए हैं, जबकि करीब 22,000 आवास अनुसूचित जाति, 14,000 से अधिक अनुसूचित जनजाति और 75,000 से अधिक आवास अन्य पिछड़ा वर्ग के लाभार्थियों को आवंटित किए गए हैं। इस योजना में आवासों के स्वामित्व में महिलाओं को प्राथमिकता दी गई है। पीएम आवास योजना शहरी की शुरुआत वर्ष 2015 में पात्र शहरी लाभार्थियों को बुनियादी नागरिक सुविधाओं से युक्त हर मौसम के लिए उपयुक्त पक्के मकान उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गई थी। आनंद कुमार के साथ सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारत ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता में 300 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। 31 जुलाई को हासिल की गई ये उपलब्धि वर्ष 2030 के लिए निर्धारित 500 गीगावाट क्षमता के लक्ष्य का 60% से अधिक है। सौर ऊर्जा प्रमुख विकास इंजन बनी हुई है। इसकी वर्तमान स्थापित क्षमता लगभग 165 गीगावाट है, जो वर्ष 2014 में मात्र 2.8 गीगावाट थी। नागर विमानन मंत्रालय ने कहा है कि विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो फुकेट से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की उड़ान में हुई घटना की जांच कर रहा है। इसे गंभीर घटना के रूप में दर्ज किया गया है। दोनों पायलट की मादक पदार्थों के सेवन की जांच की गई। जांच पूरी होने तक दोनों पायलट को ड्यूटी से हटा दिया गया है। मंत्रालय ने कहा कि जांच और अंतिम रिपोर्ट के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। जनजातीय लोगों के अधिकारों, संस्कृति, परंपरा और योगदान को मान्यता देने के लिए आज दुनिया भर में विश्व जनजातीय दिवस मनाया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 1994 में जनजातीय लोगों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए इस दिवस की शुरुआत की थी। इस वर्ष का विषय है जनजातीय धाय सम्मान, जीवन और देखभाल का संरक्षण। इस अवसर पर देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। हरियाणा में संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की

0: तो 50वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित पवित्र कलश वंदन यात्रा आज कंबोपुरा गांव पहुंची। बड़ी संख्या में लोगों ने संत श्री रविदास मंदिर में यात्रा का स्वागत किया। ये यात्रा गुरु रविदास की जन्मभूमि उत्तर प्रदेश के काशी स्थित सीर गोवर्धनपुर से शुरू हुई थी। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कल मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिनों के दौरान दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, आसाम, मेघालय, पूर्वी मध्य प्रदेश, जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख में भी तेज बारिश हो सकती है। ओडिशा में एक बार फिर तेज बारिश होने के बाद बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। एक रिपोर्ट।
1: उड़ीसा में लगातार भारी बारिश हो रही है, जिससे कई जिलों में एक बार फिर बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। इस सीजन में बैतरणी नदी में तीसरी बार बाढ़ आई है, जिससे जाजपुर और भद्रक जिलों के कुछ हिस्सों में फिर से पानी भर गया है। जबकि बैतरणी की एक शाखा कानी नदी के कारण जाजपुर जिले में फिर से बाढ़ आ गई है। IMD ने पूरे राज्य के लिए येलो वार्निंग जारी की है और अनुमान लगाया है कि उत्तरी उड़ीसा, पश्चिम उड़ीसा के कुछ हिस्सों और पश्चिम बंगाल के आसपास के इलाके में कम दबाव वाले सिस्टम के कारण भारी बारिश होगी। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: चीन के पूर्वी तट से तूफान डॉल्फिन के टकराने से झेजियांग और फुजियान प्रांत प्रभावित हुए हैं। मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच शंघाई के दोनों हवाई अड्डों ने 1300 से अधिक उड़ानें रद्द कर दी हैं और 3 लाख लोग विस्थापित हुए हैं। तूफान के तट से टकराने के बाद उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने और धीरे धीरे कमजोर पड़ने की संभावना है। उज्बेकिस्तान में एशियाई जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महाराजन अरुमुंग पंडियन ने 65 किलो वर्ग में रजत पदक जीत लिया है। महाराजन ने आज कुल 285 किलो का भार उठाकर अपना व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल के पदक विजेताओं से बातचीत की, लोगों से भारतीय खिलाड़ियों का हमेशा उत्साहवर्धन करने का आग्रह किया। देश भर में कई कार्यक्रमों के साथ हर घर तिरंगा अभियान शुरू, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने लोगों से अभियान में शामिल होकर विकसित भारत के लिए फिर से संकल्प लेने की अपील की। झारखंड सरकार अनियमितताओं के आरोपों के बाद JPSC प्रारंभिक परीक्षा रद्द करने पर सहमत। प्रदर्शनकारी छात्रों ने कहा आंदोलन जारी रहेगा। JPSC के 3 सदस्यों ने इस्तीफा दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को स्पष्ट संदेश दिया कि भारत आतंकवाद कतई बर्दाश्त न करने की नीति के तहत देशवासियों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाएगा। और तूफान डॉल्फिन चीन के पूर्वी तट पर पहुंचा, 1300 से अधिक उड़ानें रद्द और 3 लाख लोग विस्थापित। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड I am निशित कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi interacts with medal winners of Commonwealth Games 2026, urges citizens to always cheer for Bharat. Har Ghar Tiranga campaign begins with multiple events across the country. Vice President and Prime Minister appeal to people to renew commitment to Viksit Bharat by joining this movement. Jharkhand government agrees to scrap JPSC preliminary exam over allegations of irregularities. Protesting students say agitation will continue. 3 JPSC members resign from their posts. Defence Minister Rajnath Singh asserts Operation Sindoor sent global message that India will go to any extent to protect its citizens with zero tolerance approach to terrorism. Pradhan Mantri Awas Yojana Urban has crossed major milestone with over 1 crore houses handed over to beneficiaries so far. And Typhoon Dolphin hits China's eastern coast, over 1300 flights cancelled while 3 lakh people relocated. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today met the medal winners of the Commonwealth Games 2026 at his residence in New Delhi. Sharing a video message, Mr. Modi said that those who participate in sports will prosper in life and urge citizens to always cheer for Bharat.
3: Jo khelega, wo khilega. Always cheer for Bharat. भारत माता की जय। भारत माता।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था। लिटरली जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाए तो मर जाए। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हूँ, जंप कर जाती। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

सावन कुमार फिल्म दर्शकों के लिए फिल्मों की बहार और गीतों की बौछार लेकर आए। फिल्म जगत का एक जाना पहचाना और प्रतिष्ठित नाम है निर्माता निर्देशक गीतकार सावन कुमार टाक का। आज ये कार्यक्रम इन्हीं पर केंद्रित।

1972 में आई फिल्म गोमती के किनारे। इस फिल्म के निर्माता निर्देशक थे सावन कुमार। सामाजिक ताने बाने को दर्शाती ये फिल्म कई मायने में महत्वपूर्ण है। ये फिल्म मीना कुमारी की आखिरी फिल्म थी और उनके मरणोपरांत रिलीज हुई थी। इस फिल्म में सावन कुमार और मीना कुमारी अमिताभ बच्चन को मुमताज के नायक के रूप में भूमिका निभाने के लिए विचार कर रहे थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मुमताज के नायक बने समीर खान। संगीत आर डी बर्मन का था। यह फिल्म उतनी सफल नहीं हुई जितनी उम्मीद थी। आइए सुनते हैं गोमती के किनारे, इस फिल्म का ये प्यारा सा गीत।

बात करते हैं सन 1967 की फिल्म नौनिहाल की। इस फिल्म की कहानी लिखी थी सावन कुमार टाक ने और इस फिल्म को प्रोड्यूस भी किया था। फिल्म में कलाकार थे संजीव कुमार, बलराज साहनी और इंद्राणी मुखर्जी। गीत कैफी आजमी के थे और संगीत मदन मोहन का था। निर्देशक राज मार्बोस।

लेखक, निर्माता और निर्देशक के रूप में सावन कुमार ने 1974 में रिलीज हुई एक बेहद संवेदनशील फिल्म बनाई हवस। अनिल धवन

जीतू सिंह, बिंदु, विद्या सिन्हा और विनोद मेहरा जैसे कलाकारों ने इस फिल्म में काम किया था और ये एक सफल फिल्म थी। इस फिल्म के लिए लिखे सावन कुमार के गीत को आइए सुनते हैं, जिसे संगीतबद्ध किया है उषा खन्ना ने।

सावन कुमार का जन्म 9 अगस्त 1936 को जयपुर में हुआ। वैसे अमूमन फिल्मों में हीरो बनने की चाहत से लोग मुंबई आते हैं। सावन कुमार भी अपवाद नहीं थे। कोशिश की रोल पाने की, सफल नहीं हुए तो इन्होंने फिल्म बनाने की ही सोच ली। जैसा सोचा उसे करने के लिए रुपयों की जरूरत थी। अपनी बहन से मदद मांगी पर उनकी आनाकानी के बीच इनके ब्रदर इन लॉ ने इनकी कोशिश को सहारा दिया और सावन कुमार ने फिल्म बनाई नौनिहाल। संजीव कुमार को अपनी फिल्म में पहले पहल रोल देने वाले सावन कुमार।

एक गीतकार के रूप में भी हम सावन कुमार को जानते हैं। अपनी कई फिल्मों में इन्होंने गीत लिखे हैं, साथ ही अन्य फिल्मकारों की फिल्मों के लिए भी इनके लिखे गीतों ने श्रोता दर्शकों को मुतासिर किया है। शत्रुघ्न सिन्हा और अभिनेत्री पूनम द्वारा अभिनीत 1973 की इनकी फिल्म सबक का आइए ये गाना सुनते हैं।

सावन कुमार ने 2004 की फिल्म कहो ना प्यार है के लिए कुछ गाने लिखे और इसी साल देव फिल्म के लिए भी इन्होंने गाने लिखे। आइए सुनते हैं कहो ना प्यार है का ये गाना।

श्रावण कुमार टाक ने अपनी ही फिल्मों में कई गीत लिखे जो लोकप्रिय भी हुए, जैसे फिल्म सौतन की बेटी का गाना हम भूल गए और फिल्म बेवफा से वफा का ये गाना।

नाम हरी भाई जरीवाला से बदलकर एक नया और फिल्मी नाम और उम्दा नाम दिया उम्दा कलाकार को, जिनका नाम है संजीव कुमार। वैसे ही सावन कुमार ने जूनियर महमूद को भी ब्रेक दिया। संगीतकार उषा खन्ना के साथ इनका फिल्मी और व्यक्तिगत जीवन काफी लंबा चला। हवस से साजन बिन सुहागन तक कई हिट गाने इस साथ ने दर्शक श्रोताओं को दिए।

सावन कुमार लिखते हैं, साजन बिन सुहागन मेरे लिए एक विशेष फिल्म थी क्योंकि ये मेरी पहली गोल्डन जुबली फिल्म थी। साजन बिन सुहागन फिल्म से जुड़ा हुआ एक किस्सा सुनाते हुए सावन कुमार कहते हैं कि उन दिनों कोई भी डायरेक्टर राजेंद्र कुमार और नूतन की जोड़ी को नहीं चाहता था। मैंने सोचा इन दोनों ही कलाकारों ने अपने दिनों में एक साथ काम नहीं किया है, क्यों ना ये एक साथ आएं। मैं राजेंद्र कुमार से मिलने उनके घर गया। उनकी पत्नी ने बताया अपने मित्र के साथ हैं, जाइए। वहां जाकर देखा तो राज कपूर थे। उन्होंने सोचा ऐसे ही मिलने आया होऊंगा। तब बात रोशन हो गई जब मैंने 11,000 रुपए का चेक साइनिंग अमाउंट के रूप में राजेंद्र कुमार को दिया। दोनों खुश हुए और अचंभित भी। राज जी ने कहा, मैं इनका इतना घनिष्ठ दोस्त होने के बाद भी इन्हें कास्ट करने की नहीं सोच पाया था।

सावन कुमार के साथ अभिनेत्री रेखा ने 5 फिल्में की। सावन कुमार एक वाकया शेयर करते हुए कहते हैं कि बात हवस फिल्म के बनने की प्रक्रिया के दरमियान की है, जब मैं आओ यारो गाओ गीत की रिकॉर्डिंग कर रहा था, जिसके लिए मैंने अभिनेत्री फरियाल को चुना था। ये गाना रेखा को बहुत पसंद आया और उन्होंने मुझसे चांस देने की बात कही। मैंने रेखा से ये कहकर समझाने की कोशिश की कि ये वैम्पिश नंबर है। रेखा ने एक ना सुनी और शूटिंग के दिन अपनी हेयर ड्रेसर मेकअप आर्टिस्ट की मदद से पूरी तरह तैयार अपने अंदाज की ड्रेस कॉस्ट्यूम के साथ हाजिर हो गई। ये सब देखकर मैं कुछ न कह सका, फरियाल को मनाया और श्रोताओं ये गाना फिर रेखा के हिस्से आया।

सावन कुमार टाक ने अपनी प्रतिभा, रचनात्मकता और फिल्म बाजार में अपनी अहमियत अपनी फिल्मों से साबित की। 1972 से लेकर 2006 तक इनके द्वारा निर्मित निर्देशित फिल्मों ने दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। ओ बेवफा, साजन की सहेली, लैला, प्रीति, प्यार की जीत, 1989 तक सौतन की बेटी जैसी फिल्मों का आपने निर्माण किया। फिर आई 1991 में सलमान खान द्वारा अभिनीत फिल्म सनम बेवफा। इस गीत को सावन कुमार ने लिखा और संगीत महेश किशोर का है।

सन 1992 में बेवफा से वफा, खलनायिका, चांद का टुकड़ा, सनम हरजाई, सलमा पे दिल आ गया, मदर सावन कुमार द्वारा निर्मित और निर्देशित फिल्में थी। सन 2003 में सावन कुमार टाक की फिल्म आई दिल परदेसी हो गया और सन 2006 में सावन द लव सीजन। सावन कुमार एक फिल्मकार के रूप में निश्चित रूप से अद्वितीय है। आज का ये कार्यक्रम इन्हीं पर केंद्रित था।

0: आलेख और स्वर जी श्याम का, संपादन आकांक्षा सिंह का, और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है, FM 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, रात्रि के 10 बजे हैं। लीजिए पेश है फरमाइशी गीतों पर आधारित हमारा कार्यक्रम आपकी चाहत।

कार्यक्रम आपकी चाय सुनने वाले आप तमाम श्रोताओं को उनके दोस्त संजय का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों लीजिए पेश है कार्यक्रम का पहला फरमाइशी गीत जिसे हमने लिया है फिल्म बॉर्डर से, और इस गीत को सुनना चाहा है जामा मस्जिद रोड हजारीबाग से मुबारक हुसैन, तबारक हुसैन, अमानत हुसैन, शराफत हुसैन, बिल्किस फातमा, कनीस फातमा, यास्मीन फातमा और सहनाज फातमा ने। इस गीत की फरमाइश आई है झुमरी तिलिया से विजय शर्मा, भोला चौधरी और सुधीर कुमार की ओर से। इस गीत को सुनना चाहा है छत्तीसगढ़ के दंतरेगी से भागवत वर्मा, लेवई से गुलाम दास माणिकपुरी, रिंगनी से दिनेश वर्मा, लक्षणपुर से विश्वनाथ साहू और मावली सिंगारपुर से सालिक पुजारी ने। और इस गीत की फरमाइश लिख भेजी है चिपाकला बड़का गांव से बाबूलाल ठाकुर, सबिया ठाकुर, तिलेश्वरी, भरत ठाकुर, मंजू, संतोष ठाकुर, विकास कुमार ठाकुर, प्रभात कुमार ठाकुर, जितेश, आदर्श, अनुराधा, रुक्मणी, प्रियंका और दीपिका ने। तो आइए इन तमाम श्रोताओं के पसंद पर सुनते हैं फिल्म बॉर्डर से लिया गया ये गीत।

दोस्तों भाई सुनते हैं कार्यक्रम का अगला फरमाइशी गीत। और इस गीत को हमने लिया है फिल्म रिफ्यूजी से। और इस गीत को सुनना चाहा है महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिणी ठाकुर, सूरज ठाकुर, सुजला ठाकुर, ज्योति ठाकुर और रियांश ठाकुर ने। इसी गीत की फरमाइश आई है मेन रोड बड़का गांव से दिनेश मालाकार, नीरज मालाकार, आशीष मालाकार, विकास मालाकार, रंजना मालाकार, गुड़िया रानी, भोल गोलू बाबू, भोला बाबू एवं उनके मम्मी पापा तथा उनके ढेर सारे साथीगण की ओर से। इस गीत की फरमाइश लिख भेजी है जमा मस्जिद रोड से श्री महावीरलाल चौरसिया और बीरेंद्र भगत ने।

और अब दोस्तों सुनते हैं इस कार्यक्रम का अंतिम फरमाइशी गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म बॉर्डर 2 से। और इस गीत को सुनना चाहा है करबला चौक रामगढ़ से शहनवाज हुसैन, अकबर हुसैन, अनवर हुसैन, अशरफ हुसैन, तरत यास्मीन, रफत यास्मीन, फरहत यास्मीन और बिस्मिल्ला खाने। इस गीत की फरमाइश आई है डम्बाडी हरली बड़का गांव से उमेश चंद्र पांडे, शंभू चंद्र पांडे, अनिल चंद्र पांडे, शाकेत, शुभम, नर्मदा, अक्षता, प्रियंका, शमी, अपराजिता और परिवार के सभी सदस्यों की ओर से। इस गीत को सुनना चाहा है जमा मस्जिद रोड।

हजारीबाग से मुबारक हुसैन, तबारक हुसैन, अमानत हुसैन, शराफत हुसैन, बिल्किस फातमा, कनीज फातमा, यास्मीन फातमा और शहनाज फातमा ने। तो आइए इन तमाम श्रोताओं की पसंद पर सुनते हैं फिल्म बॉर्डर से लिया गया ये प्यारा सा गीत।

दोस्तों, आप सुन रहे थे फरमाइसी गीतों पर आधारित हमारा कार्यक्रम आपकी चाहत FM 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है। रात्रि के 10:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम शामी गजल।

सुन रहे कार्यक्रम शामी गजल हमारे आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से FM 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

FM 102.1 MHz पर ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है और अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम शामी गजल।

दोस्तों, इसी खूबसूरत सी गजल के साथ कार्यक्रम शामी गजल से हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। FM 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है। रात्रि के 11 बजने को हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से हिंदी समाचार और फिर अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में अपने आवास पर राष्ट्रमंडल खेल 2026 के पदक विजेताओं से मुलाकात की। पदक विजेताओं ने प्रधानमंत्री के साथ बातचीत के दौरान खेलों से जुड़े अपने अनुभव साझा किए। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि सभी खिलाड़ियों ने अपने शानदार प्रदर्शन से देश का मान बढ़ाया है और उनकी सफलता कई युवाओं को प्रेरित करेगी। श्री मोदी ने एक वीडियो संदेश साझा करते हुए कहा कि जो खेलेंगे वे आगे बढ़ेंगे, और उन्होंने नागरिकों से हमेशा भारत का उत्साह बढ़ाने की अपील की।
1: जो खेलेगा वो खिलेगा। ऑलवेज चीयर फॉर भारत। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय।
0: इस मौके पर युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मांडविया और युवा मामले और खेल राज्य मंत्री रक्षा निखिल खड़से मौजूद थे। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 23 जुलाई से 2 अगस्त तक आयोजित हुए इन खेलों में भारत पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। भारतीय खिलाड़ियों ने विभिन्न खेलों में कुल 39 पदक जीते, जिनमें 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू हो गया है। 17 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य देशवासियों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना है।
2: घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, रथ घर तिरंगा।
0: इस वर्ष ये अभियान राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ मनाया जा रहा है। देशभर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी होगा। दुनिया भर में 200 से अधिक भारतीय दूतावास, उच्चायोग और वाणिज्य दूतावास भी अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से इस अभियान में उत्साह के साथ शामिल होने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने का संकल्प फिर से लेने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि तिरंगा देश का गौरव है। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि इस वर्ष का अभियान वंदे मातरम को समर्पित है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को यह स्पष्ट संदेश दिया है कि भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। नई दिल्ली में रक्षा मंत्री ने एक कार्यक्रम में ये बात कही। श्री सिंह ने भारतीय रक्षा बलों की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने पाकिस्तान में

0: मौजूद आतंकवादियों और उनके आकाओं का सफाया किया और भारत पर बुरी नजर डालने वालों को गंभीर परिणाम भुगतने पड़े। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने कहा है कि पीएम आवास योजना शहरी और दूसरे चरण की पीएम आवास योजना शहरी के अंतर्गत अब तक 1,25,00,000 से अधिक मकानों को मंजूरी दी जा चुकी है। इनमें से 1 करोड़ से ज्यादा मकान बनकर तैयार हो चुके हैं और लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं। इनमें करीब 1 करोड़ मकान महिलाओं को आवंटित किए गए हैं। झारखंड सरकार और प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच झारखंड लोक सेवा आयोग JPSSC और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों की अधिकतर मांगों पर सहमति बन गई है। राज्य के मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा कि सरकार 14वीं JPSC प्रारंभिक परीक्षा और वर्ष 2023-25 की बैकलॉग परीक्षाओं को रद्द करने पर सहमत है। आज सरकार और छात्रों के बीच हुई वार्ता के बाद मंत्री ने कहा कि कथित वित्तीय अनियमितताओं की ईडी जांच और आपराधिक मामलों की CID जांच कराई जाएगी। साथ ही 90 दिनों के भीतर आरोप पत्र दाखिल करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने की भी बात कही गई है। सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय ईडी के निदेशक राहुल नवीन का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। ये कार्यकाल इस महीने की 13 तारीख से शुरू होकर अगले वर्ष 13 अगस्त तक रहेगा। सेवा में ये विस्तार 31 जुलाई 2027 को उनकी तय सेवा निवृत्ति के बाद भी जारी रहेगी। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने राहुल नवीन का कार्यकाल बढ़ाने को मंजूरी दी है। वे 1993 बैच के भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी हैं। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कल मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों के दौरान दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, असम, मेघालय, पूर्वी मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी तेज बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अभिनीत शुक्ला। Prime Minister Narendra Modi today met the medal winners of the Commonwealth Games 2026 at his residence in New Delhi. During the interaction, the medal winners shared their experiences from the games with the Prime Minister. In a social media post, Mr. Modi said that each one of them has made the nation proud through their exceptional performances and their success will motivate many youngsters. India finished at the 4th spot on the medal table at the games held in Glasgow, Scotland between 23rd of July to 2nd of August. Indian athletes won 39 medals, including 13 gold, 17 silver and 9 bronze across various sporting disciplines. The Har Ghar Tiranga campaign is being celebrated nationwide to foster a sense of patriotism among citizens, strengthen national unity and promote India's cultural heritage.